0: की हट धर्मी का हाल तो ये है कि अगर हम इसे किसी आजमी पर भी नाजिल कर देते और ये फसीह अरबी कलाम वो इनको पढ़कर सुनाता तब भी ये मान कर ना देते। इसी तरह हमने इस जिक्र को मुजरिमों के दिलों में गुजारा है, वो इस पर ईमान नहीं लाते जब तक कि आजाब अलीम न देख लें। फिर जब वो बेखबरी में उन पर आ पड़ता है उस वक्त वो कहते हैं क्या अब हमें कुछ मोहलत मिल सकती है, तो क्या ये लोग हमारे आजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं? तुमने कुछ गौर किया? अगर हम इन्हें बरसों तक आयश करने की मोहलत भी दे दें और फिर वही चीज उन पर आ जाए जिससे इन्हें डराया जा रहा है, तो वो सामान जीस्त जो इनको मिला हुआ है इनके किस काम आएगा? सदकल्लाहुल अज़ीम।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामीन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में फज्र की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह।

0: जिनके शबो रोज हॉस्पिटल्स में गुजरते हैं। कितने लोग हैं जो दायमी अमराज का शिकार हैं और अजियत में मुबतला है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहे और अपनी सलामती की दुआ मांगता रहे।
1: पैगाम ऑन FM 107।
2: FM 107 पर रेडियो कतर की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। समीन, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछें तो मैं तो उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। इसलिए उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पा लें। सामीन, मौलाना इदरीस अबकर साहब दुआगो हैं अल्लाह ताला के हुजूर। आइए हम भी इन दुआओं में शरीक हो जाएं। ऐ अल्लाह, तू हमारी सब दुआएं कबूल फरमा ले।

واخفض بوجهك الكريم عنا ولا تفضحنا بسرائر.

0: स्टील से मुरब्बा हो गई और इसका दरवाजा भी जमीन से 6 फुट ऊपर कर दिया गया ताकि कोई उनकी मर्जी के बगैर अंदर दाखिल ना हो। फिर इसके अंदर तस्वीर बना दी और बुत भी रख दिए। उस वक्त तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरसत नहीं हुई थी, इसलिए वो खामोश रहे। ताहम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर काबा को तस्वीरों और बुतों से पाक कर दिया। तामीर के इनहराफ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौका मिला तो मैं इसे भी दुरुस्त करवा दूंगा, लेकिन अल्लाह ने ऐसे किसी मौके से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुला लिया। जब अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के के खलीफा मुकर्रर हुए और उनके दौर में यजीद ने मक्के पर हमला किया तो खाने काबा को भी बहुत नुकसान पहुँचा। चूँकि अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश का इल्म था, इसलिए उन्होंने काबा की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर के मुताबिक कर दी। हतीम को काबा में शामिल कर दिया, 2 दरवाज़े बनवा दिए और उसकी तहलीज को नीचा कर दिया गया। इस तरह उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पूरी कर दी। इसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में एक बार फिर काबा की तामीर कुरैश के मुताबिक कर दी गई, जो आज तक उसी तामीर पर कायम है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में हज जिस तरह फ़र्ज हुआ था, उनके बाद मुख्तलिफ अदवार में इसमें भी लोगों ने कई तरह की तब्दीलियां की।
1: और जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाए और इस्लाम की रोशनी फैली तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज का वही असल तरीका मुकर्रर कर दिया गया। अल्लाह ने कुरान पाक में हज के बारे में मुख्तलिफ हदायात दी हैं और अहकाम जारी किए हैं।
2: सूरह बकरा की आयत रकम 196 में अल्लाह सुबहानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं,
3: वअतिम्मु الحج والعمرة لله,
2: और हज और उमरा अल्लाह के लिए पूरा पूरा अदा करो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरतुल बकरा की आयत रकम 197 में इरशाद फरमाते हैं,
3: الحج

खून तराशना, झगड़ा करना, शिकार करना या दूसरों को शिकार की तरगीब देना, शिकारी की मदद करना, खुशकी पर शिकार को दौड़ाना, जुए मारना, जुए मारने के लिए कपड़े धूप में बिछाना, कत्ल करना वगैरह। वाज़े रहे कि एहराम की हालत में कोई गलत या ममनुआ फ़ाल अदा हो जाए तो इसका कफ़ारा अदा करना पड़ता है। इन अफ़ाल के अलावा मियाँ बीवी का आपस में इख्तलात या जमा करना, किसी की बदगोई या गीबत करना, बदनीयती, झूठ बोलना, नाप तोल में कमी करना बड़े गुनाहों में शुमार होते हैं। इसीलिए बेहतर यही है कि एहराम बांधने से पहले हज का इरादा करते ही ऐसे कामों से बचने की पूरी पूरी कोशिश की जाए और इस्तग़फ़ार का ज्यादा से ज्यादा विर्द किया जाए और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी और नेक कामों की तौफीक की दुआएं की जाएं।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युतिअर रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामीन, इस्लाम में नौमौलूद के साथ ताल्लुक महज मोहब्बत और खुशी का इजहार ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल तरबियती निज़ाम है जो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में तश्कील पाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे की पैदाइश से लेकर उसके नाम रखने तक कई अहम सुन्नतें सिखाएं और आज की सुन्नत में हमारी गुफ्तगू होगी अकीका, बाल मुंडवाने और अच्छे नाम रखने के हवाले से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे की तरफ से सातवें दिन जानवर ज़बह किया जाए, उसका सर मुंडाया जाए और उसका नाम रखा जाए। एक हदीस में ऐसा भी आया है, लड़के के लिए दो बकरे और लड़की के लिए एक बकरी, और सुन्नत यह है कि पैदाइश के सातवें दिन जानवर ज़बह किया जाए, अगर वो मुमकिन ना हो सके तो 14वां दिन वरना 21वें दिन। और इस सिलसिले में बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनकूल है कि अकीका सातवें दिन ज़बह किया जाए या 14वें दिन या 21वें दिन। ये हदीस रिवायत की है अबू दाऊद ने। मजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के अकीके में मजीद बाल मुंडवाना और उसके बालों के वजन के बराबर चांदी सदका करने की बात भी आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन के अकीके में एक बकरी ज़बह की, फिर फरमाया, ए फातिमा, उसका सर मुंडवा कर उसके बालों के वजन के बराबर चांदी सदका करो। मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बच्चों को अच्छे और पाकिजा नाम दिए जाएं। फरमाया, अल्लाह को सबसे महबूब नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान हैं, और ऐसे नाम रखने से मना फरमाया जो बदफादी या गुरूर का सबब बने। इस तरह सामीन, इस्लाम ने जिंदगी के पहले 7 दिनों में ही बच्चे के लिए जिस्मानी, रूहानी और माशरती बुनियादें रख दी हैं। तो चूँकि अकीका अल्लाह की नियमत पर शुक्र का मुजाहरा है, बच्चे की हिफाजत की दुआ और गोश्त तकसीम से माशरती ताल्लुकात मजीद मजबूत होते हैं। बाल मुंडवाने के हवाले से ये बात जरूर आएगी कि सफाई और खैरात के जरिए बच्चे के आगाज को खैर और बरकत से जोड़ा जाता है और अच्छा नाम बच्चे की शख्सियत का हिस्सा बनता है और पूरी जिंदगी उसे इज्जत और वक़ार से याद किया जाता है। यूं इस्लाम हमें सिखाता है कि बच्चे की तरबियत सिर्फ तालीम या उम्र के बड़े मराहिल पर नहीं बल्कि उसकी विलादत के पहले ही दिनों में सुन्नतों के जरिए बुनियाद रखी जाती है। आइए हम भी इन रूह परवर सुन्नतों को अपने घरों में जिंदा करें। ये थी आज की सुन्नत, अकीका, बाल मुंडवाना और अच्छा नाम रखना। आइए हम भी अपने घरों में इन रूह परवर सुन्नतों को जिंदा करें।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी।
3: एब्सोल्यूट सिनेमा।
4: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 से मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
5: दोस्तों, गाड़ी की रूफ टॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि इससे सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है जो हमारे लिए एक जरूरी वार्निंग है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दिलाएं। आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर ना सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करें। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
6: अगर आप ये मानते हैं कि ख्वाब हकीकत का रूप ले सकते हैं तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त सफर के लिए जहां आइडिया सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रहते बल्कि इनोवेशन बन जाते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, क्यूरियोसिटी को फुल मोड पर लगाइए और कनेक्ट हो जाइए कतर इनोवेट्स के साथ जहां सोच बदलती है, आइडियाज ग्रो करते हैं और फ्यूचर शुरू होता है अभी। कतर इनोवेट्स विद आरजे सफा एवरी मंडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन FM 107। Stay tuned and stay inspired.
2: Hey बच्चों, are you ready? Games, मस्ती, stories और super fun के लिए
7: FM 107 पर आता है एक ऐसा शो जहां बोर होने का कोई चांस नहीं।
8: ये शो कौन सा है?
2: The Super Kid Show.
7: Sunday to Thursday, 1:30 PM से 3 PM तक, only on FM 107, दिल से देसी। I love the Super Kid Show. Super fun.

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: वैल्यूज आर वैल्यूज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड वेलकम टू द सेगमेंट कॉल्ड आर वैल्यूज। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों में जो बर्ड्स हैं या फिर जो एनिमल्स हैं उन्हें पानी पिलाना इंसानी फर्ज है। देखिए, गर्मियों का मौसम आ चुका है, हम इंसानों को गर्मी लगती है तो हम पानी वगैरह पी लेते हैं, अपना भरपूर इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन जानवर, परिंदे, बेजुबान लोग,

वजह से हर साल दुनिया भर में देखा जाए तो बहुत से परिंदे और जानवर परेशानी का शिकार होते हैं, हत्ता ये कि वो अपनी जानों से भी हाथ धो बैठते हैं। शहरों और कई इलाकों में वैसे तो पानी रखने का रिवाज है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये रिवाज नहीं भी है। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आपकी और हमारी बनती है। आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी तरफ से छोटी छोटी कोशिशें करें जिसके जरिए हम इन जानवरों

0: परैया है या और भी कोई भी बर्ड हो सकती है, वो पानी के लिए धर भटकते हैं। वहीं जानवरों की बात करें तो बिल्ली है, डॉग है, बकरी है, ऊंट है, ये भी प्यास के लिए धर भटकते हैं। पानी ना मिलने की सूरत में इनकी सेहत खराब हो जाती है। और जैसे मैंने बताया कि कुछ जानवरों की तो जान भी चली जाती है। तो यानी हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम जब अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं, खुद के लिए इंतजाम करते हैं, तो इनका भी ख्याल करें। पर अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इनकी तकलीफ पर तवज्जो ही नहीं देते। देखिए, परिंदों और जानवरों को पानी पिलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा बाउल, मिट्टी का प्याला, प्लास्टिक का कंटेनर, ये सारी चीजें बहुत सस्ते में अवेलेबल हैं। और पानी जो इतना अनमोल है, ये किसी को भी दिया जा सकता है। आपको करना ये है कि घर की छत पर, बालकनी है तो वहाँ, दीवार के किनारे या दरख्त के नीचे पानी रखें, परिंदों के लिए बहुत मददगार साबित होता है। इसी तरह शायद गली, कोना या कोई गेट के बाहर ऐसी कोई जगह जो थोड़ी सेफ सी है, वहाँ आप जानवरों के लिए भी पानी रख सकते हैं। इस काम का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि इस पर कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी तवज्जो चाहिए और शायद कंसिस्टेंसी, रोज सुबह या शाम। ये काम, ये ड्यूटी आपको जिम्मेदारी से करनी है। पानी चेक करना है, उसे नया साफ करके वापस से रखना है, जिससे कि परिंदे साफ सुथरा पानी पी सकें, जिससे परिंदे बेखौफ आकर पानी पिए और जानवर भी खुद को महसूस समझे और उन्हें ये समझ में आ जाए कि अच्छा, यहाँ इस जगह पर जो है वो परमानेंटली हमें पानी मिलता है। देखिए, ये अमल जो है वो सिर्फ इंसानी फर्ज ही नहीं बल्कि इंसानियत और रहमत का भी इजहार करता है। मजहबी तौर पर भी परिंदों और जानवरों की मदद करना सवाब का काम समझा जाता है। कहा भी जाता है कि किसी प्यासे को पानी पिलाना बहुत बड़ी नेकी है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या परिंदा। इस छोटी सी नेकी का अजर दिल को सुकून देता है। बच्चों को भी इस काम में शामिल कीजिए। जब बच्चे देखेंगे कि हम परिंदों और जानवरों का ख्याल रखते हैं, तो उनके अंदर भी रहमत और जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है। बच्चे स्कूल या फिर कॉलोनी लेवल पर अवेयरनेस जो है उनके लिए पैदा की जा सकती है। बच्चे जो है ग्रुप्स में मिलकर एक छोटी सी टीम फॉर्म कर लें, यू नो, केयर टीम, बर्ड्स केयर टीम या फिर एनिमल्स केयर टीम समथिंग, और इस तरह से इस ड्यूटी को रोटेट करते हुए बच्चे आसानी से ये काम हर रोज अंजाम दे सकते हैं। देखिए, आज के दौर में जब बिल्डिंग्स ज्यादा हैं, दरख्त कम हो गए हैं, परिंदों के लिए अपना पानी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया है, अपने लिए छाव ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया है, इसीलिए हर घर, हर शॉप, हर ऑफिस के बाहर पानी का इंतजाम बहुत जरूरी है। अगर हर शख्स अपना छोटा सा किरदार अदा करे तो बहुत सी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि गर्मियों में परिंदों और जानवरों को पानी पिलाना एक छोटी लेकिन बहुत कीमती कोशिश है। ये अमल हमारे दिल को भी नर्म करता है और सोसाइटी में रहमत और हमदर्दी का पैगाम भी देता है। आइए कोशिश करते हैं कि इस गर्मी में मिलकर अपनी खामोश मखलूक के लिए पानी का एक प्याला जरूर रखेंगे और हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ जब तक गर्मियां हैं इस पर अमल करते रहेंगे। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और मैं मिलकर इस काम को अंजाम देंगे और मुझे बताइएगा भी आप मैसेज के थ्रू कि क्या आपने ऐसा किया या फिर आप ऐसा करते आ रहे हैं, तो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। नंबर है 666-22-107। फिलहाल के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए आरजे महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ एफएम 107 पर।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कदर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान और शो है ये पर्ल्स ऑफ कुरान। उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज पल्स ऑफ कुरान में मैं आपके लिए जो आयत लेकर आई हूं वो है सूरह अल इंसान, या जिसे सूरह दहर भी कहते हैं, कि आयत नंबर 8 और 9। और वो अल्लाह की मोहब्बत में या उसकी रजा के लिए खाना खिलाते हैं मोहताज, यतीम और कैदी को, और कहते हैं, हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं, हम तुमसे ना कोई बदला चाहते हैं और ना शुक्रिया। यह आयात सूरह अल इंसान की निहायत खूबसूरत और मौसर आयात में से हैं, जो मुखलिस बंदों की आला सिफात को बयान करती हैं। मुफसरीन के मुताबिक इन आयात के नजूल का एक खास वाकया भी बयान किया जाता है, अगरचे इनका पैगाम आम और हर जमाने के लिए है। अगर हम इसके शान नजूल की बात करें तो रिवायात में आता है कि हजरत अली बिन अबी तालिब अज़ल्ताला अन्हो और हजरत फातिमा ज़हरा अज़ल्ताला अन्हा ने नजर मानी थी कि अगर उनके बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन सेहतियाब हो जाएं तो वो 3 दिन रोजा रखेंगे, और जब दोनों सेहतियाब हो गए तो उन्होंने नजर पूरी करने के लिए रोजे रखे। हर रोज अफ्तार के वक्त जब वो खाना खाने बैठते तो कोई ना कोई मोहताज दरवाजे पे आ जाता। पहले दिन एक मिस्कीन आया, दूसरे दिन एक यतीम आया और तीसरे दिन एक कैदी या असीर आया। हर बार उन्होंने अपना सारा खाना उन लोगों को दे दिया और खुद पानी पर अफ्तार किया। 3 दिन तक यही अमल जारी रहा। उनके इस खुलूस, इसार और कुर्बानी पर अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल फरमाई, जिनमें उनके अमल को सराहा गया और उसे मोमिनों के लिए एक मिसाल बना दिया गया। यह आयात सूरह अल इंसान की उन अजीम तालीमात में से हैं जो इंसानी अखलाक, नियत की पाकीज़गी और समाजी हमदर्दी की बुनियादें मजबूत करती हैं। इन आयात में अल्लाह ताला एक ऐसे ग्रोह मोमिनीन का जिक्र फरमा रहे हैं जो ना सिर्फ इबादत गुजार हैं बल्कि अमली जिंदगी में भी आला अखलाक का नमूना पेश करते हैं। इन आयात का बुनियादी पैगाम यह है कि मोमिन वो है जो अपनी पसंदीदा चीज भी दूसरों को दे देता है, और ये सब कुछ सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करता है, ना कि किसी दुनियावी फायदे या तारीफ के लिए। यहाँ खाना खिलाना सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक अलामत है जो पूरी इंसानी रवैये और अखलाकी तरबियत को जाहिर करती है। आयत में खास तौर पर फरमाया गया, वो खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत के बावजूद। इसका मतलब यह है कि वो लोग ऐसी चीज देते हैं जो खुद उन्हें भी पसंद होती है या जिसकी उन्हें जरूरत होती है। ये बात बहुत अहम है क्योंकि आम तौर पे इंसान वो चीज देता है जो उसके लिए इजाफी हो, लेकिन यहाँ मयार बदल दिया गया है। असल नेकी वो है जिसमें इंसान अपनी जरूरत को कुर्बान करे। यही वो मकाम है जहां ईमान सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल और अमल से जाहिर होता है। इन आयात में सबसे अहम उसूल इखलास है। वो मोमिनीन कहते हैं, हम तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं। ये जुमला पूरी इबादत और नेकी के फलसफे को वाजे करता है कि अमल की कदर नियत से है। अगर नियत اللہ کے لیے ہو تو چھوٹا عمل بھی عظیم بن جاتا ہے، اگر نیت دنیا کے لیے ہو تو بڑا عمل بھی بے قیمت ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ریا کو سختی سے ناپسند کیا گیا ہے۔ ان آیات سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقی نیکی کرنے والے لوگ اپنی نیکی کو نمایاں نہیں کرتے، وہ نہ صرف مدد کرتے ہیں بلکہ ساتھ بے یہ بھی کہتے ہیں، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ یہ جملہ انسان کو اندر سے آزاد کر دیتا ہے، یعنی نہ خود تعریف کی خواہش، نہ واپسی کی امید، نہ کسی قسم کا احسان جتانا۔ یہی ہے وہ مقام جہاں انسان انسانی انا سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ ان آیات میں صرف روحانی سبق نہیں بلکہ ایک مکمل سماجی نظام بھی دیا گیا ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ معاشرہ تب بہتر بنتا ہے جب امیر غریب کا خیال رکھے، طاقتور کمزور کی مدد کرے، ہر شخص دوسرے کی ضرورت کو سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں تین طبقوں کا خاص ذکر کیا گیا، محتاج، یتیم، قیدی۔ یہ تینوں وہ طبقات ہیں جو سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ محتاج وہ شخص ہے جو ضرورت مند تو ہے لیکن سوال نہیں کرتا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کیونکہ اسلام صرف مانگنے والوں کی نہیں بلکہ خاموش ضرورت مند کی بھی مدد کا حکم دیتا ہے۔ یہ معاشرتی حساسیت پیدا کرتا ہے کہ ہم صرف ظاہر نہیں بلکہ چھپے ہوئے حالات کو بھی دیکھیں۔ ان آیات کا پہلا بنیادی پیغام یہ ہے کہ نیکی کا اصل معیار اخلاص ہے۔ قربانی وہ ہے جو اپنی پسندیدہ چیز میں سے ہو۔ مدد بغیر کسی بدلے کی امید کے ہونی چاہیے۔ معاشرہ کمزور افراد کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یہ آیات سورہ انسان میں جن طبقات کا خاص ذکر کرتی ہیں، ان میں دوسرا اہم طبقہ ہے یتیم۔ یتیم کا ذکر اسلام میں بار بار آتا ہے جس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کا والد کم عمر میں وفات پا جائے۔ اسلام میں یتیم صرف ایک سماجی اصطلاح نہیں بلکہ ایک امتحان شدہ انسان کی علامت ہے جو کمزوری اور سہارا نہ ہونے کی حالت میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ یتیم کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس باپ کا سہارا نہیں ہوتا۔ وہ اکثر مالی کمزوری کا شکار ہوتا ہے۔ اسے جذباتی طور پر بھی تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے یتیم کو خاص

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए, फ्राइडे 8 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: FM 107. Time check.
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड। गुड मॉर्निंग जी, बार बार की। कल तो आपने मौज करा दी भाई, कल सरवर भाई और नाजिया के शो में जो आपने एंथनी खेला है मज़ा आ गया। उसकी रिपोर्ट मुझे मिली शाम में और सुबह को, ओए होए होए होए। मैं मतलब क्या बताऊँ आपको, मैं थैंक यू कैसे बोलूँ बताओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी हम कुछ अलग करेंगे, ठीक है। आज भी बहुत बढ़िया कहानी है और आज बहुत बढ़िया कुछ तो कर ही लेंगे। बातों में बात निकल जाएगी। लेकिन आप कहाँ हैं, किधर हैं, कैसे, मौसम ठीक ठाक हो रहा है? नॉट बैड, नॉट रियली गुड, बीच का कोई रास्ता ही है, बट इट्स गुड गुड फॉर नाउ। 666-22107 नंबर है, 666-22107। आ जाइए जल्दी से, मैसेज खेल लेते हैं, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ा लेंगे, क्या दिक्कत है। और हाँ, एक और चीज़ थी, मैं कहना भूल गया, क्या कह रहा था, भूल ही गया। चलो जब याद आएगी तो कह दूंगा। आप सबसे पहले तो सुबह की शुरुआत दुआ से करेंगे, सो सुबह की अधिकार, एंड उसके बाद इंशाल्लाह आपसे बात होगी। 6:02, मैं दुहा वाला कबीर, 10:33 के बाद आपसे होगी मुलाकात। स्टे ट्यून्ड।
2: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीजा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

आज की तारीख में भी एंड इज अ वेरी वेरी सीनियर गाय. तो मजा आएगा आपको आज का पूरा किस्सा सुन के. इट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस. आपको अच्छी लगनी चाहिए कहानी. बस मेरा तो ये काम है, मासूम सी ख्वाहिश है, छोटी सी आशा. अब जरा मैं सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं, क्योंकि आज जो मैं सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं, ये वो सवाल है जो मैंने ऑफिस में पूछा और सबके सब मुझे कह रहे ये क्या पूछ रहे हैं भाई, ये सवाल है, ये कोई बात हुई, फिर सोच में पड़ गए. तो मैं वही सवाल आपसे पूछूंगा. फिलहाल फरहत भाई जो है मुझे ताना दे रहे, कह रहे हाँ हाँ जरूर सही कह रहा हो, सोशल मीडिया में आगा सही कह रहा हूँ भाई. माइक वाइक का इंतजाम कर लिया फरहत भाई. मैं इतना आलस हो गया था, घर वालों ने बोला कि भाई घर से बाहर निकाल देंगे अगर कहानी सुनाना नहीं शुरू किया. सो अभी मामला बहुत खेड़ा हो चुका है फरहत भाई, अभी एकदम नोक पे आ गया, नोक पे. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ये अथर अली साहब ने मैसेज किया है. देन एक वॉइस नोट है, तो मैं वॉइस नोट तो अभी सुन नहीं सकता हूँ, बट ये नाम बोलता हूँ. सरवर इमाम साहब, जजाकल्ला बहुत बहुत शुक्रिया. कल लोगों ने सरवर भाई को बहुत छेड़ा, मुझे पता लगा आपने एंथनी एंथनी करके. आहा हा, मजा आ गया, मजा आ गया. एंड आई वाज रियली हैप्पी कि ये किया आप लोगों ने, क्योंकि अच्छा हुआ दो शो आपस में कनेक्ट हुए. एंड आई इमेंसली लव्ड इट. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बहुत मजा आया, सच्ची बता रहा हूं मैं. सो थैंक यू फॉर दैट. अब जरा मैं सवाल पूछ लेता हूं, एक सेकेंड. वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, अलीना का मैसेज है. बच्चे क्या कह रही हूँ, अस्सलाम वालेकुम कबीर अंकल, हाउ आर यू, टुडे इज़ माय इस्लामिक एग्जाम, आल्सो द बुक यू टॉक्ड अबाउट यस्टरडे इज इट देयर इन कतर नेशनल लाइब्रेरी. स्वीटहार्ट, कल जो मैंने बुक की बात करी थी वो कॉमिक थी, तो कल वाली बुक नहीं है डार्लिंग. वो जो बुक है वो वाली मिलेगी तुम्हें, बुक ऑफ फाइव रिंग्स. बहुत अच्छी है, डिसिप्लिन पर है, मियां मोतो मुसाशी की जो मैंने कहानी सुनाई थी, दैट बुक इज़ देयर इन कतर नेशनल लाइब्रेरी. तो अगर वो वाली बुक उठाना चाहो ना, दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल अलीना. बहुत अच्छा है, मतलब उसमें डिसिप्लिन है, उसमें कैसे खुद को ना टाइमली बदलते रहना चाहिए. बहुत अच्छी बुक है वो. कल वाली कॉमिक थी एक्चुअली में, है ना. परीना ऑल द बेस्ट. और कितने एग्जाम बच गए बेटे, जब से मैं बात कर रहा हूँ आपसे आपके एग्जाम एग्जाम हो जा रहे हैं स्वीटहार्ट. तो कितने बचे एग्जाम अभी. तो भाई सब अलीना के लिए दुआ करें, आज इस्लामिक एग्जाम है उसका, है ना. अलीना ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव टू यू बच्चे. और अब मैं सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि एग्जाम की बात भी हो रही है. सवाल ये है, आप कौन सी पावर को आज की तारीख में ज्यादा मानते हैं, पढ़ने की ताकत को या बोलने की ताकत को? व्हाट डू यू थिंक इज मोर पावरफुल? कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है सवाल इन योर हेड, क्योंकि मेरे हेड में भी था जब मैंने सोच रहा था. क्या ज्यादा आपको लगता है कि ज्यादा पावरफुल टूल है, पढ़ने की ताकत या बोलने की ताकत? क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट या क्या ज्यादा पावरफुल है? आराम से सोच के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है. एंड रीजन भी देना, व्हाई डू यू फील दैट वे. सो 666-22107 नंबर है, 666-22107. एंड प्लीज बताएं क्या आप क्या मानते हैं, और इसके बाद फिर कहानी को, इस बात को आगे बढ़ाएंगे. तो मैं ये सवाल जो है मैं क्यों पूछ रहा हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है. मैं जितनी भी कहानियाँ आज तक मैं तैयार करता आया हूँ, मतलब हो गई होंगी 400-500 तो हो ही गई होंगी पिछले कुछ 3-3.5-4 सालों में, और वो सारी की सारी कहानी सुनाते सुनाते सुनाते आई रियलाइज फ्यू थिंग्स जो मैं आखिरी में बताऊँगा. तो मगर उसी से सवाल निकला है. अलीना ने बताया कि उनका एक एग्जाम बचा है, टुमारो इज लास्ट एग्जाम, प्लीज बच्चे खत्म करो एग्जाम, जल्दी से निपटो और पार्टी हार्ड. ओके, एक मैसेज आया है फरहत भाई का. फरहत भाई कह रहे हैं आपकी मदद करें सोशल मीडिया पर आने के लिए. नहीं नहीं भाई, भाई आप बस दुआ करें भाई, कुछ और नीचे फरहत भाई. एक मैसेज, सलाम भाई, छोटी सी आशा कब बड़ी होगी? छोटी सी आशा कब बड़ी होगी? कौन सी छोटी सी आशा? सोशल मीडिया पर आने की. ये बड़ी बड़ी हो जाए, डोंट वरी. वालेकुम अस्सलाम. तो मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो यही है कि पढ़ने की ताकत हम मानते हैं कि ज्यादा पावरफुल टूल है, या फिर बोलने की? दोनों बहुत मुख्तलिफ ताकतें. बहुत सारे लोग ऐसे होते जो शायद आपको लगा हो कि भाई इन्होंने जिंदगी में ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी है, बट वो बोलते बहुत फर्राटेदार हैं, है ना. आधे काम उनके हो जाते हैं. पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद बोलते ज्यादा ना हो, पर उनका जो ज्ञान होता है, जो उनके इन्होंने इतने सालों से इकट्ठा किया है, वुड मेक देम डू स्टफ एंड अचीव थिंग्स इन देयर लाइफ. तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कितना डिवाइडेड है आज का माहौल. एक मैसेज आया, सलाम का, सलाम भाई, पढ़ने की ताकत इज इम्पोर्टेंट, बात तो हर कोई कर लेता है, पढ़ना मुश्किल है. ओके, वेरी वैलिड पॉइंट. ये मैसेज किया है इस तरह जिन्हें बहन, थैंक यू सो मच एंड वालेकुम अस्सलाम. तो इस तरह बहन कह रही है, देखो पढ़ने की ताकत बहुत इंपॉर्टेंट है. फरहत भाई के से पहले मैसेज पढ़ दूँ. ये फैसल भाई कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग भाई. मैं दिन में 3 दफ़ा कार में बैठा हुआ, 11:30, 1:15, 4:15. गर्मी से बुरा हाल होता है जब तक कार

0: ठंडी नहीं होती भाई, जब तक एसी ठंडा होता मैं घर पहुंच जाता हूं। क्या बात कर रहे हैं आप। और फैसल भाई कह रहे हैं बोलने की ताकत जो है वो पढ़ने की ताकत से ज्यादा है। ओके, फरद भाई कह रहे हैं कि हम लोगों की दुआ आपके लिए जो क्या है बुजुर्ग भैया बिजरगी है आपकी, बिजरगी आप दूर हो। अच्छा वो बिजरगी तो क्या पढ़ा हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम। एक वॉइस नोट आया, हंस भी रहे हैं, क्या भेज दिया ऐसा। आप देखो आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी ना मोहसिन भाई, मुझे पता भी नहीं आप क्या वॉइस नोट बेच के हंस रहे हैं। अब मेरे अंदर जो है वो कीड़ा काटेगा कि मैं जो हूँ ब्रेक लेके आपका वॉइस नोट सुन लूँ। ये अच्छी चाल है लोगों की। ये बहुत अच्छी चाल है। एक मैसेज आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे लगता है कि आज की तारीख में बोलने की ताकत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, तो अभी बोलने की ताकत को लोग ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी भाई।
1: सलाम वालेकुम, सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू मेरा भाई जो है वाले कबीर भाई।
0: कैसे हैं आप जी भाई?
1: एकदम ठीक ठाक, सुनाइए कैसे हैं?
0: बस छह दिनों से कहना कि जय भी आप। तो क्या कहना चाहेंगे आप जी भाई?
1: सुबह सुबह मुझे तंग नहीं करा वाला वहाँ।
0: वेरी गुड, अच्छा था ये, अच्छा था। तो क्या जी भाई क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आप
1: मेरी जान, माशाल्लाह मैं अगर मानता हूँ तो जितने भी लोग FM 107 को सुन रहे हैं, मैं देखिये पढ़ने की अपनी एक अहमियत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पढ़ने की एक लिमिट है, लेकिन पढ़ के उसको जो बोलना है, वो जो लफ्ज पढ़ के इंसान बोलता है, मतलब हर बंदे का अपना एक ढंग है बोलने का भी, अंदाजे गुफ्तगू भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं तो लगता है कि यार क्या तंग कर रहा है, और कुछ लोग आप जैसे जब बोलते हैं तो लगता है कि यार ये बोलता ही जाए बंदा। इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, माशाल्लाह जितनी 400-500 स्टोरीज अभी तक आप पसे मंजर पे लेके आए हैं, आप देखिए जब आप यह हम पढ़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप उसको बयान करते हैं ना, आई रियली फील कि मैं उस दौर में वहां पर खड़ा हूँ, साथ खड़ा हूँ मैं।
0: बहुत शुक्रिया।
1: उन वाकियात में, क्योंकि ये मतलब ये बोलने का ये ढंग है ना, बोलने का ये अंदाज है बोलने का। तो मेरी नजर में पढ़ाई ओके, लेकिन पढ़ने से ज्यादा जो बोलना है उसका इम्पैक्ट ज्यादा है।
0: आज की तारीख में, आज की तारीख में मतलब बोलने का इम्पैक्ट बेसिकली ज्यादा, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि कई कई लोगों से ऐसे मिला हूँ मैं जिन्होंने शायद जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं करी है, मगर उनका जो वो टूल है, वो उनका जो बात करने का तरीका है, वो उनके बहुत काम आता है, खेल जाते हैं वो उसी में। पर बड़ा डिबेटेबल सा टॉपिक है। मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे कि ऑफकोर्स जो जो पढ़ाई का मामला है वो भी बहुत ज़रूरी है, ऑफकोर्स ज़रूरी है, बट मोर पावरफुल क्या है, क्योंकि जब ये भी आप अग्री करेंगे, स्कूल्स में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े शांत रहते हैं, है ना, उनका ध्यान पूरी तरह पढ़ाई में होता है, पर जब वो बाहर आते हैं फिर एकदम से दुनिया का, दुनिया से उनका सामना होता है, तब उन्हें पता लगता है कि भाई थोड़ा बोलना भी पड़ेगा यार। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है
1: ना। बिल्कुल सही करवा रहे हैं आप। देखिए बोलने में, और आप, मैंने आपकी एक छोटी सी एग्जांपल, जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, डेफिनेटली सबका पाला किसी न किसी के साथ पड़ता होगा, सुबह शाम बोलते हैं सुनते हैं। मैंने तो एक छोटी सी मिसाल दी है कि मतलब हम एग्जांपल आप सामने हमारे, मैं उस चीज को फील करता हूँ। अगर जिस स्टोरी को आप बयान करते हैं और जिस अंदाज में करते हैं और जिस मतलब लहजे और जिन अल्फाजों को और जिस अदा के साथ, सारी चीजों को मैं कोट कर
0: रहा हूँ सर,
1: तो माशाल्लाह वो मतलब आप उस दौर में हमें लेके जाते हैं कि यार हम सब वहां पर शामिल हैं। इतने ध्यान से अगर हम एंजॉय नहीं करेंगे तो स्टोरी को हम सुनेंगे नहीं, बंद कर देंगे, लेकिन हम उसका इंतजार करते हैं, हम उसका इंतजार भी करते हैं। एंड यू आर द बेस्ट, आपका बोलने का आवाज माशाल्लाह एवरीथिंग इज फैंटास्टिक।
0: तो फिर मैं जब भी मैं फिर मैं निकल जाता हूँ, हो गया मेरा काम, तो अब तो मैं घर पहुंच जाता हूँ। इतनी था आज आपने अवार्ड थमा दिया सुबह सुबह, मेरा तो हो गया। थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत है।
1: जितने भी लोग बात करते हैं, देखें जितने भी लोग आपको फोन करते हैं, डेफिनेटली बोलने का ढंग है तो फोन भी करते हैं, क्योंकि बोलने के लिए एक बोलना ही भी एक आर्ट है, ये एक फन है, ये
0: ऑफ कोर्स
1: ये भी एक आर्ट है। एनीवे मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि सुबह सुबह कॉल कर लूँ।
0: नहीं नहीं, आपकी मोहब्बत में इंतजार कर रहा हूँ जी भाई। मैं जब भी आप करते हैं जी भाई, तो मुझे लगता है कि चलो आप बात थोड़ी और ज्यादा कंटेंट वाली कर लेंगे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप कॉल करते हैं। दिल से कह रहा हूँ ये बात।
1: खुश रही,
0: खुश रही, खुश रही। और बकरा
1: मिल गया, नहीं मिला अभी तक
0: मेरी। हाँ बिल्कुल तैयार है। बाय।
1: चलो ठीक
0: तो भाई साहब हाँ जानवर पे भी फोकस करें है, जो लोग यहाँ पे कुर्बानी करने वाले हैं। मेरा तो जी बकरा आ गया है बड़ा हैंडसम है, बड़ा हैंडसम है, इतनी खूबसूरत पूंछ बता नहीं सकता और इतना हैंडसम दिखता है वो।

एनीवे अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे जिन्होंने जस्ट अभी ट्यून किया है, और मैं ये पूछ रहा था कि ज्यादा ज्यादा सुपीरियर आपको क्या लगता है आज की दुनिया में ताकत क्या है? पढ़ने की ताकत बहुत जरूरी है या बोलने की ताकत बहुत जरूरी है? क्या आपको सुपीरियर लगती है एक के दूसरे के ऊपर? तो एक मैसेज है फरहत भाई का, कह रहे हैं भाई बोलने वाला आज पढ़ने वालों से भी आगे है, तो हमारा क्या तो हमारा देश में है ही। अच्छा वो तो बात सही है, लेकिन जब कोई पढ़ा लिखा होता है अगर वो बोलना स्टार्ट करता है तो वो सबको चुप करा देता है, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। इमरान हुसैन साहब वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं भाई मेरे ख्याल से पढ़ के बोलने की ताकत ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ फिजूल बोलना या शाउटेड होकर बोलना। इमरान भाई लेकिन एक चूज़ करना है, बीच का रास्ता नहीं, एक चूज़ करना है। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सुरजीत भाई। फिर मैसेज आया है कबीर अंकल यस्टरडे टू एग्जाम वो सुपर इजी, क्या बात है। आयशा ने मैसेज किया, मुझे पता ये दो बच्चे इतने इतने प्यार से मैसेज करते हैं ना सुबह सुबह, बोथ ऑफ देम आर सच अ स्वीट हार्ट। आयशा और अलीना दोनों के दोनों मैसेजेस करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बल्कि मेरा किट शो भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच। एंड आयशा एग्जाम्स आर ओवर नाउ, यू हैव फ्यू मोर लेफ्ट, कुछ बचा है एग्जाम बच्चे? अच्छी बात है, कल के इजी था, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। एक मैसेज आया अस्सलाम वालेकुम, बोलने की ताकत बहुत ज़रूरी है क्योंकि बड़ी डिग्री लेकर बोल नहीं पाते और कामयाबी नहीं हो पाती। यही तो ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है हसन साहब, ये बहुत वैलिड पॉइंट है, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू इम्प्लाई ऑन। सारी अंग्रेजी खर्च कर दी मैंने सवेरे सवेरे। एक मैसेज है फरहत भाई का, फरहत भाई मुझे GIF भेज रही हैं, ये नाश्ते की वजह आपने भी तो मैंने कुछ कहा, फरहत भाई आपने मेरे को मजबूर करो मैं कुछ गाना चला दूँ। अस्सलाम वालेकुम, एक है भाई मैंने आपको सोशल मीडिया पे देखा, आपकी स्किन रूटीन क्या है? साबुन। तो तुमको क्या लगता है क्या मैं कोरियन प्रोडक्ट्स लगा रहा हूँ चेहरे पे? हद हो गई यार भाई, साबुन से ना हो साबुन से। एक वैसे तला भाई की प्रमोशन की खबर पता चली, वो भी दूसरे प्रोग्राम से, मैंने भी उनकी खबर चलाई थी। एक मज़े अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सलमान भाई, थैंक यू सो मच। एक मैसेज है सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम जाहिद भाई, क्या चल रहा है मार्केट में? ये जाहिद भाई के बाद मैसेज किया एक भाई ने, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं मानता हूँ कि बोलने की ताकत बहुत तेज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए आज की तारीख में, क्योंकि डिग्री लेकर भी मेरे ही ऑफिस में लोग जो है मात खा जाते हैं और जो बोलने वाले हैं वो आगे निकल जाते हैं। हालांकि ज़्यादा बोलना भी ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन बोलने की ताकत इज़ फार मोर सुपीरियर दैन पढ़ने की ताकत। ये ज़्यादा वोट जो जा रहा है वो बोलने की ताकत को जा रहा है अभी तक, as far as we have discussed. एक मैसेज अभी तो रासलफान जा रहे हैं क्या है तरफ रवाना हो रहे हैं वगैरह से। अरे बहुत अच्छा खासा सफ़र है जाहिद भाई, तो रास्ते में नाश्ता वाश्ता चाय वाय, और मुझे लगता है इतने लंबे सफ़र में आदमी को टिकट वीज़ा लगना चाहिए। वगैरह से जा रहे हैं वो रासलफान, समझ रहे हैं आप भाई? ऑल द बेस्ट एंड ड्राइव सेफली। ये आरिफ भाई ने क्या मैसेज किया, अरे भाई ये क्या भेजा मुझे? अच्छा साबुन। क्या जी क्या कह रहे हैं? जी जी वीकली वन डे वहाँ ड्यूटी होती है। अच्छा आपका थोड़ा सिस्टम थोड़ा अलग है। अमन भाई कह रहे हैं गुड मॉर्निंग भाई, मैंने सोचा मैं ही ज़्यादा ड्राइव करता हूँ, टॉपिक क्या है आज का? देखा मैंने कहा था ना कि हर बंदा जो भी सोचेगा उससे ऊपर कोई ना कोई निकलेगा, कतर में ही है। एनीवे भाई मुद्दा ये है अमन भाई, मैं कह रहा हूँ कि पढ़ने की ताकत जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है आज की दुनिया में कि बोलने की ताकत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैसेज किया है ये आरिफ भाई ने, कह रहा है भाई बोलने की ताकत क्योंकि मैं बहुत सारे पढ़े लिखे गंवार भी देख चुका हूँ। बहुत गुस्सा है लोगों में, आक्रोश आक्रोश है आक्रोश। एक मैसेज है सदर फैन का, वो कह रही है बोलने की ताकत, एक इंसान के सोशल मीडिया पे 7900 फॉलोअर हैं बिना एक्टिव रहे जस्ट बिकॉज वो बोलता अच्छा है। ये जिन साहब की बात हो रही है मैं उन्हें बहुत करीबी से जानता हूँ, वो कबीर तो नहीं है, वो बहुत बड़ा फैन हूँ मैं उनका, फैन मैं उनको बहुत सुनता हूँ। अच्छा आदमी है। ये सेम डायलॉग मेरे घर पे मारा गया कि यार तुम बिना बोले जो है 8000 लेके बैठे हो फॉलोअर, तुम जब कुछ करोगे तो क्या करोगे? ये ऐसे मोटिवेशन दे रहे हैं मुझे लोग। वैसे जो रीडिंग कैपेसिटी, तो फाइनली तीन लोग मिले मुझे जिन्होंने बोला है कि पढ़ने की ताकत इज मोर इम्पोर्टेंट देन बोलने की ताकत, लेकिन सिर्फ तीन लोगों ने ऐसा बोला अभी तक, उसमें अमन भाई भी शामिल हो चुके हैं। आम भेजा है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अब तक ही मेरे पास नहीं आया, तब तक मैं शुक्रिया के अलावा कुछ नहीं बोल सकता आपको। शहजादा सलीम वालेकुम अस्सलाम, देखो तुम डिप्लोमेटिक आंसर मत देना, मैं जब भी कॉल करूँगा प्रॉमिस करो डिप्लोमेटिक आंसर नहीं बोलोगे। एक मैसेज है इसी तरह मैंने लिखती है, एक ऐसी क्वेश्चन अपनी तरफ सुनने के लिए रखा, तारीफ सुनने के लिए नहीं रखा। नहीं

0: नहीं बहना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम मेरी हर बात पे लोग समझते हैं चाल चल रहा है। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम सरताज भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो ये जब कह रहे थे उन्हें कॉल कर लेते। शहजादा सलीम अच्छा नहीं होगा अगर डिप्लोमेटिक रास्ता लिया, ठीक है। वैसे आपको पता है कि रेडियो में सबसे ज्यादा झगड़े किसके होते हैं। रुको जरा कॉल लगाते, आज हो ही जाए। एक और शख्स है, इनका कहना है अस्सलाम वालेकुम भाई, बोलने की ताकत से ज्यादा पढ़ने की ताकत जरूरी है। बस चार लोग हो गए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू।
0: हाँ शेखू बताओ।
1: जी जी, मैं तो जाऊंगा पढ़ने पे, क्योंकि
0: जाओ पढ़ने पे,
1: पढ़कर ही आप बोल पाओगे ना।
0: अरे देखो, मैंने पहले कहा था ना, डिप्लोमेटिक आंसर लूंगा ही नहीं भाई, मैं लूंगा ही नहीं, रिजेक्टेड। एक चूज करो।
1: लेकिन कबीर भाई एक चीज है ना, खाली बोल बचन करके भी फायदा नहीं ना, जब आपको कुछ पता ही नहीं और आप बोले चले जा रहे हो।
0: हाँ।
1: और जो बेचारा पढ़ के आया, जिसके पास प्रूफ है, जो प्रूफ कर सकता है,
0: हाँ।
1: और उसने उसको है ना एक्सप्लेन करके एकदम प्रूफ की 100%, तो आपके बोल बचन तो रहेगा ना वहाँ पे।
0: नहीं, अपने सवाल का ना, अभी भी शायद सलीम मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला है। मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ, मुझे सवाल का जवाब दीजिए।
1: मैं पढ़ने पे ज्यादा तवज्जो दूंगा, क्योंकि पढ़ने के बाद ही आपने आपको बंदे को है ना क्रिएट करता है बोलना, कि कैसा बोलना है, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है और क्या।
0: तो आपका आंसर है पढ़ना, पढ़ने की ताकत बोलने से ज्यादा सुपीरियर है।
1: पढ़कर बोलने का मजा ही और है।
0: नहीं, मैं
1: आपके पास एक 100% प्रूफ
0: आपका आंसर, लेकिन मैं रजिस्टर कर रहा हूँ आपका आंसर में, कि पढ़ने की ताकत ज्यादा जरूरी है, ये आंसर
1: है। पढ़ने की एक है ना एक ब्रिलियंट ताकत है।
0: डन,
1: ओके,
0: ठीक।
1: लेकिन बोलता तो हर कोई बोल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एकदम परफेक्ट ही बोले। और हो सकता है कहीं भी ऐसा भी होता है ना, भाई ये पका रहा है यार, अभी ये प्ले हो गया तो रुकेगा ही नहीं फिर ये, तो वैसा भी तो नहीं होना चाहिए ना।
0: ऐसे लोगों को मुंबई के लोग लंबी कैसेट बोलते हैं।
1: लेकिन लेकिन जो लेकर आया, मेटेरियल लेकर आया ना, उसके पास उतना सब होता है और वो प्रूव कर सकता है।
0: ओके ओके,
1: यानी पढ़ाई की दौलत। हाँ जी जी, ठीक
0: है, डन हो गया, डन हो गया। ठीक है शायद सलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ओके ओके,
0: तो क्या है अभी ओपन किया रेडियो। वालेकुम अस्सलाम सरताज भाई, कोई गल नहीं। और मोहसिन भाई को बहुत बहुत शुक्रिया, कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम आई ड्राइविंग भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। कह रहे हैं कि आजकल के दौर में बोलने की ताकत ही असली ताकत है, पर मैरिड पीपल ये ताकत घर पे ट्राई ना करें। मोहसिन भाई कह रहे हैं वैसे तो ताकत बोलने की ज़्यादा भारी है पढ़ने पर, लेकिन शादीशुदा लोग घर पर ना ट्राई करें, घर पर सिर्फ पढ़ाई करें, घर पढ़ाई करने के लिए। तब से मैंने मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग। बोलने की कैपेसिटी पावरफुल होती है कबीर भाई। ओल्ड सेइंग इन आर टाउन इज, बोलने वाले का आटा बिक जाता है और ना बोलने वाले के चावल भी नहीं बिकते। अरे भाई, बहुत बारी बात कह दी आपने बहन, वेरी डेंजरस। एक मैसेज है, आई एम हमद अब्बासी, और इन्हें बोलने की सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एक हुनर भी है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। एक मैसेज आया है, बोलने की ताकत ज़्यादा है, जैसे कि जो एग्जांपल दें बोल नहीं सकता हूँ, पर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, बोलने की ताकत इज़ फार मोर सुपीरियर देन पढ़ाई की ताकत। ओके, तो अभी माजिद भाई ने भी मैसेज किया, तो ये इतने सारे लोग जो हैं बोलने की ताकत को बोल रहे हैं, और पढ़ाई की ताकत भी बोलने वाले अभी तक सिर्फ 5 लोग आए भाई अपनी मार्केट में, सिर्फ 5 लोग। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, सबाब खैर। बोलने की ताकत, क्योंकि कोई ऐसा होता है जब बोलता है तो दिन में अच्छो दिल में रास्ते निकलते हैं, लेकिन फजूल बोलने वाला नहीं, काम की बात बोलने वाला। ये जो है मैसेज किया है मुझे समी भाई ने, जिन्होंने मुझे पिंक ट्रक भेजा था, और ये पिंक पिकअप ट्रक इन्हें ऑलमोस्ट डेली दिखता है भाई। आप रास्ता बदल दीजिए समी भाई, और रास्ता जो है वो बदल दीजिए, क्योंकि पिंक गाड़ी बर्दाश्त नहीं हो रही है, पिंक पिकअप ट्रक कैसे बर्दाश्त कर पा रहे हैं आप। मैं होता उससे शीशे नीचे करवा के बात करता पूरे रास्ते कि तुम बैठे क्यों उसके अंदर। एक भाई, अरे ये आप अपना नाम बताइए, एक मुझे मैसेज आ रहा है, ठीक है, सुबह से मैसेज आ रहा है, उन्होंने स्टार्ट किया कि आपकी स्किन रूटीन क्या है। मैंने कहा भाई मेरी कोई स्किन रूटीन नहीं है, मैं बिल्कुल जमा देसी आदमी हूँ। अब भाई कह रहे मैं तो ये प्रोडक्ट लगाता हूँ, वो प्रोडक्ट लगाता हूँ। एक बात बताओ या बताएं, मैं अभी पता भी नहीं है मुझे, मतलब मेरी बात खातून से हो रही है कि आदमी से हो रही, क्लियर करें। क्योंकि अगर आप एक आदमी हैं और आप जो है स्किन केयर रूटीन कर रहे हैं कोरिया वाला, तो

0: मुझे लगता है मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा आपको, ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है ये मार्केट में. अच्छा तो उसमें लिख रही, दिस इज ऑल्सो पावरफुल एग्जाम्पल हेयर, इतने अच्छे बोलने वाले इंसान जिसको लोगों ने सिर्फ कभी कभी सोशल मीडिया पे देखा है, उसकी स्किन रूटीन पूछ रहे हैं. बताइए बहन, मैं इनको क्या बताऊं, इन्हें लग रहा है पता नहीं मैं कौन से प्रोडक्ट लगा रहा हूं. आप प्लीज, ये जिन्होंने मुझे मैसेज किया आप कह दीजिए कि आप खातून ही है ना, क्योंकि मैं डर जाऊंगा, वरना ये कौन सा लड़का है जो कोरिया के प्रोडक्ट्स लगा रहा है. बहुत प्लीज मैसेज कर दो, मुझे एंग्जाइटी होने लगी है अभी. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, जो पढ़ के इंटरव्यू में चुप रहते हैं उनसे ज्यादा बोलने वाले पास हो जाते हैं, तो बोलना इज गुड. ये मैंने भी नोटिस किया है, सैडली दिस इज ट्रू. मोहम्मद वकास इकबाल ने जो लिखा है, इंटरव्यू में जो बैठते ना, पढ़ाई करके तैयार हो गए एकदम, आज तो मतलब आग ला देंगे भाई, उनके नहीं क्रॉस होता इंटरव्यू, उन्हीं के होते हैं जो बोलने में एकदम बढ़िया होते हैं. वो तो इनफैक्ट दोस्तियां कर लेते हैं जाके. कहते हैं आपका काम है मैं करा दूंगा, आप मुझे नौकरी दो, टेंशन मत लो. एक मैसेज है, बोलने की ताकत इसलिए ताकत है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग की जॉब चल रही है एट एफ एम 107. अरे वो तो दूसरी बात हुई इमरान भाई, मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ. हमारा तो मतलब ये फिर उसमें आ गया ना, स्किल सेट में. फराज भाई वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू. शुक्र है आज नहीं देखा कोई बंदा, कोई बंदो भाई है, बंदो भाई है. मतलब कहे गूंगा सिर्फ पढ़ सकता है, ये लो देख रहे हो सुबह सुबह. अमन भाई लंबा सफर है ना आज भी, प्लीज़ ड्राइव सेफली, प्लीज़ ड्राइव. मैं अपनी गाड़ी लेके पीछे भी जा जाऊँगा आपके, बहकी बहकी बातें करो सुबह से. मजे सलीम साहब पढ़ाई की ताकत को सपोर्ट और इतना सब भूल गए भाई. आयरनी. शहजादा सलीम आए, बोले मैं पढ़ाई की ताकत को सपोर्ट करता हूँ, और पाँच मिनट बोले. ये जो आपने मिक्स किया है बात को. एक मैसेज है, लेकिन भाई जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनका क्या, ये किसी और दिन का टॉपिक है वकास इकबाल भाई, मैं इस पर भी एक टॉपिक लेके आऊँगा, बात करेंगे. मैं भी इंट्रोवर्ट रहा हूँ बचपन से, हालांकि कोई मानता नहीं है. लोगों को लगता है तुम और इंट्रोवर्ट, ठीक है तो फिर मैं विद्या बालन ले, मैं नाची. एक सेकंड में कॉल कर लेता हूँ, मानता नहीं है कोई यार मैं इंट्रोवर्ट हूँ. मान लिया करो प्लीज़, कुछ चीज़ें हैं सिर्फ कहानियाँ भी यकीन होता है आप लोगों को, वो भी गूगल कर लेते हो जाके. अच्छा मैं कॉल कर रहा हूँ फिर शुएब मंसूर भाई को. शुएब भाई कॉल उठा लीजिए. एक अस्सलाम वालेकुम,
1: कैसे हैं कबीर भाई?
0: बस भाई आप बताइए कैसे हैं, चाय वाय पियेंगे आप, मंगवा दूं आपके लिए.
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच.
0: जी बताइए शुभ भाई, क्या करना
1: चाहते हैं? हाँ जी, मेरा ख्याल है कि पढ़ाई की ताकत जो है ना वो बहुत पावरफुल है, ज्यादा है.
0: अच्छा, ज्यादा ज्यादा पावरफुल है.
1: पढ़ने वाला जो बंदा होता है ना, वो एक खामोशी से बहने वाले दरिया की तरह होता है.
0: ओके.
1: और वो दरिया कभी कभी उसमें प्रेशर आए तो वो उसका बंद टूट जाए, तो फिर वो उसको मजबूर भी कर देता है कि कहीं पे ना इंसाफी हो रही हो बोलो, कहीं पे जरूरत हो बोलो. तो वो मेरा ख्याल है कि जो पढ़ाई वाला बंदा होता है उसको पता होता है कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है. तो मेरा ख्याल है कि पढ़ाई वाला बंदा अगर वो शाय भी हो ना बोलने से, अगर उसको बेजार भी हो, तो एक वक्त आता है कि वो बोलना शुरू हो जाता है.
0: अच्छा, तो वो पर वो उस वक्त के लिए उसे वेट करना पड़ता है थोड़ा सा ना, ये
1: वेट यहाँ डिपेंड करता है कि उसका उसको कैसी एनवायरनमेंट मिलती है या उसको मर्जी के लोग मिलते हैं. मेरे हिसाब से पढ़ाई की ताकत बहुत ज्यादा है. अब पढ़ाई की ताकत ना हो तो बंदा बोलने वाले के पास वोकैबुलरी खत्म हो जाती है, उसको ये नहीं पता चलता कि मैंने कहाँ रुकना है, कहाँ स्टॉप करना है, किधर मुझे जो है वो. अब हर जगह बेगम तो होती नहीं है कि उसे बताए कि भाई इतना बोलो, कम बोलो, ज्यादा बोलो.
0: बड़ा तो, कंट्रोल रखा जा रहा है शेफ भाई, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है.
1: ये कहानी घर घर की है ना जी.
0: अच्छा,
1: तो वो जो है ना एक किताबों वाला जो बंदा होता है ना, उसे पता होता है कि कहाँ रुकना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है.
0: अच्छा,
1: तो मेरा ख्याल है कि हाँ, ये किताबें जो है ना वो ये पढ़ना जाए कोई भी है.
0: तो आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपका आर्गुमेंट उनके लिए है जिन्होंने बोला है कि बोलने की ताकत ज्यादा जरूरी है. आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखो भाई, बोलने की ताकत होगी लेकिन वो एक लिमिट में रहती है, मतलब उसकी वोकैबुलरी ऑब्वियसली कहीं पे जाके टूट टाट जाएगी, इससे बढ़िया है पढ़ना.
1: हाँ, ऐसा ही है
0: ये ना,
1: मतलब वो पटरी से उतर जाता है. यकीन करें बंदे के पास किताबों, हाँ वो शुरू करता है कहीं और से और वो कहाँ की ओर पहुंचाता है, मैंने देखा है.
0: वो ये देसी पटरी पे, हाँ देसी पटरी पे बुलेट ट्रेन नहीं दौड़ सकती कुल मिला के.
1: और मैंने मैंने महफिलों में देखा है, मैंने ऐसे देखा है जो गैदरिंग होती है उसमें जो बंदा पढ़ने वाला होता है किताबों वाला, वो बंदा ज्यादा वो हर दिल अजीज होता है, लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, लोग उसके वो ही महफिल जमाता है, फिर मैंने देखा है.
0: ओके,
1: तो ये बड़ा एक वो एक तो

0: पढ़ाई वो है ना जो हमने इंस्टाग्राम की रील से देखनी है या एक एक फेसबुक से देखनी है, एक पढ़ाई वो है जो वाकई किताबें जो लोग पढ़ने वाले हैं,
1: उसी वाली पढ़ाई वाले
0: हैं जो खरीदते हैं, जो खरीद के किताबें हैं, ऐसा भी नहीं है कि मुफ्त में मिल गई तो देख ली, खरीद के शौक से करते हैं। मैंने उन लोगों का जो बोलना देखा है या उन लोगों को मैं फिल्में देखा है कि जो कैसे लोग उनको सुन रहे होते हैं।
1: वैसे आपकी आपकी आपकी कैपेबिलिटी किस तरफ है, मतलब आपने मतलब इतना आपने पढ़ाई भी करी है, आप बोल भी लेते हैं, क्या स्किल अभी आपकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है?
0: मैं तो बाय प्रोफेशन तो टीचर हूँ।
1: अरे तो बात ही खत्म हो गई।
0: हाँ तो मुझे तो बोलने के पैसे मिलते हैं ना। लेकिन बोलना भी देखे ना, बोलना तो तब है ना जब मैं पहले प्रिपेयर करता हूँ अपने आप को। अगर मैं प्रिपेयर नहीं करूंगा तो यकीन करें मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे जो है ना वो क्या कहते हैं हो
1: जाएगा, शेक कर जाएगा।
0: हाँ हाँ होता है। आप मैं मतलब मैं देखता हूँ जब मुझे जब मैं पढ़ के जाता हूँ और जो मैं अचानक किसी को पढ़ा रहा हूँ तो बड़ा फर्क होता है मेरे बोलने में, मेरे कॉन्फिडेंस में, मेरी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है।
1: वैसे आप स्ट्रिक्ट हैं क्या, स्ट्रिक्ट टीचर हैं मतलब, या फिर आप थोड़ा हल्का?
0: स्ट्रिक्ट टीचर तो था लेकिन अभी तो जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना उसके हिसाब से वो क्या कहते हैं ठीक है, बैलेंस हूँ मैं।
1: अच्छा बैलेंस्ड है आप, अच्छा वेरी नाइस।
0: हाँ बैलेंस हूँ मेरे लिए जो है ना वो बच्चे का जो है ना वो 100% मार्क्स देना या वो नहीं है, मेरे लिए है कि बच्चा रिस्पेक्टफुल हो और मतलब कुछ मेहनत करने वाला हो।
1: ये मार्क्स की पास हो गया अगले क्लास में जाओ मुझे अगले साल नहीं देखने तुम्हारी शक्ल। हमारे
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैं कल अपनी बच्ची को बता रहा था, मेरी बच्ची मुझे कह रही थी कि क्या आप बच्चे जो है ना वो मैथ के टीचर्स को पसंद करते हैं, बात नहीं करते, तो क्या आप भी बच्चों से ऐसे ही मतलब आप भी को भी बच्चे तंग होते हैं आप उसको देख के या अनकंफर्टेबल? मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कोई टीचर जो है ना वो जब तक वो सेंसिटिव ना हो और उसके अंदर एक फादरली नेचर मदरली नेचर ना, वो टीचर बनता ही नहीं है।
1: आप क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं वैसे?
0: मैथमेटिक्स।
1: अरे बाप रे बाप, अरे रे रे रे।
0: ये जो हम लोग होते हैं ना टीचर, कहीं ना कहीं हमारे अंदर होता है ये एक नेचर होती है मतलब केयरिंग वाली, सेंसिटिव। नहीं तो हर बंदा तो टीचिंग नहीं कर सकता।
1: हाँ ये तो ये हर किसी में भाई नहीं कर सकता, ये तो मैं मानता हूँ।
0: मैंने बच्ची को कहा, मैंने कहा हमारे मिजाज में है, इसलिए हम लोग कैसे क्यों बच्चों को मतलब हम लाइक करते हैं इसीलिए। तो बाकी तो अच्छे बुरे तो होते हैं बच्चे और दूसरा शरारती भी होते हैं।
1: नहीं नहीं, शॉर्ट आउट टू ऑल द टीचर्स, बहुत बहुत मुश्किल काम है और बहुत मुश्किल स्किल है जिस तरीके से टीचर्स मैनेज करते हैं बच्चों को और उनका फ्यूचर शेप करते हैं।
0: अगर हम सेंसिटिव ना हो ना, केयरिंग ना हो, तो हम लोग टीचिंग में यकीन करें नहीं अपने आप को जस्टिफाई कर सकते और नहीं आगे चल सकते।
1: ट्रू ट्रू,
0: ये हमारी नेचर में होती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच
1: भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह। तो श्री भाई खुद एक टीचर हैं तो उन्होंने बहुत ही आर्टिकुलेट वे में बताया है, तो उन्होंने पढ़ाई की ताकत को बोलने की ताकत से ज्यादा सुपीरियर बताया। एक कॉल और है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है फैजान।
1: मेरा नाम है कबीर। बताओ फैजान भाई कैसे?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफा ना सवाल को रिपीट कर दें, मैं थोड़ा सा
1: सवाल... फैजान भाई हाँ। सवाल ये है कि आप आज की दुनिया के हिसाब से अगर मैं पूछूं तो पढ़ने की ताकत इज सुपीरियर टू बोलने की ताकत, या बोलने की ताकत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय पढ़ाई वाली ताकत?
2: जी, बोलने की ताकत जो है वो ज्यादा अच्छी है, ज़्यादा उसकी अच्छी। रीजन भी मैं आपको बताता हूँ।
1: प्लीज।
2: मैंने खुद पाकिस्तान में 7 साल पढ़ाया।
1: अरे बाप रे, क्या पढ़ाते थे फैजान भाई?
2: मैं जो है वो मैंने स्टार्ट किया था साइंस के साथ।
1: अच्छा।
2: फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं जो है ना वो मैथ वाली साइड पर आ गया था।
1: मैं भी पट्टी पढ़ा था। सॉरी गंदा जोक था।
2: बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर।
1: अरे रे रे,
2: तो मैं जो है ना मैं मैथ पढ़ाता था बहुत अच्छा। आपको पता है फीमेल टीचर्स का मैथ नहीं अच्छा होता।
1: ये मैंने नहीं कहा भाई, ये मैंने नहीं कहा, मैं
2: मैंने हकीकत है,
1: सही बताओ
2: हकीकत है।
1: अच्छा,
2: और जो एलसीएम वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बेचारियों के अक्सर जो है वो मतलब ना गलत हुआ करते थे। तो एक दिन मैं गया फ्री पीरियड लेने के लिए, मैंने बच्चों को बस इस तरह मैंने ना बुक खोली उसकी 10th क्लास की, और उसमें थे कुछ अलजेब्रा के थे क्वेश्चन, वो मैंने करवा दिए।
1: अरे
2: वो करवाने के बाद में तो जो क्लास के अच्छे बच्चे होते हैं ना, उन्होंने कहा उनको प्रिंसिपल को कि मैडम हमने ना इनसे पढ़ना है, सर फैजान से पढ़ना है मैथ। फिर मेरी साइंस खत्म हो गई और मैं जो हूँ वो चला गया, शिफ्ट हो गया मैथ में।
1: अच्छा।
2: और जब मैंने ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम, उस टाइम मेरी दाढ़ी मूछें भी नहीं थी, बहुत छोटा था मैं तकरीबन,
1: छीला हुआ अंडा।
2: मैं ना तकरीबन 18 साल का भी नहीं हुआ था अभी उस टाइम पे, मैंने ज्वाइन कर लिया था स्कूल में पढ़ाना।
1: अरे क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा
2: जी जी जी जी। वो एक्चुअली क्या था कि भाई वालिद साहब मेरे

0: फोत हो गए थे 2014 में.
1: अच्छा.
0: तो मेरी स्टडी बीच में थी, फिर मैंने आगे जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो साथ अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए ना मैंने स्कूल में ज्वाइन कर लिया. और मैंने स्कूल में ज्वाइन किया, सबसे छोटा मैं ही था. और उसमें फिर एक होती है एमओडी होती है हर मतलब ना वीक के बाद या 15 दिन के बाद मॉरल ऑफ द डे. तो वो बारी बारी हर उसके टीचर्स की होती थी. तो उनकी ना मतलब इतनी अच्छी नहीं थी कम्युनिकेशन.
1: अच्छा.
0: और उन दिनों में मैं सुनता था इनको, ये जो स्पीकर्स होते हैं मोटिवेशन स्पीकर होते हैं, तो मैंने खुद से ना 4-5 पॉइंट्स बना के मैंने बोल दी. और मेरे लिए इतनी क्लैपिंग हुई क्या बात है.
1: तो आप तो मतलब फिर तो बोलने की ताकत बोलनी चाहिए आपको, तो खेल गए आप.
0: नहीं मैंने यही क्या बोलने की ताकत का है,
1: बोलने की ताकत बोला ना आपने. हाँ फिर ठीक है ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया एक सेकंड, इतनी पढ़ाई हो गई ना इसलिए ओके.
0: और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मैं फिर स्टॉप नहीं किया मतलब ना आगे स्टडीज को फर्दर. मैंने अभी मास्टर्स कंप्लीट किया उसके बाद यूके से.
1: अरे भाई साहब सीधा यूके से.
0: तो जो है जी
1: माशाल्लाह.
0: तो जो है मतलब बात करने का मकसद ये है कि एक ना शेर भी याद आ गया, उस दिन भी सुनाया था शेर, एक और शेर सुनाता हूं.
1: इरशाद
0: के चुपचाप चलता हूँ तो गाहक नहीं मिलता, आवाज लगाता हूँ तो कीमत नहीं रहती. तो बोलने की जो ताकत है और कहाँ पे क्या बोलना है ये बहुत बहुत जरूरी है.
1: बहुत बहुत जरूरी है. पर क्या ये टीचिंग वीचिंग छोड़ दिया आपने अभी मतलब, या फिर चल रहा है मतलब?
0: नहीं टीचिंग छोड़ दी है, मेरी इंजीनियरिंग फील्ड है, क्वालिटी इंजीनियर हूँ मैं अभी.
1: नहीं ऐसी टाइम पास के लिए बच्चे बच्चों को पढ़ा लेते हैं आप? ऐसे भी कुछ सिस्टम है नहीं?
0: नहीं अभी जो मेरा पार्ट टाइम होता है उसमें मुझे कोई पाकिस्तान से मैप आ जाते हैं अक्सर बनाने के लिए क्लाइंट्स के, तो मैं आधे घंटे में जो मेरे पास सैंपल बने होते हैं वो मैं दे देता हूँ.
1: इसमें भी तेजी माशाल्लाह, काफी ब्राइट स्टूडेंट से बात हो रही है मेरी, माशाल्लाह वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू मेरे भाई, एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह मेरे भाई. ओके भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़. फैजान भाई ने एकदम कैडा शेर मारा भाई, बहुत बढ़िया बात कह दी भाई ने. और ये मैथ्स वालों जिनकी मैथ्स अच्छी है, सुनो भाई आपसे मैं बहुत जलता हूँ भाई, कर लो जो कर सकते हो. हफ्सा बहन वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग. तो वैसे मैंने मैसेज किया है इस बात पे, दूसरा सेशन रखिए कबीर भाई प्लीज़, लेडीज़ मैथ्स में अच्छी नहीं पढ़ सकती. मैंने नहीं कहा भाई साहब, हेलो. ये फैजान भाई जो है रॉकेट छोड़ के गए हैं इस बात का. मैंने नहीं बोला कि ख्वातीन मैथ्स में अच्छी नहीं होती, मैथ में तो खुद अच्छा नहीं हूँ, मुझे कोई हक ही नहीं बोलने का. गुड मॉर्निंग फॉर यस्टरडेज़ क्वेश्चन. अरे बहुत बढ़िया सिक्के भेजे भाई आपने, ये कौन से ज़माने के सिक्के हैं? अच्छा अच्छे लग रहे हैं वैसे, ऐसा लग रहा है खुदाई में निकले हैं ये. और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, ये मुझे मैसेज किया है, एक सेकेंड ना मैं नाम पढ़ दूँ. पठान भाई कैसे चल रहा है सब मामला? बढ़िया. और एक भाई कह रहे हैं कॉल कर लो भाई, अभी कर रहा हूँ भाई कॉल, एक सेकेंड रुको. हफ्सा भाई लिखते हैं कि पढ़ाई की ताकत ज़्यादा है. क्या कौन सी नॉलेज? बीबा नॉलेज, बिना नॉलेज के बीबा पढ़ा हूँ. मैंने भी बीबा पढ़ लिया. ये देखिए ये है मेरी पढ़ाई. कहते बिना नॉलेज के बोलना वैसे नहीं है, अगर बोलना पसंद है तो कम्युनिकेशन स्किल्स पॉलिश करनी चाहिए, कॉन्वर्सेशन शुड बी प्रोग्रेसिव. और आप सॉरी मत बोली, मैंने गलत पढ़ा है बहन. मुझे कॉमन सेंस लगाना चाहिए था. ओके ठीक है. तो मैं ज़रा, ये भाई साहब बोल रहे हैं, फराज भाई कह रहा है भाई बोलना आना चाहिए, कह रहा पढ़ाई वढ़ाई पढ़ा वड़ा ही फूक दो भाई, बोलना आना चाहिए. एक मैसेज, रीडिंग बुक्स ऑलवेज इंप्रूव कॉन्फिडेंस नॉलेज अवेयरनेस. पर बेगम के सामने सबकी बोलती बंद हो जाती है. नो डाउट स्पीकिंग एबिलिटीज मेक पीपल मोर सक्सेसफुल शादी तक. ये मैसेज किया है फैसल मिर्जा भाई ने. फैसल मिर्जा भाई सही जा रहे हो. एक मैसेज है जो अभी मंसूर भाई ने बोला कि शांत रहने वाला जो होता है वो थोड़ा गहरा दरिया होता है, उस पर फैसल भाई कह रहे हैं कि दरिया सूख जाता है मेरा भाई. ओवेस भाई कह रहे हैं सलाम, यो बात तो क्या करी सा हमने कि इंटरव्यू का नहीं है, यो ज्ञान की बातें थारे पसंद ना है. फिर भी भाई इब्बे तो ज्ञान की बात तो होना रही है, मैं तो वो करा करूँ कंपेरिजन. एक मैसेज, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग, आई बिलीव बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल, वर्ड्स आर टू पावरफुल दैट कैन हर्ट समवन एंड हील समवन एट द सेम टाइम. फॉर एग्जांपल यू स्पीक सो वेल दैट यू मेक आर डे बेटर, व्हाट आर वी डिलीवरिंग बाय वर्ड्स, इट ऑल कम्स फ्रॉम आर इनर साइड एंड इफ आर इनर सोल इज नॉट प्योर एंड एजुकेटेड आर वर्ड्स ऑल्सो कांट मेक एनी इम्पैक्ट. ओवरऑल मी बोथ आर इक्वल. नजरत फ्रॉम बांग्लादेश, ड्राइविंग इंटरेस्टिंग वे मोर डिफिकल्ट ऑन चमाल रोड. ये मैसेज बहुत ही मतलब एकदम भाई साहब खतरनाक एकदम मैसेज किया है, तीन दिल बना के भेज रहा हूँ मैं.

0: भारी भरकम, मुझे लगा इस क्लास में बैठा हूं मैं, मजा आ गया नजर भाई। इनका अस्सलाम वालेकुम, ये लिखते हैं पढ़ना जरूरी है क्योंकि पढ़ के बोलना चाहिए, उसका वेट ज्यादा होता है, बिना पढ़े बोलने का वेट नहीं होगा, उसी बात का ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। एक मुहावरा है, खाली बर्तन ज्यादा शुरू करता है, अली साकिब खान भाई का ये मैसेज है। अब दोनों तरफ जो है ना तराजू ऐसा हो गया, बैलेंस चल रहा है, कोई कह रहा है बोलने की ताकत ज़्यादा पावरफुल है, कोई कह रहा है पढ़ने की ताकत ज़्यादा पावरफुल है। मैं जल्दी से मैसेज पढ़ दूँ फिर मुझे कॉल करनी है। ड्राइव कर रहे अग्री, मेरी तरफ से भी एक दिल, अरे वाह वाह वाह, ये लीजिए बहना आपके लिए भी, आप भी ड्राइव करते हैं। वैसे क्या क्या कैसा दिन जा रहा है आपका भी बताएं। तला भाई फ्रॉम अलखोल लिखते हैं पढ़ाई, पहले से वालेकुम अस्सलाम, कह रहे हैं पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कहाँ क्या बोलना है किस तरह बोलना है, वो पढ़ाई करने वाले लोग ही अलग होते हैं, और जो समझते हैं है? तो समझते हैं बोलना इंपॉर्टेंट है, बट कब कहाँ क्या बोलना है ये पढ़ाई से आता है। माशाल्लाह वाह बेटे क्या खूबसूरत बात कही है। एक मैसेज है सरताज भाई का, कह रहा है कबीर भाई पहले पढ़ेंगे बाद में बोलेंगे। अरे ना जी भाई, मेरे सवाल को लोग समझ नहीं पा रहे, मैं न्यू कह रहा हूं भाई कि दोनों में से एक चूज करना, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई करके बोलो कि बोलो पढ़ाई करके, ना ना ना ना, इट इज वेरी सिंपल, यू नीड टू चूज वन, समझे, एक को चूज करना है। आई अंडरस्टैंड आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पढ़ाई करके बोलना इज बेटर, आई एम नॉट सेइंग कि प्रोसेस, ना ना ना ना, मैं कह रहा हूं एक ही चूज करना है आपको, पढ़ाई वाली ताकत ज्यादा जरूरी है, पढ़ने वाली या बोलने वाली ज्यादा सुपीरियर है। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग, बीच का रास्ता मत निकालिए कि पहले पढ़ाई करके बोल, वो मैं समझ रहा हूं आपकी बात, वेल पुट, लेकिन चूज करना है एक को। एक मैसेज, सलाम कबीर भाई, गुड मॉर्निंग अदिल भाई, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अरे थैंक यू सो मच बहन, मैं ये अनाउंसमेंट कर नहीं सकता क्योंकि लोग फिर इसी पे बात करेंगे, फिर आप सब बहन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। एक मैसेज आ रहा है, करियर ग्रोथ के लिए बोल वचन चाहिए और टॉप पोजीशन के लिए बोल के पहुंच जाते हैं लोग। फराज भाई ये जो आपने बोला है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बताऊँ आपको, लेकिन आप बोलने में अच्छे हैं फराज भाई। एक मैसेज है, भाई बोलने वालों को कि ताकत का अंदाज़ा लगा लो, बोलने वालों की वजह से गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। फैसल भाई कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कर लो, सॉरी, मुआफ़ी, एक सेकंड को, किधर गया भाई नंबर, भाई ने मैसेज किया, अरे कर लो कॉल, KALLO, कामरान भाई को कॉल कर रहा हूँ मैं। कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम।
1: अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तबीर भाई कैसे है, खैरियत है?
0: बस कामरान भाई कैसे मेरा भाई?
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हम जिधर से आते हैं ना, हम है दरमियान में हैदराबाद और मुंबई।
0: अरे बहुत डेंजर जगह
1: से दोनों शहर बोलने से चल रहे हैं।
0: हाँ, दोनों शहर बोलने
1: में, दोनों शहर में ऐसी ऐसी बातें हो रही है, खुदा कसम जानो आप उधर जाओ तो ऐसा लगेगा कि आप किसी और दुनिया में आए हो। पढ़ाई लिखाई तो इसका एक अलग एरिया होता है कि कुछ बंदे पढ़ने लिखने वाले उस एरिए के, लेकिन बाकी पूरा शहर बोल रहा है भाई, पूरा शहर।
0: Okay.
1: मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो मेरे साथ एक ज्वाइन हो गया कंपनी में। मैं अराउंड 6 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ उस पोजीशन पे आया था। वो बंदा फ्रेशर सिर्फ बोलने की ताकत से मेरे साथ बैठ के और मुझे ही बोल रहा है कि भाई मैं फ्रेशर हूँ, बस मुझे बोलने आता है।
0: अरे
1: तो हुई थी, लेकिन उस टाइम पे समझ में आया कि बोलने की ताकत बहुत जरूरी है। कि अगर आप जॉब कर हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो तो आप कुछ नहीं कर सकते।
0: ओके तो वही है कि मतलब बोलने की ताकत जो है, आप कह रहे हैं इट इज़ फार मोर सुपीरियर, और मैं भी बीच में मझधार में हूँ कि मैं किसकी तरफ जाऊँ, बट आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट एज वेल कामरान भाई, कि ये जो बोलने वाले हैं आजकल दुनिया चला रहे हैं। हेलो कामरान भाई, क्या आप हैं? हेलो, बोलने की ताकत बात करते करते बोलने की आवाज़ ही नहीं आ रही है। ये क्या हो गया कामरान भाई? हेलो कबड्डी, नहीं आ रही आवाज़, कामरान भाई की आवाज़ चली गई है। बोलने की बात करते करते बोलते बोलते फोन ही चला गया। एक मैसेज और है, गुलरेज भाई लिखते हैं, कबीर भाई अस्सलाम वालेकुम, आज के टॉपिक पे माय ओपिनियन इज रीडिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल, इट रिफ्लेक्ट्स इन योर स्पीकिंग, इफ यू स्टडी प्रॉपरली विद कंप्लीट नॉलेज विल डिलीवर एन इम्पैक्टफुल मैसेज और इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज फालतू कितना भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले पर। नो डाउट बोलना ज्यादा पावरफुल है, घूम फिर के आपने लास्ट में खेल गए, कह रहे देखो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई

0: बोलना जरूरी है। एक मैसेज, सलाम कबीर भाई, आज के दौर में बोलना आना चाहिए, कुछ भी बोल दो चल जाता है, किसी के पास टाइम नहीं है लंबे गान सुनने का। बाय हो रहा है एकदम तेज। नौमी भाई कह रहा है ऐसा है मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बातें, पढ़ाई की होगी तुमने बुकों की, हमें नहीं पता। और ये अरे क्या अब सब है जो आपने भेजा मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। एक मैसेज है, वॉइस नोट है मेरे पास तो मैं भी सुनता हूँ। क्या है, बोल बच्चन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल। ये परवेज भाई कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई कह रहे हैं कि बोलने की पावर आज के टाइम में, एंड मस्ट से कि मैं सिर्फ एफएम 107 सुनता हूँ, स्पेशली आप और नाजी जी, थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारा प्यार आपको। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, सही वक्त पे सही बात करना, दैट यू कैन नॉट लर्न फ्रॉम बुक्स और एनीथिंग, इट कम्स नेचुरली। ये बहुत डिबेटेबल चीज़ है भाई। तनवीर भाई कह रहे हैं देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बोलने वालों को पता होती हैं जो पढ़ने वालों को नहीं पता होती, इट्स दी अदर वे राउंड एज वेल। आप कह रहे हैं ना कि पढ़ाई करके बोलो वो भी एक बात है, पर कुछ लोग बोलने में इतने डेंजर होते हैं भाई, उनको दुनिया जहां का ज्ञान होता है। एक मैसेज है, कॉल, अच्छा कॉल कर लो, अजय सॉरी मेट कॉल कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड रुको मैं कॉल मिला रहा हूँ, मेरे चाय द थर्मस गिरते गिरते बच गया। बहुत बढ़िया कबीर साहब। ओके तो मैंने अमन भाई कॉल करी है। अमन भाई
1: कबीर भाई,
0: वालेकुम अस्सलाम, बताइए
1: कैसे हैं आप, पहले बताइए।
0: मैं तो जी एकदम बढ़िया हूँ, आप सुनाइए अमन भाई क्या चल रहा है, सफर में हैं आप, अभी किधर हैं?
1: बस अभी पहुंचा हूँ, गाड़ी खड़ी की है। अच्छा हो गया आपकी कॉल आ गई टाइम पे।
0: यार मैं बहुत स्मार्ट हूँ मैं, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना है अमन भाई, एक तरफ आप
1: पहले तो ये जो क्वेश्चन है, पहले मतलब मैं भी समझना चाहता हूँ, बाकियों को भी समझाना चाहता हूँ। रीडिंग एंड स्पीकिंग ये दोनों अलग अलग जगह पे अप्लाई होते हैं ना, पहले तो आप ये मानते हैं ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल अग्री।
1: लेकिन लेकिन ठीक है, मैंने बोला रीडिंग कैपेसिटी अच्छी है, वो इस बेस पे बोला कि हम पहले कुछ पढ़ेंगे, हमारे दिमाग में कुछ जाएगा, स्टोर करेंगे, फिर वो जो स्टोरेज है वो बोलने के लिए यूज होगी ना।
0: नहीं मैं देखो, आप मेरे सवाल को समझ तो गए हैं, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आज के टाइम के हिसाब से विच इज मोर पावरफुल स्किल के हिसाब से, है ना, आप देखते हैं ना मार्केट में क्या माहौल है, तो उस स्किल के हिसाब से
1: कम्युनिकेशन स्किल में आ जाता है ना।
0: हाँ
1: कम्युनिकेशन स्किल में आ जाता है,
0: बोलना इज कम्युनिकेशन स्किल। कुछ लोग जैसा भी एक भाई ने बोला कि बोल रहे भाई मैं तो हैदराबाद मुंबई के बीच में कहीं रहता हूँ, मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने जो मुझसे कम पढ़े हुए या बिल्कुल पढ़े हुए नहीं है, बट दे आर लाइक रनिंग एवरीथिंग, वो मेरे साइड में बैठ के काम कर रहे हैं।
1: एकदम सही बात, 100% सही बात है। जो नहीं पढ़े लिखे कुछ लोग, लेकिन उनको बोलने का तरीका ऐसा है कि उनके इतने फैंस हैं कि आप बता नहीं सकते। जैसे मतलब आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कुछ लोगों को इतना ज्यादा पढ़ना नहीं आता और उनके पास डिग्रीज भी नहीं होती, लेकिन फॉलोअर्स मिलियंस में है, क्योंकि वो उनको बोलने का तरीका है। लेकिन आज के दौर में मैं अपना मतलब मैंने लिखा ना कि रीडिंग कैपेसिटी, मैंने उस बेस पे लिखा है कि पहले आदमी पढ़ेगा तभी कुछ बोलेगा, लेकिन जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन है उस हिसाब से बोलना ही पहले आएगा,
0: बोलना ही पहले आएगा ना। हम क्यों मैं प्रोसेस में बात नहीं कर रहा, मगर आज के दुनिया के हिसाब से क्योंकि बोलने की स्किल के ऊपर लोग ज्यादा तवज्जो देते हैं आज की तारीख में,
1: आज के दौर के हिसाब से तो बोलना ही, अगर आपके पास स्किल है बोलने का, आप अपने दूसरे आदमी को फैन भी बना सकते हो, दुश्मन भी बना सकते हो।
0: धनिया बोल दो सामने वाली जिंदगी बोल बोल के।
1: धनिया
0: जैसे मैंने बोल रखा है।
1: जी जी ये था मेरे पिटारे में आज के दिन।
0: अच्छा ठीक है अमन भाई, चलो वही काम पे चलो अमन भाई, आइए चाय मिला दे।
1: बस चला हूँ मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे रेडियो ऑन करके बैठूंगा आराम से आपका, जब तक साढ़े आठ जब तक स्टोरी खत्म नहीं होती मैं हिलने वाला नहीं हूँ।
0: मेरा भाई बहुत बहुत शुक्रिया,
1: मैं कोई काम भी नहीं लेता हूँ।
0: अरे अरे थैंक यू भाई, बहुत प्यार भाई को।
1: मैं उनको बोलता हूँ आई विल रिप्लाई अराउंड 9 o'clock, क्योंकि आपका टाइम चल रहा होता है।
0: पता चला आपकी कंपनी वाले जो मुझे ढूंढ रहा है कहाँ पर है, हाकी लेके चला
1: ढूंढने के, क्योंकि कंपनी में इन्फ्लुएंस ही इतना है, मेरी शक्ल ही बहुत है इधर।
0: अरे रे रे रे ये हुआ जी, वट चलता है भाई का, ठीक है भाई।
1: नाम अभी जानते नहीं, अभी शक्ल पहले जानते, सभी साइट्स घूम लिया मैंने कंपनी की, अलखोर, दुखान, रसलफान, ये दोहा में तो सभी छोड़ी कोई नहीं है उन्होंने कंपनी वालों ने, एक ही आदमी दिखता
0: है। बोलने की ताकत नजर आ रही है अमन भाई।
1: जी बिल्कुल कबीर भाई,
0: ओके मेरा भाई, बहुत बहुत
1: शुक्रिया कबीर भाई, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
0: बहुत प्यार मेरे भाई, थैंक यू सो मच,
1: हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।
0: तो भाई के बाद टाइम हो गया जी जिंगल का, मैं बोलने वाला था भाई के बाद, लेकिन पहले हम

0: FM 107, Time Check. Time
1: Check. 7:02 घड़ी में क्या हो रहे हैं, 7:02 आपको वैसे मेरा साथ देते रहना है एंड जब मॉर्निंग शो की जगह इवनिंग शो होगा तो आप मॉर्निंग में याद करोगे भाई 7:02 पे मैं लिख के दे रहा हूँ हिचकी आएगी हिचकी। अच्छा भाई तो वे हम टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, उससे पहले बता दूँ एक बहुत बढ़िया आपके लिए प्रोमो तैयार हो रहा है जब जून में शो आएगा उसके लिए एकदम बढ़िया भाई। बहुत दिनों से रैप रैप नहीं आया था, उसमें रैप है भाई बढ़िया वाला एकदम मौज आ जाएगी। अब जरा टॉपिक पे आ जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि ये बोलने की ताकत आज की दुनिया में ज्यादा भारी है या फिर पढ़ने की ताकत ज्यादा भारी है। मैसेज आया भाई अस्सलाम वालेकुम, भाई पैसा जरूर जरूरी है, बोलता भी है पढ़ता भी है। नहीं नहीं मेरे को भाई डायलॉग नहीं चाहिए, मेरे को एक जवाब दो। एक मैसेज, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, ये सुदीप्तो सर ने मैसेज किया है, कह रहे हैं स्पीकिंग के बिना ज्ञान छुपा रह जाता है और ज्ञान के बिना स्पीकिंग पावर केवल प्रदर्शन बन जाती है। नो डाउट लोग ये मानते हैं कि बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल की दुनिया में। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट नॉलेज इज़ मोर पावरफुल एंड वेल रेड पर्सन विल ऑलवेज बी अप्रोच्ड। बोल बच्चन करने वाले तो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। तो सर कह रहे हैं स्ट्रीट स्मार्ट तो हो गए, ठीक है अपने घर पर हो गए भाई तुम, नॉलेज इज़ पावर। ओके जी, एक मैसेज आया फैसल भाई का, कह रहे हैं कि भाई बोलने की पावर ही है जो मेरे जैसे बंदे को एफएम लिसनर बना दिया। इतने आरजे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, पर आपने कबीर भाई जैसा कोई नहीं है। अरे मेरा भाई ये भाई को कुछ भिजवा भाई, क्या लोगे भाई, कितनी तंदूरी रोटी लगवा दूँ, चार लगवा दूँ, दो मेरी तरफ से। कह रहे हैं भाई आप 12 घंटे शो करो, हम सुन सकते हैं। मैं सुन हो जाऊंगा भाई 12 घंटे करोगे तो। रोज़ वेट करता हूँ मॉर्निंग 6 AM का भाई आपको सुनने के लिए भाई, यार दिस इज़ सो स्वीट भाई, मेरी तरफ से मैं अनगिनत दिल भेज रहा हूँ आपको, कबूल फरमाए मेरी जान। फैसल भाई को बहुत बहुत सारा प्यार भाई, दिस इज़ रियली सो स्वीट ऑफ यू। एक मैसेज है भाई आज की डेट में बोलने वाला बोले तो बच्चन है तो बचत है। बोलने वाले सलाह भाई कह रहे हैं देखो बोले तो बचन है तो बचत है। तबस्सुम बहन कह रही हैं हाँ कबीर भाई, अरे थैंक यू सो मच बहना, मैं ये मेंशन नहीं कर सकता हूँ जो आपने मेंशन किया है क्योंकि वरना यही टॉपिक बन जाएगा। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम भाई, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि पढ़ाई इंसान को क्या शऊर देती है, बट आजकल की दुनिया में ज़्यादा बोलने वाले कामयाब हैं और बोलने वालों को हमारी कंपनी 5 साल भुगत रही है। आतिफ भाई ने अपना दर्द भी बयां कर दिया। वैसे मेरे मैनेजर को कुछ आता नहीं, सिर्फ बोल बच्चन करता है, ये एक भाई ने मैसेज किया। एक मैसेज है पढ़ने वाले इंजीनियर होते हैं, बोलने वाले एचआर होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। है एक सेकंड, क्या पढ़ने वाले इंजीनियर होते हैं, बोलने वाले एचआर होते हैं? अरे बहुत पढ़ाई लगती है एचआर में भी भाई। एक मैसेज है ये खुद सोचे कि सब अपने अंदर रख लिया, अगर बोलना नहीं आता तो निकालोगे कैसे। भाई बात तो सही है, गहरी बात है। वैसे हाय कबीर भाई, लड़कियों के लिए पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है और लड़कों के लिए बोलना ज़्यादा ज़रूरी है। हाय ये कुछ अलग ही मिला सुनने को। एक सेकंड कि एक कॉल उठा लूँ मैं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
1: अस्सलाम जी मेरे भाई, बताओ
2: यार ये सीरियस टॉपिक है वैसे, लेकिन मैं मतलब
1: नहीं कोई गल नहीं वीर जी, आप इसको जैसे मर्जी चाहो ले सकते हो, आज आज़ादी है।
2: मैं मुझे मतलब काम करते हुए 17-18 साल हो गए, ठीक है। तो मेरे वर्किंग एक्सपीरियंस और लाइफ एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि ये दोनों चीजों को ना अलग मतलब अलग अलग नहीं बात कर सकते, दोनों चीजें जरूरी है आज के जमाने के ऊपर, ठीक है। कैसे मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे आप एक तुम्हारे जॉब से हट, तुम्हारे जॉब में तो सबको बोलना होता है ना, लेकिन कुछ ऐसे जॉब होते हैं जहाँ पे कि आप एक ही टाइप का काम करते हो, ठीक है। लेकिन आप अगर नहीं बोल पाते हो, सीधी सी बात, अगर नहीं कम्युनिकेट कर पाते हो अच्छे से, तो आप दिखोगे नहीं, यू विल बी नॉट रेलेवेंट। मतलब हाँ ठीक है यार, ये तो हो जाता है, रोज काम करवाता है लेकिन चला जाता है, अरे ये तो है ना, ये अच्छा बोल जाता है, ठीक है। पहली पॉइंट, तो आप दिखोगे, दिखना बहुत जरूरी है कोई भी काम हो, ठीक है ना, अलग अलग होना। और दूसरा जो बात चल रही है कि पढ़ने की ना, कि क्या उसका क्या इम्पोर्टेंस, अगर आप पढ़ते हो है ना, तो आप औरों से अच्छा बोलते हो, सही बोलते हो और सटीक बोलते हो, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, अलग अलग है ही नहीं, है ना। और बोल बच्चन की जहाँ बात है भैया, बोल बच्चन वाले चलते हैं, मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा
1: ये तो फैक्ट है,
2: बोल बच्चन वाले चलते हैं,
1: हाँ ये फैक्ट है
2: ना, क्योंकि नजर में जो आ रहा है ना, क्योंकि वो बोल बच्चन वाले भी देखो, बोल बच्चन वाले स्मार्ट होते हैं, क्या करते हैं वो, जैसे तुमसे दो चीजें सीखी, दो चीजें एक्स सीखी, दो चीजें वाई सीखी, अब उस तीनों पॉइंट को लेके ऐसा जोरदार रखा उसने मीटिंग में, बॉस के सामने, फलाने के सामने, उसको लगा वाह तो ज्ञानी है, अभी ज्ञानी है। ये स्मार्टनेस है।
1: हाँ ये फैक्ट है भाई, ऐसे लोगों के सामने डिग्रियां भी धरी की धरी रह जाती है कई मरतबा। जो आपने बोला ना इधर से उधर से खींच कांच के सेंटेंस फॉर्मेशन बनाने वाले लोग बड़े डेंजर होते हैं।
2: तो बोल बच्चन में अगर आपके पास स्मार्टनेस है और आपने पढ़ लिया साइन थीटा कॉस थीटा नहीं, अकाउंट की डिटेल नहीं, जिंदगी को पढ़ लिया ना कि आखिर चलाना कैसे, वही जीतता है। साइन थीटा कॉस थीटा हमारे यहाँ एक मतलब नाम किसी का नहीं लेना चाहिए, हमारे यहाँ बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, प्रधानमंत्री तक पहुंच गए बहुत सारे लोग, बहुत ज्ञानी लेकिन उनको ना चलाने नहीं दिया लोगों ने। क्यों? बोल बच्चन
1: का खेल है सारा का सारा। अरे विमलेश भाई यार कॉल कट गई आपकी भाई। फरद भाई कह रहे हैं विमलेश भाई हर शो में कॉल करते हैं, फज्जू भाई के शो में भी उन्होंने की थी, हमारे दो शो मॉर्निंग इवनिंग जाते हैं, आप आते हैं पर आप आते टाइम पर, फज्जू भाई टाइम पे आते हैं हम। अच्छा वो ओके। एक मैसेज फैसल भाई कह रहे हैं भाई मैं कुछ बंदों को जानता हूँ जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन क्या है डिग्री होल्डर को बोतल में उतार लेते हैं। फैसल भाई कह रहे हैं। अच्छा अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई।
1: जी मेरा भाई बताओ भाई
3: कैसे हो?
1: बढ़िया भाई एकदम जिंदा, बताइए क्या कहना चाहते हैं?
3: मैं भी अच्छा हूँ, बस यही बोलना चाहूंगा कि बोलने वाले के भी बोल वजन ज्यादा है।
1: हाँ।
3: क्योंकि देखो हमारे लोकल एरिया में भी जितने बिजनेस हैं 100 में से 80-90 तो बिना पढ़े लिखे ही चला रहे होते हैं।
1: अच्छा।
3: बस बोलने की दम पे,
1: बोलने का दमखम ज्यादा है मतलब आज की तारीख में मार्केट में। अच्छा ओके ठीक है तो अभी वैसे भी वोट इस तरफ ही जा रहा है, लोग ज्यादा लोग ये बोल रहे हैं कि भाई बोलने की ताकत जो है वो आजकल भारी पड़ रही है, दुनिया थोड़ी सी ज्यादा ही बदल गई है।
3: क्यों अभी आप देखो ना पढ़े लिखे भी नहीं है पर बोलने के दम पे देश चला रहे हैं।
1: हाँ तो ये तो चल ही रहा है मार्केट में।
3: हाँ वही है।
1: हाँ ठीक है।
3: हर एक जगह की यही कहानी है। और पढ़ लिखे भी कम, मैंने कल एक फिल्म भी देख रहा था, एक मूवी दो दीवाने शहर में, वो अभी नहीं आई है सर।
1: हाँ हाँ।
3: उसमें जो वो हीरो था ना जो मेल एक्टर था लीड में, उसको बोलने का उतना वो नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, लास्ट में उसने तो एक स्पीच दी, पूरा वो मूवी में वो डरता रहा, जॉब भी वो छोड़ने की कगार पे आ गया था मैंने देखा, क्योंकि उसको बस वो कुछ वो बोलने की ताकत नहीं थी ग्रुप में या कोई स्टेज पे, उस हिसाब से मैंने वो फीलिंग देखी, वही मेरे दिमाग में अभी आया है, मैं सुन रहा था।
1: ओके ठीक है, तो आपका वोट हमने रजिस्टर कर लिया, तो बेसिकली बोलने की ताकत इज मोर सुपीरियर। और भाई दिन कैसे जा रहा है? बढ़िया, कहीं कहीं पर हो आपकी आवाज कह रही है बैकग्राउंड में, किधर जा रहे हो?
3: आपकी सुबह सुबह वॉइस सुन लेता हूँ और दिन पूरा अच्छा जाता है।
1: थैंक यू मेरे भाई, सेट है। आपका नाम तो बता दो, नाम क्या आपका?
3: आरिफ।
1: अरे भाई थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारे प्यार भाई को। ओके मेरे भाई अल्लाह हाफिज़। मैं एक सेकंड, जो कॉल कट गई है मैं कॉल कर लूँ, अच्छी बात नहीं होती, कुछ अखलाक नाम की भी कोई चीज़ होती है, हालांकि मेरे खालू का नाम भी अखलाक है, वो तो किसी काम के नहीं, लेकिन मेरे अंदर जो अखलाक है वो मैं यूज़ करके कॉल लगा लेता हूँ। एक सेकेंड कॉल कर लूँ ज़रा। हाँ जी विमलेश भाई, कॉल कट गई थी आपकी,
2: कोई बात नहीं, वो नेटवर्क स्लो हो जाता है गाड़ी चलते।
1: हाँ भाई बताओ बताओ।
2: मैं वही कह रहा था कि मतलब मेरा जो वोट है ना, मतलब मेरा सिंपल सा लास्ट लाइन यही है कि ये दोनों चीजें बोल बच्चन और पढ़ने की ताकत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, इन दोनों को अगर आपने जोड़ दिया ना, ओए ओए ओए आप जैसा कोई है ही नहीं।
1: हाँ पर यह है कि दोनों एक दूसरे के बिना भी थोड़ी सी अधूरी रह जाती हैं, पर यह है कि अभी जैसे भाई ने बोला, भाई कह रहा है भाई आधे बिजनेस तो जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी वो चला रहे हैं मार्केट में, बताओ ये सब हो रहा
2: है। ट्रुथ है ये, ट्रुथ एकदम ट्रुथ है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कि मैंने कहा जहाँ से इंजीनियरिंग करी थी ना वहाँ पे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज थे, ठीक है, तो उसमें से

मैं पढ़ाई कर रहा था तो उसका जो ऑनर था वो ये था मतलब कबाड़ी वाला बंदा था, उसको किसी ने ऐसे ही बोला रैंडमली भाई ये जमीन ना, ये जमीन पड़ी हुई खरीद ले, क्या पता उसने खरीद लिया और उसमें कॉलेज बना।

0: जिंदगी में अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग लम्हों पे उसको ना ठोकर लगी, टक्कर लगी, तो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ और वही हमको कॉन्फिगरेशन सेरेमनी में सुनाया। और हर सेरेमनी में अलग अलग बातें करता था,
1: हाँ तो वही है ना, ये जो कई पहले लोग कहते थे बड़े बातूनी हो यार, लेकिन आज वही बातूनी जो है बड़ा अच्छा खेल रहे हैं मार्केट में, ये बोतल में उतार रहे हैं दुनिया को। ठीक है, ओके विमलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। विमलेश भाई भाई चाय पिलाओ यार, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से आपके हाथ की चाय नहीं।
0: अभी मेरी तुम्हारी दोनों की भर भर की छुट्टियां आने वाली है।
1: ये भर भर के थोड़ा एग्जैजरेशन, भर भर के थोड़ा एग्जैजरेशन हो गया, पर ठीक है।
0: नहीं ओके सॉरी, फिर मैं भूल जाता हूँ, अभी तुम्हारे प्रोफेसर के बारे में अभी मैंने बात किया।
1: हाँ वो आप भूल जाते हो,
0: उसका रीजन सिंपल सा है, बहुत दिनों बाद जब मिलते हो ना, ये फ्रीक्वेंटली नहीं, मतलब कम से कम
1: 90 की 15 दिन वाला कॉन्सेप्ट रख देना, तो आप बोल सकते हैं चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, सिर्फ रीडिंग से सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके जी, एक कॉल, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, क्या टॉपिक चल रहा है आज?
1: आज हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पढ़ने वाली स्किल आजकल ज्यादा प्रोमिनेंट है या फिर बोलने वाली स्किल जो है मार्केट में ज्यादा काम कर रही है, कौन सी स्किल ज्यादा इम्पोर्टेंट है?
2: पढ़ाई और एजुकेशन जाहिर है, आपको जो है ना आपके ब्रेन को ग्रो करने के लिए बड़ी
1: नहीं, आप हैं किस तरह, वो तो सबको पता है पढ़ाई से ब्रेन ग्रो होगा, वो सारी बातें हमने कर ली, पर आप किस स्किल को ज्यादा सुपीरियर मानती हैं?
2: किसी को कन्विंस करने की और अच्छे से बोल पाने की, ये एक नेचुरल टैलेंट भी होता है।
1: हाँ वही मैं कह रहा हूँ, नेचुरली तो बोलने की ताकत हम मानती ज्यादा सुपीरियर,
2: बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन वो अच्छे से भी साबित नहीं हो पा रहे होते हैं, इसलिए कि उनको अच्छा से अपनी बात समझाना नहीं आती, उनको पढ़ना और उसको समझ समझ के मार्क्स लेने आते हैं लेकिन वो इंटरव्यू में याद नहीं हो पा रहे होते।
1: करेक्ट, वही वाली बात है ना,
2: बोलने की एबिलिटी उनके पास नहीं होती।
1: ये बोलने वाले आजकल पढ़े लिखो को भी बोतल में उतार लेते हैं, जैसा भी फैसल भाई ने बोला, ये बात एकदम सच है।
2: और जो इनके पास बोलने की स्किल होती है वो बहुत पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा जो है ना कन्विंसिंग अंदाज में अपनी स्किल को यूज करके फिर वो काम करा लेते हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं करा पाते हो।
1: राइट राइट राइट।
2: दूसरी तरफ आपको पता है कि जो स्कॉलर्स होते हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स हो गए या मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए,
1: उनका तो फिर अलग ही मैटर है, वो तो फिर वो दोनों स्किल्स आपस में मिल रही है,
2: अपनी एजुकेशन लर्निंग और उसको पॉलिश करके अपनी क्वालिटी को बहुत बड़े,
1: वो तो फिर अलग लेवल की चीज हो गई, वो तो यू नो दे हैव टू रीड अ लॉट एंड देन अंडरस्टैंड।
2: अगर आप पॉलिश करें तो फिर आप बहुत उससे आगे जाते हैं, लेकिन बहरहाल जो बोलने पता इंसानों का ये वस्त है, जो साधन जो है ना उनको ये बोलने की सलाहियत, चीजों को नाम देने की और बोलने की सलाहियत दी गई थी। आप इस वक्त देखें कि इंसानों के अलावा और किसी के पास ये वस्त नहीं है, एक लैंग्वेज को देख पाना, उसको लिख पाना और उसके थ्रू कम्युनिकेट कर पाना और फिर आगे भी बात स्तर तक चली जाती है।
1: राइट राइट, नहीं ये बात सच है,
2: ये इंसान की क्वालिटी है और अगर वो इसको अच्छे से, अगर उसके नेचुरल टैलेंट है और उसको वो अच्छे से पॉलिश करके इस्तेमाल करता है, तो देखिए मैं ये नहीं समझती कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ डिग्री का नाम नहीं है, आप अपने आसपास से सीख रहे होते हैं।
1: राइट ठीक है,
2: अपने पास ये एबिलिटी है और जो अपनी इस एबिलिटी को पॉलिश करते हैं या कर सकते हैं तो वो बहुत आगे जाते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं जिनके अंदर ये थोड़ा है कि वो अपनी बात समझा नहीं पाते, मनवा नहीं पाते, वो भी अपने आसपास से सीख के अपने कामों के हद तक कन्विंसिंग अंदाज में मुनासिब तरीके से अपने गुस्से को कंट्रोल करके झगड़े से अवॉइड करके अपनी बात को मनवाना सीख सकते हैं।
1: ओके ठीक है, तो बोलने वाली स्किल के ऊपर है। बहन अभी थोड़ा सा टाइम कम होता है, जल्दी जल्दी हमें कॉल्स लेनी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैंने कॉल उठा ली और हमने बात भी करी है, थैंक यू सो मच। मैं इंशाल्लाह बात करूंगा फिर इस बारे में और, ठीक है? ओके ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। तो अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, विल बी बैक और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी कॉल्स भी आ रही हैं बैक टू बैक एंड आपके मैसेज बहुत सारे मुझसे छूट गए हैं, सो मैं उन पर बात करूंगा। एक कॉल ले लेते हैं बस, एक छोटी सी कॉल, एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: अरे भाई क्या

0: बिल्कुल ठीक है
1: फुआद
0: भाई, लास्ट कॉल बिल्कुल आपके सवाल का जवाब थी जो बहन ने किया आपके साथ।
1: अच्छा और बताइए फुआद भाई, क्या हाल है आपका?
0: बहन ने आपके साथ कन्विंसिंग पावर से, आप कहते भी रह गए कुछ भी, वो उसने कहा ही नहीं, उन्होंने अपनी पावर दिखा दी।
1: तो आप क्या मुझे सुनाने के लिए कॉल करते हैं? मतलब ये सच्चे पड़ोसी हैं, ये सच्चे पड़ोसी सुनाने के लिए कॉल करते हैं, टुचके करने के लिए। बहुत मजा आ रहे हैं फवाद भाई, बहुत मजा आ रहे हैं फवाद भाई।
0: जितनी कन्विंसिंग पावर बेगमों के पास होती है और किसी के पास नहीं होती है। आप ना चाहते कहते अच्छा ठीक है,
1: अच्छा ठीक है। फवाद भाई ये कहते कहते कितने साल हो गए आपको?
0: सर अब तो 21 साल हो गए।
1: माशाल्लाह, तो अब बची है कम्युनिकेशन स्किल, बची है अंदर कुछ है बोलने के लिए?
0: नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात बिल्कुल सही है, एजुकेशन जरूरी जरूर है।
1: हाँ।
0: लेकिन अगर आपको अपने अल्फाज किसी को भी कन्विंस करने या बात करने के लिए नहीं आते हैं,
1: हाँ।
0: या आप अपनी बात को पोर्ट्रे नहीं कर सकते सही तरीके से, दैट्स इट, फिर आपकी उस एजुकेशन या नॉलेज का फायदा नहीं होता।
1: हाँ, तो बोलने की स्किल इज फार मोर सुपीरियर आज की तारीख में,
0: वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई नाउ अब तो कुछ लेक्चर्स चलते हैं या चीजें चलती हैं, ठीक है, तो इसलिए वो लोग ट्रेनिंग करते हैं स्पेशली इसकी लोग तो।
1: हाँ राइट राइट,
0: आज हम लोगों को वैसे ही आ गई है स्किल, पता नहीं क्यों।
1: आज भरे बैठे हैं फवाद भाई, आज जरा मुझे लग रहा है आपको चुप रहने की जरूरत है पूरे दिन।
0: नहीं, मैं कल दो पार्टियों के बीच में झगड़ा और सफाई करा के आया, अभी दो के बीच में जा रहा हूँ।
1: ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट। रिपोर्ट कार्ड दे देना, रिपोर्ट कार्ड दे देना,
0: ठीक है सर, आपका टाइम भी लूंगा। चले ठीक है,
1: अल्लाह हाफिज़। तो ये एक मैसेज आया है फवाद भाई के लिए, ये क्रिस्टल जी कह रहा है कि बेसिकली फवाद भाई इज दैट फुप्पो जो दो लोगों में कलेश करने के डिप्लोमा ले चुकी है। बिल्कुल, अरे बहुत माहिर है, बहुत तेज आदमी है, बहुत तेज। बोलते हैं इस गाने के बाद, गाने में तो ऐसा होना चाहिए ना कि आप कहीं जा ना पाए। भाई हमारा पंडूगा में इंतजार करते करते जो है ना बावड़ा हो गया, बावड़ा चाहिए भाई जल्दी से। मुस्तफा जाहिद की बेहतरीन आवाज, बेहतरीन मूवी आवारापन, इमरान हाशमी, उफ भाई साहब वॉल्यूम बढ़ा लो।

पता है वो ये आवारापन एक मूवी नहीं है भाई, इमोशन है इमोशन। अगर जिसने अभी तक आवारापन नहीं देखी ना, आपको पता नहीं क्या मिस कर रहे हैं आप। मतलब बॉलीवुड ऐसा करता नहीं है, ये जो बन गया था ना इत्तफाकन, ये बहुत बढ़िया मूवी बन गई थी। अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग रटे हुए हैं लोगों को इस पिक्चर के। आसिफ नवाज भाई कह रहे हैं आज मेरा बर्थडे है। आसिफ नवाज भाई वालेकुम अस्सलाम, पहले सलाम दुआ कुछ हो जाए। मैं तो बड़ों की तरह बात कर रहा हूँ, क्या बर्थडे बर्थडे सलाम दुआ कुछ नहीं, आज मेरा बर्थडे। आसिफ भाई मजाक कर रहा था। अ वेरी हैप्पी बर्थडे मेरे भाई, हमेशा खुश रहिए, मजाक को मेरे दिल पे मत देना। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे प्रिंस भाई, फिर यहाँ मैंने मैसेज किया है, नॉलेज विद मनी स्मार्टनेस, नॉलेज प्लस मनी प्लस स्पीकिंग अल्टीमेट पावर। स्पीकिंग ओनली विद नो नॉलेज विमेन डिस्कसिंग। अच्छा भाई जालिम गाना लगा दिया, कह रहे हैं ऑसम ड्राइविंग ट्राई, थैंक यू सो मच या भाई। कह रहे हैं भाई कितनों का तो वाइफ बोलने की वजह से, कह रहे कितनों के तो रिश्ते जो है वो बात करते करते फिर वो वाइफ बन जाती है सिर्फ बोलने की वजह से। आरिफ भाई आप जो है बहुत बॉर्डर लाइन खेल रहे हैं। क्रिस्टल जी ने मैसेज किया है, नथिंग इज सुपीरियर ओवरऑल बट आई पर्सनली फील दैट AI मेड राइटिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ईजियर। द रेयर स्किल नाउ इज स्पीकिंग क्लियरली एंड परसुएसिवली विदाउट फिलर, बिकॉज दैट्स व्हाट गेट्स यू इन मीटिंग क्लाइंट्स अटेंशन। बोलने दी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग आएगी। एक और मैसेज है कबीर भाई, बोलने की पावर और पढ़ने की पावर से ऊपर लिसनर की होती है, ज़्यादा लिसनर होंगे वही सुपीरियर होगा। मुझे तो पता भी नहीं कितने लिसनर हैं, लेकिन भाई सवाल ये नहीं है। गलत जवाब। 100 करोड़ रुपए बोलने का मुझे मौका दीजिए। सिद्रा फैन कह रही है मैंने भी मैथ्स में जो है डिग्री हासिल करी है। कौन कह रहा है कि खवातीन जो है वो मैथ्स में अच्छी नहीं होती। और बाकी वो कह रही है बोलने की ताकत इस फार्मर सुपीरियर। फवाद भाई को भी गाना बढ़िया लग गया। एक मैसेज किया है भाई, पढ़ना सुनना तो ग्लोबल फ्रीज मगर चेकआउट करना 1.5 साल से सुन रहा हूँ, एक नंबर है। पढ़ना सुनना है तो ग्लोबल फ्रीज क्या कह गए भाई वसीम भाई, व्हाट। और अरसलान भट्ट साहब ने मैसेज किया है, आई ऑलवेज रेड एंड गेट रेलिवेंट नॉलेज ऑफ द टॉपिक एंड प्रैक्टिस बिफोर डिलीवरी। भाई एकदम बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर लग रहे हैं आप, बढ़िया कॉम्बिनेशन पहना था आपने उस दिन, पता नहीं कौन सा दिन है पर आपकी कंपनी का दिन लग रहा है कोई खास। इरफान भाई ने मैसेज किया, इरफान भाई कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इरफान भाई, कबीर भाई मुझे पूछना ये था कि अलजेब्रा साइंस थीटा ये यूज़ कहाँ होता है लाइफ में। मैं मैथ्स में फेलियर रहा हूँ, मुझसे पूछ रहे हैं आप।

0: कह रहे फैजान भाई की पोइट्री शेयर कर दें। अरे फैजान भाई किधर, फैजान गए क्या? फैजान भाई आएंगे तो पूछता हूँ मैं। कह रहा मेरा प्यारा स्कूल एंड थैंक्स टू ऑल द टीचर्स, इनकी वजह से हम आज इस मुकाम पर हैं। भाई अभी भी याद है 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ आफ्ताब अहमद इंग्लिश टीचर ने 3 दिन फेस पे टैटू बनाया था। ये इनको पनिशमेंट से याद आ रही है आज के दिन। नदीम भाई मैसेज कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, आज अभी उठा और बेटा स्कूल नहीं गया तो नो कॉल टुडे। बोलने वाली एबिलिटी ही आगे लोग बोलने की वजह से इन्फ्लुएंसर बन के कमा रहे हैं। बात तो सही है। एक मैसेज है भाई, बोलने वालों को जीता जागता सबूत कपिल शर्मा है। शेर अली भाई ने मैसेज किया, अ पर्सन शुड बी स्मार्ट एंड रिस्पेक्टफुल वेदर नॉट दे हैव एजुकेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल। कह रहे हैं अखलाक ज़रूरी है, सिवाय मेरे खाले को छोड़ के उसका नाम भी अखलाक है। आके अब आके भाई उनका आपका भाई अब्दुल रहमान एंड देन भाई इन्होंने बोला कॉल मी। ओके मैसेज है, पढ़ने वाले की ना ज़्यादा बोलने वाले की, स्किल तो कामयाब है रेफरेंस वाले की। अरे तो रेफरेंस कैसे बनेगा हैं गुड़िया, एक सेकेंड रुको पहले कौन डालू। निशान भाई कह रहे रेफरेंस जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: क्या हाल है कबीर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए भाई।
1: तीसरी बार कॉल कर रहा हूँ भाई।
0: भाई सॉरी भाई, मैं जरा फोन में था, मैंने एकदम से देखा, मैंने उस तरफ देखे नहीं, मैं फोन में लगा हुआ था, वो एक्चुअली मैं चार्जिंग में लगा के मैसेज पढ़ रहा था मैं। बताइए भाई,
1: आपका जो सवाल है कबीर भाई उसमें बोलने वाले सक्सेस है भाई, कहीं भी आप चले जाइए, चाहे बोल बचन में ले लीजिए, यहाँ तक कि बोलने वाले ऐसे हैं भंगार के आप बता रहे थे, आप चले जाइए बम्बे के अंदर कुर्ला में कपाड़िया नगर उस साइड में, जितने भंगार वाले हैं पढ़े लिखे को काम पे रखे हुए भाई, अभी अच्छे खासे पोस्ट वालों को
0: भंगार वालों ने रखा हुआ है, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी, मैंने भी देखा है बम्बे में, आई हैव सीन इट।
1: भाई कामयाब इंसान वही है, मतलब जो है पढ़े लिखे को अब आज जो है इसकी जरूरत ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि इसके बगैर नौकरी नहीं है। अगर आज भी जो है अगर डिग्री को हटा दिया जाए, अगर डिग्री की नौकरी मिल जाए तो देखिए तो पढ़ना नहीं चाहेगा, खाली जो है बोल बचन में ही लोग जो है नौकरी पालेंगे।
0: आज ये हो भी रहा है आजकल ना, ये हो भी रहा है आजकल, मैं कई दफा में देखता हूँ कितने सारे लोगों ने बोला कि भाई लोग खेल जा रहे हैं, पता भी नहीं लग रहा है लोग कहाँ कहाँ से क्या क्या सीख क्या रहे हैं। जैसे कुछ देर पहले उन्होंने बोला ना कि जो बोलने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, आधा इससे सीख लिया आधा उससे सीख लिया, 10% इससे उठा लिया और सब कुछ मिला जुला के चल रही है गाड़ी उनकी।
1: यही तो बोलने वालों की कला है भाई, कि आपने जो पूछा उसमें से दो अल्फाज ज्वाइंट ले लिए और कुछ दो आपकी तरफ से दो दूसरे की तरफ से वो करके जो है उसको अलग से जो है वो कर लेते हैं,
0: मिली जुली सरकार बना ली।
1: मिली जुली सरकार, अभी आप अपने आपको ही देख लीजिए रेडियो पे, अगर आप नहीं बोलते और इतनी अच्छी बातें नहीं करता तो कौन आपसे जुड़ता
0: भाई, बात
1: रेडियो वाले तो जुड़ता है नहीं जुड़ता,
0: ये बात मैं पूरी तरह से मानता हूँ, ये बात एकदम फैक्ट है। हाँ ओके ठीक है ठीक है। कमाल भाई आज की स्टोरी भी देखते हैं कितनी बड़ी है क्या है, पर आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। ठीक है,
1: कहानी अच्छी थी भाई आपकी। हाँ
0: नहीं आज भी अच्छी,
1: थोड़ी छोटी हो या बड़ी हो,
0: आज मुझे समझाना कुछ थोड़ा पड़ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ क्या होगा, इंशाल्लाह अच्छी लगेगी आपको कहानी, बस आने वाली है। ठीक है,
1: ठीक है, दो बार तीन बार सुन के समझ लेंगे क्या।
0: डन डन डन, नहीं इतनी इतनी बार नहीं समझनी पड़ेगी, ऐसी भी नहीं है, ऐसी भी नहीं है, पर आ जाएगी समझ।
1: ठीक है
0: ओके मेरा भाई,
1: ओके अल्लाह,
0: ओके भाई अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। तो कमाल भाई की बात कोई रह तो नहीं गया भाई, कोई मैसेज आएगा तो मैं माजरत चाहता हूँ प्लीज़। नहीं कमॉन कबीर भाई, भाई भाई भाई भाई भाई ये किन्होंने मैसेज किया है ये भाई, अब मैं कॉल नहीं उठा पाऊंगा, माजरत है, मैं कान की तरफ पढ़ाऊँ। सुरजीत भाई ने बहुत बढ़िया परांठे भेजे, एक मैसेज है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और पढ़ाई को तरजीह देता हूँ, हाउएवर मेरे सारे बॉसेज आज तक कंपनीज में मैंने देखा है सब ज़बरदस्त स्पीकर्स हैं, स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल मैटर्स। ये हकीम भाई कह रहे हैं। तौफीक भाई कह रहे हैं अलवकरा से, रोना ज़रूरी है तौफीक भाई? एक मैसेज है, भाई बोलने वाले ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि बच्चे भी आजकल ऑनलाइन वीडियो से कुछ भी कमा लेते हैं, ये बात तो है, ये बात तो है। कोई रह तो नहीं गया ये, एक सेकंड सुरजीत, सुदीप तो सर ने एक और मैसेज किया था, कबीर भाई इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेल रेड एंड वेल स्पोकन। यार इतनी प्यारी बात कर देते हो ना फिर मेरे को दिल भेजना पड़ता है। सुदीप तो सर थैंक यू सो मच, कहें पढ़ के बोलने वाले, अरे नहीं एक चूज़ करना है, एक चूज़ करना पड़ेगा। मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, रीडिंग इज नॉलेज विच इज़ ओनली हेल्पिंग द पर्सन रीडिंग, बट स्पीकिंग इज स्पेशल टूल विच वी कैन शेयर अ नॉलेज व्यूज थॉट्स एंड चेंज पीपल विद आर स्पेशल थॉट्स, सो आई गो विद स्पीकिंग फॉर अपना कबीर भाई। बाय गो बहुत सारा प्यार क्या अराफात भाई को। कोई मैसेज रह गया हो तो मैं पहले ही माजरत चाहता हूँ भाई, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूँ तो चलेगा क्या प्लीज़, क्योंकि अभी मैं कहानी के लिए शॉर्ट हो रहा हूँ टाइम से थोड़ा सा। क्या लाइफ में कुछ भी ना आए कोई बात नहीं, अगर बोल बच्चन आ जाए तो बंदा जी लेगा, नवेद भाई कह रहे हैं। नसीम जा साहब

0: वालेकुम अस्सलाम, कहें जो जितना बोलेगा बेगम के आगे उतनी ही बोलती बंद रहती है। माई डॉटर क्लियर 12th ग्रेड विद 93%, और इसकी पप्पो ने 20 किलो मिठाई क्या और उसकी पप्पो ने 20 किलो मिठाई बांटी। उस्मान भाई वालेकुम अस्सलाम, बड़ी अच्छी पप्पो मिली हैं, बिटिया को मुबारकबाद दीजिएगा उस्मान भाई, हमारी तरफ से मुबारकबाद। ओके तो पठान भाई थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्या शॉर्ट हुआ भाई, मुंबई की बातें हो रही भाई, मुंबई की बात हो नहीं रही भाई, ओके ख़त्म हो रही भाई, आज की स्टोरी है नहीं, बस आने वाली, बस बस बस शुरू कर रहा हूँ मैं। ओके सो अब एक गाने का सीधा कहानी है, आई एम सो सॉरी, कुछ मैसेज मुझसे मिस हो गए होंगे, आज की स्टोरी थोड़ी समझानी पड़ेगी मुझे, बट आई एम ओके विद इट, क्योंकि कई मरतबा ऐसा भी करना चाहिए। 666-22-107 नंबर है। एक सेकंड रुको भाई, मैं किधर गया। ओके एक गाने का मिल रहा है, 3 मिनट और 3 सेकंड गाना, इसके बाद अली भाई कहानी ठीक है, बढ़िया करके मौज करा देंगे आपको, मौसम बदल देंगे। मन देवे ना तू भड़क रहे, 7:32 हो रहा भाई, और आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड मारा नाम तो बेरा है तुमने,
1: रोक दे दिल की धड़क रहे
0: छोरी, मैगा जी वॉल्यूम ना 22 से नीचे होने नहीं देना भाई, ठीक है।

0: शुरू करते हैं, आपकी वॉल्यूम बड़ी हुई है। ओके
1: ओके जी,
0: तो मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, और आज का जो किस्सा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये मसालेदार किस्सा भी है एक तरीके से, दुनिया भर में काफ़ी मशहूर रहा है फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन जिन तक नहीं पहुंचा है आज उन तक पहुंचाऊंगा मैं। तो आज के किस्से को सुनाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं कई साल पीछे, आपको ले चलता हूं इन एयर 1950 में चलते हैं, ठीक है। एक खातून थी, उनका नाम था वेस्ना वोलोविच। वेस्ना वोलोविच जो थी, उनका जन्म हुआ था बेलग्रेड में 1950s में ही। एज शी वॉज ग्रोइंग अप, जब बचपन से म्यूजिक, उस टाइम पे आप सोच सकते हैं कि क्या ही ऑप्शन रहते होंगे एंटरटेनमेंट के, लेकिन म्यूजिक वॉज स्टिल प्रोमिनेंट, और वो बीटल्स की फैन थी, वो काफ़ी सारे म्यूजिक को पसंद करती थी और अलग अलग म्यूजिक को ट्राई करती रहती थी, मगर एक चीज़ ने उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया। हुआ ये कि उनके घर वाले, उनके माँ बाप और उनके रिश्तेदार लंदन में भी रहते थे, तो उनको लंदन जाने का मौका मिलता था, ज़्यादा नहीं मिलता था, लेकिन जब वो लंदन गई तो वहाँ जाके तो वो उस जगह की दीवानी हो गई। उनको ऐसा लगा कि बस अब मुझे मौका मिलना चाहिए ट्रैवल करने का, मैं तो बार बार आऊँ यूके घूमूँ मैं, पर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, कैसे मौका मुझे बार बार मिले कि मेरे माँ बाप भी बोले हाँ जाओ बेटा मौज करो जाओ लंदन जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका रास्ता उन्हें मिला, इसका रास्ता था कि वो क्यों ना कि एयर होस्टेस बन जाए, तो एयर होस्टेस बनने का उन्होंने फैसला किया एंड किस्मत रंग लाई, शी बिकेम एन एयर होस्टेस, और वो भी 21 साल की उम्र में। ये सोच इसलिए भी थी कि उन्होंने सोचा इस तरह मैं लंदन लगातार ट्रेवल भी कर सकती हूँ और कितनी बार भी चाहूँ कर सकती हूँ, और मेरी फ्लाइट्स आती जाती रहेंगी, मोस्टली उस तरफ जाती भी हैं फ्लाइट बेलग्रेड से, और इसके लिए मुझे पैसे भी मिलेंगे, मतलब मेरी कमाई भी होगी, तो सब कुछ उसके हक में, द बेस्ट प्रोफेशन फॉर हर। तो जब वेस्ना वोलोविच 21 साल की थी जब उन्हें ये जॉब मिली, और उनको ये जॉब मिली थी JAT एयरलाइंस के साथ, उस टाइम पे 1950s JAT एयरलाइंस जो थी वो नेशनल एयरलाइंस थी और यूगोस्लाविया की। ये वेस्ना के लिए किसी सपने से तो कम नहीं था, बिकॉज समटाइम्स आप जो चीज़ें सोचते हैं कि या क्या मुमकिन हो सकता है और आप कर लेते हैं, तो आपको उसकी वैल्यू बहुत होती भी है, मगर आप कहीं ना कहीं हल्के में ले लेते हैं, बट इट वॉज हर ड्रीम जॉब बेसिकली। एक साल के अंदर अंदर पता नहीं कितनी मरतबा फ्लाइट्स गई बेलग्रेड से लंदन, और उन्हें मौका मिलता रहा। शी वॉज रियली हैप्पी। लेकिन एक साल के इसी अंदर में, क्योंकि ज़्यादा उन्हें फ्लाइट्स लंदन की तरफ मिल रही थी, वो खुश तो थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उनकी जॉब प्रोफाइल में उन्हें कुछ यूनिकनेस नज़र आई। एक तो प्रोसेस चेंज हो रहे थे एयरलाइंस के, बोर्डिंग की चीज़ें वो काफ़ी चेंज हो रही थी, और एक दिन जब वो फ्लाइट बोर्ड कर रही थी JAT फ्लाइट 367 D932 एयरक्राफ्ट, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ अगर कोई सर्च करना चाहे तो, इस वक्त जहाज़ जो था वो शेड्यूल्ड था कि वो डिपार्ट होगा स्टॉकहोम से उड़ेगा दोपहर के 1:30 बजे, 1:30 PM। इसके बाद ये फ्लाइट शेड्यूल्ड थी कि ये फ्लाइट जाएगी बेलग्रेड, और बेलग्रेड से फिर एक लेओवर होगा कोपेनहेगन में, और कोपेनहेगन डेनमार्क से फिर जाएगी ज़ग्रेब, यानी कि जो क्रोएशिया का कैपिटल है। तो काफी बीच में स्टॉप्स वगैरह है। जहाज जो था सब कुछ क्रॉस करके शेड्यूल के हिसाब से चल रहा था, और वो डेनमार्क कोपेनहेगन में जहाज रुका। ओके, वहां पर जहाज जो है जब रुका तो बहुत सारे लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया था, वो भी एक शख्स की वजह से। एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया था, एक मिस्ट्री मैन जिसके बारे में कोई जानता नहीं था वो कौन है क्या है। ये आदमी इतनी परेशानी क्रिएट कर रहा था कि मुझे उतरना था, हटो साहब हटो, बहुत चिड़चिड़ाहट इसने पैदा कर दी थी। तो लोग फ्लाइट से उतरना, जो लाइन से उतरते कायदे से उतरते, सबको परेशानी दे रहा था ये। और मिड फ्लाइट भी, जो कोपेनहेगन में उतरने से पहले भी, इसने बहुत बहुत ज्यादा परेशान किया हर एक क्रू मेंबर को भी। और इससे डील कर रही थी 21 साल की वेस्ना वोलोविच। वो बहुत इरिटेट हो चुकी थी इससे कि ये बंदे को मैं कैसे क्या कैसे समझाऊं कि सर प्लीज़ बी पेशेंट, आराम से उतरिए। आप जानते हैं एयर होस्टेस जो होती है उनका काम कितना मुश्किल होता है ना, उनको अलग अलग लोगों से डील करना पड़ता है एंड उन्हें फिर उस बात पे मुस्कुराना भी पड़ता है। दे कैन नॉट शाउट, दे कैन नॉट फाइट, बहुत सारी चीज़ें उनकी जॉब प्रोफाइल का हिस्सा होती हैं। और इसलिए वेस्ना वोलोविच के लिए बहुत मुश्किल था कि ये आदमी इतना इरिटेटिंग है। महज जल्दी उतरने के लिए इसने सबको परेशान किया हुआ है। पर जब वो उतर गया और फ्लाइट उड़ी, उड़ने के बाद फ्लाइट के अंदाजा हुआ वेस्ना वोलोविच को कि ये क्यों इतना बेचैन हो रहा था, क्योंकि स्टॉकहोम से जब ये बंदा चढ़ा था फ्लाइट में तो उसने एक लगेज के अंदर एक्सप्लोजिव रख के वो लगेज जहाज के कंपार्टमेंट में रख दिया था और वो इसीलिए जल्दी उतरना चाहता था। अब फ्लाइट जो थी वो कोपेनहेगन से ज़ग्रेब की तरफ जा रही थी, मगर इसी फ्लाइट में एक सूटकेस था जिसके अंदर एक्सप्लोसिव्स थे। 45 मिनट तक जहाज कोपेनहेगन से उड़कर जा रहा था ज़ग्रेब की तरफ टुवर्ड्स क्रोएशिया, लेकिन फिर 27 पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स, वेस्ना वोलोविच, इनको मिला एक जबरदस्त झटका और DC-9 एयरक्राफ्ट के मिड फ्लाइट 33,333 फीट पर दो टुकड़े हो गए। जब जहाज के साथ ये हुआ तो उस वक्त जहाज चेकोस्लाविया के माउंटेनियस एरिया पे था, बॉर्डर था बिल्कुल उसके ठीक ऊपर था और एक गांव था नीचे सर्स्प का केमिंसा नाम का एक गांव, वहां को बस क्रॉस कर रहा था जिस वक्त इस जहाज के दो टुकड़े हुए। और जैसे ही ये हुआ, बिकॉज ये बहुत सडन हुआ, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स 19 पैसेंजर्स जो आगे की तरफ थे वो तो फौरन के फौरन डिब्री के साथ जहाज के जो भी टुकड़े हुए उसके साथ वो बाहर उड़ गए क्योंकि कैबिन प्रेशर खत्म हो चुका था एंड दे वर लाइक थ्रोन। और बाकी भी नहीं बच पाए, उनको जहाज ने अपने टुकड़ों के साथ इधर उधर फेंका। मगर वेस्ना वोलोविच के साथ कुछ अलग हुआ। वेस्ना वोलोविच भी इसी जहाज का हिस्सा थी जिस जहाज के दो टुकड़े हुए, मगर कुछ फैक्टर्स ऐसे रहे जो बहुत ही कमाल के रहे वेस्ना वोलोविच के हक में, जहां इस जहाज के किसी भी बंदे का कोई बचने का चांस नहीं था और कोई बचा भी नहीं, वहां वेस्ना वोलोविच जो कि 33,333 फीट से गिरी बिना पैराशूट, बिना पैडिंग, बिना किसी चीज के, वो क्या जिंदा रह सकती है? वेल, उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया। अब ये कितना क्रेजी हो सकता है किसी का 33,000 फीट से, यानी कि 33,000 फीट से गिरना और बच जाना। ये इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर कोई 40 माले की बिल्डिंग से 40 फ्लोर्स हैं, ठीक है, कुल मिला के वहां से अगर कोई गिरता विरता है तो मतलब नहीं बच सकता, चांसेस आर फेटल, है ना। अब इसको 8 माले की बिल्डिंग कर दें तो 8 माले की बिल्डिंग मतलब 90 से 100 फीट, हाँ 90 से 100 फीट, तो 100% चांस है। आप बोलेंगे अरे सवाल ही पैदा नहीं होता, बोलेंगे नहीं कि बोलेंगे, मगर सोचिए वेस्ना वोलोविच कितने फीट से गिरी है, 33,333 फीट, जो अगर साइंस वाले हैं वो समझते होंगे इस बात को, टर्मिनल वेलोसिटी जो गिरने की उनका हुआ ना, गिर रही है 1500 फीट, यानी कि आप समझ लीजिए उनकी गिरने की स्पीड अगर मैं बताऊं तो तकरीबन 190 किलोमीटर पर आर रही होगी, 190 किलोमीटर पर आर। फिजिक्स, बायोलॉजी, कॉमन सेंस सब यही कहते हैं कि बिना पैराशूट के इस हाइट से इम्पॉसिबल है। तो आखिर वेस्ना वोलोविच कैसे बच गई? उनके बचने के पीछे चार मेजर फैक्टर्स थे, चार बहुत जरूरी फैक्टर्स, और अगर ये चारों फैक्टर एक हार्मनी में, एक साथ, एक बारी में ना होते तो फिर वो नहीं बच सकती थी। एक बहुत बड़ा फैक्टर था इन चारों में से, वो था जब सब बाहर फेंके गए, प्लेन के दो टुकड़े हुए, सबके सब बाहर फेंक दिए गए, उस टाइम वेस्ना वोलोविच जहाज के बिल्कुल पीछे वाले एरिया से बीच की तरफ आ रही थी वो ट्रॉली लेके, जिसमें खाना वाना होता है, इसमें एयर होस्टेसेस सर्व करती हैं।

आपको, तो वो लेकर वो आगे की तरफ आ रही थी जब इस जहाज के दो टुकड़े हुए। तो हुआ ये कि उस इंपैक्ट से जो ट्रॉली उनके पास थी, उस ट्रॉली ने उनको पीछे धक्का दिया और पूरी स्पीड से उन्हें जहाज के पीछे चिपका दिया, बिल्कुल दबा दिया बिल्कुल, और वो पीछे गई जहाज की एकदम और उन्हें पिन कर दिया बिल्कुल दीवार से इस ट्रॉली ने, जब तक जहाज नीचे नहीं आया। दिस वॉज फैक्टर वन। दूसरा फैक्टर जो बड़ा कमाल का रहा वैष्णव वोलोविच के बचने में, वो एक कमाल का इत्तफाक है। दरअसल वैष्णव वोलोविच, उनको हाइपोटेंशन की बीमारी थी, यानी कि लो ब्लड प्रेशर। और ये बीमारी ऐसा नहीं कि उन्हें अचानक से हुई, ये बचपन से थी और बहुत क्रॉनिक डिजीज थी। टेक्निकली आप बोलेंगे कि एरोस्टिस बन कैसे गई, मेडिकल एग्जाम फेल हो जाना चाहिए, मगर वेस्टर्न वोलोविच ने जब मेडिकल एग्जाम दिया था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कैफीन कंज्यूम कर दी, बहुत ज़्यादा कैफीन पी थी ताकि उनका ब्लड प्रेशर आर्टिफिशियली शूट हो सके और वो मेडिकल एग्जाम पास कर जाए, एंड वो पास कर पाई थी। अब आप कहेंगे ये मैटर क्यों करता है, इसमें लो ब्लड प्रेशर का क्या मतलब है बचने से? लेट मी एक्सप्लेन। दरअसल इसकी वजह से क्या होता है, वो जहाज जैसे ही टूटा होगा, दो टुकड़े हुए होंगे, वो तुरंत ही बेहोशी में चले गए होंगे, अनकॉन्शियस हो गए होंगे तुरंत ही, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी है उस पर किसी किस्म की टेंशन नहीं है, रोकने के लिए बदन को ज्यादा अकड़ाने की जरूरत नहीं है, तो उनका जिस्म अकड़ नहीं रहा है, वो किसी इंपैक्ट के लिए तैयार नहीं हो रही है, इसलिए ज्यादा कुछ होगा नहीं। यानी कि देसी भाषा में कहूं तो मसल उनके एकदम रिलैक्स्ड है, है ना। जब बंदे को पता ही नहीं है कि नीचे गिर रहा हूं मैं, तो उसके मसल क्या होंगे, तैयार नहीं है किसी चीज के लिए, तो रिलैक्स हो जाएंगे। सो मसल एकदम रिलैक्स हो गए, वो अनकॉन्शियस हो गई, जिसकी वजह से, क्योंकि वो बेहोश हैं, तो उनके वाइटल ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के, वो बचे रहे, क्योंकि ब्लड प्रेशर शूट ही नहीं हो रहा है। काफी हद तक वाइटल ऑर्गन्स वर सेफ। और लो ब्लड प्रेशर के चलते एक और फायदा क्या हुआ उन्हें, दिल तेज नहीं धड़क रहा, जिसकी वजह से वो सलामत रख रहा अपने आप को और आसपास की ऑर्गन्स को। अब एक और फैक्टर है इसमें जो बहुत जरूरी था वैष्णव वोलोविच के लिए। जहाज के दो टुकड़े होने के बाद जो लास्ट वाला पार्ट था फ्यूसलाज, जिसमें जहाज के उस पीस में ट्रॉली ने बिल्कुल चिपका दिया था दीवार से जहाज की वैष्णव वोलोविच को, वो वाला टुकड़ा जब नीचे गिर रहा था, वो बिल्कुल माउंटेन के उस साइड पे गिरा जहां पे ढलान थी, बिल्कुल उस साइड पे जहां पे ढलान थी, और वो स्लाइड होता हुआ नीचे जा रहा था ढलान पे, एकदम करेक्ट एंगल पे। और नॉट ओनली दैट, ये जो पहाड़ था, इस वक्त बर्फ की काफी मोटी चादर थी इस पे, इसकी वजह से थोड़ी कुशनिंग मिल गई थी। अब इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अरे वाह एकदम तकिए जैसा फील हो रहा होगा बहुत हद तक, नहीं, मगर कुशनिंग जरूर मिली उन्हें। क्रैश थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, पेड़ वेड़ से टकराया तो स्पीड भी कम हो गई, और फिर खेल कुदरत का, सुभान अल्लाह। अब आप सुनिएगा इस बात को, इंपैक्ट जो होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि कम होगा, इंपैक्ट ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग रहा होगा, बहुत जोर से ये जहाज गिरा होगा, जब ढलान पे आया होगा तो कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जब नीचे आ गई, बर्फीला तूफान था उस वक्त, बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही थी, वैष्णव वोलोविच गिरने के बाद ट्रॉली के साथ दबी हुई थी जहाज के इस टूटे हुए हिस्से में, और जहां पर वो गिरी थी ये जगह एक रिमोट जगह थी, काफी काफी आइसोलेटेड, दुनिया से अलग थलग, और इसे इसका नाम था चेचिन कंट्री साइड, तो इस तरफ ये गिरी हुई थी, जहां सवाल ही नहीं उठता कि कोई आएगा, मतलब ये इतनी आइसोलेटेड जगह है कि यहां पे कोई जानवर भी ना आए, इंसान तो बहुत दूर की बात है। एंड ऑन द इंपैक्ट शी पास्ड आउट, पूरी तरह से बेहोश। ऑफकोर्स उनकी लेग्स, उनकी टांगे टूट चुकी थी, रिब्स फ्रैक्चर हो चुकी थी, स्कल फ्रैक्चर हो चुका था। अब मैं ये कहूंगी उनकी हालत खराब थी, ये कहना भी बहुत छोटी बात है। कई घंटों तक वहां पे कोई आया ही नहीं, क्योंकि वहां पे कोई आता जाता ही नहीं था। जैसे मैंने कहा कि जानवर भी वहां पे नहीं जाते, तो इंसान तो कहां से पहुंचेगा। मगर फिर एक इत्तफाक हुआ, वहां पर इत्तफाकन एक बंदा जो वहां से गुजर रहा था, वो इसलिए गुजर रहा था क्योंकि वो हंटिंग करते हुए फंस गया था, तो उसने एक जगह पर रुकने का फैसला किया था, बस इसीलिए

वो बाहर निकला था कि थोड़ा सा मैं घूम घूम के देखूं कि मौसम कैसा है। वो जैसे ही अपने बनाए हुए उस छोटे से शेल्टर से बाहर आया इस बर्फीले तूफान में, तो उसकी नजर पड़ी क्रैश पे। और इस बंदे का नाम था ब्रूनो होंके। ब्रूनो साहब जो थे वो इस विलेज के, जहां पर जहाज गिरा था उस विलेज के लोकल थे, वहां पर रहते थे। इतना ही नहीं, इत्तफाक यहां पर खत्म नहीं होता। ब्रूनो होंके जो थे वो वर्ल्ड वॉर टू में फील्ड मेडिक थे, समझ रहे हैं आप। ये वो बंदा था जिसने बैटल फील्ड में कई सारे सोल्जर्स की मदद करी, उनको खुद लेके गया, उनकी मरहम पट्टी करी। ये वो बंदा था और सालों से सर्व किया आर्मी में। तो इनको एग्जैक्टली पता था कि अभी करना क्या है। जैसे उन्हें क्रश दिखा वो भाग के उस तरफ गए, उन्होंने एयरवे क्लियर करा, ऑक्सीजन के लिए जगह बनाई, ब्लीडिंग को कंट्रोल जितना वो कर सकते थे, हालांकि बर्फबारी ऑलरेडी हो रही थी तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो रही थी, और उन्हें जिंदा रखने की कोशिश करी जितना वो कर सकते थे जब तक हॉस्पिटल ना पहुंचा दे। जैसे मैंने कहा शुरुआत में, एक भी फैक्टर जितने मैंने आपको बताया अगर वो एक साथ नहीं होते सेम हार्मनी में, तो बचने का कोई चांस ही नहीं था वैष्णो वोलोविच का। जब उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तो वैष्णो वोलोविच 27 दिन कोमा में रही, और इस दौरान दुनिया में इस हादसे की वजह से बहुत कुछ हो रहा था। एक ग्रुप था उस्ताशे जिन पर इल्जाम लगा कि वो क्रोएशिया के दुश्मन है, उन्होंने ये किया होगा और जहाज के साथ ऐसा किया गया, पर इसका कोई एविडेंस नहीं है। बातें बहुत हैं। ये भी कहा गया कि इस जहाज पे बहुत इंपॉर्टेंट लोग चढ़ने वाले थे। जर्मन न्यूज ने छापा कि इसमें जैक वालों का, चेकोस्लाविया वालों का भी हाथ है। इस बीच दो जर्नलिस्ट भी आए, उन्होंने भी अपनी थ्योरी देना शुरू करी, और उन्होंने बोला कि लोगों को लगा चेकोस्लाविया के कि जो जहाज़ है ये दुश्मन का जहाज़ है, तो उन्होंने उसको गिरवा दिया। उन्होंने कहा कि जहाज़ जो है, उनका जो थ्योरी है, जब इन जर्नलिस्ट ने दो ने अच्छे खासे रिसर्च करी तो उन्होंने पता किया, इन्होंने कहा कि 33,000 फीट से जहाज़ में कुछ फॉल्ट हो रहा था और वो इमरजेंसी डिसेंड कर रहा था, मतलब नीचे की तरफ आ रहा था, तो 26,000 फीट पे आ गया था, जिसकी वजह से नीचे की तरफ चेकोस्लाविया के जो लोग थे जो काम करते थे, उन्होंने सेंसिटिव एयर स्पेस में इसके एंट्री को देखा और उन्हें लगा कि ये तो भाई हमारा जहाज नहीं है, कुछ दिक्कत है, और उन्होंने एक जेट भेजा जिसने इन्हें उड़ा दिया। ये इन दो जर्नलिस्ट का कहना था जो जर्मनी के थे। फिर दो प्राग के जर्नलिस्ट आए, उनकी बात तो और भी अलग थी। उन्होंने बहुत सारे लोग जो विटनेस टेस्टिमनी होती है ना, जिन्होंने आंखों देखा देखा, तो उन्होंने बातचीत करी और कई लोगों ने कहा हाँ जी हमने जहाज को बहुत नीचे उड़ते हुए देखा, किसी ने बोला हाँ जी हमने अपनी आंखों से देखा, कुछ कह रहे हैं जी हाँ जी हमने तो देखा कि जहाज कैसे। तो बहुत डिफरेंट टेस्टिमनीज और आंखों देखी बात लोगों ने बोली, पर यह भी कोई ऐसा एविडेंशियल प्रूफ नहीं है। इट्स लाइक सेइंग कि कल मैंने रात को एक यूएफओ देखा, तो ये कोई एविडेंशियल प्रूफ नहीं है, ये मैंने कह दिया और कह दिया कि मैंने देखा है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो सोवियत पार्टी और जर्मनी के जो वीवीआईपी लोग थे वो भी जहाज पर चढ़ने वाले थे। इस वजह से भी हो सकता है कि चेकोस्लाविया की जो बेस है वो हाई अलर्ट पे रहा होगा और उसने ओवर रिएक्ट कर दिया, ये भी एक थ्योरी है। अब थ्योरी कुछ भी हो है ना, ये सब बातें जर्नलिस्ट ने और बाकी सारे लोगों ने बोल दी, कुछ भी हो, लेकिन वैष्णो वोलोविच का 33,333 फीट से नीचे गिरना, इसके ऊपर भी एक थ्योरी है। लोगों ने बोला कि अगर टेक्निकली जहाज के दो टुकड़े हुए तो जहाज का जो मेन डिसेंट है, मतलब मेन जो उसका गिरना है, वो बहुत ही मॉडेस्ट 2600 फीट से शुरू हुआ होगा, ऐसे कुछ फिजिक्स वाले लोगों ने बोला। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 2500-600 फीट तो कुछ भी नहीं होता, अभी भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 2600 फीट अभी भी बहुत बहुत ज्यादा है, और बचने के लिटरली कोई चांस नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। बहरहाल 33,333 फीट से उनका गिरना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर कर लिया गया इन 1980s। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अरेंज किया मिस्टर पॉल मकार्टनी को, जो कि बीटल्स ग्रुप के मेन थे, और उनसे कहा गया कि आप पर्सनली अवार्ड और सर्टिफिकेट दें और मेडल दें, क्योंकि उन्हें पता था कि वैष्णो वोलोविच जो है वो बहुत बड़ी फैन है। और वैष्णो वोलोविच से पूछा गया इन तमाम थ्योरीज के बारे में, तो उन्होंने बोला अरे नॉनसेंस, ऐसा कुछ नहीं, हमें किसी ने शूट नहीं किया।
तो वेस्टर्न वॉलोविच की मेमोरी पर भी लोगों को भरोसा

नहीं है क्योंकि वो खुद थोड़ी सी इंजर्ड थी एंड शी कुड नॉट रिमेंबर एवरीथिंग एज इट इज, मगर जहाज तो गिरा है ये कंफर्म। अब देखिए फॉल कितनी हाइट से भी हुआ, मेरे लिए तो 33,000 है बिकॉज आई बिलीव ऐसे मतलब गिरना तो शुरू हो ही गया होगा जहाज, तो इट डजंट मैटर। पर उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मेडिकल रिकवरी जो थी हॉस्पिटल के अंदर वो बिल्कुल आसान नहीं थी वेस्ना वोलोविच के लिए। 27 दिन जब वो कोमा में रही और उसके बाद उनकी आंख खुली तो डॉक्टर सबसे पहले जब उनसे मिलने के लिए आया उन्हें बोला यू नो यू आर अवेक, उन्होंने पूछा मुझे कितने दिन हुए क्या हुआ, और डॉक्टर्स ने उन्हें न्यूज़पेपर दिखाया, जो अखबार दिखाया उसमें खबर छपी हुई थी वेस्ना वोलोविच की और अभी तक चर्चा में थी। जब वेस्ना वोलोविच ने वो अखबार अपने हाथों में लिया और अपनी ही खबर पढ़ी, शी फेंटेड, वो फौरन बेहोश हो गई और अगले 10 महीनों तक हॉस्पिटल में ही रही। फिर उन्होंने चलना सीखा वापस से बिकॉज उनका ब्रेन

और जिंदगी भर उन्हें लंगड़ा के चलना पड़ा। पर यह बहुत छोटी बात है कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो कहां से गिरी। वेस्ना वोलोविच ने हिस्ट्री क्रिएट करी। अच्छा, कहानियां खत्म नहीं होती। वेस्ना वोलोविच ने ट्राई किया कि वो वापस से JAT एयरलाइन से कांटेक्ट करें। उनका कांटेक्ट हुआ और उन्होंने अपनी नौकरी वापस मांगी। उन्होंने बोला, यू नो व्हाट, मुझे मेरी नौकरी वापस दे सकते हैं क्या आप लोग? पर JAT वालों ने मना कर दिया, रिफ्यूज। उन्हें यह भी डर था कि कहीं ना कहीं नेगेटिव पब्लिसिटी भी हो सकती है, तो उन्होंने डेस्क जॉब दे दी। उन्होंने बोला, ठीक है, हम तुम्हें जहाज में एंट्री नहीं दे सकते, मगर हम तुम्हें डेस्क जॉब दे सकते हैं कि तुम्हारा घर चलता रहे। तो उन्हें डेस्क जॉब अपनी ही जगह बेलग्रेड में उन्हें मिल चुकी थी, यूगोस्लाविया में, और वहीं पर बैठी थी। अपना डर भगाने के लिए वेस्ना वोलोविच ने कई सारी फ्लाइट्स पकड़ी बीच में, उसको नहीं बंद किया उन्होंने। पर फिर 1990 में कुछ हुआ। 1990 में वेस्ना वोलोविच को कंपनी ने फायर कर दिया। कुछ लोगों ने बोला कि ये मैडम, आपको लेके ही कंपनी में लोग जो हैं बहुत बातें कर रहे हैं, और पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, उनको बताया भी नहीं, बस बोला कि नेगेटिवली जा रहा है मामला और लोग हमारी फ्लाइट में चढ़ नहीं रहे हैं और हमें फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, तो हम आपको नहीं रख सकते। और वेस्ना वोलोविच को 1990 में कंपनी ने निकाल दिया। रिजल्ट ये हुआ कि वेस्ना वोलोविच खुद ही फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा टूट गई। इसके बाद वो एक छोटे से फ्लैट में रहती थी इन बेलग्रेड, गवर्नमेंट फंड्स पे, और जो उनकी रिटायरमेंट के जो भी उन्हें अमाउंट लास्ट में मिला था उसके भरोसे, और एक पेंशन छोटी सी उन्हें आती थी गवर्नमेंट की तरफ से, और इधर उधर की छोटी मोटी जॉब्स, किसी महीने करी किसी महीने नहीं करी, इस तरीके से शी वाज सर्वाइविंग। और वो 66 साल की उम्र में 66 ईयर्स ऑफ एज दुनिया से चल बसी। उनको एक हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, ये श्योरिटी नहीं है, रिपोर्ट्स में नहीं है कि अपने हादसे की वजह से हुई, बट हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी और दिसंबर 2016 में वो चल बसी व्हेन शी वाज 66 इयर्स ऑफ एज। पर ये कोई आसान काम तो नहीं है, मतलब ऊपर से कहां से गिरी थी वो, समझ रहे हैं आप। उसके बाद 44 साल 44 इयर्स और जीना, ये भी तो किसी मिरेकल से कम नहीं है। बीच में जो क्रिटिकल पार्ट है वेस्ना वोलोविच की लाइफ का, वो यही है कि उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया, इस फेम का। अब अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। मैं बुरी बात बता देता हूँ क्यों मुझे भी लगता है कि बुरी बात है, बिकॉज वेस्ना वोलोविच को बहुत सारे टीवी चैनल्स, बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे टीवी शोज, इन सब ने बुलाया, पर वो लगातार सबको रिजेक्ट करती रही और किसी में भी अपेयर नहीं हुई। वेस्ना वोलोविच पे एक बंदे ने गाना भी बनाया, एक ऑब्स्क्योर सर्बियन सिंगर था, इसका नाम था मिरिस्लाव एलिच, और इसने बाकायदा वेस्ना वोलोविच के लिए गाना बनाया। इसके भी अमाउंट को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, एंड डिडंट इवन चार्ज एनीथिंग। वो फेम से दूर रही, मगर फेम ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, और ये जो खींचा तानी थी उनकी और शोहरत के बीच में, कहीं ना कहीं वो बीच में इस चीज को लेकर पिस गई, और आखिरी के दिन उनके बहुत बहुत मुफलिसी में गए, जो कि बेहतर हो सकते थे, जो मुझे ऐसा लगता है जितना मैं इनको पढ़ पाया हूं। क्योंकि वेस्ना वोलोविच बहुत सिंपल थी, उन्हें सिर्फ ट्रैवल करना था, उनको जिंदगी से ज्यादा कुछ चाहिए नहीं था, जस्ट ट्रैवल करना चाहती थी, और उन्हें ये खुशी कुछ महीने के लिए ही मिली, सिर्फ कुछ महीनों के लिए। मगर हाँ, शी डेफिनेटली क्रिएटेड हिस्ट्री, और उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है, आई एम प्रिटी श्योर ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो कोई नहीं तोड़ना चाहेगा, सो श्योर अबाउट इट। तो ये थी कहानी वेस्ना वोलोविच की। आपको कैसे लगी आप बता सकते हैं 666-22-107 पे, 666-22-107 पे आपके मैसेजेस के इंतजार में मैं दोहा वाला कबीर, प्लीज बताइएगा 666-22-107। रिकॉर्ड तोड़ना है क्या?

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: भाई जी ऐसा एक बहुत ही अलग किस्म की एविएशन स्टोरी आपको सुना दी है मैंने और आई होप आपको अच्छी लगी हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि इस कहानी के लिए मेरी बात भी उस जर्नलिस्ट से जो क्या कहते हैं बेलग्रेड में रहते हैं यूगोस्लाविया में एंड ऑनलाइन ही मिले थे, बातचीत हुई उनसे एंड ही ऑल्सो डिस्कस्ड लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये कहानी बहुत मेहनत से बहुत अच्छे से तैयार करके आपके लिए लेकर आया था मैं। आई होप आपको अच्छी लगी हो। इनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो तोड़ने की कोई कोशिश ना करे और अल्लाह ना करे कोई इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े, मैं तो ये तक कह दे रहा हूँ। 666-22-107 आपके मैसेज पढ़ूंगा इस गाने के बाद, जब तक मैं थोड़ा सा मम्मम पी लूँ, पानी भी तो जरूरी है पीना भाई। 8:04 ऑन द क्लॉक। बोलो बोलो बोलो बोलो, हाँ व्हाट्सएप 666-22-107 पे बोलो बोलो बोलो। चाय पियोगे? चाय

0: है रैपर पैंथर भाई, बहुत बढ़िया रैप करता है, बहुत बढ़िया। आपको पता है टॉपिक सेट की बात बताऊं, आई कैन नॉट वेट। एक रैप तैयार किया गया आप लोगों के लिए, अगले शो के लिए प्रोमो तैयार किया है मैंने। जब वो आएगा ना मार्केट में भाई साहब, आपको मजे आ जाएंगे, मजे ही आ जाएंगे। रिटन एंड डन बाय मी, बाकी हमारे शहबाज भाई ने उसे पिक किया, आप मजा आ जाएगा आपको, देखते रहिए आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुआ वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड आज की कहानी को लेकर आपके क्या रिएक्शन से मैं इसका वेट करता हूँ बहुत बेसब्री से भाई, बहुत मेहनत लगती है इसको तैयार करने में। सो मैं जरा मैसेज पढ़ लेता हूँ क्या क्या मेरे पास आए हैं। क्या मैसेज है? अच्छा, क्रिस्टल जी ने मैसेज किया है, वाह व्हाट अ स्टोरी पे लिखा है, वो बच गई, ये उसकी किस्मत थी, लेकिन बचने के बाद भी जिंदगी भर दर्द ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, और आखिर में अकेले खामोशी से चली गई जैसे किस्मत भी साथ छोड़ गई। क्या ब्यूटीफुली रिटन आपने, क्या समझाया, वाह। आगे लिखा है, बट ऑनेस्टली यू शुड बी टफर देन यू थिंक, लक इज रियल एंड सर्वाइवल इज अबाउट व्हाट यू डू विद द डेज आफ्टर, नॉट द डे इटसेल्फ। वेरी वेल पुट, वेरी वेल पुट, सीरियसली। मैं जी दो दिलों तालियां भेजदा, ताली दा किधर गया, तालीर, वेरी वेल पुट, थैंक यू सो मच फॉर सच अ स्ट्रॉन्ग फीडबैक। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, हाउ आर यू, आई जॉइन एट द एंड ऑफ द स्टोरी। कोई गल नहीं वीर जी, मैं भेजदा कहानी, ठीक है। एक मैसेज है भाई, वेरी स्टोरिंग स्टोरिंग वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बट मैं तो डर गया सुरजीत भाई, रिकॉर्ड तोड़ना है आपने। फराज भाई कह रहे हैं, ले आज वाला भी मर गया। अरे बाप रे, फराज भाई गिनते हैं कितनी टपका इसने आज। एक मैसेज है, अब आकिब साहब का इनका कहना है कि नाइस स्टोरी, यू नो योर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट सो योर ऑडियंस कैन लिसन एंड अंडरस्टैंड, बट वी एंजॉय एंड अंडरस्टैंड योर कंटेंट, यू आर वर्किंग सो हार्ड फॉर अस, थैंक यू सो मच भाई, जजाकल्ला बहुत सारा प्यार। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
1: मैं तो रखने वाला हूँ।
0: क्या रखने वाला
1: वो है? जो रख के गया था।
0: क्या रख के गया था भाई? अच्छा वो रखा, अच्छा ओके ओके ओके ओके, मिस्टीरियस मैन।
1: हाँ मैं तो रखने वाला हूँ, वो तो तुम हो तो ऊपर से नीचे गिरोगे।
0: ठीक है, अब ये जिम्मे मेरे, लेकिन मैं चाह रहा था कि अगर आप मेरे साथ में रिकॉर्ड तोड़ते तो अच्छा रहता ना, कि दो भाइयों ने मिलके बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड।
1: नहीं भाई निकलो यार, अजी की तरी का भाई।
0: ये बताओ, ये हमारे देसी लोग क्या बोलेंगे, मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में वैष्णव वोलोविच से भी ज्यादा ऊंचाई से गिरा हूँ। ये लाइन दे दी मैंने,
1: फिर तो बंदा बोलेगा ना, इतना गिरा हुआ इंसान है, दूर हो जाओ।
0: इतनी तला भाई, इतनी बढ़िया लाइन दी है मैंने, सोचो आप।
1: खाई की बढ़िया बात भाई, एक बात बताओ तुम मुझे, मैं भी खुश हो रहा था, मैंने चल यार से मेन करेक्टर बचा के रखा भाई।
0: हाँ
1: लेकिन भाई तू नहीं छूट रहा यार,
0: उमर हो गई थी ना,
1: आखिर बिचारी को मारी
0: भाई, उमर हो गई थी मेरी, क्या गलती है,
1: उसकी स्ट्रगल पे करके, उसकी स्ट्रगल वाल बता के हमें छोड़ देते।
0: अच्छा, हम
1: इसमें रहते चल गए, ये तो सरवाइव कर रहे, जी गई बंदी, जिंदगी जी गई।
0: अच्छा ऐसे बता
1: रहे, सिमरन थी।
0: अगली बार मैं ध्यान रखूंगा कि अगर कोई
1: हटका दिए
0: करेक्ट
1: है।

0: फीट थोड़ा और
1: आग में उतरूंगा, मैं उतरूंगा। और वो जहाज कहाँ गिरा था? वो चेकोस्लोवाकिया में गिरा था। कहाँ गिरा था?
0: चेकोस्लोवाकिया
1: भाई, वही वही यार, मैं हरियाणा में गिरवाऊंगा।
0: हरियाणा
1: मैं हरियाणा में गिरवाऊंगा।
0: एक छोरा, एक छोरा भाई मन्ने मेरा वो खेतों में गिरा भाई, वहां पे प्रधान जी ने पकड़ा।
1: तब मिला ओंदा
0: ओंदा ओंदा कितने टाइम बाद सुना है मैंने, कमाल है यार। ठीक है चला भाई, मैं समझ गया। वैसे सुबह से कहाँ से आप? अभी मैसेज किया आपने, कॉल करी इससे पहले कहाँ थे?
1: यार फैसल में बॉस हो गया हूँ यार, अब मैं लेट आता हूँ फिर।
0: अच्छा उस सॉरी आई एम सॉरी बॉस
1: बेबी।
0: Yeah, I'm really sorry. पेट्रोल तो मैं 500 का पड़वाता हूँ, मेरी गाड़ी में बिल की 100 का डलता है, फिर भी मैं कहता हूँ 500 का डालो।
1: 500 का डालो
0: वो कह रहा है सर फुल हो गई है गाड़ी आपकी। नहीं मुझे 500 का ही पेट्रोल चाहिए।
1: अपना डब्बा खाली कर, मेरा छोड़ दे, कितना भरी।
0: ठीक है तला भाई, तो बड़े आदमी आप, बस याद कर लिया करें सुबह सुबह। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन जा रहे हैं, मैं गरीबों से तास्ता उससे छोड़ने वाला हूँ,
0: तब तक
1: ब्लॉक होने वाला।
0: तब तक तो कुछ हम भी प्लॉट व्लॉट खरीद लेंगे तो देते।
1: अरे तुम आएगा ब्लॉक, एक फुट की जमीन लोगे तुम, कहोगे
0: दो बालिश। ठीक है तला,
1: सीधे जाएंगे हम लेटेंगे नहीं, हम सीधे खड़े होकर मरेंगे।
0: अरे तला भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत मोहब्बत मेरी।
1: चलो भाई चलो,
0: ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कुछ मैसेज है मेरे पास। वसीम भाई मैसेज किया, द वे यू सेट द स्टोरी आई कुड फील ईच एंड एवरी फीलिंग ऑफ दैट सर्वाइवर। क्या इंटेंस मूड पे बताया भाई, यू सो डैम ब्रिलियंट ब्रो, एब्सोल्युटली नेल्ड इट। I usually like these aviation stories. Next time, Argentina football crash most likely refers to the 1972. Edna's flight disaster na. भाई वो बहुत वसीम भाई आपको बहुत सारी मोहब्बत, लेकिन ये वाली जो कहानी बता रहे हैं बहुत डेडली है भाई, डर लगता है सुनाते वो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो हेलो कमाल भाई, आपकी आवाज हाँ आ रही है, आ रही है, बताइए भाई। हेलो कमाल भाई, हेलो क्या कोई है? कमाल भाई जब तक कॉल पे हैं मैं ज़रा ट्राई कर लेता हूँ। क्या है, आज ही नहीं सुनी, बहुत गलत बात है, आज ही नहीं सुनी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? मैं बढ़िया। वसीम भाई सबसे पहले तो इतने प्यारे प्यारे जो आपने मेरे लिए ये वर्ड्स यूज़ किए उसके लिए बहुत बहुत प्यार। मैं 4-5 दिल और भेज रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा, थैंक यू सो मच भाई। तला भाई के लिए मैसेज, तला भाई बी लाइक दिल गार्डन गार्डन हो रिया है। अब कॉल वापस आ रही है कमाल भाई की। अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो
0: हाँ भाई, आ रही आवाज़ आवाज कट क्यों रही है आपकी? बहुत ज्यादा कट रही है कमाल भाई, अभी आ रही है बस। हेलो हेलो कमाल भाई, अब तक आप लाइन पर हैं, तक मैसेज पढ़ दूं मैं। प्रिंस भाई कह रहे हैं, भाई आई डोंट नो व्हाई, मेरी सोच थोड़ी सी अलग है इस केस में। मे बी दिस प्लेन इज अटैक्ड बाय एलियंस और द कंट्री डू सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, अनफॉर्चुनेटली द प्लेन कम्स इन बिटवीन। तो भी बहुत सारी थ्योरीज चल रही है माइंड में, बहुत सारी थ्योरीज है भी प्रिंस भाई इसको लेके। लेट्स हैव ब्रेकफास्ट ब्रो, यू आर इनवाइटेड। भाई बहुत तगड़ा ब्रेकफास्ट हो रहा है प्रिंस भाई, भूख लगवा दी यार आपने। एक मैसेज आया है फैसल भाई का, कह रहे हैं भाई एक दफ़ा आम के पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ने गया था, मेरा पैर स्लिप हो गया, 8 फीट की ऊंचाई थी। पता है जब मैं नीचे गिरा तो मेरे माइंड में चल रहा था अभी तक नीचे क्यों नहीं पहुंचा हूं। भाई कह रहे हैं 8 फीट की ऊंचाई से गिरा मैं आम तोड़ते हुए, और मैं नीचे गिरा तो ये सोच रहा था मैं अभी तक नीचे क्यों नहीं गिरा। इतना आगे लिख रहे हैं, फिर जो अम्मी ने गुस्से में सुनाया उसके बाद कभी पेड़ पे नहीं चढ़ा। बहुत बढ़िया फैसला किया आपने ये तो। पर ये अच्छा बोला, वेरी नाइस। इनके बाद में से अस्सलाम वालेकुम, आई एम अब्दुल जवाद फ्रॉम तेलंगाना, नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच भाई। नसीम साहब ने लिखा है एयर 243 की कहानी सर्च करो, वेरी नाइस। 243 की मैंने कहानी सुनाई है, आई थिंक 2-3 साल पहले ही सुनाई है मैंने। एक मैसेज है भाई, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैं तो डर गया हूँ। एक मैसेज है, एक बात तो बता दो ये, अच्छा अभी बताता हूँ अलग से जो आपने पूछा है। एक बार गुड स्टोरी, थैंक यू सो मच। ये अब्दुल साद भाई ने फिर तब उस मैंने मैसेज किया है, ये कह रही हैं यकीन नहीं आ रहा ऐसा भी होता है, बताइए मिरेकल, नाइस स्टोरी जी बहन, ऐसा भी होता है। एक मैसेज आरिफ भाई का कह रहे हैं, भाई भाई स्टोरी बहुत बढ़िया थी, लॉट्स ऑफ लव फॉर योर हार्ड वर्क, थैंक यू। एक भाई कह रहे हैं वैष्णव वॉलोविच लकी लड़की थी जिसे اللہ رکھے اسے کون چکی جی بالکل سی بات ہے السلام بھٹ صاحب بہت بہت شکریہ امن بھائی نے بھی میسج کیا آئی لائک ڈٹ تھینک یو سو مچ رمیش یادو بھائی لکھتے ہیں بھائی جان اسٹوری تو اچھی ہے لیکن رونگٹے کھڑے ہو گئے بھائی اس لیے تو اسی بات کے تو پیسے ہیں میرا بھائی ایک میسج ہے کبیر بھائی آج اور کل کی

0: मुंह से कहूं, यही वाले मुंह से बोल दूं क्या, आई एम रियली सॉरी, मैं क्या करूं? पर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. प्लीज लव स्टोरीज मत बुलवाओ. अगर मुझे कोई बढ़िया मिल गई ना जिसमें कोई टपक रहा हो तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा. एक कॉल लास्ट. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम कबीर भाई.
0: जी भाई नदीम भाई, मेरे भाई कैसे?
1: अल्हम्दुलिल्लाह. रोज आप लोगों को मरवा देते हो, आज आपने 33 फीट के गिरा के बचा लिया.
0: बचा लिया, यही तो ट्विस्ट
1: लेकिन
0: था.
1: बाकी तो चले गए ना.
0: बाकियों के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा, पड़ी नहीं है इनको. बाकी गए तो गए. बाकी कोई बात नहीं कर रहा. देख रहे हैं आप इंसानियत कहाँ पहुंच गई है. बाकी 27 का कोई हिसाब किताब नहीं है, इसके पीछे पड़े हैं लोग. इसको क्यों मारा आखिर में?
1: वही है ना, वो बोलते हैं ना कि कुदरत का करिश्मा, तो लोग फिर उस पे बात करने लग जाते हैं कि भाई ये तो करिश्मा हो गया.
0: हाँ इसीलिए पर देखिए लोगों को लव स्टोरी सुननी है. नदीम भाई क्या करें इस चीज का, ये बताएं क्या होगा?
1: भाई मत करो यार, ये लोग
0: मत करो यार.
1: हमारे 5-6 साल की बात है, फिर बाद में 20-25 साल बाद भूल जाओगे सारी चीजें.
0: तो प्लीज नदीम भाई भी कह रहे मत करो भाई, प्लीज यार लव स्टोरी मत मांगो. मैं भी इसी
1: लव स्टोरी करनी है तो जाओ यार बॉलीवुड की मूवीज देख लो, सब वही रहता.
0: हाँ वही थोड़ी रहता है. हम तो देखो लव स्टोरी जो सुनाएंगे उसमें एक आध कुछ टपकना पड़ेगा नदीम भाई.
1: वो तो विलन तो मरता ही है ना, अपने आप ही मरता है.
0: हाँ वो तो है. तो कुछ ना कुछ उसमें ट्विस्ट वाली अगर मिलेगी तो जरूर सुनाएंगे. बाकी नदीम भाई आज क्या सोते रहे, नींद खींची आज सुबह सुबह?
1: यार आज वाइफ ने बेटे को स्कूल नहीं भेजी तो मैं 7 बजे उठाऊ.
0: अरे
1: फिर मैं उठा तो मैंने आपको मैसेज किया, फिर आपकी स्टोरी सुनी. अभी मैं नाश्ता करने निकला,
0: अच्छा
1: बेटे को लेके. बेटा भी उठ गया था, वो तो जल्दी सो जाता है स्कूल के लिए, तो वो जल्दी उठ गया.
0: अच्छा तो नाश्ते वाश्ते का इंतजाम है, ठीक है, बहुत बढ़िया है. नदीम भाई आज आप चिल मोड में.
1: यहाँ बाजू में ही मस्त मार्केट है फुरजान का, इधर आ जाते सुबह में नाश्ता.
0: अरे बहुत बढ़िया आदमी एकदम.
1: घर पे जब उठ गए सब तो घर पे नाश्ता मिलता है, नहीं उठे तो भाई देखो यही होती है लव स्टोरी फिर बाद में.
0: चलो नदीम भाई ने लव स्टोरी सुना दी आपको, अब नहीं कहना कि लव स्टोरी नहीं सुनाई है, ये लव स्टोरी ही थी.
1: ओके कबीर भाई आपका भी टाइम कम है.
0: नहीं नहीं
1: कोई दिक्कत नहीं, कर लूं कॉल आज बाहर निकला तो.
0: सही है भाई, बहुत सारा प्यार भाई को. थैंक यू सो मच मेरे भाई कॉल करने के लिए, याद करने के लिए. ओके भाई अल्लाह हाफिज. देखो भाई ने लव स्टोरी सुना दी आपको, समझ में आ गया होगा सब कुछ अभी तक तो. 666-22-107 नंबर है. एंड एक भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे नहीं सुननी लव स्टोरी, जो ये कह रहा है सुननी है उसको मेरे पास भेज दो. ये क्या बात है, मेरे पास भेज दो. ओके तो ठीक है, 666-22-107 पर अभी भी मैसेज कर सकते हैं, डू लेट मी नो. एंड अभी कुछ देर में कतर से जुड़ी बहुत सारी बातें जो मैं शेयर करने वाला हूँ, सो आ जाइएगा. बाकी ता मैं ऐप प्ले करना सी, एक सेकंड रुको. दो गाने हैं जो मैं चलाने वाला हूँ. सबसे पहली
2: हो गया फिर, खेल हो गया शुरू.
0: हाँ जी आठ बज के 28 मिनट हो रहे हैं, दल जीत और नूरा सिस्टर साथ में.

0: सुन रहे हैं वेक अप विद दोहा वाला कबीर सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: गाने को इस बार मिलते हैं। ट्रैफिक की अपडेट प्लीज चाहिए मुझे, बता दीजिएगा कहीं पे ट्रैफिक है मैं बताऊंगा। एक मेरे पास मैसेज आया है, भाई कह रहे हैं ऐसी लव स्टोरी सुननी है मुझे इसमें धोखा मिले। कमाल की डिमांड है भाई, कमाल की डिमांड है। मिलते हैं इस गाने के बाद। डांडा भाई आ रहे हैं।

0: गुड मॉर्निंग भाई साहब, डांडा न्यूली वाला फॉरएवर सॉन्ग है भाई का, तमने तो बेरा है, जो तो चल लेगा भाई दिन में एक बारी। 8:35 हो रहे हैं, एक कॉल आ रही है, जरा उठा ही लेते हैं आते के साथ ही। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: हाँ भाई पार्टी, क्या हाल है?
1: बढ़िया बढ़िया भाई।
0: क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हाल चाल?
1: ट्रैफिक जानना चाहते हो?
0: हाँ जी प्लीज बताइए, कहाँ है, कहाँ माहौल है? ये
1: रोड के ऊपर ट्रैफिक है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा। आज किस तरफ करवट लेके गिरे थे ये बताओ मुझे।
1: नहीं मैं तो सीधी तरफ ही करवट लेके गिरा था, बाकी तुमने मेरे को कल फसवा ही दिया था भाई, आधा से आधा तो फंस गया था। ये बोला आज आसिफ तू गया बनता है आज सीधी से। मैं बोला कर, बोला बवाल तो करवा दिया भाई ने, बाकी क्या सीन है वो आगे भाई। ये सीन ना मेरे को मुझे नाजे बन गया। नहीं ये क्या था, मैं वहां अटक गया भाई।
0: कल सरोवर भाई ने बताया कि उनको सारी जनता ने एंथनी बोला है, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात को जान के।
1: मैं बोला भाई ये कबीर भाई का बहुत दिल्ला सीन है। कबीर भाई
0: हाँ भाई
1: मत क्या करो भाई सर।
0: आज मेरे पास, मैं सोच रहा था कि आज सरोवर भाई को कैसे छेड़ा जाए, अभी आइडिया आया नहीं।
1: मैं जानता ही नहीं कबीर भाई कौन है, मैं बोल रहा हूँ कबीर भाई कौन जानता ही नहीं।
0: और मेरे भाई नहीं पर कल
1: सच बोला पब्लिक इधर छोटी छोटी जगह पे ना भाई बहुत ट्रैफिक है, उसका रीजन मैं तुमको बता रहा हूँ भाई क्यों।
0: क्या रीजन?
1: जैसा गुआमपुर में ट्रैफिक है सिग्नल की वजह से, सिग्नल सगीरा सयारा कबीरा। और हमारे जो ड्राइवर भाई लोग, हम जैसा इंक्लूड ऑल्सो मी ड्राइवर खतीरा।
0: ये राइमिंग है, अरबी में रैप करने लगे यार आप तो, कमाल है भाई।
1: अरे भाई तुम्हारे साथ में रहने के संगत का असर हो गया भाई।
0: अरे भाई बहुत डेंजर भाई, क्या राइमिंग बिठाई है, मजा ही आ गया। ट्रैफिक का ट्रैफिक भी हो गया, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने इसी नेट की सोची। हाँ
1: जी जी, वो एक और चीज
0: बता,
1: आपकी जो स्टोरी आज मैं सुना ना भाई,
0: हाँ भाई
1: मतलब मैं वहां तक सुना जहां तक का मेरे को मतलब लगा कि मैं सुन सकता हूँ, उसके आगे फिर मैं चल दिया।
0: क्यों भाई?
1: मतलब काम पे चल गया भाई, मैडम काम पे चल
0: तो भाई
1: वहां तक सुना था, वो बर्फ के ऊपर गिरती ना वो, हाँ। वो बर्फ के ऊपर गिरती फिर बच जाती है
0: भाई 33,000 फीट से।
1: बताओ भाई प्लेन टूट जाता फिर बच जाती है, मतलब हाँ। क्या सीन क्या उसका भाई?
0: भाई वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी भाई वो। तो मैं वही कह रहा था आखिर, मैंने बोला, मैंने कहा ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कोई नहीं तोड़ना चाहता।
1: तो मतलब आखिर में बची है चल दी
0: भाई, वो बच गई थी और फिर वो हॉस्पिटल में रिकवर होने में 10 महीने भी लगे उसको, फिर बाद में वो बेचारी 66 साल की उम्र में फिर वो प्यारी हो गई।
1: मेरे को भाई स्टोरी सेंड करना, एक चीज तो मेरे को थोड़ा दुख हुआ था भाई,
0: भाई?
1: मालूम क्यों?
0: कौन सी?
1: सब लोग चल दिए थे, मतलब सब ऊपर ही ऊपर से ऊपर चल दिए सब
0: भाई, किसी सुनने वाले ने जिक्र ही नहीं किया, बाकी बोले बाकी गए तो गए। इसका क्या हुआ?
1: मैं बोला भाई पब्लिक चल दी सब ऊपर से ऊपर चल दी, ये बच गई अकेली जिंदा। थोड़ी बहुत मैं बोला चल अच्छा है ठीक है, थोड़ा दिल को फरहान मतलब दिल को थोड़ा खुशी हुई कि ये बच गई, बचते ही जा रही है। क्या चीज
0: था? अरे भाई ये इसको एंटी हीरो बना दिया भाई तुमने।
1: नहीं भाई वो हीरोइन है, इसको सल्यूट है भाई, मतलब पब्लिक बच जा रही है बार बार, हम तो यहाँ पर एक छोटे से खड्डे में गिरे तो चल दे रहे।
0: देखो ये हमारी तरफ तो खड्डे काफी है, 33,000 फीट तो कुछ नहीं है उन खड्डों के आगे।
1: कुछ नहीं है भाई।
0: ठीक है मेरे भाई, आज हाँ बोलो ना।
1: आज क्या सुबह सुबह सीन था, पब्लिक बोल रही थी मतलब।
0: क्या सीन भाई? कौन सा सीन भाई?
1: और सुबह आज सुबह सुबह क्या हो गया
0: भाई? मैं ये पूछ रहा था कि पढ़ाई वाली जो स्किल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है मार्केट में, या फिर बोलने वाली, कौन सी स्किल किस ज्यादा भारी है?
1: ओ पढ़ाई वाली भाई,
0: पढ़ाई वाली तो एक दो भाई मुंबई क्या है बोले भाई, बोलने वाली स्किल ज्यादा है, बोलने वाले चला रहे हैं दुनिया को। ये भी
1: नहीं भाई, वो बोलने वाली पब्लिक बहुत दिल्ली पब्लिक है, बोल के मतलब नहीं है।
0: अच्छा ठीक है भाई,
1: पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई करके बोलो वो अच्छा लगता भाई।
0: क्या पढ़ाई करो भाई, सारे पढ़ाई भी लगाता हूँ, पढ़ नहीं रही है, पढ़ाई हो नहीं रही है। ठीक है
1: भाई, क्या कभी भाई चाय पिए क्या? मताम अलजरका में, अलजरका में
0: क्या क्या क्या क्या क्या
1: मताम अलजरका चाय पिएंगे क्या?
0: ये क्या है?
1: ये रेस्टोरेंट है भाई, मताम मताम।
0: अच्छा अच्छा, मैं कहूँ पता नहीं भाई कौन। खून जला रहा है मेरा, यहाँ पे लाल थर्मस चल रहा है मेरा भाई, एकदम चौकस।
1: मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगा भाई, तुम मेरे को बस बोलो
0: आज। अरे नहीं नहीं भाई, बिस्मिल्लाह करो, आराम से नाश्ता वास्ता करो, फिर कभी इंशाल्लाह। पर बहुत मोहब्बत
1: भाई, माशाल्लाह भाई, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा भाई कबीर भाई,
0: बहुत प्यार भाई, बहुत सारे
1: प्यार। काम मत करवाए।

0: उल्टे सीधे मिलते
1: कौन से आज कुछ प्लान करते हैं, लेट मी थिंक कुछ करेंगे बड़ा।
0: मैं आज ना सच्ची में भाई, मैं आज सच्ची में एफएम ही ऑन नहीं करूंगा तुम्हारा कुछ प्लान करने मालूम पड़ा भाई वो कल वाला सीन हो का भाई सरवर भाई वहां से उठ के आगे बोले क्या रे भाई बहुत ज्यादा पीरी हो गया।
1: अरे वो बाहर भागते हुए मुझसे बोले इधर बताइए एंथनी कौन है बे। पूरा बताया मैंने कि एंथनी कौन है। मजा आया।
0: ओके भाई
1: ठीक है भाई, ख्याल रखो भाई,
0: लाफिस।
1: ओके भाई लाफिस लाफिस। तो ये जो है भाई ने कल एंथनी बोला जब उनको, तो बेचारे अचंभित हो गए, अचंभित। कल बहुत टेंशन में रहे हो। बहरहाल मैं जरा खबरों की तरफ बढ़ता हूँ क्योंकि ये भी तो बताना बहुत जरूरी है, तो जरा शुरू करते हैं। ओके तो सबसे पहले विल कोनिल मेडिसिन कतर यानी WCMQ उन्होंने लॉन्च किया एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ पायनियरिंग लाइफ हब प्रोजेक्ट और ये नई लोकेशन भी शुरू किया है जिस टाइम इन मुशरफ डाउनटाउन। इसमें बहुत ही अलग किस्म के एजुकेशनल एक्सपीरियंस को तैयार किया गया जो थोड़ा ज़्यादा इमर्सिव हो ताकि वो कतर का जो विजन है जो कहता है कि हेल्थियर एंड मोस्ट सस्टेनेबल फ्यूचर बिल्ड किया जाए और साथ में इनोवेशन भी हो और इन सब के बीच में ह्यूमन प्रोग्रेस भी हो सके, इसीलिए ये शुरुआत की गई है। और ये शुरुआत की गई है मुशरफ में, जैसे मैंने बताया इट इज़ लोकेटेड इन Z07 बिल्डिंग मुशरफ डाउनटाउन, मुशरफ मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में। नाम है लाइफ हब, बोल्ड पॉजिटिव वर्जन विजन ऑफ फ्यूचर, अंग्रेजी में बताता हूँ, विच इज अ डायनेमिक फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन AI एंड न्यू डेवलपमेंट्स इन मेडिकल साइंस। ये है, बहुत आगे जा रही है दुनिया। इसके बाद अगला जो है ये बहुत ज़रूरी खबर है क्योंकि हर हाइनेस शेखा मोजा बिन नासिर द चेयरपर्सन ऑफ कतर फाउंडेशन और वो पहुँची कतर फाउंडेशन स्कूल्स के कई जगहों पे, एंड इनफैक्ट कतर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क जहाँ पे स्टूडेंट्स को इनोवेट किया गया, उनको मोटिवेट किया गया और उनको इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार किया गया। साथ ही साथ इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड किया गया जिसमें सस्टेनेबिलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पे भी बात की गई। तो बहुत ही फ्रूटफुल रही ये मीटिंग बच्चों के साथ। एंड इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एंडाउमेंट्स एंड इस्लामिक अफेयर्स औकाफ उन्होंने लॉन्च किया है हज 1447 AH गाइड। और ये नुसुक जो प्लेटफॉर्म है, जिन्हें पता है जो लोग इससे पहले भी गए हैं उन्हें पता होगा, ये जो ऐप है इस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया है वाया इस्लाम वेब और एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल रेफरेंसेस तैयार किए गए हैं जिसके ज़रिए आप जब बुकिंग कर रहे हैं आप देख रहे हैं। इसमें की फीचर्स बताता हूँ, हर दिन का जो ब्रेकडाउन है, जो तीन टाइप्स ऑफ हज हैं उनको लेके भी बातचीत की गई है और काफ़ी ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। डिजिटल बुकलेट भी है इसके अंदर, मैप भी है और जो वीडियो ज़रूरी हैं अगर जो लोग हज पे जा रहे हैं वो भी इसमें इम्पोर्टेंट हैं, अगर कोई सुनने में परेशानी होती है कुछ भी है तो इस ऐप में सारी इन्फॉर्मेशन है हज से जुड़ी हुई। सो इन केस यू हैवंट डाउनलोडेड, कभी देखी नहीं है ऐप, ज़रूर देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐप्स में से एक है। इसके अलावा कतर मीडिया कॉरपोरेशन यानी कि हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, कतर मीडिया कॉरपोरेशन और मीडिया सिटी कतर दोनों ने मिलकर साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसका मकसद है कि कॉन्टेंट जो क्रिएशन हो रहा है उसमें कॉपरेशन आए, डिजिटल इनोवेशन हो सके और जो टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कई सालों से चल रहा है उसको भी और बढ़ावा दिया जाए ताकि इस सेक्टर में स्पेशली मीडिया वाले सेक्टर में और भी लोग आ सकें अपने इनोवेशन नए आइडियाज़ को लेकर और थोड़ा बहुत ही सही पर ट्वीक कर सकें जो ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं। एंड ये MOI वाज साइन बाय द डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड अग्रीमेंट्स ऑफिस एट कतर मीडिया कॉरपोरेशन। सो यस बाय द वे एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसका है, इस अग्रीमेंट के अंडर दो इंस्टीट्यूशन दोनों मतलब कतर मीडिया कॉरपोरेशन और मीडिया सिटी सेंटर काम करेंगे, को प्रोडक्शन होगा कई सारे टीवी प्रोग्राम्स, इस बीच फीचर फिल्म्स आएंगी, डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी, सिनेमा में कंट्रीब्यूशन होगा एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी कंपनीज का इससे फायदा होने वाला है। सो दैट इज देयर, वेरी गुड न्यूज, वेरी एक्साइटिंग। मैसेज है ईद के बारे में, बताओ सर ईद में, ईद कब है कतर में, कैसे होती है, कैसे होती है मतलब। एक मैसेज है भाई, जो लोग बोल रहे हैं लव स्टोरी के लिए उन लोगों को बोलो करके देखो अपनी कहानी खुद सुनाओ, कह रहे जिन्हें लव स्टोरी सुननी है पहले लव करके देखो फिर मेरे पास आना। और भाई ने क्या कहा, अस्सलाम वालेकुम भाई, आज मेरी गाड़ी गलत जगह पार्किंग हुई थी, जब वापस आया तो पुलिस सामने थी, घुमा रही थी, पिक्चर नहीं ली मौके पर, मैं आ गया, बच गया। आगे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, शाम को आएंगे तो लव स्टोरी आपने सुनाना नहीं है, लेकिन वो लव स्टोरी सुनानी है जिसमें धोखा मिले। और सर मैं भी उठा हूँ, स्टोरी मुझे भेज दीजिएगा, ज़रूर भेजूँगा भाई।
2: नॉट ए प्रॉब्लम. एक मैसेज है बाय द वे, कंग्रेचुलेशंस किसको, टू ऑल द आर्सेनल फैंस. ओहो प्रीमियर लीग की बात ही हो रही है यहाँ पे, महंगी महंगी गल्ला. वैसे भाई आपसे ही इंस्पायर हो रहा हूँ. भाई थैंक यू सो मच, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू. एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई मेरा क्वेश्चन इतना है कि ये जो स्टोरी आप सुनाते हैं वो दूसरी बार रिपीट होती है नहीं, बिकॉज सम रीजन आई कांट हियर इट. डोंट वरी मैं आपको भेज दूंगा, रिपीट होती है वैसे तो. आई गेस इट इज रिपीटेड ऑन अ फ्राइडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिपीट होती है फ्राइडे को. पर वो सिलेक्टेड होती है, मतलब हर रोज की स्टोरी नहीं होती, वो कुछ कुछ बढ़ती है. मैसेज है भाई ये मेरा फेवरेट बंदा है वंटा एडिट. आरिफ भाई ना बिल्कुल मुंबई वाले फील आए. अब जरा एक गाना उसके बाद मिलते हैं, जाना आपने है नहीं. एंड ट्रैफिक की अपडेट दीजिएगा कहीं पे भी ट्रैफिक अगर आपको मिल रहा हो. और 8:45 हो रहे हैं, रेगा जी से कहिएगा हम उन्हें याद कर रहे हैं. गाने का नाम है री री.

मैं क्या जी गाने का नाम है रा रा री री रा रा रू रू रू रू तू रू रू अस्सलाम वालेकुम। मैं दुआ वाला कबीर एफएम 107 पे जाने से पहले दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी पकती रहती है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। कमाल की बात हुई है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये जो आप सुबह सुबह जो माहौल बना देते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ ये वो वाला माहौल है जब एक टाइम पे हुआ करता था ना, बत्ती चली जाती थी, सारे के सारे गली वाले बाहर आ जाते थे और बैठ के बातें कर रहे होते थे, लोहा लकड़ी खेल रहे होते थे। लोहा लकड़ा मत पूछना क्या होता है, कभी और बताऊंगा जिन्हें नहीं पता। एनीवे, थैंक यू सो मच मॉल बनाने के लिए। कब टाइम निकल गया पता नहीं लगा, 9 बजने ही वाले हैं, 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन भी, बट बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, कहानी आप तक जरूर पहुंच जाएगी। देखो मैं ये उल्टा हो रहा है हमारे साथ ही साहब, मैं नहीं कह रहा आपको कैसा लगा, मैं बता रहा हूँ मुझे कैसा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया भाई, उम्मीद है आपको भी आया होगा। मिलते कल सवेरे 6 बजे वापस, फवेरे एक नए किस्से के साथ। एक से नाच के देने वेंसडे आज, अरे बाप रे भाई, कल तो कुछ तगड़ा ही लाना पड़ेगा है ना, तो कल कुछ बढ़िया सी कहानी लेके आते हैं और सरवर भाई को कल छेड़ेंगे, आज जाने देते हैं। एंथनी जरूर बोलना उन्हें आज भी, लेकिन इंशाल्लाह कल आप सुना करते होगी। सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar एंड मुझे भी आप वहां पे ढूंढ सकते हैं, हालांकि एक्टिव नहीं हूं पर हो जाऊंगा भाई, ताने मत दो, हो ही जाऊंगा। दिस इज दुआ वाला कबीर साइनिंग ऑफ, और अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मा सलामा।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर. दिल से देसी
1: FM 107 प्रेजेंट योर हेल्थ मैटर विद RJ श्रुति.
2: कभी ऐसा हुआ है कि बॉडी कुछ कहना चाहती हो और हम तुरंत रिप्लाई कर देते हैं नॉट नाउ. नेक थोड़ी सी ना स्टिप हो रही है पर हम बोल देंगे लैपटॉप का काम है. हेड हैवी लग रहा है पर हम कह देंगे बस थोड़ा सा स्ट्रेस है. नींद डिस्टर्ब है पर हम कहते हैं कि अच्छा कोई गोली ले लेते हैं ना, इससे काम चल जाएगा, दिन नॉर्मली निकल जाएगा. वेल, आज हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग बॉडी सिग्नल्स के बारे में. सच ये है कि बॉडी हमेशा हमसे बात करती रहती है, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और हम उस सॉफ्ट आवाज को अक्सर इग्नोर कर देते हैं. बॉडी का तरीका ड्रामेटिक नहीं होता, वो पहले विस्पर करती है हल्की थकान के थ्रू, मूड ऑफ होने के थ्रू, फोकस कम होने के थ्रू, और अगर हम तब भी नहीं सुनते तो वो आवाज धीरे धीरे लाउड हो जाती है. अक्सर हम सिम्टम्स को एनिमी समझ लेते हैं पर सच ये है कि सिम्टम्स प्रॉब्लम नहीं मैसेजेस होते हैं. हेडेक का मतलब सिर्फ पेन किलर नहीं बल्कि डिहाइड्रेशन का सिग्नल हो सकता है, कभी पुअर स्लीप का, कभी काम के ओवरलोड का. एंड बॉडी सिग्नल्स का मतलब वीकनेस नहीं होता भाई, वो प्रोटेक्शन होता है. यू आर लकी कि आपकी बॉडी आपको अभी भी सिग्नल्स देती है. जैसे जब मोबाइल हीट हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है. फोन खुद को बचाने के लिए स्लो होता है, ना कि इरिटेट करने के लिए. बल्कि जब बॉडी स्लो होती है वो आपको प्रस्टेट नहीं कर रही होती है, वो आपको सेफ रख रही होती है. और एक बात जो हम भूल जाते हैं, बॉडी और माइंड अलग अलग नहीं होते. जो आप फील कर रहे होते हो वो बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है. लंबा स्ट्रेस डाइजेशन को अफेक्ट करता है, अनप्रोसेस्ड इमोशंस मसल में टाइटनेस बन जाते हैं, एंजाइटी सांस को शैलो कर देती है. बॉडी एक डायरी जैसी होती है, उसमें वो सब लिखा होता है और दूसरों को दिख रहा होता है जो हम कभी बोल नहीं पाते. वेल, अंडरस्टैंडिंग बॉडी सिग्नल्स का मतलब पैनिक करना नहीं होता, इसका मतलब होता है क्यूरियोसिटी, खुद से आज जरूर पूछना मेरा बदन मुझसे क्या बात करना चाहता है. और जवाब अक्सर सिंपल होगा, एंड दैट इज रेस्ट, हाइड्रेशन, मूवमेंट और बस थोड़ा इमोशनल रिलीज. जब हम बॉडी के सिग्नल्स को समझना शुरू कर देते हैं ना तो हीलिंग सिर्फ मेडिसिन से नहीं अवेयरनेस से भी शुरू हो जाती है. और सबसे प्यारी बात, जब आप अपनी बॉडी को सुनते हो वो भी आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर देती है. एनर्जी बेटर होती है और स्लीप इम्प्रूव होती है और एक शांत सा इत्मीनान साथ आता है. तो आज एक जेंटल रिमाइंडर, अपनी बॉडी को एनिमी मत बनाइए, उसे पार्टनर बनाइए. क्योंकि जो बॉडी आपके हर सपने को कैरी करती है वो सिर्फ इतना चाहती है कि आप उसकी एक बात सुन लो, थोड़ा सा उसे भी आराम दे दो. और जब आप उसकी सुनते हो तो आपका हेल्थ सिर्फ गोल नहीं रहती, वो एक रिलेशनशिप बन जाती है. सो याद रखिए, योर हेल्थ मैटर.
1: FM 107 प्रेजेंट्स योर हेल्थ मैटर विद RJ श्रुति.
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
2: फ्रॉड अवेयरनेस। कई जगहों पे फ्री वाईफाई अवेलेबल होता है, स्पेशली जब आप अपने घर से बाहर होते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, और कई दफा फ्री वाईफाई से कनेक्ट होते ही आपको थोड़ी देर बाद एक मैसेज आता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वेद और आप सुन रहे हैं फ्रॉड अवेयरनेस। पब्लिक वाईफाई या फेक हॉटस्पॉट्स आपका डेटा, पासवर्ड्स, बैंकिंग इन्फो चुरा सकते हैं। स्पेशली कैफे, एयरपोर्ट, मॉल, हर जगह इस किस्म का ट्रैप हो सकता है। तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? पब्लिक वाईफाई पे किसी भी तरह की बैंकिंग एक्टिविटी ना करें। अननोन नेटवर्क से डू नॉट कनेक्ट, क्योंकि कभी कभी ये फ्री वाईफाई महंगा पड़ सकता है।
3: सतर्क रहे, सावधान रहे। फ्रॉड अवेयरनेस
1: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। सीखना, समझना और बोलना, ये तीन हिस्से होते हैं किसी भी जुबान को सीखने के लिए। और आखिर हमें कैफल हाल से आगे भी तो पढ़ना है कि नहीं? इसलिए हमारे खास शो को जरूर सुनें, जिसका नाम है लर्न अरबिक। साथ होंगे आपके आरजे तला अशरफ उज़मान, सिर्फ एफएम 107 पर।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामने किराम, प्रोग्राम लर्न अरबिक विद अस्मे हिकमत, फिर आप सबका खैर मकदम है। कभी आपने किसी दोस्त को किसी खूबसूरत जगह के बारे में बताया हो, या किसी शख्स को डिस्क्राइब किया हो, मसलन वो बहुत लंबा है, उसकी मुस्कराहट खूबसूरत है, वो जगह बहुत पुरसकून थी। यही होता है वस्फ, यानी डिस्क्रिप्शन। समझिए कराम, अरबी जबान में वस्फ यानी किसी चीज़, शख्स या जगह को अल्फाज के ज़रिए इस तरह बयान करना के सुनने वाले के जहन में तस्वीर बन जाए। आसान अल्फाज में वस्फ का मतलब है अल्फाज से तस्वीर बनाना। जैसे मुसव्विर रंगों से तस्वीर बनाता है, वैसे ही राइटर और स्पीकर अल्फाज से तस्वीर बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है अल-वस्फ रस्मुन बिल कलिमात, वस्फ अल्फाज से तस्वीर कशी है। अब वस्फ में क्या शामिल होता है यानी डिस्क्राइब में? अच्छे वस्फ में मंजर, एहसास, जज्बात, हरकत सब शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं सिर्फ कहूँ रजुल तवील, वो आदमी लंबा है, तो ये आम जुमला है। लेकिन अगर मैं कहूँ रजुल तवील यलबिसु थौबन अबयद वयब्तसिमु दाइमन, वो आदमी लंबा है, सफ़ेद लिबास पहनता है और हमेशा मुस्कराता रहता है, अब जहन में तस्वीर बनने लगती है। इसी तरह को होता है डिस्क्राइबिंग पीपल, वस्फ़ शख्सियात। जब हम किसी शख्स का वस्फ़ करते हैं, उसे डिस्क्राइब करते हैं, तो हम चंद चीज़ों पर तवज्जो देते हैं। एक तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन, जिस्मानी वस्फ यानी चेहरा, कद, लिबास, बाल, शक्ल। जैसे मिसाल के तौर पर लहू शारुन अस्वद, उसके बाल काले हैं। हिया कसीरतुल कामह, वो छोटे कद की है। यलबिस मलाबिस अनीका, वो खूबसूरत कपड़े पहनता है। तो यहाँ हम अपीयरेंस डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा है नफसियाती वस्फ, पर्सनालिटी, जो फीलिंग्स वगैरह है। सिर्फ शक्ल नहीं, इंसान की तबीयत भी अहम होती है बाज़ दफ़ा। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप यूँ कह सकते हैं वो शख्सुन हादिउन, वो पुरसकून इंसान है, यानी कूल पर्सन है। ही असबिया अहयानन, वो कभी कभी गुस्सा करती है। هو كريم ويحب مساعدة الناس, वो बड़ा सखी बंदा है, करीम है और लोगों की मदद पसंद करता है। तो ये वस्फ जो है इसका ताल्लुक पर्सनैलिटी से है। और एक है सोशल डिस्क्रिप्शन, यानी नाम, उम्र, खानदानी हालत, काम। मिसाल के तौर पर आप पहले नाम का जिक्र करते हैं इस्मुहु अहमद या इस्मी अहमद, पर कहते हैं عمري 30 سنة, मेरी उम्र 30 साल है। هو متزوج या أنا متزوج,

मैं शादी शुदा हूँ, वो शादी शुदा है, इस तरह आप कह सकते हैं, तो ये मालूमात इंसान की सोशल आइडेंटिटी बताती हैं। मजीद इंसान को उसके एक्शन से भी डिस्क्राइब किया जाता है। मिसाल के तौर पर यमशी बिसुरा, वो तेजी से चलता है। यदहकु कसीरन, वो बहुत हंसता है। यतहदथु बिहुदु, वो सुकून से बात करता है। यानी बंदा बड़ा कूल है और वो बड़ी खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता बातें करता है। तो ये एक्शंस इंसान की शख्सियत को मजीद वाजह करते हैं। अब मजीद आगे बढ़ें तो है डिस्क्राइबिंग प्लेसेस, जगह का वस्फ। सामने किराम, जगहों का वस्फ, इसमें लोकेशन की बात आ जाती है। मिसाल के तौर पर अलबैत करीब मिन अलबहर, घर ये मौसूफ है, उसके बाद जो है ना ये वस्फ है कि वो समंदर के करीब है। अलमदरसा फी वसत अलमदीना, स्कूल शहर के दरमियान में है। इसी तरह डिजाइन और शेप की बात आ जाती है। मिसाल के तौर पर अलबैत ये मौसूफ है, इसके बाद सिफत कबीरुन व जमीलुन, घर बड़ा और खूबसूरत है। अलगुरफ वासिया, कमरा कुशादा है। मजीद फर्नीचर और डेकोरेशन की बात भी आ जाती है। मिसाल के तौर पर फिल गुरफ अरीक व तावील, कमरे में सोफा और मेज है। अलजुदरान बेदा, दीवारें सफ़ेद हैं। अद्देकोर हदीस, इसी तरह डेकोर या फर्नीचर जो है ना ये जदीद है, नए हैं। तो इस तरह आप मुख्तलिफ औसाफ़ को बयान कर सकते हैं मुख्तलिफ पहलुओं में। और अगर आप मुकम्मल वस्फ बयान करना चाहें, मिनी एग्जांपल के तौर पर हम इसे बता सकते हैं कि अहमद शाब तवील लहु शअर अस्वद, अहमद जवान है, लंबा है, उसके बाल काले हैं। वह शख्स हादी व महज़्ज़ब, वो बड़ा कूल और बड़ा महज़्ज़ब तहजीब वाला बंदा है। यस्कुनु फी बैतिन जमीलिन करीबिन मिनल मदरसा, कोई खूबसूरत घर में रहता है जो मदरसे के से करीब है। वो गुरफत हुआ से, उसका कमरा बड़ा कुशादा है। वो फीहा मकतब कबीर, और उसमें एक बड़ा लाइब्रेरी भी है। तब जहन में पूरी तस्वीर बन गई है ना सामिन इकराम। तो आज हम यही सीखेंगे वस्फ क्या है, अरबी जबान में ये डिस्क्राइब कैसे करते हैं। यहाँ तक हम कुछ अदबी नोट्स भी लेंगे। अदब व बलागत में अदबी जो शुआरा थे, इन्होंने किस तरह जो है ना वस्फ बयान किया है मुख्तलिफ चीज़ों का, इसी तरह नेचर का। क्योंकि अब बज़ाहिर ये बात तो हर कोई जानता है कि ज़बान की खूबसूरती सिर्फ ग्रामर में नहीं बल्कि तस्वीर कशी में, एहसासात में और ख़ूबसूरत वस्फ में भी होती है। तो अरबी ज़बान की तरक्की के लिए और इसकी महारत को और भी आगे फ़रोग देने के लिए आप लोग ज़रूर कोशिश करें, अपने दोस्त को डिस्क्राइब करें, अपने घर को अरबी में बयान करें, अपने कमरे का वस्फ बयान करें। सामने किराम, चलें ज़रा अब नेचर का रुख करते हैं। नेचर को आप अगर डिस्क्राइब करना चाहें, मसलन कभी आपने बारिश को देखा हो और दिल ने चाहा हो कि इस मंजर को अल्फाज में कैद कर लें, या कभी समंदर की लहरों, पहाड़ों की खामोशी या किसी मुस्कुराहट को देखकर दिल ने कहा हो काश मैं उसे खूबसूरत अंदाज में बयान कर सकूं। यही फन है वस्फ, यानी डिस्क्रिप्शन, अल्फाज से तस्वीरें बनाना। अरबी अदब में वस्फ काफी मशहूर है। एहसास, रंग, खूबसूरती और शायर की रूह की आवाज होता है। वस्फ की तारीफ के हवाले से हमने पहले भी बताया है, यानी हर इंसान चीजों को तो देखता है लेकिन शायर चीजों को सिर्फ देखता नहीं महसूस भी करता है। आम इंसान कहता है आसमान खूबसूरत है, लेकिन शायर कहता है आसमान ने शाम के सुनहरे लिबास पहन लिए हैं। यही फर्क है देखने और वस्फ बयान करने में। सामने कराम, अरबी शायरी में बहुत से शुआरा ने वस्फ बयान किया है, लेकिन अलबारूदी का अंदाज बहुत खास था। उन्हें फितरत से मोहब्बत थी, खूबसूरती से इश्क था और एहसासात को अल्फाज में ढालने का फन आता था। कहा गया है कि वो सिर्फ वस्फ की मोहब्बत में लिखते थे, यानी अगर उन्होंने फूल देखा

0: जैसे किसी हार के दाने टूट कर बिखर रहे हों। सामने किराम, ये सिर्फ बारिश का मंजर नहीं, ये एहसासात, खौफ, हुस्न, खामोशी और कुदरत की अजमत का एक जिंदा नक्शा है। बारूदी हमें ये सिखाते हैं कि शायरी सिर्फ अल्फाज नहीं लिखता, बल्कि वो कुदरत को महसूस करके दिलों तक पहुंचाता है। इसी के साथ सामिन इकराम, प्रोग्राम लर्न अरबिक विद अस के इख्तितामी हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा शफुज़्ज़मान को दीजिए इजाजत। मअस्सलामा।
1: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: हेलो,
1: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट
2: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
3: हेलो बच्चों, तैयार हो जाइए एक सुपर फन आर के लिए। हर मंडे 3 बजे से हम लेकर आते हैं सॉन्ग्स, कहानियाँ और सरप्राइजेस जो आपको हंसाएंगे और सिखाएंगे। अपने फेवरेट कैरेक्टर से मिलिए और मैजिकल एडवेंचर्स डिस्कवर कीजिए, सब कुछ एक ही शो में। तो स्नैक्स ले आइए, दोस्तों को बुला लीजिए और ट्यून इन करिए हर मंडे 3 बजे से विद आरजे फजील ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
4: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107 दिल से देसी।

0: मच्छरों की बात नहीं कर, मुझे लग रहा है वैसे आपका जवाब नाजे जी आपका जवाब दुरुस्त हुआ।
1: ये जवाब लगा नहीं सर बिल्कुल सही।
0: मुझे तो कुछ लग रहा है जैसे मक्खियां, शायद की मक्खियां साइंस आई हो, जब चिपकती हैं तो फिर दिखाती भी हैं।
2: अच्छा दिखाती भी हैं, एक निशान भी छोड़ जाती है। चलिए आप इसको और सोचिए और हमारे जो लिसनर हैं उसको भी बताने की कोशिश करें। वैसे बता दूं कि हाँ अंदाजा आपका काफी हद तक सही है, यही है
1: आज, यही जवाब है, बिल्कुल सही पहचाना आपने।
0: ओह याहू, दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस।
2: आज एक्चुअली इंटरनेशनल बी डे है, तो वर्ल्ड बी डे है जो इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, तो आज उसी के हवाले से हम बात भी कर रहे हैं। हमने कहा क्यों ना आज खासम खास इस बात पर बात हो भाई, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, एक ऐसा कहना चाहिए अल्लाह की बनाई हुई चीज है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता यूजुअली, और इससे लाभ सब उठाते हैं। शहद जो है खाना हम सब चाहते हैं, खाते ही हैं, मगर इनका ख्याल करना कैसे है और किस तरीके से और अपने किससे कहानियां। तो जावेद भाई कभी कुछ हुआ, कोई चिपटा है इस तरीके से आप?
1: जो 20 की तरह चिपक जाए और इतनी बहस इतनी बात और आपको अपनी जान छुड़ाना वाकई मुश्किल हो जाए
2: मेरे अलावा।
0: ये तो नहीं नहीं, मैं मतलब आपकी बात की अगर मैं तायद करूं तो मेरे भाई का दिल टूटेगा।
2: हाँ मैं कह रहा हूँ ना मेरे अलावा, मैंने पहले ही कह दिया मेरे अलावा, या तो खुद अपनी तारीफ पहले कर देते, दूसरे को जरूरत ही नहीं है।
1: अच्छा
0: होता ये है कि होता ये कि ये जो शहद की मक्खियां है ना, ये तो माशाल्लाह ये जहाँ पर इनका छत्ता लगा होता है इसको पहले तो छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको छेड़ते हैं
2: तो फिर जो पीछे पड़ते हैं
0: उल्टा फिर आप छेड़े रहते हैं कई दिनों तक, छेड़े रहते हैं
2: ऐसा छेड़ा जाता है कि छेड़े रहते हैं। नहीं कभी कुछ ऐसा हादसा हुआ है वैसे आपको, कभी किसी ने आके और पैगाम दिया हो किसी मधुमक्खी ने, ततैया ने, बरैया ने?
0: हमारी खिड़की जो है मतलब जो फ्लैट में जहां पर मैं रहता हूँ वहां पर छोटा सा एक शुरुआत हुई थी, तो ये वाइपर लेके इस तरह, हालांकि मैं जिस किस्म का माशाल्लाह बहादुर इंसान हूँ, लेकिन मुझे खौफ था कि अगर मैंने इनको छेड़ा तो ये घर के अंदर दाखिल ना हो जाए, क्योंकि निकालना मुश्किल हो जाएगा।
2: उसको एहतियात से हटाया जाता है और उसके तरीके भी हैं एक्चुअली हटाने के।
0: हाँ नहीं मैंने मतलब उसके ऊपर कपड़ा बांध के, जो मैंने पाकिस्तान में देखा है जिस तरीके से उसको छेड़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता, मतलब उसके ऊपर कोई लिक्विड लगा के उसकी स्मेल से, ताकि वो शहद के पास ना वापिस आए।
2: बिल्कुल
0: तरीका है,
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मेरे पास वाइपर था तो मैंने उसी पर कपड़ा बांधा और फिर उसके बाद ये WD-40 जो है वो मार के तो मैंने उनको भगाया।
2: ओके ओके ओके, चलिए भाई एक ये भी पैगाम के यूजुअली हम देखते हैं कि जिस तरीके से जावेद भाई ने बताया कि उसमें इस तरीके की मशाल बना के या आग लगा के उनको खुदा ना खास्ता खत्म किया जाता है, जो कि बहुत गलत है, जो कि बहुत गलत है। मगर जैसे जावेद भाई ने बताया कि आपने जिस जो स्टेप लिया कि भाई उनको दूर भगाने का तरीका ढूंढा जाए, उनको खत्म करने का तरीका ना ढूंढा जाए, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है और इतनी जबरदस्त चीज है, कुरान में भी हमें जिक्र मिलता है और हमें इतने ज्यादा फायदे होते हैं। शहद एक ऐसी चीज अल्लाह ताला ने इनके जरिए हमें दी है कि जिससे काफी इलाज भी हो रहे हैं और पेट भी भरा जाता है। क्या बात है भाई। जावेद भाई और कुछ शेयर करना चाहते हैं?
0: बिल्कुल, मैं एक चीज और छोटे से शेयर करूंगा कि मतलब कि देखिए जिस तरह आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हर चीज जो तखलीक अल्लाह पाक ने की है और उसकी मखलूक है वो, तो मैं अल्लाह पाक की जो मखलूक है नाजिया साहब आपसे
2: ये भी
0: मतलब
2: है,
0: मेरी इल्तिजा है,
2: मैंने कहा शायद आप बता रहे हैं कि ये भी है, मैं मानता हूँ ये अल्लाह की मखलूक है बनाई।
0: जो नाजिया जी आप जो अल्लाह के मखलूक हैं तो जो आपके साथ मखलूक है थोड़ा हाथ हल्का रखा करें।
1: देखा आपने, मेरा हाथ रखने से पहले उन्होंने दो दो हाथ नीचे भारी लगा दिए, यही मसला है।
0: फरहाद जी नाइस टू टॉक, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर कि मुझे मौका मिला और बड़ा दिल खुश होता है,
2: बड़ा अच्छा लगता है। आप भी हमारे साथ जुड़ते हैं इतनी मशगूलियत में भी और भागम भाग में आप हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, ये मोहब्बत है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह इंतजार रहेगा आपका। अहलन वसहलन, थैंक यू सो मच।
1: I don't know. मुझे
2: अरे जावेद भाई से लाइन तो गुनगुनाना आज भूलिएगा, चलिए इंशाल्लाह इस बहाने पे कल।
1: लेकिन आज वर्ल्ड बीस डे जरूर है, हम उस पर जरूर बात करें, लेकिन उस पे बात नहीं करेंगे कैसे काटती क्या करती, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता
2: है। अल्लाह करे कि आज उनका खासम खास दिन है और अल्लाह आपका उनसे ताल्लुक करवाए,
1: उनकी गजा आप बने
2: मिले। मैं कोस थोड़ी रहा, मैं कह रहा हूँ कि बस सामना हो।
1: मैं
2: आप
1: तो 20 को दुआ दे रही हूँ कि आज उनकी पार्टी हो जाए, आप उनके हाथ लग जाए।
2: तो भाई सारी सारी सखियां हल्दी की सी गठिया तपाक से चिपट गई, बड़ा दुख दे
1: तपाक से बड़ा दुख दे गई। और ये दो लाइन तो आप पे कितना सूट करती
2: है ना,
1: तपाक से चिपट गए बड़ा दुख दे गए।
2: आदाब मिस राजिया, आदाब।
1: लेकिन आज हम इस पे भी बात कर रहे हैं, चलो वर्ल्ड बीस डे तो हम सेलिब्रेट करेंगे, उसके बारे में उसकी इम्पोर्टेंस और सारी चीजें धीरे धीरे हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन हाँ, कई बार कुछ लोग भी आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जिसे अपनी जान छुड़ाना सीरियसली बहुत टफ हो जाता है। तो वाकई उनसे आप अपनी जान छुड़ाते हैं, जान छुड़ाने इन द सेंस बुरे सेंस में नहीं, कई बार वो इतना बोलते हैं इतनी बातें कर रहे होते हैं कि और आप बहुत मसरूफ हैं, आपके पास कोई इंपॉर्टेंट काम भी है, अब आप किस तरह से उस कन्वर्सेशन को एंड करते हैं, स्टॉप करते हैं, ये भी हमें बताइए।
2: बिल्कुल हमें बताइए, हमारे साथ जुड़िए, अपने हाथ साथ जो मधुमक्खियों के साथ हुए हैं, ततैया के साथ हुए हैं, बरैया के साथ हुए हैं, वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है एक्चुअली, और इसमें कुछ कहावतें भी हैं पुरानी पिछली जो बड़े कहते हैं, जो हमारी दादी ने मेरे लिए भी कहा आज तक मुझसे जितनी
1: अच्छा,
2: बार
1: भी कहती हैं।
2: आने में बिल्कुल आपको बताऊं कि हमारे साथ मेरे साथ जितनी बार भी चिपटी कभी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर नहीं हुआ। तो हमारी दादी ये कहती थी कि छोटे जहर का जिस पे असर नहीं होता उस पे बड़े जहर का ज्यादा असर होता है, मतलब खुदा ना खास्ता। वो उनका कहने का मतलब ये था कि साहब बिच्छू वगैरह इससे बच के रहो, जब तुम पे ये छोटी छोटी ततैया या बरैया। तो जब से मैंने आपसे अल्हम्दुलिल्लाह दूरी अख्तियार करना शुरू करी नाजिया, ये मेरी दादी की देन है जो उन्होंने मुझे समझाया।
1: लेकिन बेचारी मरहुमा है नहीं तो उनसे हम लोग मुलाकात करवाते कि भाई ये तो खुद है बड़ा जहर, इनको किसी की जरूरत नहीं है।
2: हेलो,
1: भारी जहर है।
3: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम मरहमा, कौन है हमारे साथ?
3: जी मैं शोएब बात कर रहा हूँ, आप कैसे हैं?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ शोएब भाई, आप बताइए आप कैसे हैं?
3: जी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा हूँ
2: माशाल्लाह, मैं भी बहुत प्यारा हूँ ऐसे तो, अल्लाह का शुक्र है। और बताइए।
3: हाँ, बिल्कुल बोल
1: बस खुद ही कहता हूँ
3: अच्छा।
1: नहीं बस अपनी तारीफ खुद,
2: मैंने कहा
3: अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं।
2: मैंने कहा शुक्र कह रहे हैं आप, बिल्कुल ये ना बोले जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी सामना हुआ है और इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं?
1: यही पूछे।
3: हाँ, टीनेज में काफी मतलब वैसे मिर्जा साहब मतलब मेरी जो पैदाइश है वो दिल्ली से है। लेकिन मैं पला हाँ जी, लेकिन जब मैं पला बड़ा हूँ वो बिजनौर में हूँ, मतलब मामा के घर पर। ठीक है, तो अपने टीन एज में मैंने बहुत से ऐसी चीजें की हैं जो मैं आपको शेयर करता हूँ। जब हम मतलब टीन एज में था तो मेरे कजन मतलब मेरा जो ननिहाल है जिसको ननिहाल मतलब मामा के घर पे जो बोलते हैं ननिहाल, वो काफी बड़ा है, बहुत बड़ा खानदान है उनका, अपने आप में एक कस्बा वो बसा सकते हैं वो लोग। तकरीबन 50-60 वोट है उन लोगों के।
2: अरे तो फिर भाई गवर्नमेंट से
1: डिक्लेयर कर,
2: हाँ उनसे बात करके एक जिला घोषित कर दिया जाए घर क्या हरा।
3: मैंने तो कई बार कहा, मैंने अपने बाप तो खैर सारे मेरे मामाओं के इंतकाल हो गए, बस एक छोटे वाले बचे हैं।
1: अच्छा
2: चलिए क्या बात,
3: मतलब हमारी खुद की अपनी
2: मजा का पार्ट भाई माशाल्लाह।
3: आप इस चीज को लगा लीजिए कि हमारी खुद की एक क्रिकेट टीम थी
1: माशाल्लाह,
2: क्या
3: और उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा हो जाते थे।
2: हाँ हाँ, मतलब बात है। पूरा स्क्वाड होगा, स्क्वाड होगा पूरा टीम तो 11 की, हाँ स्क्वाड होगा 19 लोग होंगे, 20 लोग 21 लोग, ताकि आगे भी लोग जो हैं रिप्लेस कर सके एक दूसरे को, समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ।
3: और उस दौरान जब मोबाइल मतलब स्मार्टफोन एंड्रॉइड फोन नहीं थे, 2009 और 10 अराउंड 2006 7 8 9 10 लोगों के पास कुछ काम वाम इतना नहीं होता था, फ्री होते थे या तो हम
2: और आपको पैगाम भी भेजना किसको होगा, खाला चचा ताया वो वाला भाई सब आसपास ही हैं, इधर से लिख ले दूसरे पूरा, हाँ दूसरे कमरे में गए उनसे बात कर ली, फोन की जरूरत ही नहीं
3: पड़ी, सब उधर ही है पास में। जब हम मैं और मेरे कुछ कजन्स थे तो हम लोग कुछ ना कुछ खुराफात करते रहते थे।
2: अच्छा,
3: तो हम लोगों ने खुराफात सीखी कि मधुमा जो बड़ा वाला जो छत्ता होता है ना जिसको जी, हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं डिंगारा।
2: जी जी जी जी बिल्कुल।
3: जब जिसकी मधुमक्खी बड़ी वाली होती है।
2: जी जी जी
1: अच्छा तो हम लोग इंस्पायर्ड हो के आपने अपना नाम निकनेम रखा है डिंगारा।
2: ये आपसे नहीं कह रही मुझसे कह रही है।
1: अरे हाँ
2: मैं क्या समझे क्या मुझसे कह रही है।
1: नहीं नहीं इनका जो है ना सर्वर का निकनेम है डिंगारा। आप समझ में आया क्या
2: दादी कहाँ है
1: दादी कह
2: रही सच में।
1: अरे झूठ क्या बोलने का बनता ही नहीं। तो
2: यार हंसी तो बड़ी प्यारी है यार मेरे शोएब भाई की। शोएब भाई एक बार और हंसो वैसे ये आप

0: एक
1: पूरा दिन हंसता रहूंगा भाई
0: माशाल्लाह,
1: और मुझे हंसना अच्छा लगता है
0: माशाल्लाह। अल्लाह हंसता रखे। तो किस्सा पूरा करिए, फिर क्या हुआ खुराफात में डिंगारा के साथ, क्या किया आपने?
1: नहीं, तो स्कूल के बाद खासकर विंटर्स में, क्योंकि समर में जो डिंगारे का जो मतलब सॉरी मधुमक्खी का जो शहद है वो आप नहीं ले सकते। तो हम लोगों ने एक मतलब हम कजन से साथ में मिलके हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया कि चलो हम अब शहद जो है निकालेंगे। तो फर्स्ट डे हम पहुंच गए, हमने किसी से पूछा कि भाई इसको कैसे कैसे होता है, वो पेड़ पे बड़े बड़े पेड़ पे या फिर आपने देखा होगा शहरों की टंकियों पे जो लगे रहते पानी की जो टंकियां होती है। तो हम लोग पहुंच गए तो हमें एक पीपल के पेड़ पे दो बहुत बड़े बड़े किनारे मिले।
0: अच्छा, वहां आपको नादिया से मुलाकात नहीं हुई आपकी? भाई पीपल और बरगद पे तो इनका माशाल्लाह काफी बसेरा है।
1: आप सब आपको पता है ना कहाँ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं आपका अंदाजा बिल्कुल समझ रहा हूँ।
2: अरे इनका आप नहीं, इनका परमानेंट ठिकाना वही है, मैं ऊपर पीपल के ये नीचे।
1: वहाँ पे जाना मेल नहीं होते, फीमेल ज्यादा पाई जाती है।
0: एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रहा था, बदल के जाते हैं आप बेफिक्र रहिए। आज भाई फिर
1: तो हम लोग गए तो पीछे से और भी कजन आ गए, तो बोले भाई क्या करना है, चलो इसको आज तोड़ेंगे ना। ठीक है भाई चलो तोड़ते हैं। कैसे कैसे करना है ना, ऐसे ऐसे करना है। हम लोगों ने थोड़ा सा आग वाग लगाया, ये किया वो किया, उसको हमने तोड़ लिया। तो हमने सोचा भाई मतलब दो थे तो उसको एक तोड़ने का एक तरीका होता है कि जो जिसमें मतलब एक तो शहद वाला पार्ट होता है और एक बच्चे वाला पार्ट होता है। तो हम लोगों ने सिर्फ वो शहद वाला पार्ट तोड़ा दोनों का, और तकरीबन उसमें अराउंड 40 kg के अराउंड उसमें शहद निकला हमारे पास। इतनी एक बाल्टी थी हमारे पास।
2: मजा आ गया।
0: वाह वाह।
1: फिर क्या हुआ तो हमने सुबह बोले भाई हम लोग इधर ही खाएंगे। ठीक है, तो हमने
0: 40 kg
1: कहाँ तक खा लेंगे ये लोग भाई। यकीन मानो आप मिर्जा साहब, वो 5-6 बंदे तकरीबन 30 kg शहद खा गए।
0: माशाल्लाह
2: मिर्जा भाई, अल्लाह तेरा शुक्र है।
0: मिलना पड़ेगा। कहाँ है यार ये कजिन?
1: उससे हमें एक चीज पता चली कि चलो ये मतलब अच्छा है, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट होने चाहिए लाइफ में, लेकिन इसका एक इशू है, मतलब वो है कि अगर जो आपको कहीं काट लिया तो फिर बहुत प्रॉब्लम है।
0: जाहिर बात है,
1: हद से ज्यादा प्रॉब्लम,
0: हद से ज्यादा। और कुछ
2: अरे
0: लोगों को तो
2: मिर्जा
0: बेग
2: को काटा तो वो परेशान हो गई, उसे बदहजमी हुई।
1: नहीं कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। देखिए गांव के जो लोग होते हैं ना, इनका हाजमा बहुत खतरनाक होता है।
2: अरे मैं बात कर रही हूँ शहद की, मधुमक्खी की। सरवर मिर्जा को काटने के बाद उसका हाजमा खराब हुआ,
0: शहद नहीं बना पाई फिर वो।
2: हाँ
0: यहाँ आके बैठ गई मेरे साथ। वाह क्या बात है शुभ भाई, बड़े प्यारे आप, बड़े खुश मिजाज भी। अल्लाह ताला खुश रखे, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भाई।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, आप भी ध्यान रखिए।
0: थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।
2: आप भी ध्यान रखिए, मधुमक्खी है, आप भी ध्यान रखिएगा।
0: तो भाई ये शुएब भाई हमारे साथ, और यहाँ पर एक और कॉलर, और आज वर्ल्ड बी डे जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, और उसी के हवाले से हम भी बात कर रहे हैं आपसे, अपने किस्से कहानियां, उनसे मुतालिक अच्छी चीजें, उनकी सफाई, उनकी कहना चाहिए प्रोटेक्शन के हवाले से, और उनको नुकसान ना पहुंचाने के हवाले से मुख्तलिफ चीजें जो भी आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हेलो सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम भाई।
0: अहलेन आसिफ
3: भाई। भाई पहले सबसे पहले भाई आपको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत सलाम, और बहुत बहुत सॉरी भाई कल के लिए।
0: है कल का सॉरी?
3: कल मैंने आपको कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया था, मेरे को अच्छा नहीं लगा। बात
0: क्या बोला? अच्छा याद नहीं करो, कुछ
2: बोला था
0: मैं, कुछ और कह दिया था। तो मैं कह रहा हूँ मत बोलो, मैं भूल जाता हूँ यार, ये मेरे साथ सबसे अच्छी चीज है। 13-14 घंटे में मैं भूल जाता हूँ क्या किया मैंने।
3: अच्छा मतलब तुम भी मतलब मेरी कैटेगरी के
0: है,
3: तुम भी मतलब मेरी कैटेगरी के सेम से।
2: अरे ये तो लोगों को भी भूल जाते हैं, बस एक चीज है पैसा, नहीं, वो नहीं भूलते हैं।
3: मैं भी सेम से मोबाइल की जैसा, मैं भी लोगों को भूल जाता हूँ।
0: अच्छा नहीं यार,
2: ये खुद भूल जाते हैं आते हैं। अरे अब मुझसे ही सुबह पूछ, अरे आप बहुत देखिए नाम बताइएगा सर जल्दी, याद दिलाया भाई।
0: मैं लोगों को नहीं भूलता, मैं बातें और हरकतें भूल जाता हूँ यार, ये तो है।
3: मैं भी भूल जाता हूँ भाई।
2: मेरा कहना है याद रखिए, जिससे आप रिपीट ना करें
3: भाई
0: जी।
3: आज कौन सा दिवस बोले भाई तुम्हारा?
2: आज कौन सा दिवस?
0: आज है साहब,
2: आज तो सर्वर का दिन है।
0: ततैया डे।
3: नहीं मतलब सुना जाता है मधुमक्खी का भी दिन होता है क्या कोई?
0: हाँ हाँ होगा, आज ही है वो, आज ही हर मधुमक्खी का दिन आता है। उसकी अम्मा कहती थी मधुमक्खी की बच्चे से, और क्या ये आ गया, देखिए आज आ गया।
3: मैं भी जब

0: मैं बातें सुन रहा था तो मैंने फटाफट जाके सर्च किया, मैं गूगल पे सर्च किया आज कौन सा दिन है, तो वो दिन हम सोचते हैं बोले आज मधुमक्खियों का दिन है।
1: ऐसे थोड़ी यार, अच्छे ताल्लुकात है मधुमक्खियों से नाजिया का, इतना आना जाना है तो मेरे भी कुछ रवाबित है, ऐसी बात नहीं है। नाजिया के काफी करीबी कजिन वगैरह है।
0: जी जी, और दूसरी बात ये कि वो हमारे जो पिछले भाई कॉलर थे, मतलब वो लोग मतलब 40 किलो मधुमक्खी का शहद चाट गए
2: भाई पूरा।
0: मैं उन लोगों को बोलता हूँ मेरी तरफ से, उन लोगों को इंसानों के शामिल नहीं किया ऐसा, वो लोग भालू के चक्कर में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भालू लोग है ना वो 40-45 किलो खा जाते हैं।
1: हाँ, भालू आखिर शौकीन होते हैं, सही, काफी शौकीन होते हैं और उनको असर नहीं करता इनका डंक वगैरह, क्योंकि उसकी चमड़ी और बाल इतने ज्यादा हैवी होते हैं कि वो उसमें जाकर उसको काट नहीं पाती हैं।
0: एक बात और भाई
1: जी,
0: अगर जिसको लगता है कि आज मधुमक्खियों का दिन है, तो प्लीज जहाँ भी मधुमक्खी का शहद का छत्ता, वो क्या बोल सकते हो,
1: छत्ता छत्ता छत्ता,
0: एक उंगली करके दिखा दो।
1: नहीं यार, हमें तो कहना है कि तोड़ना नहीं है यार, उसको तोड़ना नहीं है एक्चुअली, नहीं ये है हमारे यहाँ की प्रैक्टिसेस में, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि हम उनको मार देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको उनसे अपना खाना लेना है, मतलब शहद लेना है, तो कुछ एहतियात, क्योंकि जितने भी ब्रीडर्स वगैरह हैं या जितनी भी कंपनीज हैं जो भी शहद वगैरह का काम करते हैं दुनिया भर में, आप देखिएगा अभी जाकर इंटरनेट पर अगर आप सर्च करेंगे तो उसका एक पूरा तरीका होता है शहद लेने का, ताकि उनको नुकसान ना हो और वो दोबारा अपना घर बना के छत्ता बना के मजीद आपके लिए शहद जो है प्रोवाइड कर सकें। तो बहरहाल भाई बहुत बढ़िया साहब, आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया।
0: ये बात तो सही है भाई सौरभ भाई, ये बात तो सही है, मतलब कंपनी वाले लोग के पास नॉलेज है, दिमाग है, वो लोग हथियार है, मगर हम जैसे हमारे गांव वाले भाई जो लोग होते ना, वो लोग को बहुत मतलब बोलते ना एक वो होती है, समझ गया सौरभ भाई।
1: हाँ,
2: समझे वो कुछ भी नहीं मगर हंसेंगे।
1: मैं बिल्कुल समझ गया,
0: मत क्या करो।
1: हाँ बिल्कुल, उनको सताना नहीं चाहिए,
0: मुंह लेके घूमेंगे।
1: सही सही सही सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, गेम भी खेलने के लिए आइएगा, गेम भी खेलेंगे अगर मौका मिले तो जरूर तशरीफ लाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू। जीता था ना भाई,
1: कल जीते थे।
2: हाँ, कल जीते थे,
1: कल
2: आसिफ
1: ही जीते थे,
2: 9 का स्कोर करके।
1: अच्छा,
2: ले
1: आप तो भूल गया, 24 घंटे हो गए ना। चलो साहब बहुत मुबारक, आज भी देखते हैं आसिफ भाई, ठीक है,
2: चलिए, थैंक यू सो मच,
1: ओके बाय।
2: दोस्तों आज हम बात करें पर्टिकुलरली वर्ल्ड बी डे पे, तो कोई आपकी मेमोरी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आई एम श्योर वो बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग तो नहीं होगी, बट हाँ अगर कुछ है तो बताइएगा। जैसे अगर आपको मेरी तरह बहुत ज़्यादा डर लगता है 20 से, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अभी बताना बहुत कुछ है, बट आई थिंक अभी हमें ब्रेक पे भी जाना है ना?
1: बिल्कुल, हमें ब्रेक पे जाना है और
2: वापस आना है,
1: गाना सुनते हैं, वापस आते हैं और चर्चा जो है इसके ऊपर जारी रहेगी। अपना जितना भी टाइम है वो हमारे साथ बिताने की कोशिश कीजिए, हमें मैसेजेस भेजिए और कनेक्ट होने की भी कोशिश कीजिए। आफ्टरनून एक्सप्रेस पे सरवर और नाजी आपके साथ, दिल से
2: देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में जोहर की अजान का वक्त हो गया है।
3: अल्लाहु अकबर।

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات آپ کے مشاہدے میں آئی ہوگی کہ انسان محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات نتیجہ منفی نکل آتا ہے. اصل میں انسان کا علم بہت محدود ہے، آپ دیوار کے پیچھے کی شے کو نہیں دیکھ سکتے. انسان کی زندگی میں جو واقعات اور حادثات رونما ہوتے ہیں وہ دیوار کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، اور قرآن حکیم میں اسے تقدیر کا نام دیا گیا ہے. دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگوں کے حالات اچانک خراب ہو جاتے ہیں اور ناکامیاں شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، تو اس وقت سوچنا چاہیے کہ کوئی اچھا کام تھا جسے چھوڑ دیا گیا، یا کوئی نیا برا کام اختیار کر لیا گیا. اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ خود کو ٹھیک کر لے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا دشمن نہیں ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. مشکل حالات اور پریشانی کے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. سجدے میں گر جائے تو سارے بگڑے کام سنور جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام On FM 107.
3: دوستوں، ریکلیس اور لاپرواہ ڈرائیونگ زندگیوں اور مال و دولت کے لیے ایک سیریس خطرہ ہے اور ایک سنگین ٹریفک وائلیشن بھی ہے، اور اس کے لیے سخت سزائیں دی جاتی ہیں جن میں قید اور گاڑی کی ضبط شامل ہے. وزارت داخلہ اپنے ارادوں کا واضح طور پر اظہار کرتی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کو مزید مسلسل طور پر نافذ کرے گی تاکہ کمیونٹی کی سیکیورٹی اور خوشحالی کو محفوظ رکھا جا سکے. ریکلیس اور لاپرواہ ڈرائیونگ نہ صرف زندگیوں کو خطرے میں ڈالتی ہے بلکہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی مصیبت کا سبب بنتی ہے. ایسے رویے صرف ٹریفک رولز کی خلاف ورزی نہیں کرتے بلکہ سماجی اور قومی امن اور اطمینان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. ایف ایم 107 اس بات کی مسلسل تاکید کرتا ہے تاکہ ہم سب اس سے سیکھیں اور ایسے رویے اختیار نہ کریں. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: قطر's most heard radio station FM 107. FM 107. دل سے دیسی.
5: ہر سفر کی کہانی الگ ہے اور ہر کامیابی کا راز الگ ہے، لیکن جب لوگ پازیٹو سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو مشکل رستے بھی آسان ہو جاتے ہیں. اس شو میں ہم آپ کو ملوائیں گے ان پروفیشنل سے جو اپنی محنت، چیلنجز اور انسپریشن کے ذریعے دنیا کو بہتر بنا رہے ہیں. ہر انٹرویو ایک نئی سوچ، ایک نئی موٹیویشن کو لے کر آئے. آپ کو ملیں گے وہ انسائٹس جو آپ کی زندگی کو ایک الگ لیول پر لے جائیں گے. ہر کہانی ایک لیسن ہے اور ہر گیسٹ ایک انسپریشن. تو ضرور سنیں ٹوگیدر وی تھرائیو ایوری ٹیوزڈے 7:15 پی ایم آن ورڈز آر جے نازیہ کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی.
3: ویلکم ٹو پچ پرفیکٹ شو.
1: ایف ایم 107 کی جانب سے سن 2026 کا ایک نیا سپورٹس پروگرام.
3: یہ وہ لائیو شو ہے جہاں کرکٹ کی ہر ڈیلیوری، ہر شاٹ اور ہر فیصلہ ہوتا ہے بالکل پوائنٹ پر.
1: تو تیار ہو جائیں ایکسپرٹ انالیسس، تازہ ترین اپڈیٹس اور دلچسپ کرکٹ کہانیوں کے لیے
3: آن پچ پرفیکٹ.
1: کیونکہ یہاں کرکٹ ہے بالکل پرفیکٹ.
3: سنیے ہر ٹیوزڈے اور تھرسڈے، جڑ جائیے ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین اور آر جے فضیل کے ساتھ
1: دوپہر 3 بجے سے 4 بجے تک اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی.
6: It's the afternoon express.
3: हां जी वेलकम बैक अहलन वसहलन खुश आमदीद बिल्कुल आफ्टरनून एक्सप्रेस इस वक्त जारी सारी है और सरो नाजिया आपके साथ आइए कुछ मैसेजेस का रुख करते हैं अस्सलाम वालेकुम सरो भाई नाजिया जी सरो भाई आपने एंथनी जी राज नहीं बताया अरे भैया वो मैंने पता किया उसको पकड़ा और वो बता रहा है कि वो एक बेचारा चोर था जो एक फिजिकली चैलेंज्ड आदमी या शख्स के हाथों मारा गया ये हुआ तो वो मुझे मिलाने की कोशिश कर रहे थे
1: वही होता ना कि
3: अस्सलाम वालेकुम सर भाई
1: ऊपर पानी में डूब के मरे
3: आज तापमान यानी टेम्परेचर हाई है 41 डिग्री है सिटिंग इन कार लुसेल कौन है हमारे साथ जो गाड़ी में फैसल मिर्जा साहब मिर्जा जी वेरी गुड यार चलिए आपसे तो
1: आज है वाकई
3: अस्सलाम वालेकुम सर भाई नाजी जी आई एम आसिफ शाह गॉड ब्लेस यू ऑल सॉरी नाजी
1: ब्लेस यू टू
3: किस बात पे ये नहीं लिखा है बंगश साहब है हमारे साथ क्यों माफी तलाफी कर पाए हाँ ये भी बताइएगा भाई वेदर का भी हाल अहवाल जान लेते हैं नाजिया चलते चलते और इस वक्त वाकई 41 डिग्री है आगे बढ़ भी सकता है कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने भी हमसे कहा है और ये बताया है कि आज मरीन वार्निंग्स जो हैं वो जारी की गई हैं जो वीकेंड तक जारी रहने वाली हैं ठीक है भाई डिपार्टमेंट ने या डिपार्टमेंट के मुताबिक ऑफशोर इलाकों में तेज हवाएं और ऊंची लहरें एक्सपेक्टेड हैं तो जहां लहरों की ऊंचाई 3 से 6 फुट तक रह सकती है और कभी कभी 9 फुट तक जा सकती है पहुंच सकती है तो भाई इस मौसमी हालात के 22 डिपार्टमेंट ने आवाम को हिदायत दी है कि इस दौरान किसी भी किस्म की आपकी जो मरीन एक्टिविटीज हैं या आप अगर वक्त गुजार रहे हैं अपना वीकेंड में भी आप कुछ प्लान कर रहे हैं बीच वगैरह से मुतालिक नहाने स्विमिंग से मुतालिक तो एहतियात की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा दिन की रोशनी में फिर भी चलिए आप कुछ प्लान करना चाहते हैं तो करिए मगर इन हिदायत को मद्देनजर रखते हुए नाजी होता ही यही है कि माशाल्लाह से ये पहले मतलब हम सभी ये एक मिसकंसेप्शन है एक्चुअली आप अगर बीच में जाएंगी या कहीं भी किसी भी बीच पर कतर के जाएंगी तो आप देखेंगे माशाल्लाह से 50-70% वो भरा हुआ होगा क्योंकि होता क्या है सर्दियां आती हैं तो हम कहते हैं इतनी सर्दी में नहाने गर्मी आती है इतनी गर्मी में नहाने तो अब लोगों का जो फॉर्मेट है
1: तो ठीक है जाना क्योंकि
3: अरे माशाल्लाह पूरे पूरे दिन
1: अभी तो मेरे ख्याल से रेत
3: हम आप ही हैं एक्चुअली अगर हम जाएंगे वहां पे जाके देखेंगे तो आप सभी को वहां पाएंगे तो खैर अपना अपना शौक है बहरहाल ये तमामी एहतियाती तदाबीर जो हैं इनको मद्देनजर रखते हुए ही आप अपना फैसला कीजिए और जरा सा अपना और दूसरों का जरा सा नहीं बहुत सारा ख्याल रखना इसका भी ख्याल कीजिए
1: बिल्कुल और दोस्तों जैसे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड बी डे और ये हर साल 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है तो ये बेसिकली दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि हमें समझ में आए कि 20 हमारी लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि 20 का काम यानी मधुमक्खियाँ उनका काम जो है वो हनी बनाना है जबकि शायद हम ये भूल जाते हैं कि इनका काम सिर्फ शहद या हनी बनाना नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के इकोसिस्टम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर बीज ना हो तो चाहे प्लांट्स हो चाहे फ्रूट्स हो या फिर वेजिटेबल्स हो इनकी प्रोडक्शन बहुत कम हो सकती है आप जानते ही हैं कि बीज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है पॉलिनेशन यानी जो पेड़ पौधे प्लांट्स फ्रूट्स इसमें जो पाउडरी सब्सटेंस होता है पॉलन जो होता है उसे ये निकालती है तो ये फूलों से पॉलन लेकर दूसरे फूलों तक पहुंचाती है तो आप समझ ही सकते हैं और इससे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं और फ्रूट्स बनते हैं इस तरह से जो बीज हैं यू नो वो एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करती हैं और कहीं ना कहीं हमारी फूड सप्लाई को भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं तो इसका काम सिर्फ और सिर्फ शहद तक नहीं महदूद है शायद और भी बहुत ज़्यादा है जिसे धीरे धीरे हम आपके साथ शेयर करेंगे और एक चीज़ आपने सुनी होगी एक टर्म आपने सुन रखी है जिसे कहते हैं ना बिजी बी तो बहुत सारे लोगों के लिए ये इस्तेमाल भी की जाती है कि भाई वाई यू साउंड लाइक अ बिजी बी तो बिजी बी का मतलब कहने का मतलब ये है कि इट्स बिकॉज दैट ये पूरे साल लगातार उसी पेस पर काम करते रहते
3: करती रहती हैं
1: कैन यू इमेजिन दिस इतना ज्यादा बिजी कि सिर्फ अपना काम और एक दिन में आपके
3: आसपास
1: और एक दिन में हजारों फूल इट्स मोर देन 1000 प्लांट एक बी के लिए कहा जाता है जो मैं फैक्ट देख रही हूँ वो फूल विजिट करती हैं मतलब अपनी कॉलोनी के लिए नॉन स्टॉप जो है वो मेहनत करती रहती हैं और शायद इसी हार्ड वर्क की वजह से लोगों के लिए भी कई बार जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं उनके लिए भी कहा जाता है कि बिजी बी. सो या आप समझ ही सकते हैं कि बीज हमेशा थ्रू आउट कंसिस्टेंटली काम करती रहती हैं.
3: और इनके भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं एक्चुअली. छत्ते के अंदर भी इनके अपने अपने सेक्शंस होते हैं. कुछ सिक्योरिटी का काम करते हैं, कुछ जो महारानी मक्खी होती है इसके अंदर जो सिर्फ वहां पे छत्ते के अंदर रहती है, जो बहुत बड़ी साइज में होती है इनसे डबल, उनको उसकी सिक्योरिटी में लगे रहते हैं. कुछ शहद वाले काम जैसे नाजिया ने बताया वो करके लेके आती हैं और कुछ छत्ते के अंदर उनको सेग्रीगेट करने में लगी रहती हैं, गंदगी की सफाई और शहद को अलग करना, मुख्तलिफ चीजें. तो इनसे और चूटियों से कहना चाहिए हम इंसानों ने भी बहुत कुछ सीखा है एक्चुअली. और एक बड़ी ही खूबसूरत अल्लाह ताला की बाकी सब मखलूक की तरह एक ये भी है कुछ मैसेज
1: और
3: कॉलर भी हमारे साथ कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ये तो भालू खाता है.
1: ये तो भालू खाता है,
3: शहद जो है वो भालू खाता है. अस्सलाम वालेकुम सर भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ. और यहाँ पर कुछ शायरी पहले इनसे बात करते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: हेलो
7: हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, आपको कैसे हैं दोनों?
1: अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों खैरियत से, उम्मीद कर रहे हैं आप भी खैरियत से होंगे.
3: कौन है हमारे साथ? हमारा जवाब भी खुद ही दे दिया.
7: मोहम्मद
3: आरिफ अंसारी. वालेकुम अस्सलाम वरहमा, कैसे हैं? खैरियत से हैं आरिफ भाई?
7: अल्लाह का शुक्र है.
3: कहाँ से हैं? टांडा से?
7: नहीं, नेपाल से.
3: अच्छा, बॉर्डर लगता है इसका मतलब. क्या बात है भाई,
7: आप मैं जब भी फोन करता हूँ यही बोलते हैं लास्ट में. पहले पूछते हैं किधर से, फिर बोलते हैं कि लगता है बॉर्डर.
3: घर नहीं बता रहे ना आप, इतने दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ.
1: शुक्र बनाइए, पूछ नहीं रहे नेपाल में किस सिटी से, सिटी में किस मोहल्ले,
3: अगली बार
1: मोहल्ले में कौन सी गली, गली में कौन सा वाला घर का नंबर.
3: बस ये पहुंचे
7: पर हर बार इधर ही रुक जाते हैं बॉर्डर वाले पूछ के पा
3: एरिया. और यार जरा सा उधर जाने में डर लगता है थोड़ा सा, मतलब भाई अपनी कंट्री छोड़ के आगे जाना है तो एहतियात और सारी चीजों को मद्देनजर रखते
1: हैं.
3: हम लोग
7: का वीजा नहीं लगता इंडिया
3: का. बिल्कुल, आप तो सारी खरीदारी इधर ही आके करते हैं.
1: नहीं हम लोग भी
7: अभी तो बंद हो गया, अभी तो बंद हो गया.
3: अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे. कैसे हैं आरिफ भाई, कैसी गुजरी अभी तक की सुबह और कैसा चल रहा है दिन?
7: अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी, उसके बाद भी अच्छी गुजरी, आपसे बात हो गया.
3: आए हाय, अल्लाह ताला खैर करे और आपको हिफ्ज़ अमान में रखे. क्या कहना चाहते हैं आरिफ भाई, आज बी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसके हवाले से कुछ?
7: उसके हवाले से वही है, ये लोग तो हमारे मतलब जीवन शैली के लिए बहुत,
3: जीवन शैली के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. कभी कोई हादसा भी पेश आया?
7: पहले बचपन में तो मेरे को काटा था, मैंने फोटो भी रखा हुआ है, वही ढूंढ रहा हूँ आपको भेजने के लिए.
3: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय,
7: कभी मतलब
3: अल्लाह करे फोटो हम देख पाए, बस ये वाली बात है. अरे भाई
7: बचपन में तो इसको छेड़ते थे. हाँ
3: अच्छा, ढूंढ रहे भी बात करते करते. बचपन में छेड़ते थे? नहीं, आपको ज्यादा छेड़ती थी, आप कम छेड़ते थे.
7: पर हमारे यहाँ इसको लक भी मानते हैं, जिसका घर के ऊपर छत लगाते हैं ना, ये लोग छत्ते लगाते हैं.
3: अच्छा हाँ भाई, जाहिर बात है शायद आ गया घर पे, मिठाई आ गई और क्या चाहिए.

0: सामने एक मतलब छत का छोटा सा होता है ना, जो झाल का सामने बनाते हैं,
1: बिल्कुल
0: उधर लगा, उधर मतलब तीन चार साल एक एक साथ लगा था। हम लोग इसको लक भी मानते हैं, हमारे यहाँ ज्यादा मानते हैं लक इसको।
2: अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा है।
0: लक मानना भी चाहिए क्योंकि हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी है। लोग मतलब इको सिस्टम भी लोग बना के रखते हैं, खाने को भी देते हैं हनी।
2: हाँ हाँ हाँ, हनी के अलावा भी इनका, जैसे हमने बताया भी और आपने भी कहा कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एग्रीकल्चर में। अगर ये पॉलिन का काम इनका ना हो, पॉलिनेशन का, तो कैसे होगा? ये प्लांट को ग्रो करने में बहुत हेल्पफुल है। सो बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह। कुछ और ऐड करना चाहते हो? यू आर डन, हो गया। चलो ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड बी डे, और आपको मैं बताऊं कि आज इस साल का जो थीम रखा गया है वो है सर्वर, बी टुगेदर। सर्वर को बता रही हूँ, सर्वर तो क्या ही थीम बने, तो टॉपिक है, आप तो सब्जेक्ट है।
1: मैंने कहा शायद उन्होंने सुन ली आपकी बात।
2: नहीं, आप माशाल्लाह थीम नहीं, आप सब्जेक्ट है,
1: सब्जेक्ट
2: कई बार टॉपिक।
1: तो थीम क्या है?
2: थीम इस साल की है कि बी टुगेदर फॉर पीपल एंड प्लैनेट,
1: वाह,
2: पार्टनरशिप दैट सस्टेन्स अस ऑल। मतलब इसका मतलब
1: इतनी प्यारी कर दी,
2: बी टुगेदर इसका मतलब ये है कि इंसान और बीज एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं हाईली। बीज हमारे लिए फूड और एनवायरनमेंट जो है उसको सपोर्ट करती है, और जैसे सर्वेंट ने भी आपसे कहा, वो भी अपनी लाइफ जो है वो आपसे चाहती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम सबके जहन में ये होता है कि उन्हें बचाना नहीं है और उन्हें मार देना है। तो इस तरह
1: जो कि गलत,
2: है, हमें और आपको बीज को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अगर बीज को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो शायद हम कहीं ना कहीं सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो
1: भाई ये बात याद रखें, बी टुगेदर मतलब बी टुगेदर वाला बी टुगेदर भी, और इधर बी ततैया वाला बी,
2: और लिखा भी हमारे साथ बी टुगेदर।
1: एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी लाइन शुरुआती। तो कहते हैं साहब, रात को नहीं ना नहीं रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता। मैंने दिल से पूछा, क्या यही प्यार है? दिल ने कहा, नहीं पागल, गर्मी की वजह से सबका यही हाल है। कौन है, कौन है ये शख्स? अब्दुल रहमान फ्रॉम पाकिस्तान। क्या बात है भाई, अब्दुल रहमान साहब बड़ी अच्छी शायरी लाए, ताजी ताजी।
2: एक और कॉलर
1: हमारे साथ, यूसुफ भाई का एक मैसेज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग नाजिया जी एंड सरवर भाई, कैसे हैं आप दोनों? होप वेल, वेलकम टू आफ्टरनून एक्सप्रेस, दिल से देसी। यूसुफ खान सबको वेडनेसडे मॉर्निंग विश करते हुए कहते हैं, भाई आपकी पहेली का जवाब हनी बी है। क्या बात है, यूसुफ भाई ने सही वक्त पे दिया था, पढ़ा मैंने देर में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम जनाब, सानू भी शहद खवा दियो।
1: गावा जी, क्या हाल चाल है? एलन और फैलन कैसे हैं?
3: वेरी वेल सर, उम्मीद करता हूँ आप और नाजिया जी बिल्कुल परफेक्ट होंगे सर।
2: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों खैरियत से हैं। तो आज गाबा जी, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बी डे के हवाले से, सो कुछ ऐड करना चाहेंगे?
1: बी टुगेदर गाबा भाई, बी टुगेदर,
2: बी टुगेदर,
3: बी टुगेदर, ऑलवेज सर, ऑलवेज।
1: अच्छा,
2: स्वीटली ऑलवेज।
1: तो कुछ याद है, कुछ किस्सा कहानी है इसके मतलब होगा तो जरूर।
3: पहले तो नाजिया जी, जैसे आपने आज मिसकंसेप्शन में सर्वर जी का वर्ड बोल रहा हूँ दूर की है ना, बीज के हवाले से। अगर कभी इन फ्यूचर में आपका शो हो तो ना मैडम, स्नेक्स के हवाले से भी जरूर करना।
1: वो तो यार ये बिरादरी है, समझा करिए।
2: अरे हाँ, उनके साथ तो मेरा रोज उठना बैठना है, जैसे बैठी हुई
1: बैठना है भाई, ये ताल्लुक है, दार है।
2: हाँ, वो बैठे तो है हर वक्त।
1: क्या भाई, तुम ये सोचा छोड़ने आए हो यहाँ पे? ओके बाय
3: जी। सर चौपर खड़ा है बाहर, जाइए आप जल्दी हो सकता है।
1: तो क्या है खासम खास किस्सा ततैयों के हवालों से? कितना मिल रहा है मुझे, दिल करता है आपको बोलूं आज से मैं। अरे ततैया, आरजे ततैया, ओए ओए ओए ओए, क्या मैच किया यार, मजा आ गया। गाओ, अच्छा लगा?
2: नहीं लगा
3: जी।
1: कह रहे जी, कॉल काट दो, कॉल काट दो, कॉल काट दी मैंने।
2: कह रहे जी नहीं, अच्छा नहीं लगा
1: जी। गाओ भाई, तो क्या किस्सा है?
3: एक्चुअली सर्वर भाई, हमारे वहाँ पे इसको बोलते हैं भरिंड,
1: भरिंड मधुमक्खी
3: को।
1: हाँ, पंजाबी में एक्चुअली
3: बोलते हैं,
1: एक्चुअली। हाँ,
2: अच्छा अच्छा,
3: भरिंड, यस। तो एक्चुअली क्या
1: वो एक्चुअली नहीं, अब इसमें यार याद आ गया, अब मुझे चीजें याद आती रहती हैं तो मैं जिक्र करता चलूं।
2: बोलने नहीं
1: तो कहते हैं एक रैपट में दिमाग भरिंड कर दूंगा, तो वो भरिंड से भरिंड आ गया हमारी तरफ एक्चुअली, आप समझे ना, ये हम कहते हैं मतलब मजाक मजाक में। एक रैपिड में दिमाग ब्रिंट कर दूंगा, तो वो ब्रिंट यही वाला है, मैं सबको बता दूं, कभी लोग सोचेंगे वो

0: क्या था यार, क्यों होता था दिमाग ब्रेन? तो वो ये होता था कि ततैया बन जाता था दिमाग का। तो नदिया समझ रही है ना? समझ रही है,
1: ढींगड़ा मैं समझ रही हूँ।
0: हाँ ठीक है, तो भिंड जो है क्या कर रही है वहाँ पंजाब में?
2: तो पंजाब में भी है सर, हर जगह इसका इकोसिस्टम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट सर्वर भाई इसका एक फायदा तो है, जैसे मेरे जैसा बंदा हो ना जिसकी गालें पिसकी हुई हो, अगर कभी गाल पे भ्रिंड लड़ जाए ना सर, यकीन मानिए सर क्या फाउंडेशन क्या क्रीम, इतना ग्लो उन चीजों से नहीं आता सर जितना उसके लड़ने से आता है।
0: वाह वाह वाह वाह। तो ये हिदायत है भाई गाबा भाई की सभी मेकअप करने वालों को कि लिहाजा आप लोग फाउंडेशन पाउडर और जितना भी पाउडर एंड लिपस्टिक है, लिपस्टिक है उसकी जगह आप ततैया का इस्तेमाल करें, है गाबा भाई ऐसी है?
2: जी बिल्कुल सर्वर भाई।
0: गाबा भाई एक चीज और है वैसे।
2: जी जी जी जी बिल्कुल,
0: घर पे आप कोई गलती करके देखिए।
2: सर्वर भाई हमारे ना एक बहुत ज्यादा मशहूर है बात, किसी के लड़ जाती है ना मधुमक्खी, तो हमारे वहाँ पे बोलते हैं भी तुमने देसी की बहुत ज्यादा खा लिया इसीलिए तुम्हारी गालें फूली हुई है।
0: अच्छा आखिरी लाइन में ज्यादा समझा मैं।
2: तो ये जो तरीका है ना ये बंदे को छेड़ने का है सर,
0: समझ गया,
2: मधुमक्खी लग जाए तो छेड़ने का तरीका
0: है। क्या बात है भाई, तो खुद के साथ भी कोई कभी टकराव हुआ, आमना सामना हुआ?
2: टकराव कई बारी हुआ सर, कई बारी। देखिए सर जो पीली वाली मधुमक्खी होती है चलो उसका तो डंक है, बंदा बर्दाश्त कर जाता है।
0: हाँ।
2: जो उससे बड़ी वाली होती है ना सीनियर, ब्लैक कलर वाली जिसको दंदीहा बोलते हैं।
0: अच्छा है,
1: नहीं सही कहा इन्होंने, 20,000 से ज्यादा तरह तरीके की होती है, वो 20 है।
0: और जो ऑस्ट्रेलिया की हैं वो बहुत ही ज्यादा मशहूर और बड़ी ही डेंजरस हैं।
1: आपसे ही मिलके तो जाती हैं।
0: बहुत शुक्रिया नाजिया जी, आदाब गाबा भाई
2: जी। सर्वर भाई वो जो बड़े वाली होती है ना, वो अगर लड़ जाए ना तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, वो लड़ने के बाद बंदे को डॉक्टर के पास जाना ही।
0: बड़ी वाली अगर लड़ जाए तो वाकई बहुत दिक्कत करती है, डॉक्टर के लायक नहीं छोड़ती हमारी बड़ी वाली जो है भैया।
2: नहीं हमारे इंडिया में छोड़ देती है सर, आपने
0: ये बैठी है ना यहाँ पे बड़ी वाली, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये लड़ जाए अगर तो आदमी डॉक्टर के भी लायक नहीं रहता। आए
1: फिर मैं क्लासरूम तक लेके जाता
0: हूँ। सही कह रहे हैं भैया,
1: हॉस्पिटल की जरूरत नहीं, क्लास की जरूरत है बस।
2: तो सर्वर भाई क्या होता था हमारे वहाँ पे ना, आम के पेड़ होते थे पहले, अभी तो चलो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो जो सर अपना जामुन का पेड़ या अमरूद का, इसमें हम लोग डंडे से तोड़ सकते हैं, इसमें फल लगाओ। आम का ना जो पका हुआ हो वो थोड़ा सा ऊंचा रहता है सर,
0: बिल्कुल
1: सही,
0: उसके लिए खांचा बनाना पड़ता है डंडे पे।
2: जी डंडा तो चलो नहीं पहुंचता, जब बंदे को ऊपर चढ़ना पड़ता है या फिर अपना पत्थर मारना पड़ता है सर नीचे से। तो हमने भी दोस्तों के साथ ये पंगे बहुत किए हैं सर आम के चक्कर में। तो एक बार क्या हुआ सर, मैं दोस्तों के साथ चढ़ गया ऊपर आम के पेड़ में सर, तो पता नहीं था भी ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है सर,
0: अब उतर भी नहीं सकते जल्दी,
2: उतर भी नहीं सकते जल्दी सर। तो बस खुशी खुशी में पंगा ले लिया सर, वो पंगा
0: हुए सुझा दिया होगा भाई साहब चारों तरफ से।
2: तो आप यकीन मानिए सर,
0: डबल लोटी, डबल लोटी,
2: मेरे गालों पे सर ऐसा ग्लो आया ना, मुझे खुद लग रहा था अभी मैंने यार टॉम क्रूज की झूठी चाय तो नहीं पी ली कहीं।
0: अच्छा है, मेरे ख्याल में सभी के साथ ये एक ऐसी चीज है कि हादसा पेश आया ही होगा, क्योंकि घरों में इनका छत्ता वगैरह बनाना, और इवन बीज ही नहीं, मुझे अंग्रेजी नाम याद नहीं आ रहा, जो ततैया होती है या बरैया होती है, हॉर्नेट कहते हैं शायद हम, मेरे ख्याल में अगर मैं सही कह रहा हूँ, तो वो भाई साहब वो तो वो छोटा सा जो छत्ता बनाती है ना मट्टी की तरह, क्ले नुमा जो होता है घर में, और भाई साहब वो फिर रैकेट जो है टेनिस वाला या हमारा इसका बैडमिंटन वाला वही काम आता है भाई अपने आप को बचाने में, फिर बहुत लड़ाऊं मैं, ऐसी बात नहीं है।
1: कोई छोड़ी नहीं मखलूक आपने सर्वर मिर्ज़ा, इससे आप लड़े ना हो।
2: एक्चुअली क्या है सर, पहले ना लकड़ी के दरवाजे बहुत ज्यादा होते थे हमारे घरों में, तो उसके कॉर्नर में बहुत ज्यादा छत्ते होते थे, अभी तो चलो हम लोग नहीं छोड़ते हैं, पहले बहुत ज्यादा होते थे, तो बचपन में सर जी बहुत ज्यादा डंक खाए हैं मधुमक्खी, और अब तो सर अब तो देखने को ही तरस जाते हैं मधुमक्खी।
1: अब तो बड़ा बिजनेस है, नहीं अब तो बहुत बड़ा बिजनेस है।
2: नाजिया जी हाँ। आप खुद देखिए, आपको हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कतर में जी, जो जी। अच्छी क्वालिटी हाँ। का शहद है वो 3 digits में बिकता है मैडम, आप खुद देखिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये मैं कह तो रही हूँ कि अब तो बहुत बड़ा बिजनेस है बकायदा, और बिजनेस के चलते बकायदा इनको लेकर जाया जाता है, ट्रैवल कराया जाता है, और फिर पर्टिकुलरली इनसे फिर
2: तो मैडम आप उसको किसी भी वे में ले लो, एज अ मेडिसिन, एज अ आयुर्वेदिक, एज अ स्वीट, तो बहुत जबरदस्त चीज है वो शहद,
1: बहुत ही। और कितने साल आप रख सकते हैं, मतलब 1000 years कहा जाता है शहद खराब नहीं होता, ये कितनी बड़ी क्वालिटी है इसकी। सो
2: नेचुरल,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो नाजिया जी बस आप अगर इन केस फ्यूचर में हो तो मैडम सांपों के बारे में मैडम जरूर प्रोग्राम करना है, क्योंकि इनके बारे में ना बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन बनी हुई है लोगों की, क्योंकि हम लोग फिल्मों में हम लोगों ने देखा है ना
0: भाई।
1: आपके ऊपर कह रहे हैं
0: इच्छाधारी तो मेरे साथ ही है, इच्छाधारी।
2: अच्छा चलो, आज मेरे को सर पता चल गया भी, इच्छाधारी अलीगढ़ में पाए जाते हैं। थैंक यू सर।
0: ओके गावा भाई, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, ओके बाय बाय बाय।
1: और एक चीज और सर्वर, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मतलब बहुत ही अच्छा फैक्ट दिख रहा है 20 के लिए। 20 के बारे में कहा जाता है कि इनकी मेमोरी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि एक बार एक फूल पर ये अगर जाती है तो ये कभी भी डायरेक्शन और डिस्टेंस नहीं भूलती।
0: बिल्कुल।
1: एंड कैन यू बिलीव ये डांस भी करती है आपकी तरह?
0: जी जी, जब तो हमें जो कार्टून्स वगैरह हैं बच्चों के उसमें आप यूजुअली देखेंगी ये बात कि शुरू की अगर हम बात करें मिकी माउस वगैरह की बात करें तो उसके अंदर हमेशा इनको डांस करते हुए ही दिखाया जाता था, तो उसका ये फैक्ट है।
1: हाँ, ये फैक्ट है कि एक तरह का खास जब वो खुश होती है, जब उन्हें कोई बहुत अच्छा फ्लावर मिल जाता है
0: कलेक्शन के बाद,
1: उसके बाद वो दूसरे बीस को लोकेशन बताने के लिए दे डू अ काइंड ऑफ अ डांस। तो ये इसलिए भी कहा जाता है, तो मतलब कितनी कमाल की बात।
0: तो भाई अगर कहीं आपको नाजिया जी मिल जाती है।
1: एक चीज और सर्वर, इनकी क्या पता है कि 20 की जो है वो 9 आंखें होती है,
0: कुछ की मकड़ी की तरह
1: 9, और ज्यादातर 20 की तो 5 आंखें होती ही होती हैं, इसमें 2 बड़ी और 3 छोटी।
0: दो बड़ी और 3 छोटी।
1: अब मुझे समझ में आया है ये आपको ज्यादा कैसे दिखता है, हम इंसान 2 में चले आप 5 लेके चले।
0: बहुत सारे शॉट मिस हो रहे हैं इस वक्त मुझसे, ऑन एयर बैठा हुआ हूँ क्योंकि मैं कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। फरहत भाई हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से सर भाई? नाजिया बाजी खैरियत से हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: हेलो रमेश भाई, हेलो, मैसेज नहीं आ रहा। हेलो नाजिया जी और सरवर जी कहते हैं आप दोनों, गुड मॉर्निंग कहते हैं। हाँ सही वक्त पैदा कर दिया मैंने रमेश भाई का मैसेज 15 सेकंड पहले से।
1: और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी सरवर, बीस के बारे में मुझे बहुत अच्छी पढ़ने में लगी, जो फीमेल बीस है वो मेल बीस से 1000 times ज्यादा काम करती है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: समझ गया,
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये खाली बीस में ही थोड़ी है, ऐसा 20 में ही थोड़ी है नाजिया जी। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उससे पहले अमजद इकबाल साहब का यहाँ पर मैसेज है। अमजद भाई एंड तमाम उन लोगों को जिनको अपनी चेक की फिकर है, और ये उस हवाले से हम कह रहे हैं कि जो यहाँ मौजूद नहीं है किसी ना किसी वजह से और वो चाहते हैं कि उनका चेक कलेक्ट किया जाए, तो हमारे हमारे जो ऑफिस में हमने पता किया नाजिया ने और हमने, तो उन्होंने ये बताया कि एक मेल एड्रेस है जो हम आपको बता देंगे, टाइप करके भेज देंगे, जैसे मैं अमजद भाई को भी भेजना चाह रहा हूँ, कोई और भी उम्मीदवार है तो वो हमें बता दें तो हम उनको भेज देंगे। उसके ऊपर आपने मेल लिखना है, अपनी आईडी वगैरह अटैच करना है, और जो आपको फोटो आया है वो अटैच करना है, और ये बता देना है कि भाई ये मेरे नॉमिनी काइंड ऑफ कि ये आके कलेक्ट करेंगे ऑन माय बिहाफ। तो ये
1: तो एक प्रॉपर मेल जरूर लिखिएगा, और जिसको भी आप ऑथराइज कर रहे हैं उनका नाम और आईडी भी अटैच कीजिएगा।
0: वैसे हम बता देते हैं, ओके हम टाइप कर देंगे।
1: हाँ।
0: तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और आज खासम खास दिन जो है उसके हवाले से बातचीत चली रही है, आगे हम अपने गेम की तरफ भी रुख करेंगे।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हाँ जी लीजिए साहब, बज गए 12 और आगे 2 मिनट भी लगा लीजिए। तो साहब हुई हमारी वापसी और यहाँ पर आज बी डे का स्पेशल प्रोग्राम वर्ल्ड बी डे मनाया जा रहा है, जहाँ पर हम भी बातचीत कर रहे हैं, आपके किस्से कहानी सुन रहे हैं और किस तरीके से वो जरूरी है। नाजिया ने आपको बताया और समझाया भी और क्या क्या उनकी एक्टिविटीज हैं और क्या क्या उनकी सलाहियतें हैं टूवर्ड्स देयर फैमिली देयर वर्क, ये भी हमने जाना। हैप्पी हनी बी डे, हनी सरवर भाई, बी नाजिया बाजी और वाइस वर्सा कहते हैं। और हंस भी रहे अहमद भाई,
3: सरवर भाई बी
2: नहीं नहीं नहीं ये तो आपको ही लिखा है यार, इसको इसको इसको प्लीज इसका कोई और आप पलटिए ही मत, यही सही है सरवर भाई हानी, ये ना हानी। नसीम भाई है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सरवर भाई आपने नाजिया बहन को चैद मक्की बनाकर अच्छा नहीं किया, वैसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा भी मैसेज पड़ी
3: है। शुक्र है नसीम भाई, आज आपने कम से कम सही तो कुछ बोला।
2: वेरी वेरी वेरी ब्यूटीफुल कहते हैं
3: गाना,
2: मेरी बात कर रहे होंगे एक्चुअली।
3: आपका तो दूर दूर तक चांस नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ,
2: अल्लाह अकबर। हेलो सलाम अलैकुम।
3: वालेकुम सलाम।
2: Think of the bee and the bee appears. मैं नादिया की बात कर रहा था, यहाँ हमारे साथ सुमी जी हैं। Hi सुमी जी, how are you today? कहाँ थी आप इतने दिन से?
4: मैं यही नहीं, यही हूँ।
2: अरे यार तो हम तो इंतजार कर रहे थे, नाजिया ने 2 दिन पानी नहीं पिया प्रोग्राम में, इस चक्कर में और आप
3: जूस पिया,
2: आपका बहुत सब्जी से इंतजार हो रहा था, सही वक्त पे तशरीफ लाई है वैसे। तो क्या कहना है आपका बिरादरी के मेरे मतलब नाजिया, मेरा मतलब ये बी के हवाले से, आप तो टीचर है यार, पढ़ाती भी होंगी।
4: क्या ही कहूँ मैं आपकी तारीफ, क्या करूँ मैं
2: थोड़ी सी कर दी, थोड़ी सी
4: नहीं नहीं, लेजी लोग की तारीफ नहीं होती, जो काम करते हैं हार्ड वर्किंग होते हैं उनकी तारीफ होती है।
3: देखा
2: हाँ, तो बी उनमें से एक है। Let it be. Let it be.
4: आप मेल भी है ना?
3: आप वही वाले मेल भी है जो 1000
4: और वो एक ग्रास होपर वाली स्टोरी सुनी थी आपने?
2: हाँ नहीं बिल्कुल, मुझे गाना भी याद है, मेहनत करने से क्या फायदा। हाँ मैंने आपको गाना भी सुना दिया, उसका उसका कार्टून है बहुत पुराना, नाम भूल गया मैं इंग्लिश में क्या नाम था,
4: एनी हाउ वो एक कार्टून आता है ना, उसमें बेयर रहता था, याद होगा आपको।
2: क्या क्या, फिर से एक बार और बताइए।
4: एक फू करके आता था कार्टून, उसमें बेयर रहता था।
2: पू पू पू, हाँ यस यस, विनी विनी द पू, विनी द पू एक्चुअली। अरे बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यारे टेडी से मिला दिया मुझे।
4: और एक जंगल बुक आती है उसमें ना एक,
2: अरे उसमें उसमें सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, उसमें का एक हीरो है, का है ना। हाँ तो का से आपको कौन याद आ रहा है जल्दी बताइए।
3: सरवर
4: नहीं नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आप अपने रिश्तेदारों को ना गिनाएं।
2: अरे आपको कैसे पता, मेरी और नादिया की रिश्तेदारी भी होती है।
3: अपनी रिश्तेदारी की रखी
4: है,
2: जवाब मैं आप, जवाब तो मैं आप दोनों को बराबर दे सकता हूँ, एहतराम के खिलाफ हो जाएगा ऑन एयर।
3: अब आप इससे ज्यादा हम लोग क्या एहतराम के खिलाफ लेके जाएंगे, ऑलरेडी हमें यू टर्न तो करवा लिया।
2: तो मैम कुछ कहना जरूर चाहती होंगी जाहिर बात है, और कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकती हैं। बरइयों ततइयों ततैया
4: अपने इंडिया में एक वो एक बार
3: अपनी दुनिया में खो खो जा रहे हैं बार बार,
4: इनको बड़े डंक पड़े, इनको बड़े डंक पड़े
3: बहुत बहुत, और डंक टूट गए बेचारे के।
2: अच्छा अच्छा मैं तमाम लिसनर को बता दूं कि डंड नहीं कह रही हैं, डंक कह रही हैं सुमी जी, क्योंकि कोई और कुछ और बात समझ लेगा कि डंडे की बात हो रही है, तो वो स्पेशली बी ई ई बी की बात कर रही हैं जो डंक मारती है एक्चुअली उसकी खास बात हो रही है।
3: ये तो आपकी भी खासियत है, वेटनाम को बहुत रहा है।
2: देखिए कभी गुरूर नहीं
4: की डंक मारते हैं बेचारी, जो डंक मारे वो जहर के मारे मर जाते हैं।
2: बहुत वेट किया नादिया ने, हर बार 47 किलो निकला,
3: बार बार वेट किया उसने कहा आप कहाँ से
4: भाई ना, बड़े सुकून से तेरे
2: मैम हम तो आपका इंतजार कर रहे थे।
3: झूठ कम बोला कीजिए, आज आपका दिन है।
2: उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। भाई वाह क्या बात है। तो सुमी जी गेम भी खेल लेते हैं, उल्टी गिनती चल रही है और उसमें आप हिस्सा
4: मुझे ना उसको पता नहीं कभी की फीलिंग आती है, मैं उल्टी गिनती पढ़ ही नहीं पाती हूँ।
2: अरे कोशिश तो मतलब ऐसी बस
4: सीधे सीधे सीधे गिनना आता है, नोट मुझे उल्टे उल्टे नहीं
2: गिनना। बहुत कुछ बता गई हैं सुमी जी, बहनों भाइयों दौलत की कमी नहीं है लेडीज पे, मैं से नाजिया हूँ या मैं सुमी,
3: हर जगह मेरा नाम आपको लेना ही है बीच में।
2: हाँ आपने सही कहा।
3: अल्लाह आपकी जबान इस मामले मुबारक करे
2: भाई। सुमी जी नाजी जी क्या कहती हैं, गेम खेल लिया जाए सुमी जी के साथ?
3: अगर तैयार हैं तो सुमी
2: सुमी प्लीज तैयार हो जाइए सुमी जी, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि आप गेम खेल लीजिए हमारे साथ।
3: जस्ट डिनाय
2: वाह क्या गिनती लिखी मैंने, देखी दो दो दो दो क्या कहने। तो सुमी जी अब उल्टी गिनती की तरफ रुख करते हैं और आज हम 2000 की सीरीज में वापस जाएंगे। तो आपको जो स्लॉट दिया जा रहा है गिनती का वो है 2232 से 2222
4: 2232
2: से 2222 only। ये आप ट्रांसफर कर दीजिए, मैं आपको फॉरन का लिंक भेज दे रहा
4: हूँ।
2: नहीं मैंने कहा कि आपने सही सुना है 2232 2222 आसान है सुमी जी,
4: आसान तो है,
2: आराम आराम से भी कीजिए।
4: 2031
2: अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, जरा टाइम भी देख ले,
3: रह चुकी है सुमी।
2: हाँ बिल्कुल, और इसमें कोई टाइम लिमिट ऐसी नहीं है, बस आप जितने टाइम में करेंगी यही है कि दूसरा कोई उतने टाइम में ना करे, उससे कम में करेगा तो ठीक है वो भी चैंपियन हो सकता है, हो सकते हैं, हो सकती हैं, आप जितने टाइम में करेंगी वो आपका रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है क्लियर हो गया ना, कहाँ से
3: तैयार है?
2: आपको 2232 को भी इंक्लूड करना है, 2222 भी कहना होगा। हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, स्पेनिश, पंजाबी और इटालियन,
3: वो इन्हें समझ में नहीं आएगी, आप कह सकते हैं
4: कौन सा साइलेंट वर्जन मैंने पढ़ ली।
2: साइलेंट
3: कुछ नहीं समझ में आना, एकदम समझ में नहीं आई, ये मजबूर है आपको कहेंगे बहुत अच्छा।
2: नादिया जी आपको इसलिए तो मैं अपने साथ लिए बैठा हुआ, आप तो माशाल्लाह से इसको पहचान लेंगी कहीं ना कहीं से। चलिए सुमी जी रेडी?
4: रेडी
2: चलिए ठीक है, तो आपका टाइम शुरू होता है अब।
3: 2232 2231 2230
4: बिल्कुल नहीं अच्छे, इनको ग्रामर भी चाहिए मैथ्स में।

0: सुमित जी, मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल कह सकती हैं नाजिया जी की बात पे हाँ कहा है मैंने,
1: क्या
0: मतलब वो इस तरह भी कह सकती हैं।
2: अगर आपको ये शॉर्ट पड़े तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है।
0: काली रातों को भी रंगीन कहा है मैंने, तेरी हर बात पर आमीन कहा है मैंने नादिया जी। सुमित जी तो रेडी हैं?
1: हाँ।
0: चलिए ठीक है, आपका टाइम शुरू हो गया अब।
1: 2232
0: से हमें जाना है वापस, ठीक है?
1: नहीं बोल पाऊंगी।
2: अच्छा चलिए, फोर्स नहीं करते सुमी को। हाँ कोई बात नहीं, अभी हो सकता है उनका गुड स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो, सो नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे। बट आप ऑलरेडी विनर भी रह चुकी हैं, ये है आपके साथ, फिर ट्राई करेंगे आपके साथ। अरे नहीं है सुमी, आप बहुत अच्छे
0: खेल रही हैं,
2: विनर बन चुकी हैं
0: जी।
2: हो सकता है अभी आप प्रिपेयर नहीं है मेंटली, दैट्स ओके,
0: नो प्रॉब्लम,
2: ये हो सकता है।
0: और कुछ कहना चाहती हैं, डांटना चाहती, मेरा मतलब ये है तारीफ करना चाहती हैं?
1: हाँ, वीकेंड आ रहा है, कब बुला रहे हैं दावत पे?
0: वीकेंड आ रहा है, कब बुला रहे हैं दावत पे?
2: बुलाते हैं ये, डेट कभी नहीं बताते हैं।
0: जाने का नहीं, रात भाई कह गए बुलाते
1: जाने का नहीं।
0: हां वही वही वही,
1: जाने का नहीं,
0: वही वही वही। भाई वाह, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हैं हमारे साथ
1: जी। टूट गया मैं,
0: कौन सी मिस सुमी?
1: एक सीरीज है तू या मैं, नेटफ्लिक्स पे।
0: अच्छा नहीं अभी तक तो,
1: फिर बताइएगा। अच्छा, मैं आपको एक क्लू देता हूँ, जिसमें क्रोकोडाइल है ना, वो हो आप।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई, क्या खूबसूरत चीज से आपने मुझे निभाया, मतलब मिलाया है। नहीं बहू का तो नहीं मालूम, मगर जेठ जो है
1: जरूर देखिएगा।
0: चलिए मैं देखता हूँ, काफी मिल रही शबात है मुझसे उनकी,
2: बहुत ज्यादा
0: मिस्टर क्रोकोडाइल।
2: सर सर क्रोकोडाइल,
0: सर सर
2: सर क्रोकोडाइल पर।
0: सुमी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा दिन बनाने के लिए और तशरीफ लाने के लिए, इसी तरीके से आती रहा करें। नादिया जी को बड़ा इंतजार
2: रहता है आपका,
0: बहुत बहुत शुक्रिया सुमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू सो मच। तो भाई ये थी सुमी जी हमारे साथ, और यहाँ पर गेम भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है,
2: और
0: हमारे साथ चैंपियन भी जुड़ गए हैं। बिल्कुल, ये मैंने मैसेज खोलते खोलते फोटो क्यों खोल लिया, मतलब कैमरा क्यों खोल लिया, डर गया मैं। हाय,
3: वालेकुम
2: अस्सलाम
0: वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु, कौन है हमारे साथ? अरे क्या बात, कौन है हमारे साथ, नाम नहीं बताया आपने?
3: जाकिर,
0: जाकिर भाई, एहलन व सहलन।
3: अरे उवैस भाई, उवैस बोल रहे हैं,
0: तो आप ही थोड़ी सता सकते हैं हमें, करवटे ले रहे हैं हम, सो के उठे नहीं पूरी तरीके से, ठीक है भैया अल्लाह। घंटी भी बज गई इस चक्कर में, देखिए।
3: आपको बता रहे हैं, आवाज ही नहीं आप पहचानते हैं।
0: अरे नहीं बिल्कुल पहचानते हैं, ये बेल्ट की आवाज है, आपने बेल्ट नहीं लगाई है, बेल्ट पहनी है।
3: लगा ली है, वो गाड़ी ऐसी है कि कोई भी बेल्ट ना लगाए तब भी वो आवाज बजती रहती है, हमने तब भी लगा।
0: अरे तो ये अच्छा चलिए, खैर मैंने सोचा शायद वाइफ की गाड़ी लेके निकले आप आज।
3: वाइफ है नहीं यहाँ, उनकी गाड़ी कहाँ से आई?
0: उनके नाम की गाड़ी, जब तो आपने बताया कि खामोश नहीं होती है, तो समझ रहे होंगे आप, कहीं ना कहीं दिल करता ना इंसान का कोई तो बात करे, अकेले कब तक वैस भाई घूमते रहे हैं वैस भाई।
3: नहीं नहीं नहीं, सही बात है।
0: चलिए तो गेम के लिए रेडी,
2: मत उन्हें बिगाड़िए
0: वैस भाई, गेम के लिए रेडी,
3: सही बात है, गेम है क्या?
0: ओहो अब तो करना पड़ेगा
2: उल्टी गिनती, रिवर्स काउंटिंग।
0: ये मुझे इसको तो खामोश करिए, मुझे ऐसा लग रहा है जो फ्लाइट पे बैठ के मैं करता हूँ बार बार एयर होस्टेस को बुलाने के लिए, टुंग टुंग। ये देखिए बिल्कुल सुनी सुनी सुनी खामोश, बिल्कुल फ्लाइट वाली मिले, टुंग टुंग, एक्सक्यूज मी।
2: इसीलिए एयर होस्टेस जब भी होती है इनको पैराशूट पहना के बैठा लेती सीट कभी नहीं।
0: इधर आओ भैया, इधर आओ,
2: पहन के बैठो,
0: यहाँ
3: इधर आओ, ये बार बार जो बजा रहे हो, इधर आओ खिड़की पर खड़े हो,
2: अब तो नहीं पहना के बैठाना जाता है बकायदा, बाकियों को सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिए गए, आप पहन लीजिए प्लीज, पहले पहने
0: क्योंकि आप तो मजबूर करेंगे।

0: गई हमें
1: धक्का देने का।
0: चलो वैसे भाई गेम खेल लेते हैं इसी बात पे। तो आपने क्या करना है, उल्टी गिनती करनी है और आपका टाइम जो भी होगा वो डिसाइड करेगा कि आप चैंपियन हैं या नहीं है, ठीक है? और गिनती कहाँ से शुरू करनी है, यही अच्छा सवाल है। तो आज हम 2000 की रेंज में बात कर रहे हैं, तो आपको 2232 से 2222 जाना है।
2: 2232 से 2222
0: आई वाह,
2: ठीक है।
0: 2232 to 2222
1: आप जिसमें चाहें।
0: इंग्लिश में करेंगे तो ऐसी करना पड़ेगा जैसे मैंने आवाज निकाली है, ऐसी वाली।
2: ये एरोसेस वाली है।
0: हाँ, वरना देसी में तो अपने भैया 2232 से 31 से 30 वैसी वाली, ठीक है।
2: 2232, 2231, 2232, 2222, 2227, 2228, 2229, 2230, 2232, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229, 2229,
0: मालूम है क्या हुआ भाई? हाँ नहीं सुनिए ना, आपको दोबारा करना पड़ेगा, हमने घड़ी ही नहीं चालू करी थी, आप शुरू हो गए एक बार और। घड़ी शुरू हो जाओ, मतलब घड़ी को रेडी कर रहा हूँ मैं,
1: ये घड़ी को हाथ पकड़े रो गया रहता।
0: आपका टाइम शुरू होता है अब। वैसे रिकॉर्ड बनाने वाला मैं इसमें बता रहा
1: हूँ, अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई।
0: चलिए ठीक है, गला भी साफ है और रास्ता भी। हाँ कर दिए।
2: 2232, 2231, 2232, 2238, 2239, 2240, 2228, 2229, 2224, 2223, 2222
0: हो गया। क्या कहने, बीच में जो सांस ली है उसमें एक सेकंड गवा दिया आपने, वरना 9 सेकंड का स्कोर होता, ये 10 सेकंड में पहुंचा, विच इज रियली जबरदस्त यार उवैस भाई।
1: अच्छा, और क्योंकि बड़ी डिजिट है, 4 डिजिट काउंट है, लेकिन आपने उसके बाद भी बहुत अच्छा।
0: क्या कहने भाई, क्या कहने, जबरदस्त,
1: बहुत अच्छा खेला।
0: चैंपियन उवैस भाई, चैंपियन सुमी जी से पहले क्या बात है, बड़े बड़े चैंपियन
2: हो जाते हैं, मगर आप लोग कोई अवार्ड नहीं, मतलब
1: सारे गिफ्ट्स इनके घर पे रखे
2: हैं। कोई बिरयानी की दावत होती है ना,
0: ये कौन था बिरयानी के नाम पे?
1: वो कह रही है नहीं देंगी दावत, देंगे ही नहीं दावत भाई।
0: अरे लाइए बात करवाइए, कौन है साथ में?
2: अरे वो नहीं,
0: आप हम नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं करते भाई, कह रहे आपसे बात नहीं करेंगे, मतलब मैं नादिया से करवाता अगर। चलिए उवैस भाई, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बड़ा ही मजा आया और बड़े अच्छे खेले भी, अभी तक के चैंपियन आप ही हैं, मैं बता दूं। ठीक है
2: जी जी, इंशाल्लाह
0: कल मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है,
2: कहाँ पे?
0: बस जहाँ पे भी कह देंगे, पहले चाय पी लेंगे, पहले चाय पी लेंगे, उसके बाद आगे की तरतीब करेंगे।
2: ठीक है, उनको एड्रेस आपने बहुत अच्छा बताया था।
0: किनको?
2: वो क्या मतलब, अरे म्यूजियम वाला परसों।
0: अच्छा, मुझे 12 घंटे पहले का याद नहीं रह रहा उवैस भाई,
1: परसों घंटे में भूल गए कौन तो?
2: अच्छा 2 घंटे में आप भूल जा रहे, मगर बिरयानी 2 घंटे में नहीं भूलते हैं।
0: वो कहा आदमी ऐसी चीज नहीं भूलता ना, जीने के लिए,
1: दिल में रखी है,
0: जीने के लिए जो चीज चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए, जैसे सांस है, पानी है, ऐसे ही बिरयानी है भाई।
1: ऐसा नहीं था,
2: बिरयानी आपको इतनी बर्फ बिरयानी क्यों पसंद है ये बताइए मिर्जा साहब।
0: देखिए इसमें दो चीजें हो सकती हैं, बिर आनी है तो जो चीज आती है एक्चुअली वो मुझे ज्यादा पसंद है, अब बिर जाती वो अच्छा नहीं लग रहा था, बिर आनी तो इसमें आना है, पहली बात तो ये। अब जब आ गई तो फिर तबीयत भी अच्छी कर रही है, अपने आप को खुश भी कर रही है, मुख्तलिफ चीजें हैं। लंबा प्रोग्राम एक पूरा कर दूंगा मैं इस पे किसी दिन आपके साथ मिलके।
2: ठीक है ठीक है ठीक
0: है, ओके वेल भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और आपका स्कोर है 10 सेकंड और आप अभी तक के चैंपियन है। थैंक यू सो मच हमारे साथ।
1: एक और चैंपियन हमारे साथ यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं,
0: चैंपियन हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पर मैसेजेस भी हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर फोटो भेजा है अपने दोस्तों का, वेरी गुड। कह रहे हैं मेरा फोटो तो नहीं मिला पर मेरे छोटे भाई का मिल गया है। हमारे यहाँ अगर किसी को बी काट ले तो उसे कहते हैं कि कितना पैसा किसका अच्छा किसी का पैसा चुरा के रखा है, सिर्फ हमें भी अभी तक कलेक्शन का एसएमएस नहीं आया है। ओहो, हमने वही बताया आएगा। कौन है हमारे साथ? आरिफ अंसारी साहब। आरिफ भाई बिल्कुल आएगा, जैसे नाजिया ने बताया जल्दी पहुंचेगा और आप तो यहाँ इंशाल्लाह मौजूद होंगे ही, तो हमें लगता है कि आप कलेक्ट भी कर लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
0: अहलन वसहलन, कौन है हमारे साथ?
3: आपके पास शाकिरुल्ला।
0: शाकिरुल्ला, क्या बात है?
1: जी।
0: खैरियत से शाकिर भाई?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ, सब ठीक ठाक
0: है?
3: बराबर है, तबीयत सही है?
0: अल्लाह का शुक्र है, पहले से आराम है अल्हम्दुलिल्लाह, और नेमत ही नेमत है, अल्लाह ताला का हर तरह से शुक्र एहसान है। उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे और खुश होंगे।
3: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान करम है।
0: क्या बात है, तो चलिए शाकिर, मेरा मतलब है शाकिर भाई, शुरू कर लेते हैं गिनती, क्या कहते हैं?
3: बिल्कुल
0: ओके, तो आसान दे दूं थोड़ी सी?
1: बिल्कुल
3: बिल्कुल
0: बिल्कुल। तो 2288 से 2278 जाना है।
3: माशाल्लाह, इतना आसान?
0: ऐसे कर देता हूँ यार, मोहब्बत है आपसे अलग, एक अलहदा खास किस्म की शाकिर भाई, तो
1: अल्लाह महफूज रखे,
0: मजबूर हूँ
1: इस तरह की मोहब्बत से।
0: रेडी है?
3: अगर आपका मोहब्बत है इसमें तो फिर तो बात भी नहीं कर सकते ना।
1: अरे क्यों नहीं, बात जरूर कीजिए,
0: बात करने से बात बढ़ती है भाई,
1: ऊपर नीचे हो सकती है,
0: बात करने से ही बात बढ़ती है, रोज बातें किया करो हमसे शाकिर भाई।
3: मोहब्बत में हर चीज जायज है ना।
0: हाँ बिल्कुल,
1: तब तो दूध
0: बिल्कुल
1: निकलते निकलते बच्चे।
0: चलिए तो शाकिर भाई शुरू कर लेते हैं।
3: ओके
0: ओके, तो आपका टाइम शुरू होता है अब।
3: 2282 2287 2284 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2
0: अच्छी रेंज थी और उस हिसाब से 12 सेकंड में आपने किया है, नॉट बैड एट एट ऑल.
1: चलिए फिर भी काफी अच्छा और काफी क्लियर आपने किया, बहुत साफ
0: लाउड एंड क्लियर. और कुछ शेयर करना चाहते हैं शाकिर भाई, थोड़ी तारीफ करेंगे मेरी जाने से पहले?
3: बिल्कुल लाजिम लाजिम, आपका तारीफ तो बनता है. अच्छा? आप दोनों का तारीफ बनता है.
0: अच्छा?
3: हाँ जी.
1: बेचारे जबरदस्ती, अभी उन्होंने लंच नहीं किया, आप झूठ बुलवा रहे
0: हैं. हाय
1: पहले ही झूठ.
0: ओहो बहुत बहुत शुक्रिया.
1: कोई तारीफ करेगा?
0: ये कर ही नहीं, खुद ही आहा हो कर
1: नहीं, ये कह रहा है दिल तो नहीं चाह रहा. चलिए
0: फिर भी
1: कर ही देते.
3: नहीं नहीं नहीं,
0: दिल मतला से रहा है मगर अब कर देते हैं.
1: दिल भारी हो रहा है,
0: क्या करें, कोई बात नहीं.
3: दिल से आप दोनों का तारीफ कर रहे हैं, दोनों दिल से.
0: हाँ दिल से देसी.
3: हाँ
0: कहिए, दिल से देसी.
3: दिल से देसी,
0: यही है यही थी तारीफ भाई. शाकिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया वार्ता जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच शाकिर भाई, थैंक यू सो मच. ऑलराइट देन, आफ्टरनून एक्सप्रेस पे एक ब्रेक ले लीजिए ना जी, थोड़ी सांस ले ली जाए और एक नगमा को भी देख लेते हैं, मतलब मेरा एक नगमा सुन लेते हैं. हाँ बिल्कुल, नगमा भी सुन लेते हैं. तो भाई यहाँ पर आपके लिए खासम खास एक नगमा, तू है तो मैं हूँ, अरिजीत और अफसाना एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं. बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है, इसको एंजॉय कीजिए. आए हाय हाय हाय हाय हाय,
4: सुबह सुबह तेरी यादें,
0: दोपहर दोपहर
4: सुबह
0: अपनी तरफ से बना ले,
4: सुबह दिन बना
1: दे, बना ले.
0: एंजॉय कीजिए ट्रैक, सरोना दिया यूं गए और यूं आए.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: घर में खाना अगर बच्चों की पसंद का हो तो घर में सुकून बना रहता है। अब आप सोचिए अगर आपके घर में ही एक नन्ना शेफ छुपा हो तो प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म है ना। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं खास शो जिसमें आपके घर के उस नन्हे शेफ को मिलेगी इंस्पिरेशन और रेसिपीज का खजाना। आरजे सरवर के साथ सुनिए जूनियर शेफ हर जुम्मे की दोपहर 2:30 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। लीजिए हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
3: यू आर लिसनिंग टू
2: आफ्टरनून एक्सप्रेस।
3: तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ
4: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक
3: ओनली ऑन FM 107। दिल से देश।

0: तो भाई याद तो आ रही है और यादों के साथ साथ यहाँ पर आफ्टरनून एक्सप्रेस पे काफी कुछ हो भी रहा है क्योंकि गेम जारी और सारी है। और हमारे साथ यहाँ पर एक चैंपियन भी जुड़ गए हैं, आइए उनसे करते हैं बातचीत और देखते हैं कि आज कितना कमाल कर पाते हैं वो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि
0: व बरकातुहू। कहाँ थे यार, मतलब कहाँ यार, 3-4 साल हो गए यार आपसे बात करे यार। शहजादा भाई कहाँ थे?
2: खफा थे।
1: किसी में खफा नहीं थे, बस यही थे, आपके साथ थे। बस ये है कि कहीं रास्ता नहीं मिल पा रहा था कि कैसे कहाँ कनेक्ट हो जाए, लेकिन बहरहाल आखिरकार पहुंच ही गए।
0: अच्छा, रास्ता
2: रास्ता भटक गए थे आप?
0: क्यों ऐसा हुआ?
2: आप जो मिसगाइड करते हैं लोगों को,
1: अनजान राही आवारा दिल पता नहीं कहां कहां चला गया।
2: क्या था
1: जी?
0: अपने नाम बता रहे थे।
2: मैं थोड़ा भटका फिर सीधा क्रिकेट ग्राउंड निकल गया।
0: अरे
2: सीधा वहीं चला
1: जी जी
0: जी जी।
1: नहीं, मैं बोला अनजान राही राह पे अनजान निकल गया और पता नहीं कहाँ जाके फिर पहुंचे अपने मंजिल पे।
0: बहुत ही खराब शेर था यार, बिल्कुल मजा नहीं आया शहजादा भाई। तो जा रेडी है गेम खेलने के लिए?
1: अभी आज का कौन सा गेम है? वही है पुराना वाला। कौन सा है?
0: कौन सा याद है? वही कर देंगे, मतलब वही खेल लेंगे।
1: क्योंकि मैंने फोन चालू किया बस। आप
0: नहीं तो याद कौन सा आई है बताइए।
1: कौन सा? नहीं, बिल्कुल याद नहीं है। उल्टी गिनती तो एक याद था।
0: वही टेस्ट हो रही थी यहाँ पे गिनती के साथ, ब्रेन भी आपकी।
1: अच्छा अच्छा,
2: उल्टी गिनती है।
0: उल्टी गिनती है,
2: सीधी है, चलवाने नहीं देते, उल्टी ही चल रही है।
0: तो 2000 की रेंज में आज बातचीत चल रही है। अगर थोड़ा डिस्काउंट चाहिए तो नादिया से संपर्क करें, ठीक है? 2000
1: कृपया डिस्काउंट करिए।
0: अच्छा,
2: 2000 काट दीजिए,
0: 4 कम कर देते हैं, 46 कर देते हैं। तो 2246 से 2236 वापस जाना है आपने।
1: 2246 से?
0: हाँ।
1: अच्छा, अरे बाप रे, इतना बड़ा फिगर है ये।
0: हाँ बताइए, मेरे बराबर हो रहा है।
1: 2246,
0: इसी में 10 सेकंड निकल गए। 2246,
2: और ये हुए 10 मिनट पूरे। वाह
0: वाह वाह, क्या जीते हैं।
1: ओके।
0: चलिए रेडी हैं? घड़ी कहाँ गई भाई?
1: जी
0: इतनी देर में आपने मेरा मोबाइल उठा लिया,
2: सही नहीं लगा उसे।
0: 2 सेकंड नहीं छोड़ती भाई कोई ऐसी चीज के, बस क्या बताऊं मैं। घड़ी हो गई है रेडी। चलिए तो रेडी है।
2: मुझे उठाना ही हो तो मैं फोन क्यों उठाऊं, जबान ना निकालूं।
0: अब ये क्या शेर सुनाया भाई, क्या शेर सुनाया, जबरदस्त मजा आ गया सुन के। तो रेडी है शहजादा साहब?
1: जी जी जी जी।
0: चलिए एच, और आपका टाइम शुरू हुआ अब।
1: 2246, 2245, 2244, 2243, 2242, 2200, ये क्या हो गया ऊपर, 2240, 2240, 2239, 2238।

0: 2237 2236।
1: आज का चैंपियन द वन एंड ओनली शहजादा सलीम, जिन्होंने पूरे 22 सेकंड लिए, 10 की बात हुई थी और अभी तक नीचे से टॉप किया आपने। भाई वाह क्या बात है, बहुत मुबारक हो साहब। शहजादा साहब आप बिल्कुल टॉप पे हैं,
2: माशाल्लाह।
0: ये तो बस
1: ऐसे
0: मैंने तुक्का लगाया था और सही लगा मेरा ख्याल है।
1: क्या बात,
2: सही लग गया।
1: कभी कभार तिक्का भी लगा दीजिए तुक्के की जगह, तो हमारा भी फायदा हो जाए। खाली तुक्के पे ही बात हो रही, तिक्के पे कभी बात मत करिएगा। तिक्के पे लगा, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट तुक्का, व्हाट इज दिस, थिंक अबाउट तिक्का।
0: जी जी जी, तो मैं अभी टॉप पे हूं। थिंक्स
2: अबाउट टोटी, नॉट अबाउट टोटी।
1: जी जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, आई आई आई आई, जी जी जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लंच किया नहीं अभी, लग रहा खाने में कुछ लगे हुए थे,
0: है किया और
1: कर लिया
0: जो था। हाँ लंच किया, और यही है कि आपका जो प्रोग्राम 11 बजे वाला है ना,
1: हाँ,
0: वो जब स्टार्ट होता है तो मैं कहीं ना कहीं मतलब रेडियो से दूर रहता हूँ।
1: तो जब भी आप ये 12:48 वाले पे आए, 11 बजे वाले पे नहीं आए, 11 बजे वाला होता है तो 11 बजे वाले पे आइए कल से
0: इंशाल्लाह। हाँ, और ये तो रहेगी पूरी कोशिश, नहीं तो फिर 6 बजे वाला तो कंफर्म है नाजिया जी।
1: ओ हो हो हो, क्या बात है, क्या कह रहे भाई, किडनी बिल्कुल सही, मेरे मतलब माशाल्लाह दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा है भाई शहजादा भाई, क्या कह रहे भाई, वाह वाह वाह वाह, अल्लाह ताला से।
0: आप कौन से शेड्यूल में रहोगे सरवर भाई, आपका नहीं पता है 1 जून से?
1: मैं तो पता नहीं शेड्यूल में ही नहीं दिख रहा कहीं, अल्लाह रहम करे।
0: नहीं तो आपको तलाशना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा।
1: तलाशी तो मेरी हो रही है आजकल, तलाशू मैं क्या, मेरी तलाशी चल रही,
2: तराशे जा रहे हैं।
1: आया आया आया, मुजस्समा बनाया जा रहा है मेरे अंदर से।
0: हाँ वो
2: दो निकालेंगे,
1: अरे हाँ
2: एक नहीं दो दो।
0: एक तारीख का अपडेट मुझे आपका मिलना चाहिए, आप कहाँ पर रहोगे?
1: अच्छा,
0: सही है,
1: मैं बताता
2: हूँ। गेट के बाहर रहेंगे,
1: ऑफिस के बाद कहाँ पे मुलाकात कर सकते हैं ये बताता हूँ आपको।
0: जी जी जी,
1: जरूर। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा सलीम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: चलिए,
1: अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत ही प्यारे शहजादा भाई हमारे साथ,
2: बहुत ही अच्छे इंसान।
1: और अभी
2: एक और चैंपियन जुड़ रहे हैं सर,
1: जो रिकॉर्ड है वो कितना है अभी बताता हूँ। हेलो सलाम वालेकुम।
3: सलाम
1: सलाम, अल्लाह का शुक्र
2: है,
1: मुझे लगा था नॉक करके, मैंने कहा आइए साहब तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। अंशु भाई
3: जी, बिल्कुल,
1: कैसे हैं अंशु भाई?
3: अल्हम्दुलिल्लाह,
1: अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। गेम खेलने के लिए रेडी हैं?
3: जी जी,
1: आसान या थोड़ा और आसान?
2: सबसे आसान।
1: क्या कहने भाई, 2264 से 2254 जाना है।
3: 2264 से 2254 जाना है,
1: 10 पीछे जाना है, ठीक है? घड़ी रेडी कर लूं?
3: रुकिए रुकिए, एक सवाल है, जैसे 2264 से 2254 जाना है, ठीक है? चलिए ठीक है,
1: ठीक है,
3: रेडी,
1: चलिए ठीक है,
3: ओके
1: ठीक है।
2: हाँ भाई ठीक है भाई,
1: अच्छा ठीक है,
2: बिगाड़ के मानेगा,
3: बोले है कि नहीं?
1: अरे बोले है भाई, क्यों नहीं बोलेंगे भाई, ये घड़ी हो गया रेडी, ये मानती नहीं है ना नाजिया, बीच में डिस्टर्ब करते रहे हर टाइम, क्या करें भैया, अभी घड़ी हो गई रेडी, आपका समय शुरू हो गया। एब
3: 2257 2258 2260 2262 2265 2257 2258।
1: बहुत अच्छा जा रहे थे, बहुत अच्छा जा रहे थे, रास्ते में नाना पाटेकर मिले।
3: 57 के बाद 56 नहीं बोल पाए, 66 बोल दिया।
1: बताइए, पूरे 10 आगे बढ़ गए, गब्बर की

0: फिर खेलेंगे
1: फिर ट्राई करेंगे
0: आप फिर चांस देते हैं।
1: चलिए एक एक
0: आप हमारे प्यारे अंशु भाई यार कैसे नहीं, घड़ी तोड़ दूंगा अगर नहीं अगर सेट हुई दोबारा हो गई। चलिए बच गए
1: पार्किंग
0: में नहीं थे अभी तक, ये तो खतरनाक जब ही नहीं
1: आप
0: डिस्ट्रैक्ट
1: थे थोड़ा
0: सा पार्किंग में लगाइए हाँ
1: सर आप भी लगा लीजिए, मेरा मतलब है जबान
0: पार्किंग में
1: लगा
0: दी स्लॉट खाली
1: खाली है
0: रेडी है
2: लग गया
0: दर्द तो नहीं हुआ
2: नहीं नहीं
0: अच्छा
2: नहीं,
0: अच्छा अच्छा गाड़ी पार्किंग में लगा दी अच्छा चलिए ठीक है तो अब रेडी हैं 2264 से पीछे जाना है ठीक है चलिए आपका टाइम शुरू हो गया अब
2: 2064 से
1: 2054
2: तक
0: हाँ
1: 10 सेकंड
2: में ठीक है
1: यल्ला जितने
2: सेकंड्स
1: में आप
0: जाएं
1: कोशिश कीजिए
0: 2064 2200 कौन देगा ऐसे थोड़ी दिए थे मैंने ये पैसे हाँ 2000 2064 2200 62 2260 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2 जो लय थी वो वही वाली थी, क्या बात
1: है, होना भी चाहिए।
0: अंशु भाई
2: बचपन पटक गया।
0: हाँ नहीं, अब ऐसा आपने अच्छा किया और 15 सेकंड में किया आपने, बट चलिए फिर भी
1: आपने किया,
0: वेरी गुड हो गया अंशु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए,
1: थैंक यू सो मच,
0: बाय।
1: एक और चैंपियन हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट होते हुए, हेलो,
0: हाय,
3: हेलो, गुड आफ्टरनून,
1: वेरी गुड आफ्टरनून,
0: कौन है हमारे साथ?
3: आपके छोटे भाई रमेश।
0: अरे भैया,
1: आज आपने सही करा, आवाज बदल के,
0: आवाज बदल बदल का आई वो,
1: वरना हेलो हेलो भी फंसा के रखा हुआ है।
0: सर्वर भाई, आप लोग आज तो आपने फंसा लिया भैया, रमेश भाई
1: बहुत अच्छा किया आज।
3: जी सर,
0: क्यों किया ऐसा मेरे साथ?
1: सही किया आपने,
0: क्यों मेरे पास आने की कोशिश करते हो? तो रहो मुझसे, शिल्पा शेट्टी का डायलॉग था धड़कन का, आपको याद आ गया, शिल्पा शेट्टी में याद आ गया,
3: सब कुछ सिखा पढ़ा दे रहे हैं।
1: और काम की कोई बात नहीं सिखाएंगे आपको, उल्टी गिनती, उल्टी बात,
0: उल्टी
1: चंटी, उल्टी
0: शिल्पा चंटी, शिंकी बहन चंटी। चलिए भाई रेडी है रमेश भाई?
3: हाँ चलिए सर,
0: चलिए तो कहाँ से दे दूँ गिनती आपको?
1: 13
3: जहाँ से सर, जहाँ से दिल करे सर।
0: अजी हाँ,
1: 13
0: हेलो,
3: सर बोलिए बोलिए,
0: हेलो रमेश भाई,
1: शुरू हो गया, मत बोलिएगा मत
0: बोलिएगा, ऐसा थोड़ी जाने दूंगा। ओके, तो 2000 नादिया ने ये स्लॉट दिया आपको, 2223 से 2213, ना तेरा ना मेरा, इसको 14 पे सेट कर लेंगे, ठीक है?
1: 2223
0: दूसरा हिसाब याद आ गया मुझे। चलिए तो गेम शुरू करते हैं रमेश यादव साहब के साथ, यहाँ पर घड़ी किधर है ये रही। ओके, तो आपका टाइम रेडी है रमेश भाई? ओके, गो।
3: 2000 कितना सर, सॉरी एक बार फिर से बोलता हूँ, 2023 से
1: 2223
3: अच्छा 2223 से 2213
0: ये 200 कौन देगा यार, हर कोई मेरे 200 रखने में लगा हुआ, ये भी तो चाहिए।
3: 2223 से 2213
0: चलिए, मोटो जीपी के आसपास कहीं है क्या? चलिए शुरू हो जाएगी,
3: 2223, 2222, 2221, 2220, 2219, 2218, 2217, 2216, 2215, 2214, 2217,

0: क्या कहने भाई, कितने सेकंड में किया होगा आप बताइए अंदाजन।
1: 9
2: सर, मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ।
0: ये क्या कर दिया?
2: नहीं सर, अंदर था, कोई बात नहीं है।
0: नहीं तो गाड़ी के अंदर, अच्छा गाड़ी के भी बाहर होके चला रहे हैं आजकल ये ले भैया। एक तो गाड़ी चलाई मैं और बाहर से चलाई मैं, बड़ा जुल्म है भाई। रमेश भाई बात नहीं करेंगे अब, बाद में बात करेंगे। आपने 11 सेकंड में किया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल बात करेंगे, प्लीज कल गाड़ी पार्क करके बात करिएगा, ठीक है मेरे भाई प्यारे। ओके बाय। यार रमेश भाई के साथ साथ सबको याद दिलाना चाह रहा हूँ, प्लीज आप लोग गाड़ी पार्किंग में लगाइए। मुझे मालूम है आप लोग मशगूल हैं और हमारा साथ देना चाहते हैं, ये मोहब्बत है, नवाजिश है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा ना करें कि आप कॉल ही ना करें, थोड़ा सा वक्त निकाल लिए बस एक मिनट का, पार्किंग कीजिए और हमारे साथ जुड़िए।
1: बिल्कुल, एक और हमारे साथ
0: यहाँ पर कनेक्ट हो गए हैं। हाय, नहीं बोल।
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ?
3: जी मैं सैयद फैजल बात कर रहा हूँ।
0: अरे कहाँ हो फैजल भाई?
3: काम का चक्कर सर भाई, काम का चक्कर।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला काम बरकरार रखे और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़ते भी रहें, बीच में थोड़ा वक्त भी निकालते रहें।
3: जी बिल्कुल, कोशिश तो पूरी रहती है, बस इस दिन अल्लाह तौफीक दे दे।
0: अल्लाह ताला खैर और आफियत का मामला करने वाले हैं। तो गेम खेलने के लिए रेडी हैं?
3: जी बिल्कुल रेडी हूँ।
0: क्या बात,
3: लेकिन आज का आंकड़ा है, लेकिन देख के सुन।
0: अरे आप तो आप चैंपियन है भैया, आप इसके हमें पता है
3: नहीं तो ये बड़ा है आंकड़ा।
0: ये नादिया ऐसी कर देती है, मैं क्या बताऊँ, मना कर रहा था, मैं कह रहा था कि 1 से 10 करवा लेते हैं। कह रही नहीं नहीं, तुमने हमसे 2000 लिए, मैं हम तो इजी में खेलेंगे ताकि तुम्हें याद रहे, बार बार याद दिलाते रहे, सर उनको 2000 देने, सर उनको 2000 देने, सर उनको 2000 देने।
1: तुमने काट लिए भाई,
0: 200 कौन देगा? चलिए भाई फैजल भाई, आपको देते हैं 2277 से 2266।
3: 2277 से 2266।
0: आई वाह, अच्छी है।
3: अरे ठीक है, कोशिश करेंगे।
0: अच्छी रकम है,
1: सही है, माकूल है,
0: काफी हो जाएगा काम इसमें तो।
1: ठीक ठाक चीजें हो जाएंगी। सोच रहे हैं कि क्या क्या काम होगा इसमें, होगा भी कि नहीं होगा?
0: होगा भी नहीं होगा। रेडी हैं फैजल साहब?
3: जी बिल्कुल।
0: चलिए तो फिर आपका टाइम शुरू हो गया अब।
3: इंग्लिश में बोल सकते हैं ना?
1: हाँ इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, हिंदी उर्दू जिसमें आप चाहें,
0: स्पेनिश इटालियन जो भी
1: नहीं आएगी,
0: अरबी पंजाबी जो भी आपको अच्छी लगती हो।
3: चले ठीक है,
0: बस थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट लगेगा उसका, बाकी कोई मसला नहीं है।
3: बिल्कुल मुझे मिल जाएगा, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा।
0: हाय हाय हाय, इतना सीधा लग रहा हूँ मैं आपको है। चलिए घड़ी हो गई रेडी और फैजल भाई रेडी। यल्ला
3: जी।
0: 2277 2277 6 2277 4 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 आप तू तू कह के बात कर रहे हैं, तू तू तू तू तू तू तू तू तू तू तू, आप ही कहते हैं कि भाई आप आप आप आप आप 77 आप आप 76
3: नहीं नहीं, असल में मैं सर्वर भाई असल में ये बोलने वाला मैं नहीं था, लेकिन नाजिया आप ही ने शुरू में ही हिंट दे दिया कि आप ऐसे बोल सकते हैं जब वो मैम ने कॉल किया था।
1: देखा कितने समझदार हैं, और इसी तरह से आज की विनर भी हैं, यही थी कलाकारी जो छुपाए हुए चल रहे थे।
0: नहीं नहीं, विनर तो भाई उवैस भाई ही हैं अभी तक।
1: अभी तक
0: सो के उठे थे एकदम फ्रेश थे। अच्छा। फैजल साहब हैं चैंपियन, लाई भी अच्छी मगर इन्होंने भी 11 सेकंड लिए।
1: 11 सेकंड
0: चलिए वो टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू
1: टू टू।
0: चलिए भाई फैजल साहब,
1: चलिए बहुत ही अच्छी कोशिश और बहुत अच्छे खेला आपने,
0: बहुत बढ़िया।
1: थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। एंड आई थिंक सर हमें एक छोटी सी अपडेट ले लेनी है।
0: ओके, उसके बाद वक्त बचता है,
1: वक्त बचता है तो हम अपने कॉलर्स के साथ भी
0: ऑनलाइन में तो ब्रेक पे भी जाना सोच रहा था, मगर
1: बस अब हम ब्रेक पे ही जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपडेट जो कि खत्म मीडिया कॉर्पोरेशन और मीडिया सिटी के हवाले से है, तो आपको बता दें दोस्तों कि खत्म मीडिया कॉर्पोरेशन और मीडिया सिटी कतर ने एक MOU साइन किया है, जिसका मकसद ये है कि मीडिया सेक्टर में कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल इनोवेशन और टैलेंट डेवलपमेंट को बेहतर बनाया जाए। आपको बताएं कि ये एग्रीमेंट जो है वो दोनों इदारों के कमिटमेंट को शो करता है, ताकि कतर को मीडिया और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज का

0: रीजनल और ग्लोबल हब भी बनाया जाए. बड़ी अच्छी लाइन. वहीं पर साइनिंग सेरेमनी क्यूएमसी के ऑफिस में हुई, जहां पर अब्दुल्ला गानिम अल मोहनदी और हमद उमर अल मन्नई ने डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज किया. इस पार्टनरशिप के तहत दोनों लोगों ने मिलकर टीवी शोज, फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज और डिजिटल कंटेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करने का भी अहद किया. ऑफिशियल्स ने कहा कि कोलैबोरेशन जो है वो नए टैलेंट को मौका देगा और मीडिया इंडस्ट्री को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मजबूत करेगा. ये इनिशिएटिव कतर के नेशनल विजन 2030 के साथ भी अलाइंड है और मीडिया सेक्टर की ग्रोथ और इनोवेशन को सपोर्ट करेगा. साथ ही यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, इंटर्नशिप्स होगी, प्रोडक्शन फैसिलिटीज शेयर करने का मौका मिलेगा और यंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को इसका फायदा होगा. ओवरऑल ये पार्टनरशिप जो है वो कतर के मीडिया इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी और लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज भी पैदा करेगी.
1: क्या बात है भाई, इंशाल्लाह
0: के साथ हमारे साथ एक चैंपियन जोड़ रहे,
1: चैंपियन जोड़ने का टाइम है हमारे पास. चलिए
0: एक लास्ट ले लेते हैं.
1: ओके, क्योंकि कुछ मैसेजेस भी थे. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो वसैलन, कौन है हमारे साथ? अहमद. ओके अहमद, गेम खेलने के लिए रेडी है? आपको वापस जाना है. ओके, बैकवर्ड काउंट. ओके, आपका टाइम शुरू हो गया अब.
2: 2052
1: रेडी हैं?
2: 2,252.
1: ओके, 2,200. चलिए रेडी, यल्ला.
2: 2,248, 2,249, 2,250, 2,247, 2,248, 2,244, 2,242, and 2,243.
1: अच्छा खेले अहमद आप और आपने 14 seconds लिए, तो वेल ट्राई और बहुत अच्छा.
0: हाँ
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी कोशिश करी. थैंक यू सो मच अहमद हमारे साथ जुड़ने के लिए. इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू सो मच.
1: तो ये भाई थे अहमद. यहाँ पर कुछ मैसेजेस और अब आपसे लेंगे इजाजत. अब हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और भी चैंपियन आज के लिए. कहते हैं भाई उसको सलाम पूरा करने दो यार. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है आप सर? बस ऐसे ही. दिल तेरा क्या किया, हाल चाल पूछूं, शो देख रहा था इसलिए आपका हाल चाल पूछ लिया. अच्छा,
0: दिल तेरा
1: दिल
0: नहीं
1: कर रहा था, लिखना चाहते
0: हैं. मेरे ख्याल से कह रहे तीन तेरा वैसे ही करते.
1: ओ, अरबाज खान थे हमारे साथ, सलमान खान के छोटे भाई. कहते हैं बेचारा एंथनी मारा गया. भरत भाई, हाँ वो भी कैसे, ये
0: वो
1: भी पता
0: यही कह रहे थे.
1: वो भी यही कह रहे थे. और इसी के साथ अब वक्त हो गया कि आज के लिए मैं और नाजिया आपसे इजाजत ले लें आफ्टरनून एक्सप्रेस पे.
0: राइट दोस्तों, इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह कल वापस आपकी और हमारी मुलाकात होगी 11:00 इसी शो में जिसका नाम है आफ्टरनून एक्सप्रेस. तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिये, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107.
1: दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: जमाने के साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया भी बदल रही है और बदल रहा है स्पोर्ट्स को जानने और सुनने का तरीका भी, और हम तो चलते हैं हमेशा जमाने के साथ साथ। इसीलिए FM 107 लाया है स्पोर्ट्स के लिए एक खास प्रोग्राम स्पोर्टकास्ट, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर।
3: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पॉडकास्ट के इस खसूसी प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन, और आप लोगों को बता दूं कि ये स्पॉडकास्ट का आज आखिरी शो है। जी हां दोस्तों, स्पॉडकास्ट में हमने स्पोर्ट्स के हवाले से जितने भी टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स को हमने एनालाइज किया है, उस टॉपिक्स को हमने थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस के नज़र से हमने थोड़ा सा देखा है। आज के जो टॉपिक है, आज इस टॉपिक में हम कोई क्रिटिकल एनालिसिस तो हम नहीं करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ एंड सिर्फ कतर फुटबॉल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये फुटबॉल वर्ल्ड कप का साल है और फुटबॉल वर्ल्ड कप आप लोगों को पता है कि जून से शुरू होने जा रहा है, 11 जून से शुरू हो रहा है वर्ल्ड कप फुटबॉल, और 13 जून को कतर विल प्ले देयर फर्स्ट गेम इन द फीफा वर्ल्ड कप। सो दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप में कतर का जो सफ़र रहा है इसके बारे में आज हम बात करेंगे, और 2002 से 2026 तक का जो ये सफ़र रहा है, व्हाट कतर डिड, कतर के अचीवमेंट के बारे में, कतर फुटबॉल टीम क्या मतलब आगे जाकर क्या कर सकती है उसके बारे में, वी विल जस्ट हैव अ यू नो कंप्लीट डिस्कशन ऑन दैट, साफ सुथरा एक डिस्कशन। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि कतर का फुटबॉल सफ़र एशिया के दूसरे मुल्कों से काफ़ी मुख्तलिफ रहा है। एक वक्त था जब कतर सिर्फ गल्फ फुटबॉल तक महदूद नो समझा जाता था, बिकॉज उस टाइम ये होता था कि GCC कप में खेलना और एशिया कप में खेलना, दैट्स इट, इसके आगे कुछ नहीं दिखता था। लेकिन आज ये मुल्क दुनिया के फुटबॉल नक्शे पर एक अहम मकाम हासिल कर चुका है। दोज हु आर स्टेइंग इन कतर, उन लोगों को पता होगा 2022 वर्ल्ड कप से लेकर 2026 वर्ल्ड कप तक ये जो ये जो दरमियानी ये जो चार साल है, हमने बहुत सारे चीज़ें नोट की है, काफ़ी चीज़ें। फुटबॉल हैज़ डेवलप्ड ह्यूजली। फीफा वर्ल्ड कप की तरफ अगर कतर का सफ़र आसान नहीं था, 2002 के क्वालिफायर्स में टीम ने स्ट्रगल किया, जबकि 2026 तक पहुंचते पहुंचते कतर ने अपनी फुटबॉल आइडेंटिटी को मजबूत कर लिया। यहाँ ये कहानी सिर्फ मैचेस की नहीं बल्कि एक कौम के ख्वाब, इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग और डिटर्मिनेशन की कहानी है, और ये आप लोगों को मानना पड़ेगा। जिन साहब कतर में नए आए हैं उनको शायद मालूम नहीं हो कि कतर फुटबॉल was enriched with lot of local stars. वो ज़माना था 1970s का। अच्छा, हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा अमेरिका फुटबॉल फाइनल गराफा और अलसद के दरमियान, ये मैच जहाँ पे हुआ था खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम, इस खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम का 50th एनिवर्सरी ईयर था। तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि 50 साल हो चुका है खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में फुटबॉल होते होते, एंड खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में कई चीज़ें भी हुई हैं इससे पहले, इंक्लूडिंग एशियन गेम्स 2006, एशियन गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी, एशियन गेम्स के कई ऐसे इवेंट्स भी है, फुटबॉल वर्ल्ड कप यानी 2022 वर्ल्ड कप के कई मैचेस भी इस स्टेडियम में। तो ये थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फुटबॉल इज़ नॉट वेरी न्यू इन कतर। तो चलिए अब बात करते हैं कि 2002 का फीफा वर्ल्ड कप में कतर का कैंपेन, कतर के लिए एक चैलेंजिंग दौर था। वो जो वर्ल्ड कप था जो साउथ कोरिया और जापान में हुआ था, उसके लिए क्वालिफिकेशन में कतर के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। उस वक्त एशियन फुटबॉल में जापान, साउथ कोरिया, सऊदी अरब और ईरान जैसे टीमें इन टीमों का दबदबा था, और आज भी जापान को एक एशियन पावर हाउस समझा जाता है, ईरान को पावर हाउस समझा जाता है, सऊदी अरब को पावर हाउस समझा जाता है। तो कतर के पास टैलेंट ज़रूर था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस यानी तजुर्बा और कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो 2002 वर्ल्ड कप कोरिया और जापान में होना था, और पूरी एशिया में क्वालिफायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि कतर ने क्वालिफायर्स का आगाज़ उम्मीद के साथ किया। हर न्यू टीम, एनी न्यू टीम जो भी किसी टूर्नामेंट में उतरती है, तो एक सोच के साथ, एक ड्रीम के साथ, तो कतर के साथ भी ऐसा ही कुछ था। टीम में कुछ टैलेंटेड लोकल प्लेयर्स मौजूद तो थे जो गल्फ कप में अच्छी परफॉर्मेंसेस दे चुके थे, लेकिन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का लेवल बिल्कुल अलग था। ये डिफरेंट लेवल, उसे समझना ही मुश्किल है। लेकिन किसी ने अगर वर्ल्ड कप फुटबॉल मैचेस यहाँ पे अगर देखे हो तो उनको समझ आ जाएगा कि द एनवायरनमेंट, द एंथुजियाज्म, वो काफ़ी डिफरेंट होता है उसके मुकाबले में कि अगर आप लोकल टूर्नामेंट कोई देखें। तो सिमिलरली प्लेयर्स के, अगर प्लेयर्स की जानिब मैं बात करूँ कि प्लेयर्स को भी उस तरह का एक्सपीरियंस कभी भी महसूस नहीं हो पाया होगा कि जिस तरह के आप क्वालिफायर्स में खेलने जाते हैं अनदर इंटरनेशनल टीम के अगेंस्ट में, वो माहौल इज टोटली डिफरेंट। लेकिन 2002 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में कतर वॉज कॉन्फिडेंट और उन्होंने बड़े ही शानदार तरीके से इन्होंने दे स्टार्टेड देयर कैंपेन। लेकिन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का लेवल क्योंकि बिल्कुल अलग था, हर मैच में टैक्टिकल डिसिप्लिन और मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत होती थी। कतर ने कुछ मैचेस में इंप्रेसिव फुटबॉल खेली, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि दे डिड प्ले वेल विद देयर लिमिटेड पोटेंशियल और टैलेंट के साथ, लेकिन इंपॉर्टेंट और अहम जो मोमेंट्स है ना उसमें कंसिस्टेंसी की कमी नजर आई। ये मैं आप लोगों से ये तो कह रहा हूँ कि एक है लोकल लेवल पे आप फुटबॉल खेलना, एक है दैट लेवल जो वर्ल्ड कप हम कहते हैं, एशियन लेवल यानी एशिया कप में खेलना, उसके बाद एशियन लेवल से बड़े हाई लेवल है वर्ल्ड कप जहाँ पे यू नो कॉन्टिनेंट्स जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स हैं या यू नो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, मीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फुटबॉल, डिफरेंट लेवल्स ऑफ फुटबॉल, डिफरेंट कल्चर, तो इसको झेलना देखना। अभी मैं अगर एक स्मॉल एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा, जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल सो दैट आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जब एक बच्चा पढ़ता है स्कूल में, अपने ही शहर में जब पढ़ता है तो कॉलेज में जाता है, कॉलेज कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी जाता है, अजन वैन ही गोज़ फॉर हायर स्टडीज़। अब हायर स्टडीज़ जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश बच्चे जब

हायर स्टडीज करने के लिए या तो अमेरिका पहुंचेगा या यूके जाता है या ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर. तो दैट कल्चर एक नया कल्चर है, उसको देख के वो यू नो दैट्स कॉल्ड चौंक जाता है. इन्हें आंखें जो है एकदम उनकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि यार ये क्या है, कौन सा शहर है. यू नो यू गो टू अ न्यू सिटी, यू अडॉप्ट दैट कल्चर, यू अडॉप्ट दैट सिस्टम, यू अडॉप्ट दैट एटमॉस्फेयर. तो वो एडजस्ट करने में जैसे टाइम लगता है वैसे ही फुटबॉल में है. व्हेन यू आर इन द लोकल लेवल एंड देन सडनली यू आर इनटू वर्ल्ड कप लेवल, वो एडजस्ट करने में टाइम लगता है. तो यहीं पे कतर के साथ ऐसा हुआ कि कंसिस्टेंसी की कमी नजर आई, दैट बिकॉज एक्सपोजर, वो ये वर्ड जो है हमेशा याद है कि एक्सपोजर वॉज नॉट देयर. अच्छा, उस दौर में कतर का फुटबॉल स्ट्रक्चर बस डेवलपमेंट फेज में ही था. आज के एस्पायर अकेडमी या वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उस वक्त मौजूद नहीं था. स्टेडियम्स और फैसिलिटीज ठीक थे मगर यूथ डेवलपमेंट सिस्टम उतना एडवांस नहीं था जितना बाद में बना. इसी वजह से कतर टैलेंटेड प्लेयर्स प्रोड्यूस करता था लेकिन उन्हें लॉन्ग टर्म एक इंटरनेशनल एक्सपोजर कम मिलता था. दिस चेंजेस केम मच लेटर. मैं समझता हूँ 2006 एशियन गेम्स के बाद से और जब एस्पायर अकेडमी की शुरुआत हुई देन स्टोरी वॉज डिफरेंट. 2002 क्वालिफायर्स के दौरान कतर को स्ट्रॉन्ग एशियन टीम्स का सामना करना पड़ा. टीम ने कुछ मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी लेकिन क्वालिफिकेशन हासिल करना मुश्किल साबित हुआ. डिफेंसिव मिस्टेक्स और प्रेशर सिचुएशंस में कंसंट्रेशन लूज करना टीम का बड़ा इश्यू था. फैंस को उम्मीद थी कि कतर कम से कम फाइनल क्वालिफाइंग राउंड्स तक जरूर पहुंचेगा लेकिन कंपटीशन बहुत टफ था. तो दोस्तों, इस कैंपेन का एक पॉजिटिव पहलू ये था कि कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने रियलाइज किया कि अगर मुल्क को वर्ल्ड कप लेवल तक पहुंचाना है तो सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लानिंग काफी नहीं होगी. यहाँ यही सोच में बदला. ग्रास रूट फुटबॉल, यूथ अकेडमीज और इंटरनेशनल कोचिंग स्टैंडर्ड्स पर इन्वेस्टमेंट जरूरी होगी. ये जो सोच उस टाइम लाया गया है दैट चेंज एंड आज टुडे कतर इज वन ऑफ द बेस्ट एशियन टीम्स, एशियन चैंपियन है. टू सक्सेसिव एशियन कप विनर्स 2019 एंड 2023 और यहीं से कतर के फुटबॉल रिवॉल्यूशन की बुनियाद रखी गई. आज जो सक्सेस है कतर फुटबॉल टीम को वहां पर शुरू हुआ था. 2002 के बाद कतर ने फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हेवी इन्वेस्टमेंट शुरू की. यूरोपियन कोचेस को हायर किया गया, यूथ डेवलपमेंट्स यानी यूथ टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हुए और टैलेंटेड यंगस्टर्स को यूरोप में ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज दी गई. यही मैं कह रहा हूँ बार बार कि एक स्टूडेंट जब पढ़ता है, जब मास्टर्स कर लेता है तो हायर स्टडीज के लिए आप इंडिया पाकिस्तान में आप बैठे नहीं रहते हैं, आप बाहर जाते हैं. और कतर ने उस वक्त समझ लिया कि अगर फुटबॉल में अपने आप को सुधारना है, अपने आप को मजबूत करना है, एशियन चैंपियन बनना है, वर्ल्ड कप में खेलना है तो एक्सपोजर इज एसेंशियल. और कतर ने समझ लिया था कि फुटबॉल में सस्टेनेबल सक्सेस सिर्फ पैसे से नहीं प्लानिंग से मिलती है एंड दैट वाज शोन बाय द स्टेट ऑफ कतर. 2006 और 2010 के क्वालिफायर्स में भी कतर ने प्रोग्रेस दिखाई लेकिन क्वालिफिकेशन अभी दूर थी. टीम कॉम्पिटिटिव जरूर हुई लेकिन एशिया के लेवल उस टॉप लेवल तक पहुंचने में वक्त लग रहा था. और इसी दौरान कतर ने एक और हिस्टोरिकल डिसीजन लिया, फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने की बिड. दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक बाय द स्टेट ऑफ कतर. 2010 जब बिडिंग शुरू हुई तो कतर वाज नंबर वन, कतर वाज चोजन अलोंगसाइड रशिया. 2018 World Cup, 2022 World Cup was given to Russia and Qatar respectively. 2010 में जब कतर ने 2022 FIFA World Cup hosting rights जीते तो पूरी दुनिया हैरान रह गई. छोटा सा गल्फ मुल्क दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट का मेजबान बन गया. अच्छा, ये किसी को ये हजम ही नहीं हो पा रहा था कि यार कतर कैसे सब कतर कैसे कर ले कर लेगा. ये जो सोच है ना, कर लेंगे, ये सोच, दिस अ डिफरेंस, कर लेगा, कर लेंगे. कतर ने कहा वी विल डू इट एंड वी विल प्रूव इट एंड कतर ने किया. और ये सिर्फ स्पोर्ट्स न्यूज नहीं थी बल्कि मिडल ईस्ट के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट था. फर्स्ट मिडल ईस्ट कंट्री, फर्स्ट

0: Arab country, first Muslim country to host a World Cup, and that is Football World Cup. One of the biggest churner of fans, spectators, audience, har koi Football World Cup ke samne baitha rehta hai dekhne ke liye. So Qatar played that master stroke, the state of Qatar, and you know, yahan par ye jo na soch ki hum kar sakte hain, hum karenge, ye jo confidence wali baat hai, the state of Qatar leadership ne karke dikhaya, and today it is a part of folklore of Qatari folklore ki 2022 ka World Cup Qatar mein hua tha. 2022 ka World Cup hosting ne Qatar ke football system ko completely transform kar diya. New stadiums, metro system, roads, hotels aur training facilities banaye gaye. Aaj Qatar ko koi bhi dekhta hai to kehta international country, international Doha ko dekhega to international city. टक्कर देने वाली सिटी में से एक सिटी जो है इस रीजन का वो है दोहा. फुटबॉल डेवलपमेंट को नेशनल मिशन का दर्जा दिया गया, यानी प्रायोरिटी नंबर वन. इस इन्वेस्टमेंट का असर नेशनल टीम पर भी नजर आया. कतर ने जब 2019 एएफसी एशियन कप जीतकर पूरी एशिया को सरप्राइज कर दिया तो लोगों ने कहना चालू किया, हाँ कुछ तो बात है, दम तो है. अच्छा, फाइनल में किस टीम को हराया? फाइनल में जापान को हराया और दुनिया को एक मैसेज दे दिया कि कतर सिर्फ होस्ट नेशन ऑफ द 2022 वर्ल्ड कप नहीं बल्कि कंपेटिटिव फुटबॉल टीम भी है. अकरम अफीफ और अलमोइज अली जैसे स्टार प्लेयर्स, एंड आज यू नो एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट अकरम अफीफ, अलमोइज अली, ये दोनों नौजवान खिलाड़ी थे एस्पायर अकेडमी में. एस्पायर अकेडमी के जितने भी प्रोडक्ट्स थे उस टाइम 2016, एस्पायर अकेडमी के जितने भी बच्चे थे, दे प्लेड इन द अंडर 19 Asia Cup, उसमें they won, and that under 19 Asia Cup actually turn around, मैं समझता हूँ यहाँ पे. और यही सब लड़के थे, अकरम अफीफ, अलमोइज अली, ये जो स्टार थे उस टाइम में, छोटे बच्चे थे, आज they are a national star, they are international star right now. दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जब आएंगे तो we will talk greater details about Qatar's popularity in football and Qatar's mechanism how to become a Asian champion or be a participant at the FIFA World Cup.
1: आप सुन रहे हैं Sportcast with Mohammed Amin, only on FM 107, दिल से देसी.
0: वेलकम बैक टू स्पॉट का शो. मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन. आज हम बात कर रहे हैं कतर्स जर्नी इन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2002 से लेकर 2026 तक. जहां दोस्तों 2026 वर्ल्ड कप में कतर हैज क्वालिफाइड, एंड दिस टाइम नॉट एज अ होस्ट बट की डायरेक्ट क्वालिफिकेशन. सो दिस इज अ मेगा अपॉर्चुनिटी फॉर कतरी नेशनल फुटबॉल टीम टू शो केस देयर टैलेंट ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म. अच्छा, 2022 के बारे में मैं बात कर रहा था. 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप में कतर ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन की वजह से होस्ट नेशन था, बिकॉज होस्ट नेशन जो है ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर लेते. ये कतर की हिस्ट्री का एक पहला वर्ल्ड कप अपीयरेंस था. दोहा और पूरे मुल्क में एक्साइटमेंट का माहौल था. वी ऑल एक्सपीरियंस्ड इट, हमें पता है कि क्या माहौल था. बल्कि 6 महीने पहले से ही यू नो कॉनेज के एरिया, जो वो फ्लैग के पोल्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट कंट्रीज थे उनके फ्लैग्स, और वो क्लॉक याद है ना, वो काउंटडाउन क्लॉक, आज भी लोग वहाँ जाते हैं, आज भी विजिटर्स जो कतर आते हैं वो जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए. वो माहौल उस टाइम बड़ा डिफाइन करना मुश्किल लगता है कि कुछ दिन पहले की तो बात थी भाई, हम वहाँ पे जाते थे, हम कॉर्निश में घूमते थे, एंड वी वर पार्ट ऑफ दैट प्रिपरेशन. दोहा मेट्रो 2019 मई में वॉज इनॉग्रेटेड, वी ऑल सॉ, हमने सब देखा. और आज कतर एक इंटरनेशनल ग्लोबल स्टेज पर कतर इज समथिंग, एवरीबॉडी नोज कतर, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट कतर. तो फैंस को उम्मीद थी कि होम सपोर्ट के साथ कतर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देगा. एवरीबॉडी आल्सो, हम लोगों ने भी सोचा कि कतर विल डू समथिंग द होम सपोर्ट. ओपनिंग मैच इक्वाडोर के खिलाफ था और प्रेशर बहुत ज़्यादा था, एंड अनफॉर्चुनेटली कतर नर्वस नजर आए और मैच हार गया. उसके बाद सेनेगल और नीदरलैंड्स के खिलाफ भी डिफीट्स हुई और कतर ग्रुप स्टेज से एलिमिनेट हो गया और टूर्नामेंट में कोई पॉइंट हासिल नहीं कर सका. हाँ, एक गोल किया था, कतर स्कोर्ड वन गोल, मोहम्मद मुंतारी. सो ही आल्सो बिकेम अ यू नो आई वुड से आज से 50 साल के बाद मुंतारी का नाम लिया जाएगा कि वाहिद खिलाड़ी जिन्होंने यू नो फर्स्ट गोल किया था. नॉट वाहिद खिलाड़ी बल्कि जिस खिलाड़ी ने फर्स्ट गोल किया था, नाम बताओ आप लोग, मोहम्मद मुंतारी. रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग जरूर थे, लेकिन एक्सपीरियंस

0: was priceless.
1: इस शो के शुरू में मैंने यही तो कहा कि जब आप स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, जब आप एक्सपोजर के लिए बाहर जाते हैं, वो जो माहौल है, उस माहौल को देख के आप या तो नर्वस हो जाते हैं या कॉन्फिडेंस के साथ लड़ते हैं। यहाँ कतर ने कॉन्फिडेंस के साथ जरूर लड़ाई की, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है, दैट एक्सपीरियंस वॉज नॉट देयर विद ऑल दीज प्लेयर्स। तो एक्सपीरियंस दे गेन्ड, और कतर के प्लेयर्स ने दुनिया की बेस्ट टीमों के अगेंस्ट में खेलकर बहुत कुछ सीखा था। और फुटबॉल एक्सपर्ट्स का कहना था कि कतर को वर्ल्ड कप लेवल का एक्सपोजर फ्यूचर में बेनिफिट देके, जो आज हमें देखने को मिला। नो दे क्वालिफाइड नॉट एज अ होस्ट, दे क्वालिफाइड थ्रू द क्वालिफायर्स, यूएई को हराकर। यहाँ पर जो मैच हुआ था अल सद्द स्टेडियम में, यूएई को हराकर कतर क्वालिफाइड फॉर द 2026 वर्ल्ड कप। यही एक्सपीरियंस जो 2022 में कतर को मिला, दैट एक्सपीरियंस रियली काउंटेड। 2022 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हॉस्पिटलिटी थी। इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन और इंटरनेशनल मीडिया ने कतर की टूर्नामेंट मैनेजमेंट की तारीफ की, तह दिल से तारीफ की कि यू नो अमेजिंग अरेंजमेंट्स, ये हो ही नहीं सकता और कोई वर्ल्ड कप में हुआ हो या होने जा रहा हो। आज हम जो वर्ल्ड कप देखने जा रहे हैं, 2026 वर्ल्ड कप, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, सोचिए कि एक फैन वो किस किस का मैच देखने कहाँ कहाँ पहुंचेगा। अमेरिका फ्लाइट लेगा, ट्रेन में बैठेगा, एंड अमेरिका इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, मेक्सिको इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, कनाडा इज अनदर कंट्री। तो ये सब आपको इधर उधर फ्लाइट के खर्चे, होटल बुकिंग्स और ना जाने तमाम लॉजिस्टिक्स, इतना खर्चा है कि आप एक बार सोचेंगे यार छोड़ो यार टीवी पर ही देख लेते। लेकिन जब कतर वर्ल्ड कप हुआ था, एवरीबडी थॉट कि वी विल मेक इट टू कतर, बिकॉज इंडिया से आना बड़ा इजी, पाकिस्तान से आना इजी, बांग्लादेश से आना इजी, यूरोप से आना काफ़ी इजी, यू नो इज इन द विजिनिटी ना, चार चार घंटों की फ्लाइट्स हैं, पाँच पाँच घंटों की फ्लाइट है। और आप जब कतर पहुँचते हैं, वेन यू वॉच दोज मैचेस, चाहे आप यू नो जुनूब स्टेडियम में थे, चाहे आप यू नो खलीफा में थे, आपको सिर्फ एक मेट्रो ट्रेन ही तो चाहिए था। अरे मेट्रो ट्रेन में बैठ के आप इधर उधर कर रहे थे, और क्या फ्री ट्रैवल, टोटली फ्री, इसको कहते हैं मुफ्त। और इसी मुफ्त सर्विस से लोगों का दिल जो है जीता कतर, कि वी आर कैटरिंग टू द फुटबॉल लवर्स, हमें हर चीज पे पैसा नहीं देखना। तो दे वर गिवन दैट काइंड ऑफ सर्विस, ये आप किसी और वर्ल्ड कप में एक्सपीरियंस अब नहीं कर सकते। मैं पर्सनली मैं यहाँ पे बताऊँ कि रशिया वर्ल्ड कप मैंने कवर किया, रशिया वर्ल्ड कप में गया था। आई डोंट थिंक जो फ्री बेनिफिट्स कुछ थे वो शायद देन शायद मतलब कतर के अलावा किसी ने दिया नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग कि हर कुछ फ्री हो जाए, होटल भी फ्री हो जाए, ये भी फ्री, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। बात ये कर रहा हूँ कि लॉजिस्टिक्स, ट्रैवलिंग, बसेस, शटल्स, ये सब चीज़ें कतर प्रोवाइडेड, एंड कतर शोड दैट क्लास, मेंटेन दैट यू नो दैट लेवल। वो लेवल को टच करना इन फ्यूचर किसी भी होस्ट कंट्री के लिए मुश्किल है। अब मैं बात करता हूँ कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के बारे में, और ये कतर फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हम मानते हैं इसको। पहली बार कतर को अपनी जगह मेरिट पर हासिल करनी थी। टूर्नामेंट भी एक्सपैंडेड फॉर्मेट में था, जहाँ 48 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, सो इट्स अ बिग चैलेंज। कतर ने क्वालिफायर्स के आगाज कॉन्फिडेंस के साथ किया, टीम में एक्सपीरियंस प्लेयर्स और यंग टैलेंट का एक बहुत ही बेहतरीन मिक्सचर, अकरम अफीफ, अलमोएज अली, हसन अल हैदोस और डिफेंसिव लीडर्स टीम की बैकबोन थे। खुलेन लोपतेगी, स्पेन के फॉर्मर कोच, रियल मद्रिद के फॉर्मर कोच, खुलेन लोपतेगी को हेड कोच अपॉइंट किया गया, जिन्होंने टैक्टिकल डिसिप्लिन और अटैकिंग फुटबॉल इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस। मैं समझता हूँ, यू नो आई बिलीव कि दिस इज वॉट द डिफरेंस दैट हैड मेड खुलेन लोपतेगी। एक तो स्पेनिश फुटबॉल फिलासॉफी है, ऊपर से एक डिसिप्लिन है, एंड उसी डिसिप्लिन के साथ चलते चलते आज हमें कतर को यहाँ तक हमने देख लिया कि यहाँ तक कतर हैज़ रीच्ड। सेकेंड राउंड क्वालिफायर्स में कतर ने इम्प्रेसिव फुटबॉल खेली और ग्रुप को टॉप किया। टीम ने 16 पॉइंट्स हासिल किए और अटैकिंग अप्रोच से फैंस को मुतासिर किया। प्लेयर्स के दरमियान अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आई। फर्स्ट टाइम एवर दिस एक्चुअली कैटापल्टेड कतर टू दैट काइंड ऑफ ग्लोरी। थर्ड राउंड में कंपटीशन और मजीद टफ हो गया। ईरान

0: 24 वर्ल्ड कप कतर के लिए सिर्फ पार्टिसिपेशन का मौका नहीं बल्कि दुनिया को अपनी असल फुटबॉल स्ट्रेंथ दिखाने का एक नया चैप्टर है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये पॉडकास्ट प्रोग्राम यहीं पे खत्म होता है और आप लोगों को अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें। ये पॉडकास्ट अवेलेबल है ऑन www.urduradio.qa पर। तो तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए और कतर की फुटबॉल टीम को जरूर फॉलो करिए। पॉडकास्ट का ये आखिरी एपिसोड था। इस शो में जुड़े रहने के लिए आप सभी लिसनर्स को तहे दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द एक और नए स्पोर्ट्स शो में। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: पॉडकास्ट
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: दोस्तों, हर एक मोटर व्हीकल को उसकी रजिस्ट्रेशन के फौरन बाद अथॉरिटी की जानिब से दो नंबर प्लेट्स इशू की जाती हैं, जिनको मोटर व्हीकल की ऑपरेशन से पहले यानी एक नंबर प्लेट को आगे की तरफ और एक नंबर प्लेट को पीछे की तरफ लगाया जाता है। इस बात को भी यकीनी बनाएं कि मोटरसाइकिल्स पे भी मेटल लाइसेंस प्लेट्स होना जरूरी है, खास तौर पर जब आप कैंपिंग वाले इलाकों में हों। ये इकदामात कानून की तामील को जाहिर करते हैं और खिलाफ वर्जियों से बचने में आपकी मदद करते हैं।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू साथियों, इस वक्त एफएम 107 की घड़ी में कितने बज रहे हैं? 1:31 हो रहे हैं, मतलब ये कि 1:31 ऑन द क्लॉक। मेरी आवाज़ सुनते के साथ तो आपको ये पता चल ही जाना चाहिए, है कि नहीं? तो दोस्तों, बच्चा पार्टी, छोटी सी दुनिया, तैयार हो अपनी बड़ी बड़ी बातें करने के लिए। आप सुन रहे हैं सुपर सफ़ा के साथ द सुपर शो, मतलब ये कि द सुपर किड्स शो।
3: आप सुन रहे हैं द सुपर किड्स शो।

सुबह अच्छा पार्टी, ढेर सारा वेलकम है आपका द सुपर किड्स शो में, और मेरा और आपका साथ रहेगा 3 बजे तक। क्योंकि ये एक इंटरैक्टिव शो है तो बच्चा पार्टी, अपनी फ्रंट सीट पर आ जाओ और बड़ों को ना बैक सीट पे कर दो, पीछे बैठो, चलो चलो चलो। क्योंकि 3 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा, और अगर आप अंडर 18 हैं तो आप ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि आप मुझे एक दफ़ा कॉल ज़रूर करें। भाई देखो, इंटरैक्टिव शो का मतलब क्या होता है, बातचीत करेंगे ना, दोस्त हैं ना। अब इतने टाइम से सुन रहे हो तो कभी कॉल भी कर लिया करो, और जो ऑलरेडी कॉल करते हैं उनको तो ढेर सारा फिर से वेलकम है। तो साथियों, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4434377 पर, द नंबर इज 4434377 और कॉल करने के लिए नंबर है। और अगर मैसेज करना चाहते हैं तो 6662107 इज द नंबर टू मैसेज। बच्चा पार्टी, देखो सीधी सी बात हैगी, हम जो है ना यहाँ पर बैठ कर कोई जज नहीं कर रहे किसी को, तो बगैर नर्वस हुए वे, कोई एग्जामिनेशन हॉल नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल वाली फीलिंग भी नहीं लेकर आना, स्कूल से वैसे ही थके हुए आ रहे हो, बस रिलैक्स करके बात करेंगे ना। पता है आज किसके बारे में बात करेंगे? आज रिलैक्सेशन के बारे में ही बात करेंगे। और कभी कभी आपने सुना होगा, अक्सर औकात हमें डांट दिया जाता है कि भाई इतने सवाल क्यों करते हो, थोड़ा सा सुकून दे दो दिमाग को, एक जवाब देता हूँ दो सवाल और करते हो। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, मतलब ये कि आज हम आपकी क्यूरियोसिटी के बारे में बात करेंगे। साथियों देखिए, ये जो क्यूरियोसिटी होती है ना, बड़ी मज़े की चीज़ होती है। ये हमें ये बताती है कि भाई व्हाई इज़ द स्काई ब्लू, ये क्यूरियोसिटी हमें बताती है कि हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, ये क्यूरियोसिटी हमें ये बताती है व्हाई डू प्लांट्स नीड वाटर, ये क्यूरियोसिटी हमें बताती है कि भाई वॉल्केनो के अंदर

0: क्या चल रहा है, मतलब ये क्यूरियोसिटी ही है जिसकी वजह से हमें हमारे मोस्ट वियर्डेस्ट क्वेश्चंस के जवाब मिलते हैं। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, लर्निंग की एज तो हमेशा रहती है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारी लर्निंग की एज चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि 100% किसी को जमीन और आसमान के बारे में पता हो। तो आंसर्स हमें कब मिलते हैं, ये आंसर्स हमें तब मिलते हैं जब हम सवाल करते हैं, लॉजिकल होने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। और हम समझते तभी हैं जब हम क्यूरियस होके दूसरों से पूछते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपफ्रंट पूछ लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं या थोड़े से शाय होते हैं। और अल्बर्ट आइंस्टाइन और थॉमस एडिसन की तरह उनका दिल करता है कि उनके पास भी कोई लैब हो जिसके अंदर वो अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढें। अब अगर देखा जाए अल्बर्ट आइंस्टाइन को, तो वो भी बहुत सारे सवाल पूछा करते थे, उनके दिमाग में भी, उनके दिल में भी बहुत सारे सवाल थे स्पेस और लाइट को लेकर। दैट्स व्हाई ही इज नोन टू कंट्रीब्यूट मोर, जब हम बात करते हैं लाइट की, स्पेस की, तो उनका नाम पहले आता है। थॉमस एडिसन को ले लें, वो भी यही काम किया करते थे, 24 घंटे सवाल पूछा करते थे, इतने सवाल पूछा करते थे कि अम्मा बने का बेटा ये लो लैब, हमने एक्सपेरिमेंट लैब बना दी है घर के अंदर, अब चलो जो भी करते रहो उसके अंदर। एंड दिस इज हाउ ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कम्युनिटी एज वेल। देखिए बच्चा पार्टी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने सवालों के जवाब खुद निकालना पसंद होता है, या तो फिर वो शाय होंगे या तो फिर वो इंट्रोवर्ट होंगे, कुछ ऐसा सीन होता है। ऐसे बच्चों के लिए मैं कहूंगी कि भाई करना ये चाहिए कि स्टोरी बुक्स रीड करो, फन फैक्ट्स रीड करो। अच्छा, आप लोगों के एरा में ना एक बड़ी मजे की चीज है सोशल मीडिया, उसको यूज करो ना, उसको प्रोमिनेंटली यूज करो, वो आप अच्छा निकालो उसके अंदर से खोद कर। आप वो विजुअल एजुकेशन वीडियोस वॉच करो। मैथ्स का कोई सम समझ में नहीं आ रहा, बात बताऊं, हकीकत बता रही हूँ, अक्सर औकात अभी भी मैं जब मैथ्स सीखने की कोशिश करती हूँ ना, मुझे नहीं समझ में आता, आई वॉच दोज वीडियोज ऑन सोशल मीडिया। ऐसे मजे मजे की टेबल्स याद करने की और ऐसे मजे मजे की क्वेश्चन सॉल्व करने की फन फैक्ट्स की वीडियोज होती हैं जो हमें फौरन से याद हो जाती हैं। और अगर आप नेचर एक्सप्लोरर हो मेरी तरह, मुझे बहुत पसंद है नेचर एक्सप्लोर करना, व्हाट इज दिस प्लांट अबाउट, व्हाई डज दिस ग्रो ओवर हेयर, व्हाट हैपेंस व्हेन दिस हैपेंस, तो इस किस्म के आप मुख्तलिफ चैनल्स हैं जिनसे आप एजुकेशनल पर्पसेस के लिए वीडियोस देख सकते हो, डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो, उसके ऊपर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हो घर के अंदर जो सेफ होते हैं। एंड व्हाई, व्हाट, हाउ, व्हाट इफ, ये वाले क्वेश्चंस दूसरों से पूछे बगैर भी आप इनके आंसर्स गेन कर सकते हो। तो बच्चा पार्टी, आज आपने मेरे साथ शो में शामिल होना है, 4434377 इज द नंबर। और आज मैं आपसे कुछ बहुत रैंडम से हल्के फुल्के सवाल करूंगी। भाई जरा मुझे बताओ, आपको क्या लगता है घर में सबसे ज़्यादा सवाल आप किससे पूछते हो, सबसे ज़्यादा सवालों के जवाब कौन देता है? और एक और बात ये कि रिसेंटली आपने कोई क्वेश्चन पूछा है किसी से? तो जैसे कल का मुझे याद आ रहा है, कल किसी बच्चे ने मुझे, अच्छा हाँ पता है, ये आपसे अभी बात करने से थोड़ी देर पहले तक मैं क्यूरियस थी कि मुझे किसी बच्चे ने कल एक बड़ा ही मज़े का फैक्ट बताया था और मुझे उसके ऊपर डिटेल हासिल करनी थी, और मैंने ऑन एयर बोला भी था कि हाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, ये बात मुझे नहीं पता थी, मुझे वो बात भूल गई। मैंने घर जाके ना उसके ऊपर कुछ रिसर्च करनी थी कि क्या चीज़ है। अगर आप में से किसी को याद है कि कल हमारी क्या बात हुई थी, या वो जो बच्चा, कौन से बच्चे ने पूछी थी, मुझे ये भी याद नहीं आ रहा, मुझे उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी, ज़रा मुझे एक दफ़ा से फिर से वो टॉपिक रिवाइज करवाएं जो कल हमारी बात हुई थी कि एक बच्चे ने मुझे एक फैक्ट बताया था, पता नहीं कौन सा, और मैंने कहा था अच्छा ये एक नई चीज़ मेरे सामने आई है। तो मुझे ज़रूर बताएं अगर आप में से किसी को याद है कि वो क्या टॉपिक था, क्योंकि मैं आजकल इतना बिजी रह रही हूँ ना, देखिए छुट्टी पे जाना होता है ना, तो उससे पहले सारे काम हम जल्दी जल्दी करते हैं, तो मैं काम निपटाने के चक्कर में अपना वो फन फैक्ट भूल गई भाई, और मुझे वो सीखनी है चीज़, मुझे किसी ने कल कोई चीज़ सिखाई थी। तो भाई अगर आप, जिसने भी मुझे सिखाई है अगर वो सुन रहे हैं, तो भाई मुझे वापस से एक दफ़ा फिर से जो है ना आप कॉल करके बताइएगा ना। तो भाई चलते हैं हम अपने कॉलर की तरफ, 4434377 इज द नंबर टू कॉल, और पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, माय फ्रेंड, अमायरा, मेरी प्यारी सी अमायरा, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: तो भाई मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देखिए मैं अपने फ्रेंड्स से बात करती हूँ ना, तो मुझे तो अच्छा ही होना होता है, फिर मैं वैसे सैड होती हूँ कभी कभी, कभी कभी, हमेशा नहीं, लेकिन जैसे ही मैं आप लोगों की आवाज़ें सुनती हूँ ना, तो आई स्टार्ट स्माइलिंग एंड लाफिंग एंड आई फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग।

0: This is what friends are for, right?
1: Yes.
0: अच्छा भाई, अमायरा कैसी हैं? ठीक ठाक हैं?
1: जी.
0: तो भाई आज का दिन कैसा गुजर रहा है अमायरा का?
1: बहुत अच्छा.
0: बहुत अच्छा. अच्छा अमायरा, आई नो वन थिंग अबाउट यू. मेरी आपसे थोड़ी बहुत जितनी बातचीत हुई है, आई नो कि अमायरा इज ऑल्सो वेरी क्यूरियस सोल. अमायरा भी बहुत सारे सवाल करती होंगी. मुझे ऐसा अंदर से फील होता है कि जैसे अमायरा भी ना बहुत सारे सवाल करती होंगी. करती हैं सवाल?
1: जी.
0: तो सवालों के जवाब ज्यादातर कौन देता है?
1: मम्मा.
0: एंड देन मम्मा के अलावा कौन कौन?
1: पापा.
0: पापा भी देते हैं. चलो शुक्र है अमायरा के मुंह से अब्बा का तो नाम सुना हमने, नहीं तो सारे क्रेडिट अम्मा ही ले जाती हैं. तो अब्बू भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं सवालों के जवाब देने में. ठीक. अच्छा विच वॉज द, कुछ याद पड़ता है अमायरा? कुछ ऐसा सवाल जो रिसेंटली आपने नॉलेजेबल कोई सवाल पूछा हो जिससे आपको कोई नई चीज सीखने को मिली हो. क्या था वो सवाल? तो फिर भाई मुझे भी तो बताएं ना. नाउ आई एम इंटरेस्टेड. ठीक है तो फिर बताएं, मुझे भी बताएं क्या पूछा था आपने सवाल.
1: कि अल्लाह पाक कैसे दिखता है, उनका फेस कैसा है.
0: ओह सो स्वीट. और मम्मा, मम्मा ने क्या बताया आपको, मम्मा बाबा ने?
1: वो तो
0: कुछ कुछ क्या? अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने जो रीड किया है ना, मैं वो आपको चीज बताऊं? बताऊं?
1: तेज रोशनी का.
0: तेज, हाँ वो जिसे हम कहते हैं नूर, है ना? अच्छा मैं आपको एक चीज बताती हूँ. आई रेड इट क्योंकि आपकी तरह ना मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ. एंड लाइक एवरी अदर पर्सन, मुझे भी ये सवाल दिल में आता है कि अच्छा अगर हम इमेजिन करें कि अल्लाह पाक कैसे दिखते हैं तो कैसे दिखते हैं. फिर मैंने एक जगह पढ़ा, ये मेंशन्ड है कि अल्लाह ताला ने एज अ बाउंटी, एज अ ट्रॉफी, या आप कह लें एज अ अजर, जो अच्छे लोग होंगे ना दुनिया में, जो सबसे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे और जो अल्लाह ताला की मोस्ट फेवरेट बनेंगे, ठीक है, उनके लिए अल्लाह ताला ने एज अ रिवॉर्ड पता है क्या रखा है? दैट अल्लाह ताला विल मीट देम इन पर्सन. तो अगर हमें ये जानना है कि अल्लाह ताला कैसे दिखते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अच्छा इंसान बनना पड़ेगा. वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू बी ओबीडियंट टू अल्लाह ताला.
1: वी हैव टू बी अ गुड पर्सन.
0: यस. तो जब आपका ये जो सवाल है ना कि अल्लाह ताला कैसे दिखते हैं, इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला विल शो हिमसेल्फ to the people who have been good in this world. जैसे हम test exam देते हैं ना, आप तो माशाल्लाह A grade लेकर आती हैं ना?
1: I got this
0: namaz. माशाल्लाह, you started praying also. Yeah. अरे भाई, मेरे लिए भी दुआ किया करें ना थोड़ी थोड़ी, ठीक है? Please, please, मैं आपके लिए दुआ करूंगी. ठीक है? मेरे लिए दुआ करेंगी? चले हम दुआ में भी फ्रेंड्स बन जाते हैं. जब मैं नमाज पढ़ूंगी तो मैं आपके लिए दुआ करूंगी, आप मेरे जब नमाज पढ़ेंगी तो फिर मेरे लिए भी दुआ करना, ठीक है? एंड फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर जब हम नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, अच्छे काम करेंगे सारे, देन व्हेन वी विल बी अ गुड पर्सन, देन व्हेन वी विल हैव अ होम इन जन्ना, वी विल हैव अवर कैसल इन जन्ना, एंड यू विल बी माय नेबर.
1: और मैंने ना,
0: हाँ जी,
1: कुरान क्लास में.
0: हाँ जी. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. अच्छा
1: एक नई सूरह हमको याद स्टार्ट करने वाला है, अभी तो रिवीजन चलेगा.
0: चलें, वेरी गुड हो गया भाई, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. थोड़ी सी बड़ी होंगी ना आप इंशाल्लाह, थोड़ी सी और बड़ी होंगी तो सूरह इमरान को थोड़ा तफसीर से तर्जुमे के साथ भी पढ़ना. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी ब्यूटिफुल सूरह. Very beautiful. It has so many stories in it.
1: Inshallah.
0: Inshallah, inshallah, inshallah. अच्छा ये बताएं अमायरा, ये तो आपने मुझे बता दिया कि भाई अमायरा जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है क्या कहते हैं, और भी दीन के बारे में सीखेंगी और सवाल करेंगी, ठीक? और अभी जो है वो हम नेम प्लेस एनिमल थिंक कह रहे हैं.
1: जी.
0: ओके, तो मुझे जो है वो वही वाला

0: हमारा टाइमिंग होगा 45 सेकंड्स का, ठीक है? और आज अमायरा ने कोशिश करनी है, क्योंकि अमायरा एवरी टाइम थ्री थिंग्स बता जाती हैं, फोर्थ वाली को भूल जाती हैं, उसके अंदर थोड़ा सा टाइम मिसमैनेजमेंट हो जाता है. तो आज अमायरा ने मुझे कोशिश करके बताना है 45 सेकंड्स के अंदर, ओके? ठीक है, चलें भाई. टाइम कहाँ गया हमारा? टाइम टाइम टाइम टाइम टाइम चलें, ठीक है. अमायरा का हम लेटर कर देते हैं. योर लेटर स्टार्ट्स विद आई, ठीक है? आई स्टार्ट करें. वन टू थ्री गो.
1: इशरा.
0: ओके, इशरा.
1: इस्लामाबाद.
0: इस्लामाबाद. ओके, एनिमल.
1: पहले
0: अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है. ओके, आइसक्रीम. ओके, एंड एनिमल. जल्दी जल्दी जल्दी,
1: दो मिनट,
0: दो मिनट नहीं है ना, 10 seconds है, 10 seconds. एनिमल और 2 seconds more. और टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, बट इट इज ओके. चलें कोई बात नहीं, वी विल गिव इट अनदर ट्राई, कुछ नहीं होता. भाई देखें, ये भी हो सकता है, ये इसे क्या कहते हैं, इगुआना. इगुआना का पता है आपको? हाँ हाँ हाँ हाँ, ये भी हो सकता है. मैंने लास्ट टाइम भी किसी को शायद
1: देखा है.
0: और मैंने एक और बहुत सिंपल सा बताया था पहले भी, इंडियन एलिफेंट. इंडियन एलिफेंट, हाँ हाँ. अब नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा बस, ठीक है? तो अमायरा ने जो है वो 45 सेकंड्स में, बट इट वाज अ वेरी गुड ट्राई, नाइस गुड. अब कल एक और काम करेंगे कि कल फिर से कोशिश करेंगे. ओके, चलें जी, चलें भाई. अब जाने से पहले एक अच्छा सा मैसेज दे दें.
1: आई लव माय पापा लॉट.
0: Oh, that's so kind of you. That's so sweet of you. And your baba and mama loves you a lot too. Chalen ji, apna dher sara khayal rakhe. Allah Hafiz. Allah Hafiz.
1: And I love you too.
0: I love you so much too. Chalen ji, Allah Hafiz.
1: Allah Hafiz.
0: Bhai, ye thi meri choti si pyari si dost, jinka naam hai Amaira. और हम एक और कॉलर की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. नहीं, मेरी आवाज़ मुझे खुद ही आ रही है. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी. कौन है हमारे साथ?
2: तमीम.
0: तमीम विद डबल ई और तमीम विद आई?
2: डबल ई एंड आई.
0: डबल ई एंड आई, सारे अल्फाबेट्स आ गए. तो Why double E and why I? Today I'm curious to know. अच्छा ये बताएं, तमीम, do you like to write your name with double E or with I?
2: I.
0: I. And how do you write? How do normally is it written?
2: Double E.
0: अच्छा, ओके, तो ये है मसला. ओके, चलें तमीम विद डबल ई एंड आई बोथ. चलें जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो आज का आपका दिन कैसा जा रहा है? हाउ इज योर डे गोइंग?
2: गुड.
0: डिड यू गो टू स्कूल?
2: या नो.
0: नो, डिसाइड कर लें, यस और नो.
2: नो.
0: बट व्हाई यू डिड नॉट गो टू स्कूल तमीम?
2: आई वाज स्लीपिंग.
0: नींद बहुत प्यारी है भाई, देखिए डिस्टर्ब ना किया जाए. आई वॉज जस्ट स्लीपिंग. चलें जी, ऐसा भी होता है, नींद नींद प्यारी है. अच्छा एक बात बताएं तमीम, टुडे यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग क्यूरियस, सो व्हाट डू यू थिंक, यू आर अ क्यूरियस पर्सन? डू यू लाइक एक्सप्लोरिंग?
2: या.
0: ओके, डू यू आस्क टू मेनी क्वेश्चंस?
2: या.
0: एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन लेटली यू हैव आस्क्ड? रिसेंटली आपने ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो किसी से पूछा हो? कोई चीज, कोई नई चीज एक्सप्लोर की है आपने?
2: No.
0: कुछ नया नहीं एक्सप्लोर किया?
2: हाँ.
0: तो क्या मतलब अभी अभी कुछ कुछ कुछ लेटली क्या एक्सप्लोर किया, कुछ कुछ नया, कुछ नॉलेजेबल चीज, समथिंग न्यू विच यू हैव डिस्कवर्ड?
2: No.
0: तो फिर ऐसे कैसे क्यूरियस हो गए तमीम? अच्छा, आई बिलीव तमीम इज अ साइंटिस्ट, राइट? सो एज अ साइंटिस्ट गिव मी समथिंग, समथिंग, सम फन फैक्ट, और टेल मी समथिंग, समथिंग नाइस. नथिंग? हैं कि चले गए तमीम?
2: हैं.
0: अच्छा क्या हुआ है तमीम, ऐसे कंफ्यूज कंफ्यूज क्यों हैं? अच्छा, आई विल आस्क यू, आई विल आस्क यू समथिंग वेरी रैंडम, ओके? व्हाई इज अ रेनबो मेड? लाइक रेनबो कैसे बनता है? डू यू नो दैट? तमीम, लजी मैं बातें कर रही हूँ अभी, मैं जनरल नॉलेज अभी पूछ ही रही थी, तमीम साहब कट लिए, मतलब वो चले गए, पता नहीं कहाँ गए. कॉल कर गई उनकी. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा भाई, बच्चा पार्टी, पहले तो ये बता दूं, ओनली इंग्लिश? ओके ओके ओके. सो हाउ आर यू?
3: फाइन.
0: इज इट आशाज?
3: नो
0: नो.
3: इट्स
0: होम?
3: इजान.
0: इजान, कैन आई हैव योर स्पेलिंग, नेम स्पेलिंग? ई जेड ए एन. आई जेड?
3: नो, आई जेड ए एन.
0: आई जेड ए एन, डबल ए एन.
3: Yeah.
0: Aizan, what does your name mean?
3: I think discipline.
0: Discipline, I think. Beta, you don't know the meaning of your name?
3: No.
0: Ah. Aizan, what's your age?
3: 13.
0: I meant to say 23.
3: 13.
0: Okay, 13. Aizan, the meaning of your name is obedient.
3: Yeah.
0: The one who's obedient. Achha, okay. Tell me, 13-year-old Aizan, if I ask you that how was your day at school, was it good or no?
3: It was good.
0: It was good. What did you do today?
3: I played PT.
0: Ah, PE. Achha, toh phir PE mein kya kya? Oh, sorry, English only, English only. What did you do in PE? Like football? Okay, you said football.
3: Yeah, football.
0: So how many did you score? Goals?
3: I did score.
0: You didn't score? We played. It's okay. Not every game is about goals, right?
3: Yeah.
0: We played for fun. Why to be too much concerned about the goals? It's okay.
3: Yeah.
0: For goals, Ronaldo and Messi are there. They will do it. It's their job. Acha, tell me, if I ask you, because today we are talking about being curious, asking too many questions. Basically, what we are talking about is staying curious helps you grow. So today I'm asking all the kids that what was the recent question which you asked somebody and you learned something new because you asked a question?
3: Can I go to the toilet?
0: Can I what?
3: Can I go to the toilet?
0: Lo ji. ये तो टीचर से डेली पूछते हो भाई. यू आस्क दिस क्वेश्चन एवरी डे फ्रॉम द टीचर. समथिंग न्यू विच इट्स इट शुड बी रिलेटेड टू नॉलेज, नॉट टू द टॉयलेट. समथिंग न्यू. सी लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई विल गिव यू अ क्वेश्चन. लाइक इफ यू आस्क अ किड, ही डजंट नो. लेट्स अज्यूम अ किड हु डज नॉट नो हाउ रेनबो इज मेड. Or let's say that if we ask a question from a kid, or he asks or she asks, how do volcano explode? What happens when the lava is inside the earth? Something, anything. Anything knowledgeable. I'm 13 years old and I did not ask any questions.
3: No, 6 cube. What is 6 cube?
0: what 6 cube? अच्छा मैथ्स में यू नो आई विल कन्फेस दिस आई एम ऑल्सो नॉट दैट गुड इन मैथ्स सो वॉट इज सिक्स क्यूब कैन यू टेल मी सिक्स क्यूब राइट सिक्स क्यूब इन मैथ्स वॉट इज सिक्स क्यूब इट्स अ क्यूब विच हैज सिक्स ब्लॉक्स इन इट
3: नो
0: देन क्यूब्स मुझे अब समझ में आ गया ओके ओके ओके ओके नाउ आई अंडरस्टैंड इट अच्छा ये तो उसका नहीं है इट्स समथिंग रिलेटेड टू अलजेब्रा इज इट
3: No, cube root.
0: Cube root, okay. Six and then on the top we have small three on it.
3: Three.
0: Yeah.
3: Yeah.
0: I remember this. I'm not. This is exactly why math gives me anxiety. I'm not going to school. No, not lately. I have not been to school lately. I think after knowing this six cube, I need to go back to school. It's okay. been maybe 20, 25 years I left school. Like,
3: okay.
0: So I believe I'll need to go back because I don't remember six cube. Okay. I wish this time I will have good maths teachers. Achha bhai. Tell me, okay, the recent thing which you have learned due to your curiosity is six cube. And you taught me also. So, okay, good. I appreciate that. Thank you for your patience. Achha, ye batai, would you like to play name, place, animal thing with us?
3: Okay.
0: So you'll be given 45 seconds. And okay. within that 45 seconds today, you have to, let's see, within how many seconds do you cover up the game, okay?
3: Okay.
0: You want to play easy, medium, advanced level?
3: Your choice.
0: Which one?
3: Your choice.
0: My choice, because you're 13 years old, so I will be at least, let's say, chalo, theek hai. A bit advanced. What do you say?
3: Okay.
0: One, two, three. Your alphabet is V. And your time starts now. V.
3: Okay. Voice now. Name. Place. I'll go.
0: Place is which one?
3: Place,
0: Vatican
3: City. Which one? Vatican City, the small country.
0: Okay. And animal?
3: Viper.
0: Viper, animal. Okay, let's see if viper is an animal. And thing?
3: Thing, run.
0: ओके भाई कितने 42 सेकंड्स में सॉल्व किया एंड दैट वुड बी क्लैपिंग फॉर यू गुड हो गया भाई गुड हो गया एंड यस लाइक मी इफ समबडी वाज क्यूरियस वाइपर इज एन एनिमल एंड इट इज अ काइंड ऑफ स्नेक इज इट एम आई राइट या आई एम गुड एट साइंस एट लीस्ट आई रेड दैट अच्छा ठीक है वाइपर ओके अच्छा सिटी का नाम जो आपने लिया था द सिटी विच यू सेड और द प्लेस विच यू सेड व्हाट वाज दैट अगेन
3: वैटिकन सिटी
0: ओके एंड डू यू नो वेयर इज इट
3: इट्स लाइक द स्मॉलेस्ट कंट्री
4: इट्स इन इटली
0: इट्स इन वैटिकन सिटी ओके वैटिकन सिटी ओके आई गेट इट अच्छा वैटिकन सिटी से थोड़ा बहुत इंस्पायर होकर जो है इफ़ यू गो टू पर्ल कतर यू विल गेट अ ग्लिम्स ऑफ इट इट इज़ देयर इवन इन विलेजो मॉल देर इज़ अ प्लेस इफ़ यू गो ओवर देयर इट लुक्स वेरी फेमिलियर या ओके चलें जी 42 सेकेंड्स नॉट बैड आई बिलीव यू हैव कॉल्ड अस फॉर द फर्स्ट टाइम इज इट
3: Yeah, before one other guy.
0: So yeah. Nice. This was good. 42 seconds is good. I

0: in the class. That's why I did not used to ask.
1: I feel kind of shy.
0: Kind of shy. But I think, you know, when I have, when I'm a grown-up now, now I feel that, no, we should not be shy of asking questions if it's regarding knowledge and increasing our knowledge, if it's helping to increase our knowledge, never be shy. Parthiv, I'm telling you, seriously, don't. Your parents, your teachers, your elder siblings, ask them.
1: Okay,
0: don't be shy. When I was a kid, I was too much shy. But now I feel that, oh my God, why was I that shy? Now I get my research done. So I'm telling you, I'm giving you a piece of advice. If it's a knowledge-based question, always feel proud to ask. Proud. Yeah. Feed your curiosity with right answers. Okay, so which was the recent question you have asked anybody? Do you remember any questions? Recently, you would have asked somebody in the class, at home, which gave you a new knowledge. Anything you remember? It doesn't need to be a very big thing. No? It can be a simple question. How does the door, like, what do we call when the door opens and that gap down there is called a tark? It can be a simple question. Anything?
1: How to fix a cycle.
0: How to fix a cycle?
1: Yeah.
0: Oh, that's nice. That shows me that you love cycles. You like riding cycles, bicycles.
1: Yeah.
0: Oh, nice. This is a very good thing that you asked, and it gives me a concept that you you're interested in riding cycles.
1: Yeah.
0: And you know, fixing your bicycle by yourself is a skill.
1: Yeah, with my father.
0: Yeah, very good. Very good. It's a skill. Basically, it's a skill. And when the chain pulls off and it gets down and then you try to fix it.
1: I also want to be a sportsman.
0: Oh, mashallah, mashallah. So, which sports would you want to go in?
1: Football.
0: Messi or Ronaldo? Yeah.
1: Ronaldo.
0: No, you should say Parthiv. You should say, I'm myself a brand. I will be a brand, inshallah. Then people will say Parthiv, not Ronaldo and Messi. People say Parthiv. Okay?
1: Okay.
0: stay happy and stay doing, keep on doing the things which you love.
1: Okay.
0: Okay? So would you like to play this thing, name place animal thing with us?
1: Yeah.
0: You know, since the week has started, we have started playing this game. The lowest time in which somebody has completed the game is 12 seconds. It was Abdus Salam yesterday. He completed the game in 12 seconds.
1: I heard it in radio.
0: So, what do you think? How much time will you take?
1: I don't know.
0: Let's see. Okay, let's try. And don't worry, it's the first time, so we listen and we don't judge. We are not judging. We're just playing a game. You have total of 45 seconds and let's try our best. Okay?
1: Okay.
0: And I'm so proud that you, at least you gave a call. You were not shy to give a call. Sometimes kids get very shy and they're like, no, we don't want to call. I'm so happy that you called. Acha bhai, Parthiv, name, place, animal thing, and we will start with the letter. Letter kaun sa wala dein Parthiv ko? K chalega? K.
1: K.
0: K, okay.
1: Kite?
0: Okay, your time starts now. Okay, kite.
1: Kite. Okay. Karnakada.
0: Okay.
1: Karnakada.
0: Okay, and place? Oh, sorry, name?
1: Kettle.
0: Okay, kettle is a thing. You already said kite. Give me an animal and a name. Animal and name.
1: Kangaroo.
0: Kangaroo, okay. Animal is kangaroo, okay.
1: Krishna.
0: Okay. Very nice. 30 seconds. Not bad. Good. Very nice. Very, very nice. Kangaroo. Thanks. Kangaroo. You know what is the origin of kangaroo? Where do our kangaroo are, like, which is the home country for kangaroos? You know. What do you know? Tell me. Parthiv. You know where do kangaroos actually live? Like, which is the home country of kangaroos?
1: Australia.
0: Yes, it's Australia and it's one of my favorite countries. I want to visit Australia. Would you travel with me? It's a long distance.
1: Yes.
0: Inshallah. Chale bhai, may God bless you. And if I go to Australia, we will go together. Okay, we'll plan.
1: Okay.
0: Chale bhai, 32 seconds. Very, very good. For the first time caller, very good, I would say. Very good. And Parthiv, before you leave, would you like to convey a message to all the kids who are listening to you? Anything from your side?
1: Do not trust strangers.
0: Yes, we had a talk, I think, about it yesterday or day before yesterday also. That yes, it is a very good thing to know. Be aware that do not trust strangers. Do not take candies and stuff to eat from strangers. And there are things, don't just trust anybody randomly. Chale bhai, take care of yourself and keep on calling us. And let's see, next time when you try, hopefully you break your own record, okay?
1: Okay.
0: Chale ji, Allah Hafiz, bye-bye, ta-ta.
1: I'll try to break the record.
0: Yes, why not? Why not? Yes, we will all, inshallah, see that next time when you give
1: us
0: a call.
1: I'll call you tomorrow.
0: Yeah, do call me tomorrow. Let's see, okay? Okay. Bye-bye.
1: Okay. Bye-bye.
0: तो भाई बच्चा पार्टी 12 सेकंड का रिकॉर्ड मुझे याद आ गया. मैं देखिए मैं आप लोगों का रिकॉर्ड रखती हूँ साथ में. सो मैंने जब अपना रिकॉर्ड रीचेक किया तो अब्दुल सलाम ने कल रिकॉर्ड बनाया था 12 सेकंड का और वो आखिरी टाइम में उन्होंने बनाया था. एंड आई वाज लाइक वाओ 12 सेकंड का रिकॉर्ड विद इन अ वीक. अभी तक का हमारा सबसे जो टॉप स्कोरर रह चुके हैं, मतलब हमारा टॉप स्कोर कुछ ऐसा है कि वो सबसे कम टाइम में जिसने सॉल्व की है, हमारे पास जो नेम प्लस एनिमल थिंग हम खेल रहे हैं उसको जिसने खेला है सबसे कम टाइम में वो है 12 सेकंड का और वो है अब्दुल सलाम. तो उनका रिकॉर्ड कौन बीट कर सकता है आज? फॉर टुडे पार्थिव हैज़ डन इन प्लेड द गेम विद इन 32 सेकंड्स. सो आई रिपीट द नंबर अगेन, 4434377 इज द नंबर. 4434377 इज द नंबर. बच्चा पार्टी आप मुझे कॉल कर सकते हैं और चाहें तो मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं 6622107 पर. एंड आई एम सो प्राउड एंड आई एम सो हैप्पी. यू कैन नॉट इमेजिन हाउ हैप्पी डज इट मेक मी फील व्हेन यू गाइज गिव मी अ कॉल. मोस्टली आई रिसीव कॉल्स फ्रॉम द किड्स हु आई ऑलरेडी नो एंड समटाइम्स आई रिसीव कॉल्स फ्रॉम द किड्स हु आई डू नॉट नो एंड दे आर कॉलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. इट मेक्स मी सो हैप्पी. It just gives me, मुझे ना बहुत अच्छी फीलिंग आती है. मैं सोचती हूँ कि अच्छा there आर किड्स जो कि करेज अपने अंदर लेकर आ रहे हैं कि वो कॉल कर रहे हैं हमें, हमसे बात कर रहे हैं. इट्स ओके, आपको उर्दू लैंग्वेज अगर नहीं आती तो आप मुझे बता सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि भाई मुझसे उर्दू में नहीं इंग्लिश में बात कर लें, तो मैं वो भी कर लूँगी. मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा खुश करती है वो ये है कि आप कॉल करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेशन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है. और भाई आज आप लोगों से मुझे बहुत नई नई बातें सीखने को मिल रही हैं. तो भाई और कौन कौन मुझे क्या क्या सिखा रहा है, आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट आर यू क्यूरियस टू आस्क एंड व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आपने किसी से कोई सवाल किया था जिसने आपकी नॉलेज में इंक्रीज किया हो कुछ एक्स्ट्रा, तो मुझे ज़रूर कॉल करके बताएं. 4434377 इज़ द नंबर. और ये याद रखें कि सवाल पूछना कोई बुरी बात नहीं होती. If it's increasing your knowledge, तो आपको shy feel करने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. Schools भी इसीलिए होते हैं, घर भी इसीलिए होता है, family भी इसीलिए होती है कि वो आपके सवालों के जवाब दें. और आजकल तो माशाल्लाह से इतना social media का सर्च बटन एक दबाओ, क्लिक करो और ये जा वो जा, हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन निकल आती है. तो ये याद रखें कि अलाइन योर सेल्फ और डायरेक्शन अपनी चूज़ करें कि आपने किस चीज़ को कितना पॉजिटिवली यूज़ करना है. तो भाई एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे ढेर सारी बातें होंगी. सुनते रहें एफएम 107 पर सुपर सफा के साथ द सुपर किड्स शो. कहाँ गई ब्रेक मेरी? ये रही हाँ, मिल गई. क्या है इस गाने का नाम? इनाम. वैसे मुझे ना गाने ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जहां मैं बादशाह का नाम देखती हूँ मुझे मजा आता है. मुझे ऐसा लगता है कुछ अच्छा आने वाला है, ग्रूवी सा. चलिए सुन लेते हैं.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: साइंस कैन बी फन? ना, साइंस विल बी फन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो थ्योरीज फैक्ट्स बनेंगी, है ना? तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ, एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में। सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट, हर संडे दोपहर 3 से 4 बजे सिर्फ FM 107 पर। दिल से देखिए।
2: Absolute cinema.
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 से मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
4: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट पहनना आपकी हिफाजत को बढ़ाता है, और हाँ, सीट बेल्ट नहीं बांधने से आपको फाइंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रैफिक के कानून का सीरियस वायलेशन है। सीट बेल्ट कार ड्राइवर्स के लिए फर्स्ट सेफ्टी लाइन है, क्योंकि ये आपकी हिफाजत करती है। FM 107 तमाम रोड यूजर्स से गुजारिश करता है कि वो अपनी जानो माल की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक कानून की तामील करें। याद रखिए कि ट्रैफिक सेफ्टी ऑफिशियल अथॉरिटीज और सोसाइटी के दरमियान मुश्तरका जिम्मेदारी है।

0: और भाई आपकी खासियत पता है क्या है? आपकी खासियत ये है कि आप क्यूरियस हो, आप छोटे हो, आप सवाल पूछ सकते हो और आपको उनके मजे मजे के जवाब भी मिलते हैं और आप उनके जवाबों के ऊपर भी रिसर्च कर सकते हो। तो भाई आप बहुत खास हो, ये याद रखो। तो बच्चा पार्टी, आप सुन रहे हैं सफा के साथ द सुपर किड्स शो ऑन FM 107।
1: आप सुन रहे हैं द सुपर किड्स।

0: तो बच्चा पार्टी वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं द सुपर किड्स शो ऑन एफएम 107 और हमारे पास एक कॉलर हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़ गया है. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: यस, कौन है हमारे साथ?
1: गेस
0: बोलते हैं, पूरा सेंटेंस बोला करें ना, कुछ सेंटेंस बोले तो मैं गेस करूं कुछ.
1: I am 12 years old.
0: देखें ये जो है ना, ये 12 years old. अच्छा ये बता दें, बॉय गर्ल? अहमद.
1: बॉय.
0: अहमद नहीं है. अब्दुल सलाम?
1: यस.
0: अब्दुल सलाम कैसे हैं? अभी देखा, माशाल्लाह. अब्दुल सलाम, इसे कहते हैं लंबी उम्र होना. मे अल्लाह ताला ग्रांट यू विद इवन मोर हेल्दी लाइफ, और अच्छी अच्छी लाइफ जिए, लंबी उम्र जिए. और मैं अभी याद कर रही थी, बच्चा पार्टी को बता रही थी, पता है सबसे सबसे जल्दी गेम किसने सॉल्व की थी? अब्दुल सलाम ने की थी कल की थी ना.
1: yes.
0: 12 सेकंड में लास्ट टाइम पे. ओए होए, क्या गेम खेला था बेटा, क्या गेम खेला था. हिस्ट्री लिखी जाएगी ना इस गेम की, तो अब्दुल सलाम का नाम आएगा उसके अंदर. अब्दुल सलाम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह.
0: तो ये बताएं कि आज का स्कूल का दिन कैसा गुजरा है आपका?
1: अच्छा सर.
0: कैसे अच्छा था, क्या क्या किया?
1: हमें लास्ट लेसन में फ्री टाइम मिला था.
0: अरे भाई, फिर तो मजा आया होगा.
1: जी.
0: अच्छा ये जो फ्री टाइम मिलता है, इसमें करते क्या हो? धमाल, शोर?
1: गेम्स खेलते हैं.
0: ओ, तो ये इंडोर गेम्स में आज क्या क्या खेला?
1: आज मैंने अपने दोस्त के साथ माइनक्राफ्ट खेला था.
0: अरे नाइस. एं, क्लासमेट का खेला था
1: क्या?
0: क्लास में बैठकर खेला था?
1: जी.
0: कंप्यूटर क्लास थी?
1: नहीं, हमारे अपने वो लैपटॉप होते हैं.
0: ओके ओके ओके ओके ओके. सो योर

0: your classroom is having the laptops or the systems, right?
1: Yes.
0: Oh, good. Advance. भाई बच्चा तरक्की करेगा ये होती है हमारे जो स्कूल्स होते हैं ऐसे तरक्की करते हैं तो दिस इज़ नाइस दिस इज़ नाइस अच्छा चले ये जो गेम आप बोल रहे हैं ना एक्चुअली मैं इस गेम को मैं बहुत एडमायर करती हूँ एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल गेम्स में से कहूँगी क्योंकि ये आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती है इसके अंदर जो चीज़ें बनानी होती हैं उसके लिए आप कलेक्ट करते हो और जो है ना मटेरियल्स कलेक्ट करते हो फिर उन मटेरियल्स के कुछ कॉम्बिनेशन बनते हैं जो कि रियल लाइफ में भी वैसे ही बनते हैं जैसे गेम में बन रहे होते हैं तो यस इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल थिंकिंग और आपको पता है एक मैं एक इस गेम का एक रिव्यू पढ़ रही थी एक रिसर्च के मुताबिक ये कहा गया है कि ये गेम जो है इट्स सेल्फ आई डोंट रिमेंबर द कंट्री नाउ लेकिन कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो कंसिडर कर रही हैं इस गेम को अपने कोरिकुलम में लाने के लिए क्योंकि दिस गेम हेल्प्स किड्स टू लर्न अबाउट केमिस्ट्री टू लर्न अबाउट फिजिक्स इट इज़ सच अ रियलिस्टिक गेम कि ये जो है ना उसके कॉन्सेप्ट सिखा रही है सो नाइस ओके चलें भाई वी आर डूइंग समथिंग समथिंग हम कहेंगे नॉलेजेबल है गेम से भी इंसान बहुत कुछ सीखता है कि नहीं
1: yes.
0: अच्छा भाई अब्दुल सलाम ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि रिसेंटली कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपने किसी से पूछा हो जो आपकी क्यूरियोसिटी को आपकी नॉलेज को फीड कर रहा हो तो वो क्या होगा
1: कोई मुझे नहीं याद
0: कुछ नहीं याद कोई सवाल कोई क्लास में पूछा हो कोई घर वालों से पूछा हो अम्मा अब्बा से कोई सवाल ऐसा पूछा हो
1: ये कोई नॉलेज के लिए नहीं है लेकिन मैंने अपनी मामा से पूछा था कि खाने में क्या बना
0: अरे भाई ये बताओ हमारा कोई वायरलेस कनेक्टेड है क्या पता है मैं भी बैठे बैठे दिमाग में सोच रही थी कि मैंने लास्ट टाइम अपनी क्या सवाल पूछा मेरे दिमाग में एकदम से आया द मोमेंट यू सेड ना द मोमेंट जैसे आपने बोला ना मेरे दिमाग में सवाल आया कि हाँ लास्ट टाइम मैंने भी अम्मी से पूछा अम्मा खाने में क्या बनाए वाह हमारा कोई वायरलेस कनेक्टेड हो गया मतलब हम लोग अच्छे दोस्त बन गए भाई अच्छा तो फिर अम्मा ने खाने में क्या बनाया था
1: बिरयानी
0: देखो मुझे इस वक्त भूख लग रही होती है इतने अच्छे अच्छे नाम लोगे खानों के तो फिर मैं क्या करूंगी रोऊंगी फिर मैं जा रही हूँ शोर शोर शोर छोड़कर अब तो सलाम मैं आपके घर आ रही हूँ ठीक है
1: ओके
0: तो कल वाली बिरयानी खिलाएंगे या अभी कुछ नया बनाया है वो खिलाएंगे
1: अभी कॉल के बाद मैं पूछूंगा
0: अच्छा कॉल के बाद पूछेंगे तो कल वाली बिरयानी बची हुई नहीं है वो खा लूंगी मैं इट्स ओके आई लाइक एक दिन पुरानी बिरयानी
1: हमने सारा खा लिया था
0: लो जी झूठे मुंह भी ना बोला इन्होंने कि भाई थोड़ी सी बची होगी मैं देखूंगा टेंशन नहीं ले मैं आपको खिला दूंगा ना नहीं खा ली हमने इतने मजे की बनी थी खा ली सबने खा ली चलिए कोई बात नहीं अभी आप घर जाएं अपना खाना वाना खाएं फिर कल फिर से मैं आपसे पूछूंगी कि कल क्या खाया था ओके
1: ओके
0: तो आज का क्या स्कोर करने का प्लान है
1: मिनिमम 10
0: भाई देखें आप जो है ना एक्सपर्ट एडवांस लेवल तक जा चुके हैं क्योंकि आपने 12 सेकंड का टारगेट अचीव किया है तो आज हम आपको कुछ यूनिक देंगे क्या कहते हैं फेयर इनफ क्योंकि भाई आपने बेंचमार्क सेट कर दिया है ना तो आज हम आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का देते हैं ठीक है चलिए जी आपको हम अल्फाबेट कौन सा दें अल्फाबेट कौन सा हाँ ये नज़र आ ही गया मुझे क्यू
1: क्यू
0: यस क्यू
1: ओके
0: चलें जी आपका टाइम स्टार्ट होता है क्यू से नाउ नेम
1: क्वीन कतार
0: ओके
1: क्वेल
0: ओके थिंग
1: Queen.
0: The queen is a thing? Would it be considered?
1: No.
0: अच्छा चलिए place बता दें place. नहीं place आपने बता दी कतर. Okay name बता दें name.
1: Queen.
0: Okay. अच्छा thing में क्या बोलेंगे?
1: Thing मुझे अभी नहीं पता.
0: है अभी time है.

0: चैलेंज टाइम तो हमारा ओवर हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा ये जो आपने प्लेस बोली ये क्या थी, एक दफा फिर बोलें। नहीं प्लेस नहीं सॉरी, प्लेस नहीं सॉरी, नेम में आपने बोला था क्वीन।
1: क्वीन नहीं क्वीन,
0: क्वीन। ओके ओके क्वीन, मैं ये सोच रही थी नेम में क्वीन कैसे आएगा। क्वीन, क्वीन इज अ नेम, यस क्वीन इज अ नेम, आई नो दैट। चलें जी तो आज हमें थोड़ी सी नज़र लग गई, नहीं असल में पता है कि आप भूख लग रही होगी ना आपको थोड़ी सी, तो दिमाग भूख में काम नहीं करता ज़्यादा, है ना, है कि नहीं, है ना, हाँ ये होता है, चलो कोई बात नहीं। तो हमने 45 सेकंड्स में सॉल्व किए हैं 3 नेम प्लेस एनिमल थिंग रह गई हमारी। अगर आप वैसे थिंग के बारे में सोचें तो क्या चीज़ आ सकती है, वैसे ऐसी सोचें, ऐसी ऐसी जस्ट अ रैंडम गेस।
1: गुड क्वेश्चन,
0: गुड क्वेश्चन। कुल्ट का नाम सुना है आपने कभी, कुल्ट?
1: कुल्ट,
0: हाँ कुल्ट, द ब्लैंकेट विच वी वेयर।
1: ओ
0: हाँ, अच्छा क्विल का नाम सुना है, क्विल, इट्स एन ओल्ड पेन मेड आउट ऑफ फेदर्स।
1: या
0: यस। अच्छा एक और चीज है, इट्स एक्चुअली अ स्टोन, क्वार्ट्ज।
1: ओ
0: यस, तो भाई कोई बात नहीं, कभी कभी जब हमें भूख लगती है ना थोड़ा सा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, फिर भूख भी लगी हुई है, फिर गर्मी भी है, फिर स्कूल भी है, तो थोड़ा बहुत तो चलता है, कोई बात नहीं, है कि नहीं, एग्जाम थोड़ी ना था।
1: एग्जाम
0: भी था तो भाई इतनी तो टेंशन हो जाती है, तो फिर इसमें भी 12 सेकंड, अब एक दफा कर लिया ना 12 सेकंड, इट्स ओके, बेंचमार्क तो सेट कर दिया ना, अब अपना रिकॉर्ड किसी और दिन तसल्ली से ब्रेक करेंगे, है ना।
1: मैं कल कर लूंगा,
0: कल कर लूंगा, देयर इज ऑलवेज अ सेकंड चांस। चलें जी, जाने से पहले कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे?
1: नेवर गिव अप,
0: यस दैट्स द स्पिरिट, वी शुड ऑल हैव दैट स्पिरिट। चलें जी अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। अरे इनसे तो मैं पूछना भूल गई, इनका एग्जाम कैसा गया, एग्जाम के बारे में, चलो कोई बात नहीं कल पूछ लेंगे एग्जाम कैसे चल रहे हैं। तो बच्चा पार्टी, हम आज आपसे बात कर रहे हैं बड़ी ही सिंपल सी चीज के बारे में, जो कि है स्टे क्यूरियस, क्वेश्चंस हेल्प यू ग्रो। और क्वेश्चंस आस्क करने में, मतलब कि सवाल पूछने में इंसान को हिचकिचाना नहीं चाहिए, स्पेशली जब वो सवाल आपके कह लें कि दिमाग को, आपके दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है किसी चीज़ को लेकर, ये चीज़ कैसे काम करती है, व्हाट व्हाई वेयर दिस, तो इन चीज़ों से आपका दिमाग थोड़ा सा हल्का हो जाता है जब आप सवाल करते हैं। तो बच्चा पार्टी आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4434377 पर, और हाँ मैं आपसे सवाल आज ये कर रही हूँ कि लास्ट टाइम कौन सा ऐसा कोई रिलेटेड सवाल आपने किया था जो कि आपकी नॉलेज में इंक्रीज लेकर आता था, जो आपको पता है कि इट वाज हेल्पिंग यू ग्रो, तो ऐसा कोई सवाल किया था? वैसे मुझे तो वही वाली अब्दुल सलाम वाली बात याद आ गई, मैं अभी बैठी हुई सोच रही थी, उन्होंने एक मतलब द मोमेंट ही सेड इट द सेम टाइम आई ऑल्सो गेस दिमाग में तुमसे आया, अम्मी से मैंने क्या पूछा था, हाँ मैंने पूछा था खाने में क्या बनाया है। तो भाई बच्चा पार्टी 4434377 इज़ द नंबर टू कॉल, और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे इंशाल्लाह बात करेंगे, बाइंड अप करेंगे अपने शो को। तो चलते हैं ब्रेक पर, आप सुन रहे हैं द सुपर सफा के साथ ऑन FM 107, द शो इज़ कॉल्ड द सुपर किड्स शो। ओ भाई इस गाने की बीट मुझे बहुत अच्छी लगती है, सुनो चेक चेक्स चेक्स FM 107 दिल से देसी।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: हेल्थ फॉर ऑल, कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2030 कहता है हेल्थ फॉर ऑल। और हमारे इस खास शो में बात होगी सेहत से मुतालिक मुस्तनिद मालूमात और जिंदगी बचाने वाली आगाही की। सुनिए प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल
2: डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ
1: हर जुमेरात शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: स्टूडेंट्स के लिए आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन सा रास्ता चुने। नए करियर ऑप्शंस की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या AI एक्सपर्ट, करना क्या है? इस उलझन को सुलझाने के लिए करियर कंपास सीजन 2, जहां मिलेगी वो गाइडेंस जो आपको कंफ्यूजन से निकाल कर बनाएगी कॉन्फिडेंट। एक्सपर्ट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, ऑन स्पॉट क्वेरीज के जवाब और वो टिप्स जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो जरूर सुने शो करियर कंपास सीजन 2 आरजे नाजिया के साथ हर सैटरडे शाम 4 बजे से ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: आप सुन रहे हैं
5: द सुपर किड शो।

तो भाई बच्चा पार्टी ढेर सारा वेलकम बैक आपको और वेलकम बैक क्या करना, अल्लाह हाफिज़ कहने का टाइम हो गया है। तो बच्चा पार्टी देखिए, मैं इस शो को इसी बात पे कंक्लूड करूँगी कि देखें क्यूरियोसिटी जो होती है ना वो बहुत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है लर्निंग का। हमेशा याद रखें, जब आप सवाल करते हैं यू डिस्कवर न्यू आइडियाज़, यू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। तो भाई ये सवाल ही हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाते हैं, इनके जवाब मिलना ही हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है। ये याद रखें कि हर सवाल जो आप पूछते हैं आज वो आपकी ग्रोथ की तरफ, नॉलेज की तरफ आपका एक स्टेप होता है। तो भाई ये याद रखें कि सिंपल क्वेश्चंस भी ना आपको बिग डिस्कवरीज की तरफ ले जाते हैं। हमेशा याद रखें कि नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। शाय फील नहीं करें, अगर आपको नॉलेज मिल रही है तो शाय फील नहीं करें, आस्क योर क्वेश्चंस, नेवर स्टॉप एक्सप्लोरिंग, नेवर स्टॉप लर्निंग, क्योंकि जो क्यूरियस माइंड्स होते हैं ना दे ग्रो स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर एंड बिगर एवरी डे। तो इसी नोट के साथ बच्चा पार्टी, वैसे मैं किसी की कोई एंडोर्समेंट नहीं करती और ना ही मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे जब बहुत ज़्यादा क्यूरियसनेस होती है ना कुछ चीज़ों को लेकर के, अगर ऐसा होता तो कैसा होता, ऐसा होता तो कैसा होता, तो मैंने ना सोशल मीडिया पर एक चीज़ देखी थी, उनको उसका नाम है इट्स अमसम टाइम। अमसम टाइम को जाकर आप देखेंगे ना तो आपको इतना मज़ा आएगा, इतने मज़े मज़े की चीज़ें उधर मौजूद हैं कि अगर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता, अगर पानी नहीं होता तो क्या होता, अगर हवा नहीं होती तो क्या होता, एक्स वाई जेड, देयर आर सो मेनी वंडरफुल टॉपिक्स ओवर देयर टू एक्सप्लोर एंड नो। और मज़े की बात यह है कि वो बिल्कुल आपसे ऐसे ही बात करता है जैसे करनी चाहिए, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, बिल्कुल उसी लेवल पर जिस बात लेवल पर हमें बातें समझ में आए, नो एग्जैजरेटेड वर्ड्स, नो हाई वोकैबुलरी। तो एक दफ़ा अगर चाहें तो उधर भी विज़िट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपसे कहूँगी कि बड़ों की इज्जत करें, छोटों का ख्याल रखें, सबसे ज़्यादा ख्याल अपना रखें, क्योंकि जो इंसान अपना ख्याल नहीं रखता वो दूसरों का क्या ही ख्याल रखेगा। सफ़ा को दीजिए इजाज़त, सुनते रहें FM 107 और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। चाचा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।

Assalamualaikum and good evening. आप सुन रहे हैं FM 107 शो है ये डियर फैमिली और मैं हूँ आपकी आरजे माविश खान. वक्त हुआ जाता है 4:02 और मेरा आपके साथ रहना है 5 बजे तक. उम्मीद है मेरी कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी अपनी लाइफ को खूब अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे, सब कुछ एकदम से सेट चल रहा होगा और आप अपनी जिंदगी से लुत्फानंदोज हो रहे होंगे यकीनी तौर पर. कॉल करने के लिए डियर फैमिली में नंबर हमारा है 4434377 और इसके साथ ही व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं 6622107 पे. राइट और आज का जो टॉपिक है ना, आज का टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार है. मतलब मज़ेदार ये है कि फैमिली फैमिली फैमिली के हवाले से हम लोग करते हैं. थोड़ा सा इस हफ्ते ना थोड़ा सा हम इधर उधर हुए थे, लेकिन मतलब वो था खैर फैमिली से रिलेटेड ही. फिर भी मतलब थोड़ा सा कुछ फैमिली का जिक्र नहीं आ रहा था, तो आज फैमिली का जिक्र आएगा. ठीक है, नाम के अंदर ही फैमिली का जिक्र आएगा. आज बेसिकली ये बात करनी है हमने, आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आपने अपनी फैमिली से कुछ आदतें ली हों. ठीक है, मतलब वो कोई सी भी आदत हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, किसी भी तरह की, जो कि आपने अपनी फैमिली से सीखी हो. आपको लगता हो कि हाँ आपकी फैमिली का ना इस बात के ऊपर आपकी जो है कोई हैबिट है, कोई आदत है, कोई किसी तरह का आपका मिजाज है, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन ना आपकी फैमिली का है. ठीक है, तो फैमिली में से कोई फ़र्द का अलग से तस्करा करना चाहिए वो कर सकते हैं. अगर एक पूरी फैमिली के तौर पे बात करना चाहिए, हमारी तो पूरी फैमिली ऐसी है, तो वो भी कर सकते हैं. ठीक है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि आप बन जाएंगे कि नहीं, आप बाउंड हो जाएंगे कि आपने सिर्फ इसी हवाले से पूरी इज्तमाही तौर पे ही बात करनी है, ऐसा नहीं है. कहना ये चाह रही हूँ मैं, तो कोई सी एक बंदे का आप जैसे कोई बड़ा भाई, माँ बाप, छोटा भाई, छोटी बहन, ऐसे कोई भी हो सकता है. और साथ में ये भी हो सकता है कि आपकी पूरी फैमिली में ही कोई आदत हो ऐसी, ठीक है, जो कि मुश्तरका हो और वो सब में आई हुई हो और आप लोग हैरान होते हैं उस बात पे कि भाई ये कैसे हो गया. ठीक है, तो इस तरह की आज हमने इंशाल्लाह ताला डिस्कशन करनी है, जिसके लिए नंबर आपको पता ही है, मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ. 4434377 पे कॉल कीजिएगा और इसके साथ ही व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा 6622107 पे. इतना कोई मुश्किल टॉपिक है नहीं, अगर फिर भी समझ में ना आई हो तो चलें मैं पहला म्यूजिकल ट्रैक लगाती हूँ और उसके बाद फिर आपको समझाते हैं.

0: आप सुन रहे हैं डियर फैमिली आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: वेलकम बैक आप सुन रहे हैं 107 एफएम और हमारे साथ हैं कॉलर हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह
1: जी कैसे हैं आप समद भाई
2: मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक आप बताएं कैसे हैं क्या हो रहा था
2: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है अल्लाह का फजल है चल रहा है
1: जबरदस्त
2: और कल तो मतलब धूम धूम चल रही थी आपके पास में मतलब कॉल भी नहीं रहा है लग रहा है
1: तो बहुत ज्यादा
2: फूफू बात कर रहे हैं और फूफू खाला बात कर रही है अल्लाह यार ये पूरा फैमिली वाला माहौल बन चुका था पकड़ना मुश्किल है अब गिव अप करो कि कल बात करेंगे जो भी है
1: बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही है कल वो लोगों की दिलचस्पी वाला टॉपिक था ना काफी आज मुझे लग रहा है लोगों की जरा अभी तक कुछ समझ में नहीं आया
2: नहीं मतलब कि भाई ऐसा हुआ कि भाई अब फैमिली से सीखे तो क्या सीखे तो वही बोल रहे भाई हमने सीखा क्या है जब शायद यही सोच में लगे होंगे जब हमने सीखा क्या है
1: सीखा क्या है सही बात है दिमाग पे जोर डालना पड़ रहा होगा आपको समझ में आया
2: तो वही तो है ना कि सीखा क्या है तो मतलब आप जो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में जो भी उनके जो क्वालिटीज उनके जो एबिलिटीज होते हैं तो उस शायद उसके रिलेट आप कुछ पूछ रहे हो कि भाई वो उनकी कुछ अच्छी चीजें सीखे हैं या फिर उनकी कोई बुरी चीजें सीखे हैं ऐसा कुछ है या फिर कुछ और है इफ आई एम नॉट रॉन्ग
1: वैसे तो खैर कोई बुरा तो कोई बताएगा नहीं है ना बुरा तो कोई बोलेगा नहीं कि बुरा कुछ सीखा अच्छा अच्छा मैं एक चीज बुरा कह लें या कुछ भी लेकिन ये कि मैं ही शुरुआत कर देती हूँ ताकि बाकी लोगों को हौसला मिल जाए अच्छा मुझे जो है ना मेरी अम्मी से मुझ में जो दो चीज़ें जो मुझे लगती हैं एक बहुत आहिस्ता आहिस्ता और कहना चाहिए कि बस आ गई उसमें मेरा कोई कमाल नहीं था वो ये कि अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा ये एक तरह से वक्त के धक्कों ने और बहुत सारी चीज़ों के बाद मतलब वो अम्मी के अंदर था जो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक जो चीज़ है ना जब वो जब तक जिंदा थी ना जब तक वो मुझे सिर्फ डांटती थी इस बात के ऊपर कि मतलब तुम्हारा कोई इस तरह रुझान नहीं है या ज़बरदस्ती से कुरान ख़त्म करवाती थी रमज़ान में और सब कुछ ये वाला माहौल था तो मैं पढ़ना नहीं चाह रही होती थी भाग रही होती थी चीज़ों से लेकिन उनके इंतकाल के बाद वो चीज़ें मेरे अंदर आहिस्ता आहिस्ता मतलब डेवलप होने लगी जो वो चाहती थी फिर दूसरी चीज़ ये कि उनसे मुझे पढ़ने का शौक़ आया वो पढ़ती पढ़ाती थी तो मुझे वो शौक़ आया और पप्पा का मैंने लिया है गुस्सा तो मैंने अपनी तो ये मेरी कहानी
2: नॉर्मली लड़कियों को रहता ही है गुस्सा लेकिन मतलब और नहीं नहीं विरासत में मिल गया आपको
1: हाँ विरासत में मिला है पप्पा से हाँ और दूसरी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनमें बहुत अच्छी थी लेकिन मुझ में नहीं है जैसे वो लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज थे लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना बहुत पसंद करते थे और मैं बिल्कुल उलट हूँ उस मामले में मतलब मैं लोगों से जितना मतलब हो सके बचने की कोशिश करती हूँ तो थोड़ा सा मेरा ये वाला मामला है और मुरव्वत बहुत थी उनमें वो मुझ में बहुत ही कम पाई जाती है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने नहीं ली लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब मुझे लगता है कि हाँ मुझ में आई हैं
2: ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है ये एक्चुअल होता ही है कि जहाँ तक मैं अपने आप को समझ पाया हूँ और जहाँ तक मैंने देखा है कि हम हमारे माँ बाप के अपग्रेडेड वर्जन होते हैं ठीक है तो अब जैसा कि कुछ चीज़ें मतलब हमारे पास में आता है ना कि वर्जन iOS का आता है एप्पल में एंड्रॉयड में जो भी है कि भाई अभी ये नया वर्जन आया इसे अपग्रेड करो उसमें जो है इमोजीज बाकी फंक्शन तो सब वही रहेगा लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस रहेंगे उसमें ऐसा कुछ रहता है तो उसी तरीके से हमारे पास में भी जो हमारे माँ बाप जो हमारे वैल्यूज हमको देते हैं जो हमें सिखा कर जाते हैं वो कुछ हद तक हम अपना अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं बट बेस्ड ऑन सर्कमटेंसेस और सिचुएशन टू सिचुएशन आप कभी ऐसी सिचुएशन में आके फंस जाते हो कि वो फॉर्मूला वहां में काम नहीं करता तो वहां पर आपको अपना वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है जो कि आपका अपना प्योर होता है जो कि आपको किसी ने सिखाया नहीं है तो वहां से वो चीज जो है एक इम्प्लीमेंटेशन में आती है कि नहीं ऐसा होती है कि आज मैंने कुछ नया किया है जिससे मैं किसी से कभी किसी से सीखा नहीं हूँ तो वो आपके अंदर इनबिल्ड होता है बस वो चीज जो है निकल के बाहर आ जाती है अब वो चीज किसी और को अच्छी लगती है या फिर किसी को बुरी लगती है ये दो सिनेरियोस होते हैं कि ये किसी को अच्छा भी हो जाता है या फिर किसी को बुरा लग जाता है तो वहां पर जो है क्या कहते हैं अपने डिफरेंसेस

0: क्रिएट होते हैं कि भाई पेरेंटिंग में और हमारे में क्या डिफरेंस है, वो वाला चीज पता चलता है. तो मेरे हिसाब से वो जो उस वक्त जो अपने जिंदगी के मरहलों से गुजरते हैं उस हिसाब से वो डील करते थे और वो हमें बताते थे. और मैं हमारे हिसाब से अभी का जो हाल है उस हिसाब से हम डील कर रहे हैं तो डिफरेंस है. 50% हमें उनसे मिलता है. हाँ, उनसे करेज मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है और सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है सबर मिलता है. तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं ना वो, बाकी सब सारी चीजें जो है अलग अलग अंदाज में आपके साथ में मुश्किलें सामने पेश आती है. लेकिन हमको जो पेरेंट्स से जो चीज मिलती है वो मिलती है, आपने जैसा बताया अच्छी बात कि आपके वालिदा से जो है आपको अल्लाह पे यकीन, बेशक ये यकीन हमको जो है बताया जाता है और जो है सब्र करना सिखाया जाता है हमको, हालात से लड़ने के लिए हिम्मत दी जाती है कि तब ये बाहर निकलेंगे, ये निकलेगा या निकलेगी जो भी है, तो वो जो है जिंदगी में परेशान ना हो, ज़हनी बीमार ना हो जाए. इंसान बज़ाहिरी तो जो है अपने आप में बहुत अच्छा मतलब सेहतमंद लगता है, लेकिन बज़ाहिरी बहुत अच्छा रहता है लेकिन ज़हनी सुकून नहीं होता है. तो ये फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है कि भाई इंसान को जो है ज़हनी सुकून देना. अब जैसा कि बाहर तो है ही छिटपिट, कुछ ना कुछ, कभी अच्छा दिन होता है, सम डेज आर गुड सम डेज आर बैड. आप जब घर पे जाते हो तो घर पे भी वही होता है कि कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है. आप मर्द आदमी जो होता है जो बाहर इधर वुमेन और मेन अभी तो आजकल तो दोनों भी काम कर रहे हैं, तो उसमें बैलेंसिंग जो होती है ना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. अब उस टाइम पर आपको कभी किसी ने पेल दिया, मतलब कुछ भी बोल दिया, ईमेल्स गंदी गंदी चल रही है, बहुत सारा मतलब मतलब सर आपका फटा पड़ा है, आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई कि वो चीज घर पर जाकर आप किस तरीके से मैनेज करोगे. आप मैनेज करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो लेकिन जब घर की हालात और घर के सिचुएशंस भी बिगड़े हुए रहते हैं तो वो रायता फैल जाता है. मतलब फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती है तो वहां पर जो है बहुत मुश्किल. तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम हमारे पेरेंट्स से सीखते हैं और हमारे बड़ों से सीखते हैं. तो इसके लिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने कभी भी फाइटिंग या कोई भी चीज से लेकर मिसबिहेविंग ऐसी कोई भी चीज नहीं करना है. अपने गुस्से को काबू में रखो और जो भी कहना है जो भी बोलना है वो अलहदगी में जाकर कहो. ये बहुत अच्छी चीज हमारे पेरेंट्स हमको बता कर गए कि भाई देखो जब प्यार मोहब्बत होती है तो एक कमरे में होती है, लड़ाई झगड़ा दहलान में नहीं होना चाहिए. होना है तो पर आपके जो है कमरे में ही करो जो भी करना है, बच्चों के सामने नहीं किसी के सामने. आप प्यार मोहब्बत किसी के सामने करते हो नहीं करते हो ना, तो झगड़ा भी वही एक अकेले में करो वैसा वाला. ये चीज मेरे को मेरे पेरेंट्स बता कर गए थे, मेरी माँ और मेरे फादर. हम कभी उनको देखे नहीं कि हमारे सामने कभी ऐसा कुछ, उनकी लाइफ में बहुत सारी अप्स एंड डाउन आती थी होंगी लेकिन कभी हमारे सामने ऐसा बताया नहीं कि लड़ाई झगड़ा या फेस एक्सप्रेशन या कभी कुछ. तो वो चीज हमको बहुत अच्छे से मिली.
1: सही.
0: और वही चीज मैं अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करके कैरी फॉरवर्ड करता हूँ. बिलीव मी बहुत सुकून है इसमें. अपने गुस्से को वक्तिया तौर पर पी जाओ, बाकी सब ठीक हो जाएगा.
1: सही हो गया. तो यानी ये जो चीज़ है ये आपके अंदर आई है अपने घर वालों से. ज़बरदस्त, वेरी नाइस. चलें आपने एक अच्छी शुरुआत कर दी है तो दूसरों को अब समझ में आ गई होगी काफी हद तक.
0: ये आपने जो मतलब जो स्टार्ट किया है ना उसमें मैंने भी ये जो है आगे अपनी गाड़ी ढकल ली. अब बाकी जो है सब पैसेंजर चलते रहेंगे.
1: जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू आपकी कॉल का. आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह. ओके हाफिज. रही जी तो हमारे साथ संवाद और उन्होंने अच्छा खासा स्टार्ट कर दिया. आप लोगों को यकीनन समझ में आ गया होगा. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम. मेरा नाम है फैजान.
1: जी फैजान, कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताएं कैसी हैं?
1: अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है?
2: जी बस घर पहुंच रहा था और आपका जो सवाल है आज का वो मैंने सुन लिया है. तो मैंने वालदा से जो ये चीजें सीखी हैं कि भाई रहम दिली, ठीक है, कोई भी हो अच्छा है, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की रजा के लिए माफ कर दो. ये चीजें जो है ना इमीडिएट कोई भी बात हो. मैं कहता था ना कि माँ जी नहीं उसने गलत किया, भाई ने गलत किया, किसी कजन ने गलत किया, तो वो ये कहते थे बेटा कोई बात माफ कर दो, खैर है कुछ नहीं होता. तो ये चीज मैंने वालदा से सीखी और मैं इम्प्लीमेंट भी करता हूँ. और वालिद साहब से मैंने दो चीजें सीखी हैं, उस पे छोटा सा शेर भी है सुना दूं.
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं.
2: वो मर्द ही क्या जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है.
1: क्या बात है, जबरदस्त, बहुत आला.
2: जो है ना, हाँ जी हाँ जी, जो है ना करेज, और कुछ भी हो जाए तो आपने
1: डटे रहना. ये चीज ना मैंने भी अपने पप्पा से ली.
2: जी
1: जी जी. ये चीज़
2: कभी कोई चीज़ आपने ना मांगना नहीं है कभी किसी से, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना. बहुत आपके वर्स्ट भी हो जाए हालात तो खुद ही हर चीज को डील करना है, कोशिश करनी कि भाई जो होगा देखा जाएगा, मैं आई विल फेस. और सेकंड नंबर पे जो दूसरी चीज मैंने सीखी है वो नपा तुला बोलना. कि जब भी बात करो पहले एक दफा सोच लो मैंने कितना टाइम लेना है, मैंने कितनी बात करनी है. तो मैं भी मतलब ये भी जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, सुबह भी सुनते हैं लोग शाम को भी सुनते हैं, तो मैं उनसे ये बरादराना मेरा मशवरा है, भाई होने के नाते दोस्त होने के नाते छोटी और कंसाइज बात किया करें, जामियत वाली, जिससे आपका अगले को मैसेज ये है वो चला जाए और बाकियों को भी मौका मिले बात करने का. ठीक है,
1: क्या
2: तो
1: बात है,
2: तीन चीजें थी.
1: समंदर को कूजे में मतलब जो है ना वो क्या बंद कर दिया और साथ में मैसेज भी दे दिया अपना.
2: जी जी जी, तो ये चीज मैंने अपने वाले साहब से सीखी है. और बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ तो ये चीज मुझे ना बहुत ज्यादा हेल्प करती है.
1: मुझे लगता है इंजीनियर्स वैसे भी कम ही बोलते हैं.
2: नहीं बोलते हैं मीटिंग वगैरह में.
1: हाँ, तो नहीं वैसे मतलब जरा लॉजिकल जरा ज्यादा हो जाते हैं ना, तो लॉजिक के बगैर बात नहीं करते.
2: हाँ जी जी, तो तीन चीजें थी, वाले साहब से करेज, और उसके बाद कंसाइज बात करना, छोटी बात करना, मुख्तसरन बात करना लॉजिक के साथ, और माजी से रहम दिली. ये तीन चीजें मैंने सीखी हैं, मैं इंप्लीमेंट भी करता हूँ. बहुत शुक्रिया आपका,
1: जबरदस्त फैजान, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया. रे जी, तो हमारे पास हमारे साथ मौजूद थे फैजान, और उन्होंने भी बता दिया कि उन्होंने क्या क्या अपनी फैमिली से लिया है. आप लोग भी बिल्कुल बता सकते हैं. और शहजाद सलीम का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, आज असर की नमाज पढ़कर मस्जिद में डेटा, अचानक उस बच्चे का ख्याल आया, तो जो है इंशाल्लाह ताला मतलब जो है ना उनके लिए बहुत दुआ मांगी. चलें शहजाद सलीम, थैंक यू सो मच, आप सब लोगों की दुआओं को इंशाल्लाह इसी तरह से दुआएं करते रहें. हाय कहा किसी ने, और ये किसने कहा, ये कहते हैं रिपन, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं. और मैसेज अमजद इकबाल का पढ़ देती हूँ कि फिर ये इधर उधर हो जाएंगे जी. और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम कतर, सबको सलाम फ्रॉम अमजद इकबाल. चले जी, और बाकी मैसेज हम पढ़ते हैं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले बढ़ेंगे एक और म्यूजिकल ट्रैक की तरफ.

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जब सवाल बहुत है और जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल लगता है, तो बच्चों और यंग माइंड्स को चाहिए एक ऐसी रहनुमाई जो दिल से भी हो और दीन से भी। गाइडिंग लिटिल हार्ट्स, एक ऐसा प्रोग्राम जो हम आपके लिए ला रहे हैं जो बच्चों को मजबूत वैल्यूज और मासूम दिलों को रोशन रास्ता देता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ ग्रो ना करें बल्कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ ग्रो करें, तो ये सफर उनके लिए जरूर सुनिएगा गाइडिंग लिटिल हार्ट्स आरजे सफा के साथ हर जुमे की शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर, बिकॉज दिस शो इज एन इंस्पायरिंग कंपेनियन फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ।
5: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
6: आज ही राब्ता करें
5: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: आप सुन रहे हैं डियर फैमिली आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
7: वेलकम बैक, मैं एक दफा फिर आ गई हूँ और हमारे साथ हैं कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
8: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
7: जी खादिम भाई, क्या हाल चाल है आपके?
8: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सब खैरियत है। मौजू तो हमेशा माशाल्लाह, प्रोग्राम का नाम ही फैमिली है तो पूरा फैमिली से रिलेटेड होता है माशाल्लाह। जल्दी जल्दी मैं अपना मैसेज दूंगा। वालिदैन की तरफ से हमें जो मिला है वो सब सब्र और

0: बहुत जमाने से ऐसे वो उसमें था तो घूमता था. फिर बहरहाल अपनी बात पे आता हूँ. बर्दाश्त बर्दाश्त और सब्र ये भी वालिदैन से हमें मिला है. मेरा एक बेटा है, बड़ा बेटा, ये स्टोरी मैंने पहले भी सुनाई थी और कल जो हमारी एक बहन ने वो पूरे वो बात बता रही थी तो मैंने आखिर में सुना थोड़ा सा. उसी पे उसी से रिलेटेड है ये कि मेरा बड़ा बेटा सैयद जाहिद हुसैन नाम है उसका. वो अभी माशाल्लाह 23 साल का है ये जून में. तो वो 3 महीने का था, उसकी सर्जरी हुई तो उससे ट्यूमर निकाला मैदे से 1.5 किलो.
1: अच्छा।
0: फिर 7 महीने के हो गया तो दोबारा उसको ट्यूमर हो गया था 2.5 किलो. उसको कैंसर था, पैदाइशी कैंसर था उसको. तो जब भी वो 1.5 साल का हो गया तो इलाज चलता रहा. 1.5 साल में उनको मेरे ख्याल में हफ्ते में हम लोग 2-3 बार ब्लड भी देता था. वो सिलसिला चलता रहा ऐसा. 1.5 साल का हो गया तो डॉक्टर्स ने, मैं उस टाइम यूएई में था, डॉक्टर्स ने मुझे भी उधर से कॉल मुझे आई कि आप आ जाओ. फिर तो मैं उधर से आया तो डॉक्टर्स बोले कि बस अभी इसको लेके जाओ घर में, इसके जो हार्ट का मेन वाले उसके ऊपर एक ट्यूमर बन रहा है तो इसका इलाज बिल्कुल नहीं है, मुमकिन नहीं है और इसका मैक्सिमम 20 डेज बाकी है. आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 23 ईयर्स का हो गया. मतलब ये कि मैं जब हॉस्पिटल से उसको वापस लेकर के आया तो हमारे वालिद साहब मुख्तरम नसीब फरमाए, वो मुझे बिठा के ऐसे मेरी वाइफ को भी कि सब्र करो इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक करेगा. देखो ये अल्लाह पाक ने अगर दिया है ना तो आप सब्र करो, आप दोनों बर्दाश्त करो तो इंशाल्लाह इससे अच्छा अल्लाह पाक ने सोचा होगा इसके लिए. तो वो हम लोगों ने वो यानी सब्र और बर्दाश्त, लेकिन दुआओं से इतनी दुआएं उसके लिए हुई. हरम शरीफ में भी दुआएं की उसके लिए. लोगों को मैं बोलता था दुआ करो. इंडिया, पाकिस्तान, यूएई में जहां भी जाता था मैं, जो भी मुझे मिलता था. मैं उस टाइम 2004 में हज पे गया तो उस टाइम मैं सबको बोलता था कि जो भी मुझे मिलता था किसी कंट्री का भी हो, मैं बोला बस मेरे बच्चे के लिए दुआ करो. यकीन करें ये दर्द हमें मालूम है, ये दुख तकलीफ हमें मालूम है, वालिदैन को मालूम होता है, माँ बाप को मालूम होता है. तो मैं हर किसी को बोलता था कि मैं मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस सिर्फ ये बेटे की सेहत चाहिए. आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जवान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है. कितनी बार हम लोगों ने चेकअप भी किया, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह. तो सिर्फ कहने का मतलब ये कि बर्दाश्त और सब्र और अल्लाह पाक इंसान के ऊपर हर वक्त इम्तिहान, एक कोई ना कोई इम्तिहान डालता है, या चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो. अगर उसने बर्दाश्त किया तो उसका बहुत बहुत अच्छा और बहुत बड़ा सिला मिलता है.
1: बेशक
0: टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, बस ये है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हम लोग दुआ करते हैं इंशाल्लाह. वो हमारा जो भतीजा है वो जो कल वो बहन ने बात की थी, अल्लाह पाक उसको सेहत दे इंशाल्लाह और इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा. जितने भी सुनने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है. और मेरा एक भाई हज पे गया हुआ है अभी हज पे इंशाल्लाह. मैं अभी कल मैं उससे बहुत ज्यादा कोशिश किया लेकिन नहीं मिला. व्हाट्सएप पे मैं कॉल कर रहा था लेकिन मैंने मैसेज छोड़ा हुआ है. इंशाल्लाह अभी फिर भी मैसेज करूंगा और इंशाल्लाह दुआ उधर हरम शरीफ में दुआ करेंगे उसके लिए.
1: बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया. अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे इंशाल्लाह.
0: आमीन सुम आमीन. लेकिन दुआएं सबसे ज्यादा दुआएं ये काम आती है, दुआ करनी चाहिए और सब्र करना चाहिए. ओके जी, बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.
1: थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़. रही जी, तो हमारे साथ थे हमारे कॉलर, बहुत ही जबरदस्त और बहुत जबरदस्त बातें करके गए. वाकई ऐसे ही है कि आपका जो है ना बिलीफ जो है ना, वाकई मतलब ये एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास यकीन है ना अल्लाह ताला के ऊपर तो लिटरली आपसे ज्यादा इस दुनिया में कोई अमीर ही नहीं है और आपके पास सब कुछ है. मतलब कोई चीज आपको चाहिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका बिलीफ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. मतलब ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं होना चाहिए, हकीकतन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. अच्छा जी, मेरे पास शहजादा सलीम का मैसेज आया हुआ है. शहजादा सलीम ने कहा कि मैम कैन यू कॉल मी शहजादा सलीम. तो मुझे लगा, मैंने कहा मैं तो इनको शहजादा सलीम ही बोलती हूँ और क्या बोलती. फिर मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, मुझे कह रहे कि मुझे कॉल कर ले. तो वो एक साथ लिखा तो मुझे ये लगा. खैर जी, देखते हैं कि शहजादा सलीम जो है वो कॉल उठा लेते हैं तो उनसे फिर इंशाल्लाह बात करते हैं. और हाँ, उठा लिए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. बहुत शुक्रिया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था और इतनी मतलब जबरदस्त जो टॉपिक है ना, तो मुझे मेरी वालदा से ना विरासत में बहुत जबरदस्त चीज मिली है. तो दो उनकी कहावतें वो आज भी याद है मुझे. एक तो ये कि बल में बल, अपना बल, पराया बल चूल्हे में जल, यही बोलते थे. यानी किसी पे डिपेंड नहीं होना है. सेकेंड, जो मदरसे से जो बच्चे अरबी पढ़ के उतरते थे ना, तो घर में जैसे खत्म कुरान हुआ जो भी हुआ ना, तो वो बोले मासूम बच्चों को बांटा करो. हम लोग बांटते थे प्लेट में लेके.

0: है ना, बोले उसको उसको दोस्तों मित्रों का नहीं, ये ना मासूम है ना, मासूम बच्चों को लेके बांटा करो, ये इसका ज्यादा असर ज्यादा स्वभाव है। तो मुझे दिल्ली इतना शौक है ना, जब भी मैं वैकेशन जाता हूँ ना, तो हमारी बगल का जो मदरसा है ना, तो वहाँ बच्चे अरबी सब पढ़ते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो पूछ लेता हूँ जनाब जी से, भाई कितने बच्चे हैं, बोले क्या लेके आ रहे हो आज, तो ऐसा पूछते हैं, तो उनको पता है जब भी आएगा तो ये कुछ ना कुछ है ना लेकर। तो बड़ी एक एक दिली रूहानी खुशी इतनी होती है ना, वो जब डिस्ट्रीब्यूट होता है और मदरसे में जाके वो बच्चों को ना, बहुत मतलब बहुत जबरदस्त। वो मेरी अम्मी के अभी तक वो जो है ना, अभी तो नहीं है दुनिया में, वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो उनमें एक वो था बहुत जबरदस्त के जो भी है ना, मतलब शेयरिंग करो और अपने पास है अपनी इजाफा तो मतलब दो, मतलब दो किसी को दो, और खुददारी दूसरी है ना, खुददारी, हाँ खुददारी है ना, खुददारी मतलब वो मतलब अपने हालात है ना किसी के सामने। मेरे अब्बा भी ऐसे थे, अब्बा की तरफ से दिए था, वो भले उनका काम धंधा सब ठप पड़ गया था, हमारे बहुत मतलब हमने ना गरीबी बहुत करीब से देखी थी, लेकिन उन्होंने ना किसी से दोस्ती नहीं, किसी से कुछ नहीं, किसी से कैसे क्या, मतलब किसी से कुछ नहीं, बस चुपचाप है ना बैठे हुए। हाँ तो मेरी अम्मी इतनी हिम्मत वाली थी ना, इतनी हिम्मत वाली थी ना, तो उन्होंने ना अपना ही अपना कुछ है ना ऐसे, मतलब जैसे काम शाम करके ना जैसा तैसा हम लोगों को ना बड़ा किया था। तो वो उनकी अपनी एक खुददारी और जो स्ट्रांग रहना ना, बल में बल, अपना बल। हालांकि वो मेरी नानी के पास जा सकती थी, मैं नानी से हेल्प मांग सकती थी, और भी थे मेरी खालाएं थी, लेकिन हमारे घर में किसी का मतलब किसी को पता नहीं होता था खानदान में कि इनके यहाँ कैसा क्या सिचुएशन है। तो ये सारी चीजें ना मुझे बहुत मोटिवेशन है, और मैं बड़ा मुतमइन हूँ ये सब चीजों को, और मैं अपनी आम रोजमर्रा की जिंदगी में यूटिलाइज भी करता हूँ। तो मतलब बेस्ट मेरे लिए ना टिप्स है मेरी अम्मी की जो है,
1: भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपकी कॉल के लिए, थैंक यू जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, तो हमारे साथ थे शहजादा सलीम, और इसके साथ ही एक और कॉलर आ गए, उनसे भी बात करते हैं। सब लोग अपनी अच्छी अच्छी चीजें जो है वो शेयर कर रहे हैं हमसे, देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम,
2: आप मुझे फिर से भूल गई,
1: मिसेस अफजल। कैसी हैं आप? अभी थोड़े तो दिन लगेंगे मिसेस अफजल, अभी तो नई नई हैं आप।
2: सही, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे हाल चाल है आपके?
2: अल्लाह का शुक्र, जो दिन गुजर जाए सेहत तंदुरुस्ती के साथ, उस रब का बड़ा एहसान है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त, जबरदस्त
2: सही। आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त जा रहा है, इनफैक्ट मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं थी ये रेडियो के प्रोग्राम्स में, और मेरा ख्याल कहता आपका ये फर्स्ट प्रोग्राम है जो मैं अब सुनना भी शुरू हो गई हूँ, और मेरे मोबाइल में रेडियो का ऑप्शन नहीं है, और मुझे लगता है मुझे नया रेडियो खरीदना पड़ेगा।
1: नहीं जरूर, बिल्कुल आप सुना करें के लिए। जी जी बिल्कुल सुना करें और शामिल रहा करें, अच्छी चीज है। और ये बताएं कि आपने अपने घर वालों से क्या चीज ली, आपको क्या लगता है?
2: क्या
1: घर वालों से, जैसे कौन सी आदतें आपको लगता है कि आपने अपने घर वालों से ली हैं? अच्छा ये भी हो सकता है, मैं इसके ऊपर बिल्कुल वो नहीं कर रही कि बाउंड नहीं कर रही कि ये शादी से पहले ही की बात हो, बात की भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम शादी के बाद भी सीखते हैं ना।
2: ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं आपको महविश ये कहना चाहूंगी कि मैं पहले तो मैं ये बोलूंगी कि खूबियां इंसान में कमी होती हैं, इंसान है ना अशरफुल मखलूकात है, खता उसकी तखलीक में है, क्योंकि हजरत आदम अलैहि सलाम की औलाद है, ठीक है, तो बहुत सारी बुराइयां होती है ना इंसान में, वहां पे एक साइड पे एक दो क्वालिटीज भी होती है जो बहुत हिट होती है, जो दूसरे इंसान के बहुत काम आ जाती है। सबसे पहले तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, नहीं, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं बहुत सारी बुराइयां मुझ में हैं क्योंकि मैं इंसान हूँ, लेकिन एक चीज जो मुझे शादी के बाद समझ आई, क्योंकि मेरा बच्चा जो है ना वो ऐसा है, जैसा कि अब सब बहन भाइयों को पता है, तो बहुत सारी चेंजिंग इस बच्चे को संभाल संभाल के जो मुझ में आई है ना, कि मेरे अगर हाथ में होना तो मैं, अगर मेरे हाथ में है कोई चीज और मैं किसी का भला कर सकती हूँ तो मैं उसकी वो चीज इग्नोर कर दूंगी, जिस वक्त उसने मेरा दिल दुखाया होगा या तकलीफ दी होगी मैं उसका वो काम कर दूंगी, वो चीज नहीं याद करूंगी कि फलां वक्त इसने मेरे साथ ऐसा किया, या वो चीज मैं दिल में रख के उसका काम ना करूं, नहीं, मैं उसका काम कर दूंगी अल्लाह की रजा के लिए कि शायद इससे अल्लाह खुश हो और मेरा बच्चा ठीक हो जाए। ये चीज मैं ऑनेस्टली जब से मैं 12 साल से अपने बच्चे को देख रही हूँ ये चीज मुझ में आई।

0: ठीक है,
1: होता पहले मैंने कहते ना देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किल आती है और उनके लिए खास तौर पे ये बात की गई कि उनको ये मुश्किलात इसलिए फेस करना पड़ी ताकि वो लोगों के लिए नरम दिल हो। तो ये भी एक अल्लाह ताला का इस तरह से ना करम होता है कि अल्लाह ताला किसी को नरम दिल रहम दिल बनाना चाहते हैं ना। अभी जैसे सैयद खादिम भाई की आपने कॉल सुनी होगी तो वो भी ये बात कर रहे थे। तो वाकई मतलब दिलों में ना नरमी आती है जब ये इस तरह की सिचुएशंस बंदा देखता है।
0: ऐसा ही, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है।
1: हाँ
0: बिल्कुल, मैं पहले ऐसी नहीं थी, मैं सच बताऊं, खुदा सुन रहा है, मैं पहले मतलब जैसे आम इंसान होते मैं वैसी थी, लेकिन आज मैं जिस जैसे हूं ना, अगर मैं किसी के साथ कुछ कह भी जाऊँ ना गुस्से में, बाद में मुझे बहुत फील होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा। उस बंदे की तकलीफ को मैं सोचती हूँ, महसूस करती हूँ और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला मुझे इस काबिल करके मैं इस बंदे की तकलीफ दूर करूँ। हम जब जा रहे होते हैं रास्ते में तो फकीर हमें अक्सर मिलते हैं पाकिस्तान में, तो भाई पैसे दो मदद करो, हम पैसे देते हैं 50-100, हम कहते हैं दुआ करो हमारे साथ ऐसा हो जाए, तो वो बंदा कह देता है हाँ अल्लाह करेगा। नहीं, किसी की जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि जब आप मौजूद भी ना हो तो उसके दिल से आपके लिए दुआ निकले। आप कुछ ऐसा करो उसकी लाइफ में, कुछ ऐसा काम करो कि भाई वो आपको कहना ही ना पड़े कि मेरे लिए दुआ करो।
1: हाँ।
0: वो खुद जब आपको उसकी याद आए, आपका ख्याल आए, तो उसके दिल से आपके लिए दुआ निकले। ठीक है, तो ये कि हालात इंसान को बहुत परेशानियां आजमाइशें इंसान को बदल देती हैं। मैं अपने इस बच्चे की वजह से अल्लाह के बहुत करीब हुई हूँ और मेरे सब बहन भाई सुनकर मेरे लिए इतनी दुआ करते हैं। अभी सिर्फ और आपको बताया ना कल यही परेशानी है कि मेरे हस्बैंड की जॉब हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नजर बस से बचाए, मेरे 4 जवान बच्चे हैं। तो मैरिश आप मेरा नंबर नोट कर लें, मैं अभी अक्सर कॉल किया करूंगी।
1: जी जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं नंबर नोट ना भी करूं,
0: नंबर है।
1: हाँ हाँ ये आप ही का नंबर है इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा जहन नशीन करने की कोशिश करती हूँ कि आपका नंबर, आप एक काम और कीजिएगा, आप हमें व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दें, ठीक है? तो फिर मैं आपका नंबर वहां सेव कर लेती हूँ।
0: इसी नंबर पे व्हाट्सएप है जिस पे कॉल कर रहे हैं?
1: नहीं नहीं, आप 666-22-107 पे ना हमें आप मैसेज कर दीजिएगा। 666-22-107
0: जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपको मैसेज करूंगी। और सब बहन भाइयों के लिए मैं सब बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मेरी हसन की तकलीफ को समझा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यार इतनी दुआएं होंगी मेरे बच्चे के लिए और पता नहीं किसकी दुआ लगेगी और मेरा बच्चा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा
1: इंशाल्लाह ताला।
0: और मैं भी, आप खुद भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं, आपसे भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: जो अच्छे होते हैं उनको दूसरे लोग अच्छे लगते हैं मिसेस अफजल, और कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है? चलिए जी, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रे जी, तो हमारे साथ थी मिसेस अफजल और इसी के साथ हम मूव करते हैं एक ट्रैक की तरफ, फिर वापस आते हैं।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: सेहत हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दिल से देसी, याद रखिए सेहत है सबसे बड़ी दौलत।
2: आप सुन रहे हैं डियर फैमिली आरजे महविश खान के साथ, सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: राइट, वेलकम बैक लिस्टनर्स। जसविंदर सिंह ने कहा गुड इवनिंग एंड वेरी गुड प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। दिल काला, दिल से काला क्या बोला है। खैर जी, सलाम भाई मैम, गुड इवनिंग, वेरी नाइस योर शो। सुरजीत, मैं अभी सोच रही थी आपके बारे में, मुझे लगा यही था ऊपर से देख के कि सुरजीत का ही मैसेज होगा, और मैं सोच रही थी कि कहाँ है भाई सुरजीत। अच्छा हाँ, हमारी मोहतरमा बहन मिसेस अफजल के लिए अर्ज है कि लोड करें मोबाइल में QMC नाउ। ये अमजद इकबाल ने की हमारी एडवर्टाइजमेंट, थैंक यू जी याद दिलाने के लिए। और उसके साथ ही जी शहजाद सलीम कहते हैं कि इंशाल्लाह ताला हसन बहुत जल्द बोलेगा, बिल्कुल। और सैयद ने भी मैसेज किया हुआ है, उन्होंने भी यही कहा हुआ है कि इंशाल्लाह ताला ज़रूर ज़रूर जो है वो बात करेगा, सब कुछ करेगा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा जी, मेरे साथ हैं कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हो बहन?
3: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। करीम भाई, क्या हाल चाल है आपके?
4: मैं अल्लाह से राजी हूँ, बस एकदम खुश हूँ।
3: जबरदस्त,
4: जितना बोलूं कम है, इतना खुश हूँ।
3: जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट जी। तो क्या कहना चाहेंगे भाई, आज ये बताएं कि आपने अपने घर से कोई आदतें जो ली हो, घर वालों से, बीवी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है।
4: अल्लाह ताला रहम करे, हमारे वालिद साहब फोत हो चुका है, तकरीबन कोई 16 से 18 साल हो रहे हैं। वो हमेशा एक बात कर रहा था कि घर की बात बाहर मत करो, बाहर की बातें घर पे मत करो, और कोशिश करो कभी चाहे कुछ भी हो जाए, हल्की या हल्का या ज्यादा, मिसाल के तौर झूठ झूठ है, झूठ के बचो, चोरी मत करो, अपना नमाज पढ़ो, तानिया भी खुद ब खुद आ जाएगी। और घर के बातें बाहर के बातें इनको के ऊपर, तो ये चीजें हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह 6 भाई है बस, साथ रह रहे हैं, अच्छी फैमिली, ये चीज हमने सीखा है और हम अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं कि बाहर के बातें घर में मत करो, घर के बातें बाहर मत करो, बस नमाज पढ़ो, चोरी से बचो, झूठ से बचो। तो आज भी मैं वीडियो कॉल किया हुआ था, मेरा एक छोटा बच्चा है 6 साल का है, तो बस्ती मस्ती उठा के स्कूल से आए थे, जा रहे थे मदरसे।
3: अच्छा,
4: तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा पढ़ने जा रहे हो या पढ़ाने जा रहे हो? तो वो शर्मा के भाग के चला गया, बस्ती उससे बड़ी थी। तो मैं बड़ा खुश हो रहा था, मैं अपने आप को देख के मैंने ऊपर देखा, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि आपने नेक साले औलाद अता
3: फरमाया,
4: दुआएं सबके लिए कर रहे हैं। जो हालात फलस्तीन का है आप लोग सब देख रहे हैं,
3: जी जी जी जी जी, जी।
4: के माँ माओ और बाबू को अपने अब शुक्रदार किया हुआ है, जिसने वो वीडियोस देखे हैं, जिसने वो हालात देखे हैं, जो कल हुआ है, जो परसों हुआ है, जो हो रहा है। तो मैं तो यकीन जानो ऐसे हर घर में मसले मसाइल हैं, बीमार हैं। मेरी भी एक कहानी है, आज टाइम कम है, कभी टाइम मिला सुना दूंगा, लेकिन मैं शुक्र, मैं हर हाल पे शुक्र, क्योंकि अल्लाह का एक एक नियामत से बदतर है, अगला नियामत उससे भी ज्यादा है, अगला नियामत। तो इस तरह जो मसले मसाइल है ये भी अल्लाह ताला के एक से बढ़कर एक, यानी हम कमजोर हैं, लेकिन हर चीज जो है ना अल्लाह ताला उस बंदे के ऊपर लाता है जिसके अंदर बर्दाश्त हो। बर्दाश्त से ज्यादा बोझ अल्लाह कभी भी अपने बंदे पे नहीं लाता। तो ये मसले मसाइल हमें फेस करने पड़ते हैं, इम्तिहान है इस जिंदगी का, बस आए हुए हैं। जिस तरह स्कूल में बंदा जाता है, पास हो जाता है और चला जाता है,
3: सही,
4: असल जो जिंदगी है वो जहाँ हम जा रहे हैं वही जिंदगी है। इसके अजर और इसके सवाब, इसके बदले में हमें बहुत कुछ मिलेंगे। जिसके घर में बीमार हो, तकलीफ हो, सब्र करें और अपने मसलों का सब्र करें। यकीन जाने ये अल्लाह का कॉल है और आप सलम का कॉल है, इनके बहुत बड़े बड़े अजर हैं, बहुत बड़े बड़े, हम इसका सोच भी नहीं सकते।
3: बिल्कुल,
4: ये चीजें हैं اللہ تعالیٰ اس بہن کے بچے کو صحت دے تو اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا یہ ہمیں پتا نہیں کیونکہ اللہ کہتے ہیں آپ رزق آسمان سے مانگو گے میں زمین سے آپ زمین سے مانگو گے میں رائٹ سے دوں گا رائٹ سے لیفٹ سے آپ آگے سے باک تو ہمیں کوئی پتا نہیں کہ ہمارا ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اس میں خیر ہے یا شر تو یہ وہ چیزیں ہیں
3: چلیں بھائی بہت بہت شکریہ بہت زبردست باتیں اور بس میسیجز ہیں کچھ اور ایک کال بھی ہے ٹھیک ہے تھینک یو جی تھینک یو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بہت خوش رکھے تھینک یو جی تھینک یو اللہ حافظ اچھا اس کے ساتھ ہی جلدی سے میں پڑھ دوں میسج اور مجھے ایک میسج نظر آ گیا فاطمہ یوسف میسج کر رہی ہیں اور یہ جو ہے انہوں نے کیا کہا ہے السلام علیکم خیریت الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک آپ بتائیں بھائی کیسی ہیں اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس میسج میڈم جی دل سے کالا نہیں اوکے ہاں نہیں سوری سوری سوری وہ میں جلدی جلدی میں پڑ گئی جبھی میں نے ایک دم سے کہا تھا کہ کیا کہہ رہے جسوندر سنگھ کالا دل سے دیسی سوری سوری سوری اچھا جی اس کے ساتھ ہی کالر ہے ہمارے ساتھ جلدی سے لے لیتے ہیں ہیلو السلام علیکم وعلیکم
5: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا حال ہیں آپ کے
5: ٹھیک ٹھاک جی آپ سنائیں بھائی آپ تو فیملی کی وہ ہے امانت دار
3: وہ ہمارے بھائی ایک بولتے نا کہ آپ کے شو کا نام ہونا چاہیے کہانی گھر گھر کی
5: نہیں کہانی نہیں کہانی گھر گھر میں تو مطلب کچھ ایک کامن کوئی بری چیز ہوتی ہے تو وہ ہر گھر میں ہوتی ہے جیسے کوئی ساس سسر کوئی سسرال تو وہ اس میں سب کو کہتا ہے یہ برا ہے بھائی یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے بھائی ہر گھر میں یہ ہو رہا ہے لیکن فیملی میں یہ نہیں ہوتا اگر فیملی ہے بہن بھائی ہیں ماں باپ ہیں یعنی وہ فیملی ہے باہر کے لوگ نہیں ہیں جو داماد یا بہو وہ نہیں ہے تو یہ فیملی میں ایک دوسرے کا احساس ایک دوسرے کی حد سے ہمدردی ایک دوسرے سے پیار ناراضگی بھی ہے تو بھی محبت ہی ہوگی ٹھیک ہے نا انت اس کا محبت پر ہی ہوگا نفرت پہ نہیں ہوگا تو دس از کالڈ فیملی اچھا جی آپ نے پوچھا ہے آج کے آپ کو کیا تو الحمدللہ مجھے میرے پیرنٹس دونوں سے بڑی اچھی چیزیں ملی ہیں ماں سے صبر ہمت حوصلہ برداشت سخاوت اور میرے ابو سے مہمان نوازی دوسروں کو معاف کرنا یہ حالانکہ وہ بہت گرم مزاج تھے بہت سخت تھے اور بہت سخت زبان استعمال کرتے تھے یہ چیز مجھ میں آ گئی تھی ٹھیک ہے لیکن جب میں نے دیکھا نا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے تو پھر میں نے یہ بالکل چھوڑ دیا اب کوئی کچھ بھی کہہ دیتا ہے میں چپ کر کے سن لیتی ہوں آگے سے جواب نہیں دیتے اب تو ویسے بھی ہم اوور ایج لوگ ہیں تو اب ہم نے کیا کہنا ہے کسی کو تو بس اب کچھ نہیں کہتے بس ماں باپ سے الحمدللہ ایسی اچھی چیزیں آئی ہیں کہ وہی اب ہم اپنے آپ پہ لاگو کرتے ہیں

0: 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हाँ जी हबीबी, टाइम फॉर द टाइम चेक। FM 107 के स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 5:02।
1: यू

0: हां जी हबीबी अस्सलाम वालेकुम। 5:02 वैसे अभी भी 2 मिनट हो रहा है। मैंने सोचा कुछ नया हो रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, 2.5 मिनट ये कर लेते हैं, ये नया है। बाकी क्या है हाल चाल, क्या कुछ चल रहा है बताना। और अपना तो ठीक ठाक है, आज वेंसडे हो गया और जैसे कि इस हफ्ते हम कुछ स्पेशल कर रहे हैं और उस स्पेशल में ये है कि अमिता हर बार हमारे साथ होती हैं और क्या कुछ चल रहा है बुक फेयर में वहाँ से अपडेट देती रहती हैं, तो हम वक्त वक्त पे उनसे कांटेक्ट भी करते रहेंगे, पता करते रहेंगे। और इस शो में, आज के शो में बेहतरीन से गाने भी प्ले होंगे, लेकिन शुरुआत में जो सवाल और जवाब होता है वो भी चलता रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस सिलसिले को शुरू करेंगे, वेदर से लेकर इवेंट की अपडेट तक और बुक फेयर में क्या कुछ चल रहा है वो सारी बातें यहीं FM 107 पे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, दिल से देसी।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

15 मिनट हमारे स्टूडियो की घड़ी में और क्या है हालचाल। वेल हर हफ्ते हम आजकल बात कर रहे हैं अमिता से कि क्या कुछ चल रहा है घूमते फिरते, वो हमें दुनिया की जो चीज़ें हैं वो बता देती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना सबसे पहले उनको कनेक्ट किया जाए, लेट्स सी कि क्या कुछ चल रहा है बुक फेयर में।

ये है 35वां इंटरनेशनल बुक फेयर जो कि चल रहा है DECC में। वेल कॉल लगा दिया, अगर वो बिजी नहीं हुई तो हमारी बात हो जाएगी, लेकिन अगर बिजी है तो कोई बात नहीं, कुछ देर बाद, अभी तो फिलहाल कॉल नहीं उठ रहा है। खैर कोई बात नहीं, अमिता नहीं सुना, कॉल काट दिया भाई साहब। खैर तो जल्दी से बाकी कुछ हिसाब किताब देख लेते हैं, क्या कुछ माहौल है, वेदर अपडेट ले लेते हैं। और सबसे पहले वेदर अपडेट है आज का, एकदम कोहरा हो रहा है बाहर, मजेदार है नहीं? आज तो मजा आ रहा होगा कि क्या कोहरा हो रहा है, शीशा जैसे ही नीचे करो मौसम अच्छा लगेगा, पता चला धूल की चपेटें पड़ रही हैं और बिना मतलब मेकअप जो है वो हुए जा रहा है, कि ये वाला मेकअप चाहिए तो नहीं था लेकिन अब हो जा रहा है तो क्या करें। तो आज का माहौल तो कुछ ऐसे ही है। उसके अलावा अगर हम देखें आज है 82 डिग्री फ़ारेनहाइट, 28 डिग्री का टेम्परेचर है, ये काफ़ी कम है रिलेटिवली अगर देखे जाए बाकी दिनों से। तो आज का मौसम हल्का फुल्का है और कंडीशन जो है हवाओं के साथ माहौल थोड़ा गर्म तो ज़रूर है, क्योंकि हवा चल रही है और धूप डायरेक्ट यहाँ पहुंच नहीं पा रही है, इसके वजह से माहौल जो है वो इतना ज़्यादा भी गर्म नहीं है। और रहते रहते अगर शाम की ओर बात करें, आज तकरीबन 7 बजे तक ये 27 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा, तो आज बर्फ़ के गोले खाया पिया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम इवेंट के बारे में बात करें तो इवेंट का भी माहौल बड़ा ही लाजवाब है, हर तरफ कुछ ना कुछ चल रहा है, जैसे कि दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर जो कि 14 से लेकर 23 तारीख तक चलेगा, आज 20 तारीख है, से 3 दिन बाकी हैं, 21, 22 और 23 सुबह के 9 बजे से लेकर 10 बजे तक रात के आप इन्जॉय कर सकते हैं। और ये कल की टाइमिंग है, 21 और 23 की टाइमिंग है, लेकिन 22 तारीख की जो टाइमिंग है वो दोपहर के 3 से लेकर 10 बजे तक है, क्योंकि 22 को है फ्राइडे। और वेन्यू तो पता ही चल गया होगा अब तक, DECC दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जहां पर कई लोग अब तक पहुंच चुके हैं, पैसा एकदम नहीं लगेगा, फ्री का मामला है, आप यहां पर पहुंच सकते हैं। उसके अलावा आर्ट एग्जीबिशन चलेगा अटारा कल्चरल विलेज में, 21 मई से शुरू होगा यानी कि कल के दिन से शुरू होगा, और 21 जून तक सुबह के 10 से लेकर शाम के 10 बजे तक अटारा कल्चरल विलेज में ये है स्पिरिट ऑफ आर्ट एग्जीबिशन, जहां पर पैसे के बारे में अगर हम कहें तो ये भी फ्री एंट्री वाला एग्जीबिशन है। फिर ये चौथा GCC गेम्स दोहा 2026 लगातार चल रहा है, अलग अलग वेन्यूज़ पे ये चल रहा है और 22 मई तक यानी कि परसों तक ही जारी रहेगा। तो 19 ऐसे कोई स्पोर्ट्स हैं जिसका आप लुत्फ उठा सकते हैं, जिसमें टेनिस, बॉक्सिंग, एथलीट्स और स्विमिंग जैसे गेम जो है वो इंक्लूड किया गया है। और अब बात कर लेते हैं अल शकब लीग 2 के बारे में, जो 22 और 23 तारीख को होने वाला है। ये मेजर नेशनल इक्वेस्ट्रियन और शो जंपिंग कॉम्पिटिशन है जो लॉन्ग आइंस इंडोर अरेना अल शकब में होगा। अगर आपको इसका लोकेशन जानना है तो फिर आप अपने मैप में डाल सकते हैं लॉन्ग आइंस इंडोर अरेना अल शकब, इजली आसानी से पहुंच सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं फैमिली वाला क्या हिसाब है भाई, फैमिली वाले कुछ ऐसे इवेंट हैं जिनका भी आप लुत्फ उठा सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें फ्लफी फंतासिया शो 21 से लेकर 25 तारीख तक, इसकी शो जो टाइमिंग है वो है 4:30, 6:30 और 8 बजे की OSS स्टेज मॉल ऑफ कतर में। फैमिली फ्रेंडली एनवायरनमेंट है और अलग अलग तरह के यहाँ पर इवेंट्स और भी हैं, जैसे एक्रोबैटिक्स होंगे, डांस वगैरह है, इल्यूजन्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, फ्री टू वॉच है पूरा, बिल्कुल फ्री। और वैसे भी मॉल ऑफ कतर जाएंगे आपको कहाँ पैसा दें, थोड़ी पैसा कोई नहीं मांगता वहाँ पे जब तक आप कुछ महंगा खरीदे ना। OSS स्टेज पे आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और फिर तोरबा मार्केट के बारे में कौन भूल सकता है, तोरबा मार्केट ऑन द ब्रिज ये हो रहा है 16 मई से 31 मई तक जारी रहेगा, शाम को 5 से लेकर 9 बजे तक कनत क्वार्टर ब्रिज पर द पर्ल आइलैंड में। ये पॉपुलर वीकेंड वाली जगह है जहाँ पर आर्टिस्ट भी आपको मिलेंगे, लोकल ऑर्गेनिक फूड्स, क्राफ्ट्स, सीनिक व्यूज है, और ऑब्वियसली क्योंकि ये कनत क्वार्टर ब्रिज में हो रहा है तो इसका लुत्फ जो है वो आप उठा सकते हैं। तो ये कुछ इवेंट्स के बारे में हमने बात कर ली जिसमें एंटरटेनमेंट है, सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड कर दिया। और इसी बीच एक बार फिर से अमिता को परेशान कर लेते हैं, सुकून से नहीं रहने दूंगा मैं। कॉल लगा दिया, देखो आवाज जारी होगी, देखा मैं भरोसा दिला रहा था तुम्हें कि भरोसा कर लो कॉल कर रहे हैं। अब वो कहीं बिजी होंगी, हो सकता कोई किताब पसंद आ गई हो, ना उठ रही है भाई। अमिता पहले एक बार चेक भी कर लूं, ये नंबर सही लगा है, कहीं ऐसा ना हो गलत लग गया हो। नंबर तो शायद सही था यार, एक बार फिर से मैं चेक कर ले रही हूं।

एक बार ऐसा हुआ था हमारे साथ, गलत किसी को कॉल कर दो, क्या है कौन कौन हो फिलहाल इन्होंने तो कॉल नहीं उठाया है, बट इट्स ओके, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती। बाकी हम उनको खुद कॉल उनका खुद भी आ जाएगा, अगर नहीं हो गया तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब हम आते हैं आज के सवाल पे हल्के हाथ से, और आज का सवाल क्या है ये सुन लेते हैं। बड़ा ही आसान सा सवाल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हल्के फुल्के सवाल कर रहे हैं हम आजकल, क्योंकि आ रही है ईद।

सवाल ये है कि हमारे जिंदगी में ना रूल हर शख्स ने लगा रखा है। अब अम्मी को देख लो, अब्बा को देख लो, घर वालों को देख लो, हैं अपने घरवाली को देख लो, मतलब किसी को भी आप देख लो, हर शख्स ने रूल लगा रखा है कि घर के अंदर आ रहे हैं तो स्लीपर यहाँ उतरेगी, यहाँ पर बैठ रहे हैं तो आपको तकिया यहाँ पे लगाना है, है ना। दुनिया भर के रूल है, छोटे छोटे रूल है। अगर आप कार चला रहे हैं तो ऐसे चलाना है, ऑब्वियसली उसके लिए तो ज़रूरी भी है। फिर उसके बाद आप अपने घर में रह रहे हो तो वहाँ पर रूल है। कहीं पर भी आ जाए, किसी दूसरे के घर जा रहे हैं तो वहाँ पर बैठने का रूल हो जाता है, सोफे पे ऐसे बैठना है, तमीज़ दिखानी है। लेकिन इंसान ना खुल्ला डुल्ला रह नहीं पाता है। तो आज का सवाल है कि क्या इंसान बगैर रूल के ज़्यादा सुकून से जी सकता था, हाँ या नहीं? अगर रूल ना होते इस दुनिया में तो क्या हम ज्यादा सुकून से जी सकते थे? ये आज आपको बताना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22-107-6-6-6-2-2-107। इस पर आपको बताना है कि क्या जिंदगी में अगर रूल ना होते तो इंसान ज्यादा आसानी से, ज्यादा सुकून से जी सकता था, है ना। ऐसे तो हर शख्स ने हमारे लिए रूल ही लगाया, और ये रूल मैं देखता हूं कि मर्दों के लिए, हम मर्दों के लिए ज्यादा है। ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये नहीं किया जाता है, अरे उनके सामने ऐसा मत किया करो। तो ये सारे रूल जो हैं हमें एक्चुअली परेशान करने के लिए होते हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या बगैर रूल के हम इंसान ज़्यादा सुकून से रह सकते थे, हाँ या ना, ये आप बताएं। हमारा व्हाट्सअप नंबर 666-22-107। आइए जब तक हल्के हाथ से मैसेज देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? मुझे एक बात समझ नहीं आती एक प्रोग्राम में 5-2 मिनट बताने के लिए आते हैं, लगता है उसके बाद ब्रेक। हाँ मतलब और क्या, और ब्रेक तो लेना लाजमी है भाई। अब वो समझते हैं गर्दन पे छुरी वही होती है हमारे ऊपर तो ब्रेक तो जरूरी है यार, गले को भी आराम देना है, आपको भी पता होना चाहिए। अरे अभी अभी अमित वो गई हैं महवश डियर जिंदगी शो करती हैं, जिसमें एकदम भारी भारी टॉपिक होते हैं, अपना वाला वो हिसाब नहीं है। मेरे को कोई समझदारी की बात कहे करने को तो मेरे से नहीं हो पाती, कोई कहे सेंसिबल बात किया करिए, मेरी हंसी छूट जाती भाई पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है, जितना ज्यादा सीरियस सिचुएशन है उतना ही बुरा जोक मेरे को आ जाता है। और मेरी एक और प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कि मैं बोल देता हूँ, मुझसे रुका नहीं जाता है, पता नहीं क्या। इसी वजह से मुझे लगता है रूल लगाया भी गया इंसानों के लिए कि इन मर्दों को कहो चुप रहना सीखें, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए रूल्स जो हैं वो हैं, क्योंकि अब जब महावेश की बात करें तो महावेश ऐसा भारी वाला वजन वाला शो करके जाती, तो आप लोग अडेप्ट कर पाएँ कि अभी फजील आ गए, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, ठीक है। मतलब टाइम नहीं देंगे तो फिर आपका दिमाग ऐसा चलेगा नहीं कि अरे यार ये क्या हो गया, अभी तो हम सेंसिबल बातें कर रहे थे और अभी रूल के बारे में कहाँ से बातें होने लग गई। तो ये इकबाल नेपाली हैं, सलाम अलैकुम। बाकी यूसुफ भाई का मैसेज है, हैप्पी वेंसडे इवनिंग। वेंसडे का दिन बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, जैसा लग रहा है कितने खुश होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, क्या हाल चाल? बाकी दो ऑडियो कुछ देर में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं कब से बैठा था, वीडियो 5 बजे ऑन स्क्रीन किया, 5 बजे स्क्रीन ऑन किया, ठीक है, गाड़ी का और गाने चल रहे और मैं सोच रहा हूँ कि अब फजील भाई आएंगे, अफजल भाई आएगा, फजील भाई आएगा, यार ये लिखो अफजल कहाँ से आएगा, लेकिन आप नहीं आए। जब मैंने स्क्रीन को देखा तो वो दूसरा चैनल लगा हुआ था। अरे बस पूरी लाइन ठीक थी, यही बेइज्जती हो गई बस आखिरी लाइन भूल गए, ये 5 बज गए फजील भाई आए नहीं, दूसरा चैनल लगा के बैठो। चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस पे तो कुछ कह भी नहीं सकते ज्यादा बोलने लगा कि फिर दूसरा चैनल कर देंगे फजील भाई एक उंगली देखो कितना कितना वल्नरेबल है ना हिसाब किताब, क्या अगर ज्यादा बोला एक उंगली का हिसाब है सिर्फ एक अपना एक अलग मुल्क है जहां पर एक उंगली यानी कि वोट से इंसान चेंज कर सकता है, यहां पर एक उंगली का हिसाब है, पूरा चैनल चेंज सेकंड भर में ये धमकी भी हो सकती है। बाकी एक और ये मैसेज है, और सिर्फ नहीं लिखा है, और किस बात पे नहीं लिखा है आई डोंट नो। अली एस खान साहब ये एडवोकेट है एडवोकेट मैं सलाम ही करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना भाई। देखो मैं केस लड़ूंगा, मेरा अलग से एडवोकेट पैसा लेगा, ये फ्री में लड़ सकते हैं रहिए आप, मतलब फजील भाई आप दूर रहिए, बातें रूल के हिसाब से चलना है, ठीक है। सलाम अलैकुम अली भाई
देखो इन बातों पे तो कोई केस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और हिशाम भाई का रोज की तरह मैसेज है और ये हर रोज मालूम है क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग GIF का यूज करके सलाम भेज दे रहे हैं। बस इनका डेली का एक टास्क है FM 107.5 से 5:30 के बीच एक GIF भेजनी है हर बार नई इमोजी से। क्या बात है हिशाम साहब, सलाम अलैकुम। फिर उसके बाद खादिम साहब का मैसेज है सलाम वालेकुम अस्सलाम फजील भाई गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बाकी लोगों ने ऑडियो भेजना ज़्यादा सही समझा है, दो चार लोग जो हैं उनके ऑडियो हैं, मैं ऑडियो का जवाब जो है वो फौरन तो नहीं दे सकता क्योंकि रूल है ना, बगैर रूल के तो कैसे ही चल सकता है। रूल है ऑडियो सुनने के बाद, क्योंकि कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा दिल को एकदम खोल देते हैं बात करते हुए और वो बाद बाद में ऐसी बात बोल जाते हैं कि हम फिर उस पर कुछ बात नहीं कह सकते और फिर उसके नुकसानात जो है वो ज्यादा हो जाते हैं बजाय उनके जिन्होंने कहा है, बजाय उनके जो सुना गए, यानी कि हमारे लिए हर चीज के लिए। तो एक नियम कानून बनाए वो ये कि ऑडियो सुनने के बाद और अलग से सुने, ठीक है, तो ये वाला हिसाब है। बाकी आप लोगों के जो मैसेज हैं वो जरूर लिए जाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और सवाल मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो नए ताज़े लोग हैं उनके लिए सवाल एक बार रिपीट कर देते हैं। सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि इंसान अगर बगैर रूल के रहता तो क्या वो ज़्यादा सुकून से रह पाता। अब इस सवाल पर जो एडवोकेट साहब ने जवाब दिया था नहीं, तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक कहा, बिल्कुल एडवोकेट साहब ने कहा है, बिल्कुल सही कहा होगा क्योंकि उनका तो काम ही उसी से चल रहा है ना, तो वो अगर वो हाँ कह देगा कि हाँ बगैर रूल के ज्यादा आसानी से, लो भाई कल से चूल्हा कैसे जलेगा। अरे देखा मेरी आदत है, मैं बोल जा रहा हूं, देख रहे हो। अभी इसी बात पे अगर केस हो जाए फजील भाई आपके ऊपर, तो तुम तो अपना केस लड़ भी नहीं पाओगे। किताबें पढ़ता हूं तो मुझे नींद आने लगती भाई सोचो भाई आप अपना केस अपने से लड़ रहे हो, बहुत ही शिद्दत से लड़ना है, आपको पता है आप सही हो, लेकिन फिर कुछ देर जैसे ही आप किताब खोलते हो लॉ की, आपको ये समझ में आता, अरे यार बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं क्योंकि जब जब किताब खोल ले नींद आ रही है फजील भाई वेलकम टू द जेल आप कैसे मतलब जेल में भी सवाल हो रहे होंगे कि कैसे हार गए, आपका तो केस मुझे सही लग रहा है जैसे आपने बताया है। नहीं, केस तो सही था, तो हारे कैसे, पैसे नहीं थे। नहीं तो पैसे नहीं थे कोई बात नहीं, आप खुद अपना केस लड़ते। नहीं, केस भी लड़ सकते थे, जब जब किताब खोलते थे नींद आ जाती थी, पूरा जेल का जितना कैदी वो सब हंस रहा है जॉक्स अपार्ट बाकी अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और सवाल एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बाकी खादिम साहब ने कहा है कि रूल्स होने चाहिए और बिल्कुल सही है, और मुझे कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में ऐसा लगता है कि रूल्स नहीं होने चाहिए किसी किसी सिचुएशन में। अब वो डिपेंड करती है ना, जैसे मुझे एक बहुत ज़रूरी एक बात लगती है वो ये कि किसी के घर जाओ तो अच्छे से बैठो, पलथी मार के नहीं बैठो। ये बहुत पहले हमारे घर में बताया, और वो तो शुक्र है मैं कानपुर जैसे शहर में रहा जहाँ पर मतलब फैल के अपने मर्जी से आप काम कर सकते थे। उस शहर में रहने के बाद मैंने सीखा कि ये जो ज़बरदस्ती की तमीज़दारी हमें सिखाई जाती है उतनी ज़रूरत है भी नहीं, पता है। अब देखो जैसे यहाँ पर हम मजलिस की बात कर ले, मजलिस में आराम से आप बैठ सकते हैं पैर फैलाकर भी पैर बांध कर भी, यानी कि पलथी मार के, बिल्कुल खुला डुला हिसाब है। लेकिन आप हमारे शहरों में जाइए, हाँ यहाँ पर ये भी है कि मजलिस में अगर आप बैठे हैं तो ऐसा ना हो कि आप पैर अगर फैला रहे हैं तो किसी को पॉइंट कर रहा हो, ये गलत चीज़ हो जाएगी। वैसे आपको फिर पलथी मार कर भी बैठ सकते हैं, तो कितनी अच्छी चीज़ है।

अब मुझे किसी चीज का फिक्र नहीं, किसी घर जाते हैं अब वो मेरे बारे में बुरा सोचे तो सोचे, अगर बल्दी मारने का मन है तो मैं मार लेता हूं भाई। लेकिन कुछ चीजों में रूल्स बहुत जरूरी है, अगर नहीं होंगे तो सही में झगड़ा ही हो जाएगा लोगों से। जैसे कि यहां पर आप देखें गाड़ी चलाते हुए कि अपनी लेन में चलना है, ये कतर जैसे समृद्ध यानी कि डेवलप्ड नेशन में ही हो सकता है। आप जब डेवलप्ड नेशन में रहें तो बड़ा मजा आता है आपको ड्राइविंग करते हुए भी। आप ऐसे मुल्क चले जाए जहां पर ये सारी चीजें फॉलो नहीं होती, लेन तो है ही नहीं, चले कैसे? तो एक साइकिल वाला आ रहा है लेफ्ट राइट मारते हुए, एक कोई आ रहे हैं नए जमाने के नए लड़के हैं जिनकी उम्र अभी 18 महीने एक दिन हुई, वो बाइक चलाते हुए व्हीली कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए रूल होना चाहिए, अगर इनके साथ रूल्स आप करेंगे तो ही सुकून जिंदगी में है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है रूल्स, किसी सिचुएशन में रूल्स नहीं होने चाहिए, कहीं कहीं तो बहुत जरूरी है। वैसे आपका क्या कहना है, क्या ह्यूमंस बहुत ज्यादा सुकून से जी सकते हैं बगैर रूल्स के, या रूल्स होना लाजमी है? बताइएगा 666-22-107 अगर आपकी कोई सिचुएशन है तो भी आप हमें बता सकते हैं। बाकी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ऑडियो वालों की बात जो है हम सुनेंगे। एक छोटा सा ब्रेक FM 107 पे, उसके बाद वापस दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: स्टूडेंट्स के लिए आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन सा रास्ता चुने। नए करियर ऑप्शंस की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या एआई एक्सपर्ट, करना क्या है? इस उलझन को सुलझाने के लिए करियर कैंपस सीजन टू जहां मिलेगी वो गाइडेंस जो आपको कंफ्यूजन से निकाल कर बनाएगी कॉन्फिडेंट। एक्सपर्ट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, ऑन स्पॉट क्वेरीज के जवाब और वो टिप्स जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो जरूर सुने शो करियर कंपास सीजन 2 आरजे नाजिया के साथ हर सैटरडे शाम 4 बजे से ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
0: Health for all. Qatar National Health Strategy 2030 kehta hai health for all. और हमारे इस खास शो में बात होगी सेहत से मुतालिक मुस्तनिद मालूमात और जिंदगी बचाने वाली आगाही की। सुनिए प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल
4: डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ
0: हर जुमेरात शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
5: दोस्तों, मसाजिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग ना सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदा मंद साबित हो सकते हैं। इस तरह

कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदा मंद साबित हो सकते हैं। इस तरह

0: हां जी हबीबी एफएम 107 पे वाइब ट्रू 5:36 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और हमारे साथ इस वक्त दो कॉल ना रिसीव करने के बाद तीसरी कॉल रिसीव कर लिया है अमिता ने। अमिता लाइव है बुक फेयर से। जी हेलो अमिता जी, क्या हाल चाल?
1: हाय फजील, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल? इनकमिंग बैन हो गई थी क्या? उठ नहीं रही थी।
1: इनकमिंग बिल्कुल बैन नहीं हुई थी एक्चुअली। मैं अब्दुल अजीज अल बुखार शिमल सैयद लाइब्रेरी फॉर हेरिटेज के बूथ में थी, जहाँ पर हेरिटेज की बुक थी।
0: अच्छा।

0: गहवा।
1: आपकी आवाज थोड़ी दूर से आ रही है।
0: जर्नी ऑफ गहवा।
1: जर्नी ऑफ गहवा, ओके।
0: तो ये गई इस किताब को ढूंढने के लिए इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी में, एंड वो टोटली अरबी में है, ये मैं सबको बताना चाहती हूँ। तो जिनको अरबी पढ़नी आती है वो डेफिनेटली जाके इस बुक को ले सकते हैं, या फिर बुक खरीद के फिर आपको ट्रांसलेट कर सकते हैं, लाइक एनी ऑफ दी ऑप्शन इज देयर।

0: गहवा, देखो गहवा तो मुझे पता है ये कहते हैं, लेकिन पानी में डाल के कॉफी को अगर ऐसे आप उबाल दें तो इसको कड़वा पानी नहीं कहते?
1: हम एक पूरा जग भर भर के पीते हैं कॉफी, दे वो भी ड्रिंक स्मॉल कप बस खलास, उतने में ही उनको यू नो दे गेट ऑल द एनर्जी. अच्छा तो मैं यहाँ थी तो उन्होंने पूरा बताया कि ये जो बुक है ऑब्वियसली कॉफी उन्हें बहुत पसंद है पर्सनली, तो वही एक इंस्पिरेशन था. एंड अरब जो रीजन है, अरब मुल्क है, जितने भी मुल्क हैं, ये बेसिकली कॉफी की शुरुआत यमन से हुई है. तो ये जर्नी जब शुरू हुई फिर ये सीधा जाके आगे बढ़ी, इस्तांबुल गई और फिर आगे जाके यूरोप साइड गई, फिर साइड गई, एंड देन ये कॉफी की जर्नी चलती चली गई. तो उन्होंने कहा कि जब ये कहानी इतनी पुरानी है तो मैं क्यों नहीं इस पर एक किताब लिख डालूं. सो दिस इज हाउ ही रोट अ बुक. एंड ये जिस लाइब्रेरी का मैं जिक्र कर रही थी, ये गेट नंबर 3 और 4 के बीच में है. फजील में एक बार और से इस लाइब्रेरी का नाम लेना चाहूंगी, दैट इज अब्दुल अजीज अल हाशिम अल सैयद लाइब्रेरी फॉर हेरिटेज बुक्स. और जैसे ही आप आओगे ना तो एक आपको लगेगा कि आप एक मिनी म्यूजियम में आए हो.
0: मतलब बहुत सी चीजें अवेलेबल है.
1: Yes, जो कतरी कल्चर है हमारा, यू नो वो बहुत प्यार से उन्होंने दिखाया है, टेंट लगाया है, उसके अंदर बुक शेल्फ है, एक कोने में बहुत सारी कॉफीज है, ठीक है, अलग अलग तरह की. बाय द वे वो एक कॉफी नहीं है, मैं तो समझ भी नहीं पाऊंगी. तरह तरह की कॉफी बीन्स लगाई है, ओट है, थोड़ी रेत है, मतलब ही ट्राइड टू क्रिएट एंटायर एक छोटा सा मिनी पिक्चर ऑफ कतर. तो ये मैंने जब पूछ कि आपके लिए दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर लाइक कितना पुराना है और अब कितने टाइम से आ रहे हैं, तो ही सेड कि जब से शुरुआत हुई है 1972 से, तब से ये एंटायर फैमिली इस लाइब्रेरी की दे वर द पार्ट ऑफ दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर. तो जिन्हें भी कतर की हिस्ट्री और हेरिटेज के बारे में जानना है, आई शुड से दिस लाइब्रेरी इज परफेक्ट फॉर यू. तो सीधा यहाँ डेफिनेटली कुछ इंग्लिश बुक्स भी आपको मिलेंगी अगर आप इन केस अरबिक नहीं जानते, तो यू कैन कम एंड टॉक टू द ऑथर इटसेल्फ, वो खुद भी वहाँ मौजूद है. एंड सच में फजील, मतलब उनसे बात करके मजा आ गया, एक बड़ी ही प्यारी सी शख्सियत है. पहले मुझसे कहते हैं कि मैं कोई और भाषा मतलब उतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाऊंगा जितना मैं अरबी में बात कर पाऊंगा. फिर मैंने बोला कि पर सर आप ट्राई करेंगे, एंड देन व्हेन ही स्पोक मजा आ गया. मजा आ गया.
0: अच्छा उसके अलावा कोई ऐसी यूनिक चीज आज के दिन दिखी हो, कुछ चेंजेस दिखे हो आपको बुक फेयर में?
1: चेंजेस ये है कि आज भीड़ बहुत ज्यादा है, मतलब एज कम्पेयर टू बाकी के वीक डेज में. अब जैसे जैसे बुक फेयर, मुझे लग रहा है ना जो अब आज 7th डे हो गया है बुक फेयर का, आखिर मतलब 7 दिन कम्प्लीट, अब 3 दिन और बाकी है. तो जो 3 दिन बाकी है ना उसका क्रेज मुझे एकदम से दिख रहा है कि यहाँ पर जैसे ही मेरी एंट्री हुई मतलब हर जगह लोग दिखाई दे रहे हैं.
0: अच्छा.
1: बच्चे ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं और सबके बैग्स में ना बुक्स ही बुक्स है.
0: अच्छा,
1: तो मैंने कहा आज तो बनता है.
0: उनके पास इतनी बुक्स है, हमारे पास कभी इतनी बुक्स नहीं हुई और ना हमें शौक भी नहीं था. तो ये बड़ा जरूरी है दोस्तों. मुझे लगता है कि जिन बच्चों को शौक नहीं था या फिर आपको अगर शौक नहीं था, क्योंकि हम इस तरह के बुक फेयर में कभी गए नहीं है, हमारे अपने मुल्क में इतने ज्यादा बुक फेयर वगैरह या फिर यू नो हमारे पेरेंट्स को भी इतना ज्यादा पता नहीं था, तो जब वो नहीं जाते थे, क्योंकि बच्चा जो है वो पेरेंट्स से ही सीखता है, और जब वो नहीं जाते, हमारे पेरेंट्स नहीं जाते थे, तो हम भी नहीं गए. तो आज आपके पास मौका है, इतने खूबसूरत कंट्री में है जहां पर हर एक चीज अवेलेबल है, गर्मी भी बहुत ज्यादा नहीं होती, हमारे तो मेलों में बहुत धूल उड़ती है, तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है क्योंकि अच्छा मौसम है, और मतलब अंदर जहां पर बुक फेयर हो रहा है वहां अच्छा मौसम है, एसी लगी हुई है, सब कुछ शांत और सुकून से और सही तरीके से होता है. तो ऐसे में आपको इतनी क्रिएटिव जगह अगर मिल रही है तो जरूर जाए बुक फेयर जो कि DECC में चल रहा है, और फिर अमिता आपको मिल जाएंगे. अगर अमिता से मुलाकात करनी है तो अमिता कैसे मुलाकात होगी आज आपसे?
1: देखिए मैंने तो कहा कि कोई एक पर्टिकुलर जगह पे मैं रहती नहीं हूँ, बट ये हमारे FM 107 का माइक आपको घूमता हुआ अगर भीड़ में दिख जाए तो समझ लीजिए अमिता वही मौजूद है. सीधा हम तक पहुंच जाए और अपने दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर के एक्सपीरियंसेस, अपने अगर आप बुक लवर है तो उसके एक्सपीरियंसेस आप हमसे शेयर कर सकते हैं बेशक, एंड डेफिनेटली फजील के साथ हम वो बातें कर सकते हैं. सो आई ओनली रिक्वेस्ट ऑल आवर लिसनर्स जो कि यहाँ पर आ रहे हैं, एंड मुझे लगता है फजील आज तो ये कहना बिल्कुल जरूरी होगा कि अगर आपको बुक फेयर आना है तो भाई रात 10 बजे के पहले टाइम से आ जाओ, क्योंकि कल भी जब मैं घर के लिए निकल रही थी यहाँ से ना तो काफी ट्रैफिक जाम था, एंड वो ट्रैफिक जाम होना फिर मतलब है तो काफी जगह यहाँ पर DECC में, लेकिन कभी कभी यू नो पार्किंग ना मिलना वो भी एक मसला हो,
0: मतलब पार्किंग मिलेगी आपको ढूंढनी पड़ेगी, जैसे कई बार आप सूख वाकिफ जाते हैं ना तो आपको दो फ्लोर
1: डिलेज बड़े हो जाएंगे. तो मतलब वो जो

0: कहते ना कि चार्म हट जाएगा एकदम से, तो वो चार्म को मिस ना करें, टाइम लिया जाए।
1: सही है। अभी एक भाई का मैसेज भी है, मैं उनका नाम मैं भूल गया, उन्होंने कहा कि अरे फजील भाई आप तो ऐसे कहते हो इवेंट चले जाओ खर्चे नहीं होते, मैं और फिर कह रहे हैं कि यहाँ पेट्रोल का खर्चा होता है, फिर बाद में खुद ही हंसने लगे कि और इसलिए हंस रहे क्योंकि पेट्रोल सस्ता है यार, मैं क्या बोल गया।
0: तो बोला वापस आ जाए अपने ख्यालों से, कदर में है आप।
1: अरे ऑब्वियसली कितना ही लगता है, और अब ये भी नहीं है कि आपको यू नो 100 किलोमीटर दूर जाना है, अगर आप दोहा में हैं या दोहा छोड़ भी दीजिए आप, अगर वकरा से यहाँ तक आ रहे हैं और फिर वापस वकरा जा रहे हैं तो कितने ही कम से कम 20 रियाल का पेट्रोल लग जाएगा बस, और क्या है बाकी इतना तो चलता है,
0: इतना मैनेज किया जा ही सकता है, और जो अपने शौक की चीजें अपने पसंद की चीजें तो उसके लिए थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस बनता है। तो फिलहाल एंजॉय कीजिए हमारे सारे लिसनर्स आप फजील के साथ, और अभी के लिए फजील मैं थोड़ा और आगे बढ़ती हूँ,
1: बिल्कुल एक्सप्लोर करिए आप।
0: यस एग्जैक्टली आज क्या खास है जो आज हमारे सारे लिसनर्स को पता चलना चाहिए, सो लेट मी सर्च समथिंग यूनिक एंड देन फिर मैं आपसे वापस जुड़ूंगी।
1: ओके हम दोबारा कॉल करेंगे तुमको, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अमिता। और दोस्तों ये थी अमिता 5:44 स्टूडियो की घड़ी में, और जितने भी लोग हैं जो सुन रहे हैं जिनको लगता है कि यू नो ऐसी ज़रूरी जगह जाना चाहिए जहाँ पर इतनी किताबें इतनी क्रिएटिव चीज़ें हो रही हैं, इतने क्रिएटिव एग्जीबिशन भी हैं वहाँ पर, वर्कशॉप भी हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो वहाँ पर जाना आपका जो है वो ज़रूर बनता है। फिलहाल बाकी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, और ये मैसेज है राबिया का, सलाम है, वालेकुम असलम, कैसे हैं फजील भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाइए आप कैसी हैं। सलाम रूल फेयर होना चाहिए, हाँ ये एक सही अभी तक जो आया ना कि कुछ लोगों का नहीं रूल तो होने नहीं चाहिए, कुछ लोगों का हाँ होने चाहिए, कुछ कहा कि देखो फेयर होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपके लिए रूल बिल्कुल वही होता है लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए रूल अलग हो जाता है, तो यहाँ पर बातें जो है वो बड़ा खलता है। ओवैस साहब का ये मैसेज है, फिर ये एक और मैसेज है कि इस भाई का, ओके इन्होंने ऑडियो पहले दे, पहले तो मैं ऑडियो ले लेता हूँ बाकी फिर हम बात देखते हैं। कासिम साहब ने कहा है कि रूल जो है वो ज़रूरी है होना, वरना आजकल के जो मॉडर्न बच्चे हैं ना वो बिगड़ जाते हैं। सोचो इतने रूल हैं उसके बावजूद आजकल के मॉडर्न लड़के एक्चुअली में बिगड़े ही हुए हैं। आप बताइए वो क्या कर रहे, किसी दूसरे के घर जाते हैं, हमारे अम्मा अब्बा ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें ली हुई थी जहां पर वो बड़ी बड़ी आंखों से एक बार डरा देना तो हम डर जाते थे भाई, वो एक बार बड़ी आंखें करे और हम दूसरे के घरों में अगर दूसरे के खिलौने के साथ हैं तो वो खिलौना छोड़ देते थे, और हमसे भी पहले वाली जो जनरेशन थी उनके अम्मा अब्बा अगर आंख बड़ी करके एक बार डांट दे तो वहां पर हिसाब किताब ऐसा हो जाता था कि मैं बोल नहीं सकता। कई बार तो ऐसा भी था कि मेहमानों के सामने ही कूटना शुरू कर देते थे। हमारे अब्बा ऐसे ही थे, उनको ये दिखाना था कि देखो मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ, अब्बा हमें मेहमानों के सामने भी कूट चुके हैं इसलिए मेहमान भी डरने लगे थे। तो ये बात भी है कि यार आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं, बच्चे तो आजकल के ऐसे ही हैं कि वो रूल जो है वो तोड़ देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रूल हैं जिनको तोड़ना नहीं चाहिए वरना 6,000 रियाल का फाइन आता है, ठीक है, तो रेड लाइट्स क्रॉस नहीं करनी है भाई। 5:47 पे सलाम आया है, और वालेकुम सलाम रिफत हुसैन साहब, कैसे हैं आप। और एक और ऑडियो है, मैं ऑडियो दोबारा सुनूंगा तब आपको बताऊंगा, अमन जामवाल इनका नाम है, गुड इवनिंग करते हैं ये। गुड इवनिंग, बाकी एक एक गले को आराम देने के लिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद आपके मैसेज लिया जाएगा।
2: मोबाइल हाथ में लेकिन फैमिली पास होकर भी दूर हो चुकी है, क्या आप भी चाहते हैं कि घर के रिश्ते फिर से मजबूत हों और फैमिली के साथ गुजारा वक्त फिर से कीमती लगे? तो सुनिए फैमिली ओरिएंटेड शो जो दिलों को करीब लाता है, संडे से थर्सडे शाम 4-5 बजे आरजे महविश खान के साथ डियर फैमिली शो, जो रिश्तों को जिंदा रखता है।

0: हाँ जी 5:48 थोड़ा आराम मिला है अब जाके। बाकी ये मैसेज है आई गेस अगेन ये कासिम भाई हैं। हाँ कासिम भाई का मैसेज है और कहते हैं कि फजल भाई सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और कहना है कि अगर सवाल के हिसाब से देखा जाए उनकी ओपिनियन में रूल्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अगर ये एग्जिस्ट ना करते तो जो आज कल ये वही वाली बात है कि आजकल की जो जनरेशन है वो बर्बाद हो जाती है, ख़राब हो जाती। पेरेंट्स का काम है कि चिल्ड्रंस को, बच्चों को रूल्स जो हैं वो ज़रूर सिखाएं। ये बात भी है यार कि देखो कई बार हमारी भी जनरेशन ऐसी थी कि किसी के घर जाते थे, किसी और के खिलौने उठा लिया करते थे और फिर वो लड़का लड़ रहा होता था, और उस वक्त के उनके माँ बाप भी अच्छे थे और उनके माँ बाप ऐसे अच्छे थे कि वो हमें खिलौना दे भी दिया करते थे। वो उल्टा अपने ही बच्चों को कहते थे कि नहीं बेटा दे दीजिए, खेलने दीजिए, आपका भाई है, आपकी बहन है। आजकल के माँ बाप ऐसे है भी नहीं। जब आप अपने फैमिली मेंबर के साथ दूसरों के घर जाते हैं तो क्योंकि आपके बच्चे हैं उनके भी बच्चे हैं तो वो अपने घर के खिलौने छुपा देते हैं। भाई भाई ये होता है, मेरी बहन ये काम करती है यार। वो होता है ना कि पहले अपने घर पे झाको। मेरा यही हिसाब है भाई, मेरी अपनी बहन ये काम कर रही है। जब भी कोई उसके घर में आ रहे हो तो अगर उसके बच्चे हैं तो जुनैरा नाम है मेरी भांजी का, उसको कहा जाता है अरे सुनो अपने खिलौने रख दो, वो आएगा ले जाएगा। ये भी डर है कि अब उसके बच्चों को बोल नहीं सकते। अरे भाई यार मुझे तो शर्म आ जाती है यार। ये देखो गलत काम है, बच्चों के साथ ये तो मत किया करो यार। कह रहे खिलौने जो है उसको अगर पसंद आ गए तो वो ले जाएगा, और कई बार ऐसा होता है कमरे में रख दिया, कमरे में दूसरा बच्चा चला जाता है, यानी कि जो मेहमान है मेहमान चले आते हैं, मेहमान के बच्चे चले आते हैं और फिर वो खिलौना लेकर चले आते हैं और वो जिद भी करते हैं। अब यहाँ पर दोनों माँ बाप का काम है, एक का काम ये है जो जो घर पे जा रहा है उनको रूल सिखाना कि अरे नहीं दूसरे का खिलौना रखो। ये चल रहा है। और आजकल के माँ बाप क्या बोलने लगे, अरे मेरा बेटा बड़ा जिद्दी है, मेरी बेटी एक बार जो ठान लेती है वो कर लेती है, अब वो खिलौना छोड़ेगा नहीं देखना, अब वो लेकर ही जाएगी खिलौना। अरे ये कौन सी बात है, हमारे अब्बा तो दो चमाट लगा दिया करते थे वो भी खींच के, अरे कई बार तो बेल्ट उठा लिया उन्होंने। मुझे पहली बार तभी समझ में आया था जब एक बार गया अपने फैमिली में, अपने दोस्तों के गया, और मुझे तो ऐसा लग रहा था ये दोस्त है अब्बा के लिए, वो मेहमान का घर था, अब्बा ने बेल्ट उठा ली तब मुझे पता चला अच्छा खूनखान होना इसे कहते हैं। मैं सही में मुझे ऐसा लगा कि आज मेरा हिसाब हो गया। बाकी मुझे अपने अब्बा की मार बड़ी याद आती है भाई साहब आजकल, लेकिन दोस्ती वाला हिसाब हो गया है अब। जब अब्बा को ये लगा है ना कि जैसे कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अब्बा की ये लाइन थी कि जब बाप के जूते लड़के के पैरों में आने लग जाएं तो लड़का बड़ा हो गया उस पर हाथ नहीं उठाया जाता। ओफो भारी लाइन देख लो है, भारी मुक्कों से इतना मारा तब नहीं सोचा कि लड़का बड़ा हो रहा है अब ना मारे, अभी तक याद है लड़के को बताओ। खादिम साहब कहते हैं मैं तो कभी बुक फेयर में नहीं गया था लेकिन मेरा एक बेटा है सैयद जवार हुसैन, हर बुक फेयर में जाता है। अरे बहुत किस्मत वाली बात है मेरा भाई खादिम साहब, और आजकल के बच्चे कहाँ किताबों को इतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात है। और बच्चों को बिल्कुल तरबियत देनी चाहिए कि किताब से अपना नाता जोड़ो, किताब से दोस्ती रखो, किताब से मोहब्बत करो। हमारी नहीं हो पाई तो क्या, अपने बच्चों को सिखा तो सकते हैं। बाकी लिखा है कि अपने कोर्स के बुक कम और बुक ज़्यादा पढ़ता, अपने कोर्स के बुक कम और बाकी बुक, देखो बुक वैसे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि वो दुनिया के तौर तरीके सिखा देती है। दो चीज़ हैं बड़ी ज़रूरी है, एक अगर आप पढ़ लिख नहीं सकते हैं अगर कहीं से किताबें ले तो वो किताबें पढ़ें, दूसरा है हमें कहा गया हमेशा हमारे इस्लाम में भी है सफ़र इंग्लिश वाला नहीं उर्दू वाला कि सफ़र करें, टहलें, घूमें, दूसरे मुल्क में जाएं, अकेले जाएं, है ना, बगैर पैसों के निकलें, जितना आप ज़्यादा टहलेंगे उतनी दुनिया भी इल्म को आप हासिल करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन दो चीज़ों को ज़रूर करना चाहिए, किताब पढ़ना, दूसरों के लिखी हुई बातों को पढ़ना, समझना, उनके साइकोलॉजी को समझना अपने दिमाग से, और दूसरी चीज़ ये कि इन जो बात भाई जो मैंने दूसरी चीज़ कही वो घूमना फिरना। ओके एक और ये भाई का मैसेज है, सलाम मेरा भाई गुरप्रीत और कुर्बान, आपका गुरप्रीत और कुर्बान आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको सलाम देना है। वालेकुम अस्सलाम, आप दोनों को मेरा भाई, दोनों साथ साथ संग में बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया, सुनते रहे FM 107। और फिलहाल अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे बाकी हम मैसेज लेंगे FM 107 पे दिल से देसी।
1: ए बनी आदम क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हमारे दफ्तर की स्टूडियो में हो रहा है फिलहाल 6:03 सुंदर एफएम 107। अभी फिलहाल थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक बेहतरीन गाने के साथ। पता नहीं चला लेकिन सुनकर अच्छा लगा। सुंदर एफएम 107 दिल से।

0: عليكم.
1: وعلیکم السلام فضیل, کیا بات ہے کیا بات ہے, مطلب آپ کی باتیں سن کر مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے. اینڈ رائٹ ناؤ میں جس بوتھ میں آ کے کھڑے ہوں نا, مطلب یہاں پر سارے بچوں کو ڈبل مزہ آئے گا. اینڈ اٹس لیبنان کا یہ بوتھ ہے, ٹھیک ہے. اینڈ اٹس مترا اف آئی ایم پرناؤنسنگ رائٹ, مترا فار پبلشنگ اینڈ ڈسٹریبیوٹنگ. یہاں پر بچوں کے لیے نا بڑی کیوٹ کیوٹ سی چیزیں, مطلب میں ابھی برانڈس کے نام نہیں لے سکتی, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ چھٹپن میں لڑکیاں ڈالز وغیرہ سے کھیلتی ہے, ان کے پورے سیٹ آف ری یوزیبل اسٹیکرز ہیں, بچوں کی چھوٹی چھوٹی سی میک اپ کٹ ہے, اور مطلب جتنے بھی اینیمیٹڈ جو کیریکٹرز تھے جن کے ہم موویز وغیرہ دیکھتے ہیں, وہ سب جیسے لائیو ہے. تو ان کے کامکس سے لے کر بکس سے لے کر ان کے کھلونوں سے لے کر کافی کچھ ہے. اینڈ جو پبلشر ہے ان کا, مطلب جو ڈسٹریبیوٹر ہے ان کا بڑا مزے کا نام ہے ماریو. اینڈ میں نے ان سے بولا, میں نے ان کا نام سنتے ہی کہا کہ بڑا انٹرسٹنگ نام ہے, تو انہوں نے بولا کہ ہاں سپر ماریو, دنیا انہیں اس نام سے پکار دی ہے. تو فضیل ایک کام کرتی ہوں کہ میں انہیں مائک فارورڈ کرتی ہوں اور آپ ان سے جانے کی بوتھ میں کیا خاص ہے. میرے خیال سے وہ انگریزی میں ہی زیادہ کمفرٹیبل ہے, تو آپ اس میں ان سے بات کیجیے گا. تو ماریو, وی ہیو آر جے فضیل آن ایئر. یس,
0: ہائی ماریو, گڈ ایوننگ, ہاؤ آر یو ماریو؟
2: I'm good, everything is good. We are from Lebanon and we are participating in the Doha International Book Fair.
0: Okay, so what is the specialty of your outlet, like of your stalls?
2: The specialty is we have publishers from Mitra, which is called Mitra Publishing. It is kids books of early years till 15 years in Arabic, as well exclusive brand of Fati, Italian brand of KG, and all the reading levels for the schools.
0: Okay, and so all the books are in Arabic or other language as well?
2: No, it's in multi languages. We have in Arabic and published in Arabic authors, as well as published in just in Arabic and in English.
0: As well,
2: we have puzzle and activity books.
0: Okay, so actually thousand of people are listening you. I want to ask you, Mario, like which is your absolute favorite book from your stalls?
2: In our it's called Rihlat al-Nasr in Arabic.
0: Again?
2: Cristiano Ronaldo. Rihlat al-Nasr. Rihlat al-Nasr, it's in Arabic.
0: Okay.
2: It's about Cristiano Ronaldo life.
0: Okay.
2: As well, we have the Diary of Wimpy Kid in English. This is the comic and the comic book of bad guys, which for the teen readers in English. As well, we are selling a special, we have a beat dog magazine, children magazines of age of 3 to 12. It's set of 4 magazines in English and French.
0: Okay.
2: They can do a subscription for a 95 riyal.
0: Okay.
2: It's like children magazine, educational, entertainment, drawing. It's like one book has everything inside, games, story, set of 4.
0: Okay.
2: And series from age 3 to 12. This is a D-Doc magazine, children magazine.
0: Okay,
2: as well as a Fati brand and Arabic publisher, and as well comics books in English.
0: Comics.
2: We have totally everything, The puzzle, we are special in this puzzle, the books as well, and the 3D assemble books. They can check us.
0: So a lot of our listeners were also asking, are there any local or independent authors or writers featured in your stalls?
2: And no, actually not. But there is only the authors of the Arabic books, but they are not here. Come, just their books.
0: Not local or independent authors. Okay. Thank you so much.
2: From Lebanon.
0: From Lebanon only. Okay. Because this, friends, Lebanon's. Very much. Thank you so
2: thank
0: much,
2: you.
0: Habibi.
2: Yeah. Thank you.
0: Thank you. Thank you. اوکے تو دوستو لبنان, کیونکہ ہر ملک کے اپنے سٹالز ہیں اور وہاں پر ان ملک کے آتھر جو ہیں وہ وہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں, اور وہاں پر کئی جگہ یو نو الگ الگ طرح کی کتابیں وغیرہ اویلیبل ہوتی ہیں. خیر یہاں یعنی کہ لبنان والے سٹال پہ اگر آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو موسٹلی جو ملیں گی وہ ملیں گی عربک کتابیں, لیکن انگلش کی بھی ہیں. سو امیتا اگر آپ ہمیں سن سکتی ہیں تو بتائیے. اوکے, آپ کو کون سی کتاب پسند آئی ابھی آج کے دن اگر ہم پوچھیں تو؟
1: देखिए अभी अगर आप बहुत नॉलेज वाइज बोले तो अभी वो किताब मैं ढूंढ रही हूँ जिसपे यू नो जिसपे मेरा दिल आ जाए, लेकिन अभी क्योंकि मैं लेबनान के इस बूथ में आई थी तो मेरी एकदम से नजर गई अच्छा यहाँ पर मिस्टर मारियो कह रहे हैं कि इट्स क्लोजर टू नेशनल लाइब्रेरी एंड ब्रिंग ऑल योर फ्रेंड्स।
0: ओके
1: तो मैं बता रही थी आपको फजील कि यहाँ पर डॉल हाउस और यू नो स्टोरी बुक्स और जैसे नहीं वुडन टॉयज ऑफ मेकअप यू नो वो सब चीजें हैं और स्टिकर्स हैं, तो वो इतने प्यारे हैं कि मेरी नजर उस पर चली गई क्योंकि इस वीकेंड में मेरा जो टाइम है वीकेंड में मैं एक्चुअली बच्चों के साथ जा रही हूँ, मतलब बच्चों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ,
0: अच्छा।
1: तो सबके लिए तोहफे इसी बूथ से मैं लेने वाली हूँ। और अभी मेरे साथ कोई और भी है, माजिद कह रहे हैं फजील को सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम माजिद, कैसे हैं?
1: चले मेरे ख्याल से माजिद आप इनसे बात कर लीजिए, फजील इस वक्त ऑनलाइन है, ऑन एयर है, आप बात करें।
0: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल, वहाँ पहुँच गया भाई?
3: अल्लाह का शुक्र, हाँ पहुँच गया, मैं रोज आपका शो सुन रहा हूँ, तो 5 बजे के बाद जैसे ही ऑफ होता है ऑफिस से, तो 5 से 6 साढ़े 6 तक रहता है इंशाल्लाह।
0: क्या बात है, तो कैसे आपने कैसे पहचाना अमिता को, दूर से मतलब आपको पता था कि यहाँ पर मिलेंगी या फिर माइक देख के पहचाना?
3: नहीं मुझे आइडिया नहीं था, ये बात कर रही थी, उन्होंने फजील का नाम लिया और जो इनका बात करने का स्टाइल था वो रोज जैसे मैं सुनता हूँ वही बात कर रही थी कि स्टॉल पे मैं हूँ, तो मैंने समझ गया कि यार ये वहीं पे कनेक्टेड है।
0: क्या बात है, तो कौन सी किताबें वगैरह कुछ पसंद आ रही है?
3: जी जी मैंने ज्यादातर तो अरेबिक में है, लेकिन ये कि मुझे मैं इंटरेस्टेड था छोटे बच्चों की एक्टिविटी बुक्स के हवाले से,
0: okay.
3: तो उनकी काफी अच्छी कलेक्शन है यहाँ पर सूक वाकिफ का जो एरिया है उसके पीछे, और कुछ इस तरह के लर्निंग टॉयज भी वहाँ पर हैं जो आपको आमतौर पे मार्केट में नहीं मिलते।
0: अच्छा okay.
3: तो ब्राइटो के नाम से जैसे एक मुझे आउटलेट यहाँ नजर आया, उनका ऑनलाइन स्टोर भी है, so they have very good collection of those kind of activity books.
0: बहुत उम्दा, बहुत उम्दा माजिद भाई।
3: busy books होती हैं छोटे बच्चों की, 3-4 साल की बच्चे की busy book कहते हैं उसको, इस टाइप की जिसमें वो अपनी एक्टिविटीज करते रहे और लर्निंग भी साथ में हो।
0: क्या बात है, तो दोस्तों माजिद भाई वहाँ पहुंच चुके हैं, अब आपको भी पहुंचने की जरूरत है। माजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल, और भी बात करते लेकिन अभी अजान का वक्त है इसलिए हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, आप जुड़े रहें, कुछ देर बाद हम फिर से कनेक्ट करेंगे आपसे, ठीक है? तो अमिता से अभी हम लेते हैं दोस्तों एक ब्रेक, फिलहाल अजान का वक्त, FM 107 पे दिल से देसी
4: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: तो भाई 6:30 हमारे स्टूडियो की घड़ी में अब समय आ गया है कि आज हम व्हाट इफ में बात कर लें। किस बारे में बात करने वाले हैं, व्हाट इफ में बात करने वाले हैं, जो कि बड़ी अनयूजुअल और एक हाइपोथेटिकल, ये सिचुएशन भी हाइपोथेटिकल नहीं हो सकती, ये बस एक सोच है, एक थॉट है जिसमें मैं सोच रहा हूँ बात करूँ कि अगर ह्यूमंस और जानवरों के बीच संवाद हो सकता, संवाद जिनको नहीं पता, जिनके बीच बात हो सकती है, या फिर अगर ह्यूमंस जानवरों से बात कर पाते या जानवर ह्यूमन से बात कर पाते तो क्या कुछ होता। तो इस पर मैंने सोचा है आज बात करें। और सीरियसली सिचुएशन बड़ी वर्स्ट होती, कई जगहों पे वर्स्ट होती, कई जगहों पे बहुत ही बेहतरीन बातें हो जाती, और कैसे होती चले इस पर डिस्कस करते हैं जरा। तो आज हम बात कर रहे हैं क्या होता अगर ह्यूमंस जानवरों से बात कर पाते। पेट्स एक्चुअली घर के मेंबर्स बन जाते अगर ऐसा होता, और डॉग्स कैट्स सिर्फ पेट्स नहीं रहते बल्कि प्रॉपर फैमिली मेंबर्स की तरह बिहेव करते, वो अपनी फीलिंग्स अपनी नीड्स क्लियरली बता सकते। लेकिन एक मज़ेदार चीज़ होती वो ये कि घर के सारे सीक्रेट्स जो है ना वो फिर सीक्रेट्स ना रहते, वो सेफ ना रहते। और एक रिसर्च हुई है और रिसर्च में पता चला है कि अगर ऐसा हो

0: हो सकता है यार कि एक पैरेट का मिर्चा खाने का दिल ना हो, लेकिन हम उसको मिर्चा ही ठोसाया जा रहा है कि नहीं मिर्चा खाओ, बढ़िया है, तुम्हें तो पसंद है ना ये। और वो जब पैरेट जो है हमारे घर का जो तोता, जब वो टें टें करता है, हो सकता है वो कुछ कह रहा हो सकता है वो ऐसी बातें कह रहा हो जो आपके सुनने के लिए आपके कानों से खून आ जाए लेकिन वो कह नहीं पा रहा है क्योंकि आप तक पहुंच नहीं पा रहा, वो टें टें कर रहा है अपनी जबान में, वो ऐसी बात कह रहा है जो यू नो पैरेट के या फिर तोतों के समाज में, सोसाइटी में बड़ी खतरनाक बातें हैं, लेकिन इंसान को समझ नहीं आ रहा है, वो मिर्चा ही ठुसाया पड़ा है। अरे हो सकता है यार उसे पनीर खाना है, चिकन खाना है, लेग पीस खाना है, लेकिन आप जो है मिर्चा दे रहे हैं। तो ऐसे में ह्यूमन एनिमल्स की ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। अगर बात शुरू हो जाती जब ह्यूमंस एनिमल्स की फीलिंग और पेन डायरेक्टली सुनते तो उनके लिए एम्पैथी और रिस्पेक्ट नेचुरली इंक्रीज हो जाती। फूड इंडस्ट्री पर ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता। जो जानवर हैं, चिकन्स हैं, बाकी अदर बाकी जो फार्म एनिमल्स हैं, अगर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते तो बहुत लोग आई गेस शायद मीट खाना भी कम कर देते या कम्प्लीटली बंद कर देते। उसके अलावा जू एनिमल्स डायरेक्टली फ्रीडम की डिमांड करते, इस वजह से लोग एनिमल्स और केजेस में जो एनिमल्स रहते हैं उनको आज़ाद कर देते या उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगते। उसके अलावा नेचर की जो प्रॉब्लम्स हैं समझना आसान हो जाता। बर्ड्स, व्हेल्स, जंगल एनिमल्स, मछलियां जिनका हम शिकार करते हैं जो आवाज नहीं निकाल पाती, उनके दर्द को हम समझ पाते। ह्यूमंस की ह्यूमंस को जो यू नो जंगल एनिमल्स ह्यूमंस को पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज के रियल इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली एक्सप्लेन कर पाते ये जानवर, जिसमें मतलब हर तरह के जानवर होते हैं। उसके अलावा स्कूल्स में जो नए सब्जेक्ट है वो एड होते, जैसे एनिमल कम्युनिकेशन और एनिमल साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते, क्योंकि एनिमल्स भी सोसाइटी का एक्टिव पार्ट बन जाते। जैसे आज ऐसा ये बात सच भी है क्योंकि मोबाइल के टावर की वजह से कई ऐसी स्पीशीज है जो ख़त्म हो रही। गौरैया आपने सुना होगा, छोटी छोटी सी चिड़िया हुआ करती थी, बड़ी क्यूट सी, हमारे घरों में घोंसला बनाया करती थी, क्योंकि जब से मोबाइल नेटवर्क्स आए हैं वो अपना घर तलाश नहीं कर पाती, इसलिए शहरों में वो बहुत कम हो गई, इवन गांव जैसे एरियाज में वो कम हो गई और ये सब जाकर बस गई ऐसे दूर दराज इलाकों में जहां पर जंगल जैसी स्थिति और जंगल में सर्वाइव नहीं कर पाती। इनका जो सर्वाइव करने का नेचर है वो अलग है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है क्योंकि नेटवर्क और रेडिएशन की वजह से ये अपना घर तलाश नहीं कर पाती, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर ये बात कर पाती, ये कुछ बोल पाती, अपने एहसास जता पाती तो शायद इंसान भी इतनी तरक्की ना कर पाता, क्योंकि उनको जगह जगह पर रुकना पड़ता, जगह जगह पर सोचना पड़ता कि क्या सही है क्या गलत है, जानवर के हिसाब से भी देखना पड़ता। सोशल मीडिया फुल जो है वो कॉमेडी बन जाता क्योंकि बोलने वाले कैट्स होते, पैरेट्स जो एंग्री होते ऑब्वियसली क्योंकि उनको मिर्चा ही ठुसाया जाता है, फनी डॉग्स होते, वैसे फनी डॉग्स तो आजकल भी हमने कई ऐसी वीडियोज़ वगैरह देखी है इंटरनेट पे, नॉन स्टॉप वायरल रहते ये सब एनिमल्स मीम्स और वीडियो का हिस्सा बन जाते। वाइल्ड एनिमल्स डेंजरस भी लग सकते, जैसे कि लायन, वोल्व्स या स्नेक्स ह्यूमन से डायरेक्टली बात करते तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ और इंटेंस फील होती, क्योंकि ह्यूमंस उनका एंगर और वार्निंग्स क्लियरली समझ पाते। वैसे आज भी ऐसे बड़े एक्सपर्ट हैं कि हाथी कब गुस्सा करता है, वो कान कब आगे कर रहा है, तो उसका फोकस कहाँ है ना, वो सूंड किस तरफ घुमा रहा है, तो क्या वो गुस्से में है या नहीं है। जब कोई एक चीता या बाघ या लायन दौड़ता है तो कब वो डरा रहा है, कब वो हमला करने वाला है, छोटी छोटी ये जो एक्सपर्ट्स हैं ना वो बातें पकड़ते हैं, उनको तो पता है कि वो क्या करने वाले, ये कम्युनिकेशन ही है एक तरह का। लेकिन अगर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाते तो शायद जो जंगली जानवर होता वो कहता कि भैया दूर से निकल लो वरना अभी तुम्हारा बिरयानी बना के खा जाऊंगा। उसके अलावा ह्यूमंस को रियलाइज होता कि एनिमल्स भी इमोशनल होते हैं। सबसे बड़ा जो चेंज ये आता वो कि ह्यूमंस फाइनली समझते कि एनिमल्स सिर्फ क्रिएचर्स नहीं बल्कि इमोशन, फियर, मेमोरीज और इंटेलिजेंस रखने वाले लिविंग बींग्स हैं, उनकी भी बातें जो है वो सुनी जाती। फिलहाल एक कॉलर है कोई हमारे साथ कॉल कर रहे हैं, बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फजील भाई कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कैसे हैं आप? आप सुनाएं।
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वो बॉक्स के फोटोज भी आपको भेजे, मैंने अभी घर में मैसेज किया बेटी को कि जल्दी जल्दी वो बॉक्स के फोटो भेज दो फजील भाई को भेजने। मेरा जो बेटा है सैयद जवार, वो माशाल्लाह अपने कोर्स के अलावा जितनी किताबें जो भी किताब मिलते हैं ना उसको जो भी बोलते हैं कि ये अच्छी किताब है तो वो पढ़ लेता है, वो ले लेता है और पढ़ लेता है।
0: हाँ, मैंने अभी अभी आपकी देखी हुई है चैट के आपने काफी जो है किताब की पूरी शेल्फ जो है वो भेजी है आपके घर, किताबों की भंडार है।

0: माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है।
1: कभी कभी ऐसा होता है कि उसका जो बेड होता है ना, बेड के ऊपर इतनी किताबें पड़ी रहती हैं, तो उसकी माँ अक्सर गुस्से में होती है कि आपने पढ़ना कौन सा है, ये मुझे बताओ पहले, जो पढ़ना है वो मैं इधर रखो और बाकी मैं साइड में रख दूं। वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, बस सब इधर ही रखो ऐसे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को ज्यादातर बुक्स पढ़ने की इजाजत, ये नहीं सिर्फ कोर्स की, और भी किताबें।
0: इजाजत तो हमारे अब्बा भी देते थे, हमारे अब्बा तो मार मार के कहते थे कि पढ़ो, लेकिन हम वो इजाजत समझ नहीं पाते थे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि एनिमल से कांटेक्ट जो है वो करना बड़ा जरूरी, कम्युनिकेशन अगर वो कर पाते, तो अब्बा ने हमें हमेशा जानवर ही कहा है, इसलिए अब्बा की बात हमें कभी समझ नहीं पाया। वो गुस्से में कहते हैं, अरे ये जानवर लड़का क्या पढ़ेगा, जानवर एक नंबर, तो बस कम्युनिकेट नहीं हो पाया ना।
1: अच्छा फजील भाई, अगर आप वो बात याद रखे तो मेरे ख्याल में वो बातें बहुत अच्छी थी, वो तलख थी, बहुत ज्यादा सख्त थी, लेकिन वो हमारे हम लोगों के फायदे के लिए होती थी वो बातें, और आज हम सोचते हैं कि काश हम उस पे अमल करते।
0: सही सही है ना? मतलब आप देखिए ये भी बात कितनी सही है कि अगर हमारे अब्बू गुस्से वाले ना होते डांटना, तो फिर मेरे पास कहने को क्या होता, आज मैं कह रहा हूँ इसी बात के तो पैसे मिल जाते।
1: चल ठीक है फजील भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है।
0: थैंक यू भाई, थैंक
1: यू, ओके, अल्लाह खुश रखे, अस्सलाम वालेकुम।
0: ओके भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वेल ये कॉल हमने उठा ली, लेकिन ये किताबों के बारे में हमने बात करी थी, क्योंकि खादिम साहब ने बहुत सी किताबें जो हैं वो भेजी हैं। अभी कुछ देर पहले हम बात ही कर रहे थे कि जैसे बुक फेयर हमारा जो चल रहा है, उसके अलावा अभी जो हमने बात करी जानवरों के बारे में, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऑब्वियसली ये तो कभी नहीं होने वाला, लेकिन जानवर एक्चुअली में कम्युनिकेट करने की पूरी कोशिश जो है वो करते हैं, वो अपनी बॉडी से सिग्नल्स देते हैं। जैसे यू नो, अगर किसी हम अगर जानवर के बारे में बात करें, जैसे कि डॉग्स हैं, तो वो अपने टेल को बहुत तेज़ी से वैग करते हैं, इससे आपको पता चलता है वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैट्स जो हैं वो कोई स्पेसिफिक साउंड निकालती है, वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही होती हैं। हॉर्सेस जो हैं वो कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से। डॉल्फिन जो है, एक मैंने वीडियो भी देखी थी, डॉल्फिन कई बार आपको ना, अगर ह्यूमंस डॉल्फिन की मदद करते हैं तो डॉल्फिन एज अ गिफ्ट आपको छोटी मछली ला कर देती है। तो ये एक तरीका है कम्युनिकेट करने का, या ये बताने का कि देखो हम तुम्हें कितना समझते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम जानवरों को समझें, उनकी तकलीफ़ों को जितना हो सके कम करें। ऐसे कई NGOs चल रहे हैं जो यू नो कोशिश करते हैं कि जानवरों की तकलीफ़ों को कम किया जा सके। उसके अलावा कुछ ऐसे जानवर हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, वो भी हमला करने से पहले कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो बाघ की बात हो, चाहे वो यू नो चीते की बात हो, चाहे वो किसी भी जानवर के बारे में बात हो, जो एनिमल के एक्सपर्ट्स हैं आप जब उनसे बात करेंगे तो वो आपको छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं कि कैसे। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखी है, शायद मेरे ख्याल से ये केरला की है या आंध्र प्रदेश की है, जहाँ पर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, अभी बस एक या दो दिन की है, जहाँ पर एक हाथी ने दूसरे हाथी पर हमला करा और उसमें जो है एक फीमेल जो है वो चपेट में आ गई और वो उनका इंतकाल हो गया। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जानवरों को जानवर की तरह ट्रीट किया जाए, और वो हमला करने से पहले कम्युनिकेट करते हैं। उनका भी स्ट्रेस होता है, जानवरों का एक स्ट्रेस होता है, अगर आप उस स्ट्रेस यानी कि जानवर के करीब चले गए और अगर वो स्ट्रेस में रहा तो वो हमला करता है। तो ये पता लगाना कि वो स्ट्रेस में है कब है, वो आपको एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि जानवरों से उतना ही बिहेवियर रखिए जितना आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकें। उनके एक्सप्रेशन को समझिए, उनके दिए गए चीज़ों को, उनके कान फड़फड़ाने से लेकर, इवन अभी मैं कुछ दिन पहले वीडियो देख रहा था तो उसमें बताया कि कैसे अगर एक हाथी अपना कान एक स्पेसिफिक एंगल पर ले जाए तो वो उसका चैलेंज है कि अब मैं तुम्हें यू नो मार सकता हूँ, अब मेरे एरिया में आप आ गए हैं। उसके अलावा जब वो सूंड घुमाता है, कहीं और देख रहा है लेकिन वो आपकी तरफ सूंड घुमा रहा है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब आपको पता चलता है कि आपको दूर रहना है, लेकिन ये एक्सपर्ट्स का काम है। बट कोशिश ये हो कि हम जितना हो सके जानवरों के लिए उतनी आसानी पैदा करें। फिलहाल 6:40 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अमिता से कि क्या कुछ चल रहा है बुक फेयर में। फिलहाल एक बेहतरीन सा गाना बी प्राक और हार्डी सांधू की आवाज में।

0: FM 107 पर हर गाना हिट,
1: हर गाना हिट,
0: हर दूसरा गाना सुपर हिट।
2: तेरा मुखड़ा चंदा टुकड़ा ने तेरी अनक तेरे शू क्या बात
3: है ना। ये वाला गाना अच्छा, हार्डी सांधू का है, निकिता का है। क्या हो अगर हम कुछ देर बाद इस गाने को ले ले, मजा नहीं आ जाएगा। हाँ जी हबीबी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको बस बातों बातों में बता दिया कि ये गाना अगला होगा, लेकिन अमिता से बात करने के बाद फिलहाल लाइन पर हैं। जी हेलो अमिता जी, क्या हाल चाल?
4: क्या बात है फजील, मतलब एक तो आपकी बातें सुनते मुझे इतना मजा आ रहा है, मुझे लग रहा था कि अभी बस ये अगला गाना शुरू ही होने वाला है।
3: नहीं, हल्के हाथ से मैंने लोगों को बता दिया कि देखो ये वाला गाना अगर शुरू हो जाए तो ऐसा लोग फिर रुक जाएंगे। तो थोड़ी देर गाड़ी
4: बहुत शानदार जाने की चॉइस है। फिलहाल तो मैं अभी इंटरनेशनल बुक फेयर में, जैसे हम सभी जानते हैं, एंड लोगों से आज बहुत बात करने का मौका मिल रहा है कि उन्हें कैसा लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे, अभी 6 साल की बच्ची आई, वो ज्यादा कुछ कह नहीं पा रही थी, एंड लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लाइक व्हाट शुड आई स्पीक टू हर, व्हाट शुड आई टॉक टू हर। तो मैंने उसको बोला कि उसे स्टोरीज पसंद है, तो बोलती है हाँ मुझे ना टर्टल की स्टोरी पसंद है।
3: अच्छा।
4: तो मैंने कहा करोगी क्या यहाँ पे? बोलती पता नहीं, बस घूमने आई हूँ। घूमने आई है,
3: क्या बात है,
4: मतलब लिटरली। एंड अभी एक छोटा सा बच्चा आया अब्दुल गनी करके, एंड ही जस्ट केम इन, और उसने बोला कि आप मुझे भी इंटरव्यू कर लो, इतने बच्चों को इंटरव्यू कर रही हो तू।
3: अच्छा।
4: तो अभी हमारे सोशल मीडिया के लिए उसका इंटरव्यू अलग से चल रहा है।
3: अरे वाह।
4: तो आई रियली हैड अ गुड थिंग कि आज ना, आज फजील थोड़ा सा माहौल डिफरेंट है कि जो छोटे छोटे बच्चे ना, वो खुद आकर पकड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें इंटरव्यू कर लो।
3: और हमारे हमारे वक्त पे हम कितना डरते थे, हमारे अब्बा के बड़े बड़े आंखों से हम डरा करते थे, अम्मी जो है वो हाथ पकड़ा करती थी और फिर वो छोड़ती नहीं थी।
4: राइट।
3: तो आजकल के बच्चे, हालांकि अभी भी यही चल रहा है बाकी अपने उधर, लेकिन इधर तो बच्चे जो है मेट्रो में भी घूम ले रहे हैं अकेले, क्योंकि हिसाब किताब ही ऐसा है। और बच्चे देखिए ऐसे ही तेज तर्रार बनते हैं और ऐसे ही वो दुनिया में रहने लायक बनते हैं, कॉन्फिडेंट ऐसे ही बनते हैं बच्चे जब आप उनको आजाद छोड़ दें, उनके अपने हाल पे छोड़ दें, ऐसे वो सीखते हैं। देखिए 6 साल का बच्चा, उसको पता नहीं क्या बात करनी है लेकिन वो कर सकता है। हाँ, आपको याद है आप 6 साल में कितना डरते थे, कहीं अनजान से किसी अनजान से बात करते हुए, मैं खुद डरता हूँ भाई अभी भी। तो ये बड़ा जरूरी है कि बच्चों को हाल पे छोड़ दे और वो खुद सीखेंगे और कॉन्फिडेंट होंगे।
4: नहीं, डेफिनेटली। एंड यहाँ पर एक चीज बड़ी क्यूट लग रही है कि बच्चों को पता नहीं है माइक में क्या बात करनी है, बट दे जस्ट कमिंग कि हाँ बस माइक दे दो, हमको बस थोड़ा कुछ कह के चले जाना है। तो ये
3: तो क्या कहते हैं? अच्छा, तुमने एक दो बार तो ऐसे किया भी होगा, क्या कहते हैं वो?
4: क्या कहते नहीं, बस माइक पे अपना नाम बताते हैं।
3: अच्छा।
4: और फिर मैं पूछती हूँ कि अच्छा आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। और फिर अपने माइक लिया कुछ और भी बताओ, तो समझ में नहीं आ रहा है, बस बुक फेयर में आए हम, अब कहीं से कुछ तो किताब लेके जाएंगे। नहीं, बट इट्स लाइक जितने बच्चे है ना, दे लव स्टोरी बुक्स। एंड अभी एक बच्चा मिला था, ऑब्वियसली फटाफट मिल के और वीडियो शूट करके वो भाग गए, ये कोई अरबी बच्चा था। एंड उसने आके सीधा बोला कि मैं ना पायलट बनना चाहता हूँ, मुझे मैथ बहुत पसंद है, एंड आप मेरा जल्दी से इंटरव्यू ले लो क्योंकि मुझे जाना है।
3: हाँ भाई, जल्दी करो। सही है।
4: तो मैंने कहा चलो भाई आपका भी इंटरव्यू ले ले। अच्छा, मैं ना जब यहाँ पर मतलब घूम रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट बूथ में जा रही हूँ, एक्चुअली अब स्टॉल्स कहना तो वो नहीं होगा, हमारे उधर पे स्टॉल्स बहुत सारी चीजों के होते हैं, बुक्स के भी होते हैं, बट देन बूथ्स इज द प्रेफर्ड थिंग। एंड एक पेंगुइन रीडर्स का जो पब्लिशिंग हाउस है, ये मुझे ना समाउ बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं भी पेंगुइन जो पेंगुइन पब्लिशर्स हैं उनकी बुक्स नॉर्मल स्पेशली बहुत पढ़ते आई हूँ स्कूल के दिनों में।
3: अच्छा,
4: तो अच्छी फीलिंग आती थी। तो जब ये देखा ना तो एक नॉस्टैल्जिक सा लगा, हाय यहाँ पर कुछ मेरे काम की चीज मिल जाएगी। सो मे बी आई विल चेक इट लेटर। एंड आज जिस बुक के बारे में मैं आपसे कहना चाहती हूँ, दिस इज कतर, इफ यू रिमेम्बर दिस बुक इज द बुक जो कि एनसाइक्लोपीडिया है कतर के बारे में, और ये दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर के पहले दिन इनॉग्रेट हुई थी। अब इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसका एक डिजिटल, जैसे हम प्रोमो कहते हैं ना, एक डिजिटल ट्रांसलेशन हर दिन शाम को 4:30 बजे जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वहां की स्क्रीन पे प्ले होता है। एंड एक और यूनिक बात यह है कि इसका जो छोटा सा वर्जन, बुक का वर्जन प्ले होता है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है।

0: Okay.
1: So it's in not only in Arabic, it's in English, it's in Korean, it's in Italy, you know, Italian. So वो सारी भाषाओं में होता है. तो ये भी एक अच्छी चीज है कि मतलब हर एक मुल्क का ख्याल रखा गया है कि अगर कोई डिफरेंट भाषा का बंदा है तो वो भी आके देख सकता है कि इस एनसाइक्लोपीडिया में क्या है. एंड यू नो मुझे लग रहा था कि दिस इज कतर इज जस्ट वन बुक. But the moment I entered, I realized इसके 6 volumes हैं.
0: अच्छा, ओ 6 अलग अलग. Okay.
1: Yes. 6 volumes हैं. And Fazil, you can come जब आप आओगे ना.
0: हाँ.
1: तो जहाँ से Ministry of Cultures और उसके अलग अलग booth start होते हैं. I think it's 3-4 के बीच का जो area है, gate का जो area है.
0: हाँ.
1: वहाँ पर एक छोटा stage है और this is Qatar book. वहाँ पे प्रेजेंट की गई है. सो ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट द हेरिटेज, एक वॉल्यूम में हेरिटेज है, दूसरे वॉल्यूम में यू नो एजुकेशन के बारे में है, तीसरे वॉल्यूम में दे टॉकिंग अबाउट बिजनेसेस. तो इस तरह से डिवाइड किया गया है.
0: क्या बात है.
1: एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल. जैसे हम स्कूलों में हिस्ट्री बुक्स पढ़ते थे ना, तो पिक्चर्स होती थी ये, बट ये पिक्चर्स बिल्कुल रंगीन
0: है. एंड क्या बात कही तुमने, ये इससे याद था ना मुझे, वो याद आ गया कि हम उन बुक्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे जिसमें पिक्चर्स हो.
1: यस यस. तो वो फील है उस बुक में, मतलब लिखावट के साथ वो कलर्स और कुछ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स भी हैं पुरातन काल की, तो वो सब देखने को मिल रहा है. एंड इट्स अ रियली नाइस फील. मतलब जिस दिन से मैं आई हूँ, उस दिन से मैं बात कर रही थी दिस इज कतर, मुझे बुक देखनी है. एंड फाइनली आज मुझे इस साइड लाइक उस एरिया में जाने का मौका मिला वेयर आई एक्चुअली कैन गो एंड फील इट. मतलब वो टच एंड फील, इट्स लवली. मतलब जो डे वन इनॉग्रेट की है ना, तो इट इज इट्स अ परफेक्ट बुक फॉर दिस बुक फेस्टिवल जिसमें कतर के बारे में सब कुछ है.
0: बिल्कुल. तो दोस्तों आपके पास पूरा मौका है और इस मौके को भुनाना चाहिए. और ज्यादा लंबा ज्यादा दिन बचे भी नहीं, आज 20 तारीख हो गए, मेरे ख्याल में 3 दिन और बचे हैं इस बुक फेयर में. तो बिल्कुल जाएं, एक फेवरेट बुक खरीद के लाने. मत पढ़िएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, मत पढ़िए. आप बस लेकर अपने पास रख लिए, जब आप फ्री होइएगा, जब आपको नींद ना आ रही हो रात में, तो उस रात को एक किताब ये खोलकर बैठेंगे, तब आपको एहसास होगा कि ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है. और जब आप उस जगह पे पहुंचेंगे, यानी कि बुक फेयर में पहुंचेंगे, तब आपको एहसास होगा कि हाँ कैसी किताबें आपको पसंद है. हो सकता है आपको साइंस की कोई किताब पसंद आ जाए, हो सकता है स्टोरी की कहानी की कोई आपको किताब पसंद आ जाए, या हो सकता है आपको जिंदगी के सही मायने सीखने में दिलचस्पी हो तो वो किताब पसंद आ जाए, या हो सकता है फाइनेंशियल अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो ऐसी भी किताबें होंगी. तो ये निर्भर करता है कि आपकी पसंद कैसी है. तो इसलिए बुक फेयर पहुंचे और एहसास फिर आपको अपने आप हो जाएगा. बहुत बहुत शुक्रिया अमिता, कनेक्ट किया आपने और बहुत डिटेल में, बहुत उमदा तरीके से आपने इतने दिनों हमें यू नो एलैबोरेट किया है इस बुक फेयर के बारे में. बहुत बहुत शुक्रिया.
1: यस यस कबीर, थैंक यू सो मच. एंड बिफोर आई लीव, बस एक लाइन आपको मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये आपका टास्क है जो मैं खाली नहीं जाने दूंगी. एंड दैट इज, व्हेन द वेल ड्राई वी नो द वर्थ ऑफ वाटर.
0: वर्थ ऑफ वाटर.
1: यस, व्हेन द वेल ड्राई, मतलब जब कुआं सूख जाता है तब हमें पानी की अहमियत का पता चलता है.
0: हाँ, अच्छा, वेल, वही मैं कहूँ, ये वेल्थ अगर सूख रही है, वेल्थ तो क्यों बोल रहे हैं हम, बट ये बहुत ही उम्दा बहुत ही जबरदस्त लाइन है.
1: Right.
0: कि जब कुआं सूख जाता है तब हम पानी की कीमत समझते हैं. क्या बात है. बहुत बहुत शुक्रिया. ये सबसे जबरदस्त इसी बात के साथ मुझे लगता है आज के शो को अपने अख्ताम पर पहुंचा ही देते हैं दोस्तों. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अमिता.
1: थैंक यू सो मच,
0: बाय बाय. तो दोस्तों अब इस कुएं में भी कुछ पानी बचा नहीं है, यानी कि कुछ कहने को बचा नहीं है. और इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत. मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल शाम 5 बजे अमिता के साथ और एक नए व्हाट इफ और एक नए सवाल के साथ. फिलहाल हार्डी सांधू का वो गाना जो कुछ देर पहले मैंने प्ले किया वो आपके लिए प्ले कर रहा हूँ. हार्डी सांधू का ये है क्या बात है 2.0 वर्जन. आशिक भाई चलो यार बुक फेयर चलते यार, आज हो गया, बहुत चल रहे यार, बस घर पे कब तक, बाकी मेहनत कर ली है, आज चलते हैं यार. मैं निकलता हूँ आशिक भाई के साथ, आप एंजॉय करें FM 107 दिल से.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

Bismillahir Rahmanir Rahim. Sahibi Sumo Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Sani ne aaj Amiri Faisla number 25 baraye saal 2026 jari kiya jiske तहत Muhammad bin Hasan Al Malki ko Real Estate Regulatory Authority Aqarat ka sadr muqarrar kar diya gaya hai. Faisle ke mutabik ye taqarrari isi tareekh se nafizul amal hogi jis din use jari kiya gaya hai aur use sarkari gazette mein shaya kiya jayega. साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने जमहूरिया तैमूर लेस्ते के सदर जॉर्ज रामोस हॉर्टा को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है. नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने भी जमहूरिया तैमूर लेस्ते के सदर को यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम भेजा है. इसी तरह वज़ीर आज़म व वज़ीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने जमहूरिय तैमूर लेस्ते के वज़ीर आज़म ज़नाना गौसमाओ को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम रवाना किया है. साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने रियासत कुवैत के अमीर शेख मशअल अल अहमद अल जाबिर अल सबा को शेख मोहम्मद फैसल मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ अल मालिक अल सबा के इंतकाल पर ताज़ियती पैगाम इरसाल किया है. नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने भी रियासत कुवैत के अमीर को इसी मुनासबत से ताज़ियती पैगाम रवाना किया है. इसी तरह वज़ीर आज़म व वज़ीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने भी रियासत कुवैत के अमीर शेख मशअल अल अहमद अल जाबिर अल सबा को ताज़ियती पैगाम इरसाल करते हुए मरहूम के इन अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है. वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने आज दीवाने अमीरी में काबीना के मामूल के इजलास की सदारत की. इजलास के आगाज़ में काबीना ने साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को आने वाले मुबारक ईद उल अज़हा के मौके पर दिली मुबारकबाद पेश की और दुआ की कि अल्लाह ताला ये बाबरकत मौका साहिब सुमो अमीर के लिए सेहत व खुशहाली के साथ बार बार लाए और कतर को उनकी दानिशमंद क़ियादत में तरक्की व खुशहाली अता फरमाए जबकि अरबों इस्लामी ममालिक को भी खैर व बरकत से नवाजे. काबीना ने साहिब सुमो अमीर की जानिब से साइंस फ़नून और अदब के शोबों में 7वें एडिशन के स्टेट एप्रिसिएशन अवार्ड और स्टेट इंसेंटिव अवार्ड के फातहीन की एजाज़ बख्श तकरीब को सराहा जिसमें उनकी नुमाया खिदमात और कौमी तरक्की में किरदार को तस्लीम किया गया. काबीना ने अवार्ड याफ्तगान को भी मुबारकबाद देते हुए उनके लिए मजीद कामयाबियों की दुआ की. इजलास में काबीना ने एजेंडे पर मौजूद उमूर का जायज़ा लेते हुए एक मुसवदा कानून की मंजूरी दी जो समाजी पेशों की रेगुलेशन से मुतालिक है. ये मुसवदा वजारत समाजी तरक्की व ख़ानदान की जानिब से कौमी तरक्याती हिकमत अमली और कतर नेशनल विजन 2030 के मुताबिक तैयार किया गया है जिसका मकसद समाजी पेशों के लिए वाज़े कानूनी पेशा वाराना और इंतज़ामी मेयार मुकर्रर करना है. इस कानून का मकसद निजी और गैर मुनाफा बख्श शोबों की शमूलियत को फ़रोग देना भी है जबकि खिदमात के मेयार को बेहतर बनाने के लिए निगरानी जाँच और शफाफियत के मौसर निज़ाम को यकीनी बनाना है. काबीना ने वजारत सेहत आमा के एक मुसवदा फैसले की भी मंजूरी दी जिसके तहत सेहत से मुतालिक तहकीकी लाइसेंसों की फ़ीसों का तयन किया जाएगा. ये इकदाम सेहत तहकीक के कानून नंबर 6 बराए साल 2025 के निफाज के तहत किया गया है. इजलास के अख्ताम पर काबीना ने कतर फाइनेंशियल सेंटर रेगुलेटरी अथॉरिटी की मालियाती रिपोर्ट्स और साल 2025 की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट का भी जायज़ा लिया. वज़ीर मुमलिकत बराए बैनुल अक़वामी तआवुन डॉक्टर मरियम बिन तलीब बिन नासिर अल मिसनद ने बरतानिया की वजारत खारजा कॉमनवेल्थ और तरक्याती उमूर के दफ्तर में बैनुल अक़वामी तरक्की की वज़ीर मुमलिकत बेरुन्स जेनी चैम्पियन से लंदन में मुनक्किदा ग्लोबल पार्टनरशिप्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकात की. मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा तआवुन का जायज़ा लिया और उसे मजीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया. साथ ही इंसानी सफारतकारी और तरक्याती कामों के लिए जदीद और मौसर हिकमत अमलियों को फ़रोग देने पर भी गुफ्तगू की. दोनों फरीकैन ने इस बात पर भी गौर किया कि कतर और बरतानिया की मुश्तरिका कोशिशों का मरबूत बनाया जाए ताकि मुख्तलिफ खित्तों और ममालिक को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद और फौरी रिलीफ फराहम किया जाए खासतौर पर इन इलाकों में जहाँ शदीद इंसानी बहरान मौजूद हैं. मजीद बरा गज़ा की पट्टी के लिए तिब्बी मुआवनत को मरबूत करने जबकि शाम सूडान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मुश्तरिका तरक्याती प्रोग्रामों और मंसूबों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी तफसीली तबादला

0: निशानात होते हैं वो सड़क की जुबान होते हैं। इन पर अमल करना ट्रैफिक की हिफाजत को बढ़ाता है और लोगों को महफूज रखने के लिए बहुत अहम है। ट्रैफिक साइंस और मार्किंग्स पर अमल कीजिए। याद रखिए कि एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर सकते हैं। और हाँ, ट्रैफिक के कानून की तामील करने से हम अपनी और रोड पर अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी को महफूज कर सकते हैं। रियासत कतर और शामी अरब जमहूरिया की वजारत दाखिला के दरमियान सिक्योरिटी तावन को बढ़ाने और महारत के तबादले के फ्रेमवर्क के अंदर कतर की वजारत दाखिला के मुतअद्दिद सिक्योरिटी और खुसूसी महकमों ने शाम की वजारत दाखिला से एक वफद का इस्तकबाल किया। इस दौरे का मकसद वफद को सिक्योरिटी और पब्लिक सर्विसेज ऑपरेशंस में कतर के जदीद तजुर्बे से वाकिफ कराना था। वफद ने क्रिमिनल एविडेंस एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम प्रिवेंशन डिपार्टमेंट का दौरा किया। दौरे के दौरान वफद को ऑपरेशनल वर्कफ्लो, फराहम की जाने वाली सर्विसेज और जदीद तरीन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज, एप्लीकेशंस और पुलिसिंग की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए तैनात किए गए सिस्टम्स के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ये दौरा मुश्तरका सिक्योरिटी तावन को फरोग देने और खुसूसी टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी डोमेन्स में महारत और बेहतरीन तरीकों के तबादले को फरोग देने के लिए दोनों ममालिक के अज़्म की निशानदेही करता है। दोस्तों, मसाजिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग न सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदा मंद साबित हो सकते हैं। इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखिला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं
3: हेल्थ गाइड
2: डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

प्रोग्राम हेल्थ केयर के साथ फौजे शफीक और हमारे आज के प्रोग्राम ऑपरेटर असले भंडारा आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जेनेसिस प्रोग्राम हेल्थ गाइड, और आज हम इस उम्मीद से ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि आप खैरियत होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि गर्मी का मौसम है और आहिस्ता आहिस्ता गर्मी जो है वो ज़्यादा होगी, उसमें हम छोटे छोटे मेजर्स अपना कर अपनी सेहत का ख्याल रख सकेंगे। टेलीसन जैसा कि हम मुख्तलिफ मौजूदात पर बात करते हैं, तो आज भी बहुत अहम मौजू अपनाने जा रहे हैं। जैसे कि आमतौर पर शायद हम ये समझते हैं कि कोई मसला नहीं है, मगर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मसला तो बनता ही चला जाता है। एनजाइटी के बारे में हम बात करेंगे कि एनजाइटी के जो मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स हैं, मतलब मुख्तलिफ टाइप्स की बीमारी आप कह सकते हैं, और उसमें ये देखा गया है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 4.4% जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है, उसमें एनजाइटी की जो मुख्तलिफ कंडीशंस हैं वो पाई जाती हैं। और इसमें ये भी देखा गया कि पूरी दुनिया में अगर 4 एनजाइटी के पेशेंट हैं, तो उनमें से जो एक पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी ज़रूर होती है। बहरहाल हम इस पर बात करेंगे और डॉक्टर साहब से पूछेंगे ये है क्या, किस तरह से होती है, किस तरह से हम इसको पहचान पाते हैं कि हमें एनजाइटी है या कोई मसला है या नहीं है, इस पर बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर मिर्ज़ा गुज़नफर बेग, जो कि साइकेट्रिक कंसल्टेंट हैं अलखौर हॉस्पिटल में। हम अपने तमाम लिसनर्स के साथ डॉक्टर साहब को वेलकम करेंगे।

0: और भी कंडीशंस हो सकती हैं या ये हो सकता है कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि इंसान जो है वो आपने हमें बताया मगर मेडिकली भी ऐसा होता है या हेरिडिटी इस तरह से कुछ है कि फैमिली में भी रन करता हो
1: जी देखिए अब जैसे आपको बताया मैंने कि 10% ऑफ पॉपुलेशन में एंजाइटी होती है और आमतौर पर ये जो है मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर है डिप्रेशन के बाद उसके बाद जो है ये अकेली नहीं होती है आमतौर पर इसके साथ में कुछ अंडरलाइंग कॉजेज भी होते हैं जैसे लोग घबरा पैनिक डिसऑर्डर होता है खाली जनरलाइज एंगजाइटी नहीं होती किसी को
0: जी
1: साथ में कुछ और भी होते हैं ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है या पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है या फोबिया हो जाता है उसको ठीक है और आमतौर पर ये शुरू होता है 15 से 25 साल की उम्र में पीक पे होता है ये
0: जी
1: और इसमें जो है ख्वातीन में ज़्यादा होता है मर्दों के मुकाबले में और बहुत सारे लोग मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है अक्सर लोग जब एंगजाइटी आती है इनको जनरलाइज एंगजाइटी होती है तो ये डॉक्टर से रुजू नहीं होते हैं
0: जी।
1: कहते हैं कि ये तो चीज़ नेचुरल है नॉर्मल है होनी है तो मैं ये कहता हूँ कि जब आप कुछ चीज़ें अपने काबू के बाहर हो जाएँ और आपको लगा कि आपका परफॉर्मेंस चाहे आपका प्रोफेशनल परफॉर्मेंस हो
0: जी।
1: या आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो या आपका जो है सोशल रिलेशनशिप हो ये तीनों चीज़ें जब ख़राब होती हैं तो लगता है कि आपको उस वक्त जो है डॉक्टर से रुजू होना चाहिए और इसका इलाज करना चाहिए
0: ठीक
1: आपने पूछा कि असबाब क्या हैं जाहिर सी बात है बायोलॉजिकल तो होती हैं और हेरिडिटरी होती हैं और बच्चे जब बड़े होते हैं जो माहौल में रहते हैं वहाँ पर अगर माहौल स्ट्रेसफुल है और बच्चों को हमेशा ये कहा गया कि भाई वहाँ मत जाओ ये हो जाएगा ये मत करो वो हो जाएगा या वो चीज़ें नहीं करनी हैं देखो कोई अगर आपको देखा तो मुझे आके बता देना तो बच्चे में एक अननोन फियर आप डेवलप कर लेते हैं उसके से बच्चे थोड़ा कुछ भी काम करने से पहले उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है तो उसमें एंगजाइटी बच्चों को पैदा हो जाती है फिर
0: ठीक
1: जी
0: इसमें डॉक्टर साहब हम एज वाइज थोड़ी सी बात करें जैसे छोटे बच्चे हैं जैसे आपने कहा कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो बहुत अहम हैं इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स में फिर पेरेंट्स ही ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं आपका क्या
1: जी
0: क्या
1: जी
0: कहते हैं
1: जी बिल्कुल देखिए माँ बाप का जो माहौल है घर का बच्चे जहाँ रहते हैं ख़ासतौर पर जब बच्चे जो है और अपने अडल्ट में जो घुसते हैं अडोलेसेंस में जाते हैं बच्चे जब या जब बच्चे है 13 साल के हो जाते हैं या 5 से जो है 15 साल के जब बच्चे होते हैं ये हर चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जो घर में जो माहौल है उसको अडॉप्ट किया जाए वो देखते हैं कि मेरे माँ बाप का ताल्लुक कैसा है उनके ताल्लुकात कैसे हैं उनके आपस में रिलेशनशिप कैसे हैं उनके दरमियान में जो है बातें कैसी होती हैं लड़ाई झगड़ा होता है या नहीं होता है किस तरह रहते हैं खुलूस में और मुझ पर किस तरह मेरे साथ कितना बर्ताव करते हैं कितनी चाहत से फिचाया कोई अगर मैं कुछ काम करना चाहूँ तो कितना मुझे इंकरेज करते हैं या डिस्करेज करते हैं ये आ जाता है तो इसमें जो है जो टेंशन फीलिंग होती है ना उसमें ये होता है कि पहले तो आदमी नर्वस पैदा हो जाता है कि भाई मुझे पता नहीं क्या हो रहा है फिर आपके जो है उसको कंसंट्रेशन उसका ख़त्म हो जाता है और उसके बाद थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट भी हो जाती है उसकी कुछ नॉर्मल जो काम कर रहा होता है लेकिन लगता है कि यार मुझसे नहीं होगा कि मैं थक गया हूँ ठीक है जो और जो कहते हैं मसल वीकनेस जो कहते हैं मसल टायर्डनेस जो बॉडी सिम्टम्स होते हैं उसमें ये भी होता है फिर अगर ज़्यादा ही बढ़ जाती है तो उसमें जो है नींद भी उड़ जाती है लोगों की सो नहीं पाते हैं भूख ख़त्म हो जाती है और बेचैन होते हैं
0: ज़्यादा भी हो सकती है भूख ज़्यादा भी हो जाती है
1: आप वो आमतौर पर एंग्जाइटी में भूख कम हो जाती है
0: अच्छा, जी ठीक है ठीक किस तरह से और नींद जो है उसका तो मसला जो है
1: जी फिजिकल सिम्टम्स हैं बॉडीली सिम्टम्स जो होते हैं सारे के जैसे सर का दर्द है शोल्डर पेन देखिए दिमाग में जब प्रेशर होता है जब दबाव होता है तो अल्लाह ताला ने दिमाग को ज़बान नहीं दी है कि बोलते भाई कि मुझे टेंशन है मुझे कुछ करना है तो ये बॉडीली सिम्टम्स उसका इजहार करते हैं कि कभी मुझे शोल्डर पेन हो रहा है मुझे बैक एक हो रहा है कभी मुझे खाली मसल्स वीकनेस हो रही है मैं कुछ पहले जो वज़न रहता था वो उठा नहीं पा रहा हूँ तो ये चीज़ें जो है कभी आ जाती हैं जहन में और ये चीज़ें अलामती चीज़ें आपके आने शुरू आती हैं तो ये जो है फिजिकल सिम्टम्स हैं इसको हम कहते हैं सोमैटिक कंप्लेंट्स
0: जी ठीक इससे जो पैनिक अटैक्स होते हैं जैसे वो भी इसी तरह से इस तरह के सिचुएशंस में होते हैं
1: देखिए पैनिक अटैक का ये है बेसिक एक इवेंट उसके ज़िंदगी में कुछ हो जाता है चाहे वो उसका आई विटनेस हो
0: जी
1: या किसी ने उसके सामने कुछ सुना दिया हो कि मिसाल के तौर पर भाई मेरे पास एक पेशेंट था मैं यहाँ ड्राइवर की हैसियत से आया था वो और वो तकरीबन 6 महीने तक अच्छी ड्राइविंग कर रहा था सडनली उसने कहा कि मुझसे अब नहीं होता ड्राइविंग करना तो कंपनी कहा कि भाई आप अकेले ड्राइवर हैं हमें कुछ कैसा करेंगे ऐसा तो कहा कि मैं जैसे ही ब्रिज के नीचे जाता हूँ कोई फ्लाईओवर के नीचे जाता हूँ तो गाड़ी रोक देता हूँ कि मुझसे नहीं होता वो अगर मरहला क्रॉस कर गया अगर मैं तो फिर से वापस गाड़ी चला सकता हूँ मैं तो मेरे पास आए थे लेके उसको तो मैंने पूछा क्या हुआ कहते हैं नहीं सर बस मैं जैसे ही ब्रिज आता है या फ्लाईओवर आता है तो वहाँ मैं डर के रुक जाता हूँ तो क्या होता है तो सारे सिम्टम्स बताए उसने कि मेरे हाथ शेक होना शुरू होते हैं गला खुश हो जाता है आँखों में थोड़ी सी अंधेरी आ जाती है धुंधलापना शुरू हो जाता है और मेरे पसीने निकलने शुरू होते हैं धड़कन तेज़ हो जाती है और हाथ पैर काँपने लगते हैं तो मैं गाड़ी चला पाता तो मैं उसकी तफसील से हिस्ट्री ली तो पता चला कि उसके मुल्क में वो एक कहीं रास्ते से जा रहा था
0: जी
1: ब्रिज गिर गया और ब्रिज पे से बस गिर गई और बस में से उसके कुछ रिश्तेदार थे जिनका इंतकाल हो गया तो वो ट्रॉमा उसको जब भी जाता है याद आता है मतलब भाई आप 6 महीने से काम कर रहे हैं और ख़तर में तो माशाल्लाह सारे फ्लाईओवर से कहा कि नहीं मैं एक फ्लाईओवर के नीचे से जा रहा था ऊपर एक्सीडेंट देखा मैंने और ऊपर पुलिस खड़ी थी एम्बुलेंस खड़ी थी तो मुझे वो याद आ गया तो इवेंट उसको हमने कहते हैं ना अकल बातें जो कहते हैं जो अपनी सबकॉन्शियस है उसमें बहुत सारी चीज़ें दफन कर देते हैं हम लोग लेकिन एक चीज़ें सडनली ट्रिगर करती हैं जैसे इसका ये हादसा हो गया कि भाई फ्लाई ओवर से जा रहा था मैं और मैंने देखा एक्सीडेंट है और पुलिस खड़ी है एम्बुलेंस खड़ी है तो मुझे वो याद आ गया उसके बाद से मुझे फिर वो रिपीटेडली आते रहा तो पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर में ये है कि पैनिक अटैक थोड़े दिन के लिए आते हैं ख़त्म हो जाते हैं डिसऑर्डर लंबे होते हैं लंबा फर्स्ट मतलब 2 महीने 3 महीने खींचते हैं इसको तो तब जो है आदमी को इलाज की ज़रूरत पड़ती है
0: तो फिर वो उस पेशेंट को जैसे
1: जी पेशेंट को मैंने तो पेशेंट को मैंने समझाया कि भाई कुछ तो उसने कहा कि सर मुझसे अब नहीं होता मैं रिज़ाइन कर जाता हूँ तो खैर मैंने इसको इलाज दिया और वो दवाई खाई उसके बाद 1 महीने बाद वापस आया कहता कि डॉक्टर साहब मैं 50% ठीक हो चुका हूँ फिर और 1-2 महीने बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गया तो मैं उसका जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स था 4 to 4 months का ड्यूरेशन दिया उसके बाद स्लोली मैंने मेडिकेशन बंद कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 साल से काम कर रहा है अभी
0: अच्छा
1: वही ड्राइविंग कर कहता सर तो मैं फ्लाई ओवर के ऊपर जाता हूँ ऊपर से भी अभी
0: इसमें एक बहुत अहम पॉइंट ये कि आमतौर पर ये फियर है और ये कि मेडिसिन के हवाले से जैसे आपने कहा लोग ना मेडिसिन लेना जो है वो फोबिया है
1: जी
0: आपके पास जी, जी, है, आपको जी, जी. होता है तो आप
1: बेसिकली है ना
0: कि क्या समझते हैं
1: जी इसमें जी. हमारे खास बरसगीर के माहौल में
0: जी.
1: और यही है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं साइकेट्रिक के पास जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो पागल हो गया है क्या जबकि साइकेट्रिक सिर्फ पागलों का इलाज नहीं करते पागलों का इलाज एक पार्ट ऑफ साइकेट्री है जैसे ये एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है या आपका जो है ओसीडीज हैं या पैनिक अटैक्स हैं ये दूसरे है घर में बच्चों के मशाकिल हैं मियां बीवी के मशाकिल हैं आपके जॉब पे प्रॉब्लम्स हैं ये सारे कॉन्सेप्ट साइकेट्री में आते हैं और जब हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो हमारा जहन बना होता है कि ये दवाई देगा मुझे और मुझे सुला देगा
0: जी बिल्कुल
1: और दवाई ज़िंदगी भर खाना पड़ेगी मुझे तो ऐसा ये गलत बिल्कुल लोगों का तस्वीर है गलत फहमी लोगों की कि हर दवा जो है नींद की नहीं होती है और हर दवा आपको हमेशा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक उसका ख़ास मुआयन वक्त होता है और मुद्दत होती है जिसमें आपका पूरा कोर्स कर लेते हैं उसके बाद जिस तरह हम ग्रेजुअली स्टार्ट करते हैं उसी तरह ग्रेजुअली इसको टेपर ऑफ करके बंद कर देते हैं
0: ठीक अच्छा एक और फियर जैसे आमतौर पर है डॉक्टर साहब के वो कहते हैं कि ये मेडिसिन जो हम लेते हैं देते हैं डॉक्टर्स तो उससे वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है क्या ये क्या है
1: ये कुछ हद तक सही है ये
0: अच्छा
1: जी साइकेटिक मेडिकेशन में देखिए एक्चुअली इनडायरेक्टली वेट इंक्रीज़ करती है होता ये है कि आपके जहन में दबाव है आप परेशान हैं घबराहट में हैं आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है आपका कंसंट्रेशन कम हो चुका है तो उसमें आदमी की जो है भूख कम हो जाती है तो जब ये दवाई खाते हैं तो आदमी का जहन खुल जाता है उसके जहन में अच्छी अच्छी बातें आती हैं पॉजिटिव एनर्जी आती है सुकून महसूस करता है तो जाहिर सी बात है उसको खाने का भी मन लगता है फिर तो इनडायरेक्टली वो जो है खाना भी ज़्यादा खाने लगता है
0: ठीक
1: तो हम उस वक्त एडवाइज़ ये करते हैं कि भाई आप एक्सरसाइज ना छोड़ें कम अज़ कम रोज़ाना 1/2 घंटे से लेकर 45 मिनट तक वॉकिंग कंपलसरी करें
0: ठीक
1: जी वैसे आजकल बहुत सारे मेडिकेशन आ गई हैं जिसमें वेट इंक्रीज़ नहीं होता है
0: ठीक ठीक इस तरह से वेट जो है वो
1: जी
0: डॉक्टर साहब इसमें थोड़ा सा और मैं इसमें और डिफरेंट टाइप्स की जैसे कि कोई बाइपोलर है या एंजाइटी मतलब वो अलग चीज़ें हैं ओसीडी आपने कहा
1: जी एंजाइटी के जो है 5 डिसऑर्डर्स हैं
0: जी
1: एक तो होता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर दूसरा है तो फोबियाज
0: जी
1: तीसरा है पैनिक अटैक्स
0: जी
1: 14 है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो ओसीडी कहते हैं और 5वां और आखिरी है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर
0: ठीक
1: जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर جنرلائز ہیں جس کا نام جیسے بتا رہا ہے کہ تقریباً سب کو ہو سکتی ہے انگزائٹی
0: موقتاً جیسے کہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں کوئی ایگزام ہے
1: ٹیمپرری ایگزام فیئر ہے ٹینشن ہے
0: یا کوئی بھی آپ کسی بھی ایونٹ مطلب کام کرنے جا رہے ہیں کوئی بزنس کچھ
1: اسٹیج پہ تقریر کرنا ہے آپ کو یا کوئی نیا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کسی سے نہیں ملاقات کوئی
0: پروگرام نیا آپ شروع کر رہے ہیں وہ بھی
1: جی بالکل بالکل جی تو اس وقت جو انگزائٹی ہوتی ہے وہ نیچرل انگزائٹی

0: एंग्जाइटी होती है,
1: जनरलाइज्ड
0: एंग्जाइटी होती है, इसमें कोई एक खास चीज नहीं होती है। दूसरी जो है आपका फोबियाज है, फोबियाज एक खास चीज के लिए होता है, जैसे बाज़ लोगों को खौफ होता है, डर होता है लिफ्ट से
1: जी
0: कि वो ऊपर जाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या बाज़ लोगों को हाइट का डर होता है, बाज़ लोगों को जो है जहाँ पानी का भी डर होता है, बाज़ लोग जो है जहाँ भीड़ होती है, जहाँ लोग ज्यादा होते हैं वो अवॉइड करते हैं,
1: ठीक,
0: तो ये सोशल एंग्जाइटी हो जाती है, ये फोबिया से ही है,
1: ये फोबिया
0: जी,
1: ठीक।
0: और तीसरा जो है उसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मेरे ख्याल से लास्ट मुलाकात में हमने इस पे तफसील से बात की थी
1: जी जी,
0: कि ये जो है तो वसवसे जो कहते हैं, वसवस कहरी जो कहते हैं, ये होती है वो। और आजकल के माहौल में जो यहाँ जो सियासी माहौल चल रहा है उसके हिसाब से जो लोग जो ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर,
1: ठीक,
0: एक ट्रॉमा हो गया जैसे लफ्ज़ बता रहे हैं आपका, ट्रॉमा के बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो जाता है आदमी को। जैसे यहाँ पर थोड़े कुछ दिन पहले जब ड्रोन और मिसाइल्स के अटैक हो रहे थे तो काफ़ी लोग आवाज़ों से परेशान थे, घर हिल जा रहा है, घबराहट हो रही है, तो इससे जो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर ज़्यादा हो रहे थे,
1: ठीक ठीक।
0: तो लोगों में जो है ये एक ट्रॉमा होता है। दूसरा ट्रॉमा ये हो सकता है कि घर में लड़ाई हो गई है, या जो है किसी का मेरे साथ ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं, कोई मेरा करीबी दोस्त था वो बिल्कुल छूट गया है, या तलाक हो गए है किसी में, या घर में फैमिली इशूज़ हो गए हैं, तो एक ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से ये स्ट्रेस डिसऑर्डर उसको हो जाता है,
1: ठीक ठीक ठीक। ये जो इस तरह से हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स हैं है एंजाइटी की, मगर जैसे आपने कहा कि पांच डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें पोस्ट, इसमें फोबियाज के पे थोड़ा और बात करना चाहूँगी सब, कि बाज़ औक़ात कुछ जो हैं वो पानी से जैसे फोबिया है, और हाथ जो धोते रहते हैं वो भी ये इसी के हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अच्छा इसको क्लीनिंग मतलब सफाई की बहुत वो है, ये ओसीडी है,
0: वो ओसीडी है,
1: अच्छा
0: जी
1: ठीक।
0: उसमें ओसीडी में लास्ट नहीं बताया था आपको मैं पिछली मुलाकात में भी, कि ओसीडी जहन में आदमी के एक ख्याल आता है कि भाई शायद मैंने सही नहीं किया है काम
1: जी,
0: तो उस काम को दोबारा करने के लिए, परफेक्ट करने के लिए, सबसे सही करने के लिए बार बार आदमी वो चीज़ रिपीट करता है, चाहे मर्द हो या खवातीन हज़रात हों, वो बार बार वो चीज़ें दोबारा दोहराते रहते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि हाथ धोने का है
1: जी,
0: उनमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो डर होता है कि यार मैंने हाथ में साफ़ नहीं किया मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, अक्सर लोगों में यही होता है कि मैंने हाथ साफ़ नहीं किए मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा
1: जी,
0: जरासीम का डर होता है, इसकी वजह से एक ने हज़ार बार लोग घंटों गुजारते हैं सिर्फ हाथ धोने के लिए, और पेशेंट आते हैं तो मेरे पास देखता हूँ कि जिल्द तकरीबन की उखड़ी होती है, इतनी बार हाथ धोते हैं, तो ये वसवसे होते हैं। दूसरा है कि आप देखेंगे कि लोग बार बार चेक करते हैं कि लॉक किया नहीं किया मैंने,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ताला डाला नहीं डाला, गाड़ी में बैठ जाते फिर जाके नहीं, फिर चेक करके आते हैं, तो ये भी जो है वसवसे हैं। और कुछ और काम करना हो, जैसे मैंने कल मुझे कुछ एक अपॉइंटमेंट है 7 बजे का मिसाल के तौर पे, तो मुझे आज रात से टेंशन होती है कि मुझे 7 बजे पहुंचना है, मैं चाहता हूं कि मैं 6:30 बजे पहुंच जाऊं, वक्त से पहले पहुंच जाऊं,
1: ठीक,
0: तो ये
1: और उसी टेंशन में वो फिर वो
0: बिल्कुल
1: रात भी नींद भी नहीं आएगी,
0: बिल्कुल जी बिल्कुल
1: ठीक ठीक, कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें होती है। इसमें डॉक्टर साहब फिर क्या, जब आप पेशेंट मसलन आपके पास आते हैं तो क्या वो ठीक हो जाते हैं?
0: 99% पेशेंट ठीक हो जाते हैं,
1: अच्छा
0: जी। और इलाज के जो है दो तरीके होते हैं, एक तो दवाई की होती है ज़रूरत
1: जी,
0: उसके साथ साथ जो है काउंसलिंग जो कहते हैं, थेरेपी सेशन जो कहते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट
1: जी,
0: तो वो ज़रूरी होता है। तो मैं आमतौर पर पेशेंट को दवाई देता हूँ एक जो वक्त मुअय्यन के लिए, मुद्दत के लिए
1: जी,
0: कि ये भाई आप दवाई खाएं, क्योंकि अगर आप उस वक्त जब आदमी बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल टेंशन में है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, अगर आप उसको जो है काउंसलिंग के भेजते हैं या थेरेपी सेशन के लिए उसको भेजते हैं, कहीं जाइए उनसे बात करिएगा, तो बोलेगा यार आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे यहाँ दो जो हार्मोन्स हैं दिमाग में, डोपामिन और सेरोटोनिन, उसका उथल फुथल होता है,
1: अच्छा,
0: तो ये दवाएँ क्या करती हैं उसका नॉर्मल लेवल पर ले आती हैं, तो जब आदमी की समझ ठीक होती है, उसके समझ आता है कि बात क्या करनी है, सामने वाला बात क्या कर रहा है, उसके हिसाब से वो जो है समझ पाता है, फिर उसको थेरेपी सेशंस काम में आएंगे,
1: ठीक। वो थेरेपिस्ट मतलब अलग से हैं,
0: वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं,
1: क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जी जी। डॉक्टर साहब ये हमारे लिसनर हैं, पूछ रहे हैं कि इस तरह जो आप बात कर रहे हैं कि जैसे हाथ धोने की आपने बात की है, तो इसमें क्या है, वो तो वैसे ही सफाई पसंद होते हैं जो कुछ लोग, तो क्या ये ख्याल नहीं किया जा सकता?
0: नहीं, सफाई पसंद तो सब होते हैं, और सफाई पसंद अच्छी चीज़ है, लेकिन बताया ना आपको, इस इतना सफाई कि आपका उसमें सारा वक्त उसी में लग जा रहा है आपका, आपकी सोशल लाइफ ख़राब हो रही है, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है और आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, तो ये बीमारी होती है। वरना आमतौर पे जो आदमी सफाई करता है, ठीक है, घर साफ होना चाहिए, नीट होना चाहिए, कचरा कूड़ा नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल अच्छी चीज़ है। लेकिन इस चीज़ की वजह से इतना आदमी उसके अंदर लग जाए कि उसके अपने दूसरे चीज़ें ख़राब हो रही हैं, असर हो रही है उस पर दूसरे चीज़ें, और दूसरी चीज़ों में वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, काम बराबर नहीं कर पा रहा है, तो ये चीज़ें जो है OCD कहलाती हैं।
1: जी डॉक्टर, इसमें एनजाइटी के जिसमें डिफरेंट आपने 5 types या 5 disorders से हम कहेंगे अलग अलग से हैं वो आपने में बताए हैं, तो इसमें जो सोशल लाइफ जो है या साइकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल जो भी फैक्टर्स भी होते हैं तो उसमें जो पेशेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपके पास कब आते हैं पेशेंट्स, किस वक्त?
0: जी,
1: क्योंकि एक तो जैसे कि हम समझते भी नहीं हैं कि हाँ ये कोई मसला है या कोई मेंटल हेल्थ इशू
0: जी
1: है।
0: जी, जी, जी, जब वो कहते हैं ना पर ज़्यादा हर चीज़ ज़्यादा हो जाती है, वो काबू नहीं कर पाते हैं, समझ में नहीं आता क्या किया किया जाए, और उनकी जो है पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और ऑक्यूपेशनल लाइफ जब डिस्टर्ब हो जाती है तो वो लोग कहते हैं कि भाई अब कुछ हेल्प लेना चाहिए, तब आते हैं पेशेंट्स। और अगर इनिशियली होता ये ना कि हम खुद समझते हैं कि भाई ये एंगजाइटी है, ठीक है भाई हो रही है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी, एक दिन दो दिन, लेकिन जब लंबा अरसा खींच देती है, 2 महीने या ज़्यादा हो जाते हैं, तो तब आदमी ज़्यादा परेशान रहता है, तब उसको इलाज की ज़रूरत पड़ती है।
1: ठीक, तो कितनी देर तक अगर कोई इस तरह की अलामतें कोई महसूस करे तो फिर उसे कंसल्ट करना ज़रूरी है? जैसे आपने कहा कि शुरू में तो हम यही कहते हैं कि एंजाइटी है या कुछ इस तरह से घबराहट है तो ठीक हो जाएगी।
0: 2 से 4 हफ्ते, 2 हफ्ते आमतौर पर हम कहते हैं कि 2 हफ्ते तक आपको जो अलामतें आती हैं, जो आप तकलीफें मतलब जो आप महसूस करती हैं जिस चीज़ों को, वो 2 हफ्ते तक अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो वो ठीक है। उसके बाद अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आपकी ज़िंदगी पे असर कर रही है, वो आपके मामूलात ख़राब हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से रुजू होना चाहिए।
1: जी ठीक। और डॉक्टर साहब, जो किस तरह के ज़्यादातर, पहले तो यही था एक कॉन्सेप्ट ये है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, तो आप क्या कहते हैं इस वक्त, जैसे कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा है और जो नई नई जो रिसर्च चीज़ें हैं वो भी सामने आ रही हैं और जो पेशेंट्स हैं उनके वो भी गुजरते हैं उस पूरे उसमें से, तो आप क्या समझते हैं कि अभी भी ऐसा है कॉन्सेप्ट कि लोग नहीं आते, आप
0: जो स्टिग्मा जो था ना लोगों में, जी
1: मेडिकल कंसल्टेशन नहीं लेते,
0: जी साइकियाट्रिक कंसल्टेशन स्पेशली, लोगों में जो स्टिग्मा था वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया हो गया है आपके सामने और बेतहाशा जो है लोगों को मालूमात हासिल हो रही हैं, हर चीज़ आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, लोगों का जहन खुल रहा है, इनको पता चल रहा है कि भाई ये भी एक जो है जिस तरह दूसरे बीमारियाँ होते हैं ये भी इसका भी इलाज हो सकता है, इसके भी क्योर हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है इसका, तो लोगों में शोर ज़्यादा बढ़ गया है और लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको मान रहे हैं कि भाई ये साइकियाट्रिक बीमारी है, इसका भी इलाज हो सकता है।
1: ठीक, तो इस तरह से। और जैसे आपने कहा कि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर कोई महसूस करता है कि वो जो भी काम कर रहा है वो कुछ नॉर्मल नहीं है, डॉक्टर साहब मैं पेशेंट की बात तो है मगर ये जो फैमिली मेम्बर्स हैं या कोलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं वो भी इस चीज़ को महसूस करते हैं या वो उसे क्या किस?
0: जाहिर सी बात है,
1: इस पर
0: जब मुझ में कोई तब्दीली आती है तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं कुछ मुझ में तब्दीली आई है ना, तो मेरे अतराफ में जो लोग रहते हैं चाहे घर वाले हों या बच्चे हों, बेगम हों या माँ बाप हों, भाई बहन हों या मेरे कोलीग्स हों या मेरे रूममेट हों, ये लोग चीज़ें देखते हैं कि भाई आपकी कुछ चेंज तब्दीली आई है आपके अंदर, आप जो पहले थे वैसे नहीं हैं, या तो आप जल्दी गुस्सा करने लगे हैं या चीज़ें आप भूल जा रहे हैं या कुछ परेशान हो रहे हैं, आप रात में सो नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा रेस्टलेस हैं, तो ये चीज़ें नोट करके कहते हैं भाई देखिए आपकी चीज़ें हो रही हैं, उस वक्त इंसान को इदराक होता है कि मालूम होता है कि हाँ यार मेरे अंदर कुछ चीज़ें हो रही हैं, चल रहा है कुछ,
1: तो इस तरह से फिर वो कंसल्टेशन जो है वो लेते हैं। इसमें यहाँ की अगर हम बात करें, जैसे आपने पहले भी एक जो है वो एग्जांपल दी, इस तरह में कुछ और अगर आप शेयर करना चाहें क्योंकि हमारे लिसनर्स भी और मैं ख़ुद भी इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि हमें पता चले कि किस तरह से पेशेंट्स जो हैं आपके पास आते हैं, किस तरह से मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं जिन पर बार बार बात की जाती है, तो उस हवाले से कुछ
0: मैं बताया ना आपको, जहाँ आदमी काम करते हैं, जहाँ मर्द हजार काम करते हैं या कोई शख्स जिस माहौल में काम कर रहा है, या अभी हाल में मुझे एक केस आया था, वो इंजीनियर था बेचारा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है और यहाँ मशहूर कंपनी में काम करता है वो, तो उसको एक टारगेट दिया गया था कि भैया टारगेट करना है आपको, तो इत्तेफाक से वो टारगेट कर चुका था वो, लेकिन उसको डर था कि शायद फिर बॉस मुझे कुछ बोले, तो उसने 3-4 दिन तक जॉब पे रिपोर्ट नहीं की, तो वही कहा कि भाई आप जॉब पे क्यों नहीं आ रहे हैं, कहते आऊंगा। तो उसके कुलीग ने कहा कि भाई ये जॉब नहीं जा रहा है, तो फिर उसने मेरे पास देखा, कहा भाई डॉक्टर साहब देखिए ये काम बराबर करता है, काम में परफेक्ट है और बिल्कुल लीडिंग है ये और टीम लीड है ये, इसके बावजूद भी इसको खाली डर है अन्य से, जब प्रेजेंटेशन करता है तो ये घबरा जाता है, तो उस खौफ से ये अवॉइडेंस रहता है कि भाई मैं पता नहीं लोग मुझको देख के हंसेंगे, मैं है बिल्कुल फेल हो जाऊंगा, लोग बोले क्या ये तो फ्लॉप हो गया है, इसको तो बेकार है, इसको तो पता ही नहीं है। तो उस वक्त जो जो मतलब प्रेजेंटेशन मेरा होता है जो बेकार गया, अगर ख़राब हो गया प्रेजेंटेशन अगर मेरा, तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और मैं जो है शर्मिंदगी से लोगों को फेस नहीं कर सकूँगा, तो इसमें लोग जो है अवॉइडेंस शुरू करते हैं। तो जो अतराफ़ के जो लोग हैं वो उनको बताएं कि भाई ये चाहिए, इंकरेज करें उनको कि आएँ डॉक्टर पास जाएँ, इलाज कराएँ, इसका ये ठीक हो सकता है।
1: ठीक जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और इस तरह की बहुत सारे जो केसेस हैं वो सामने आते हैं कि बिल्कुल यही कि फियर है कि
0: जी।
1: वैसे तो आपने बता दिया कि फियर और एंजाइटी में
0: लोगों में मालूम नहीं थी ना, पहले ज़माने में ये था कि लोगों को पता नहीं था कि भाई ये भी एक साइकेट्रिक बीमारी हो सकती है, ये भी इसके इसका इलाज भी हो सकता है। और आप जो फरमा रही थी कि लोग जो है ज़िंदगी भर दवाई खाती हैं, बिल्कुल मैं जब साइकेट्रिक जॉइन किया तो मेरा भी यही था कि ज़िंदगी भर दवाई लो, दे दो लोगों को और सुला दो। लेकिन जब आप हकीकत देखते हैं तो इसके बरक्स होता है कि लोग बाज़ बीमारियां होते हैं जिनकी दवाएं इनको खानी पड़ती हैं लंबे अरसे तक, बाज़ होती हैं जो वक्ती तौर पे कि भाई मुझे जैसे आप खुदा ना खास्ता आपका हाथ टूट गया हो तो आप प्लास्टर डालते हैं, प्लास्टर तो हमेशा नहीं रहेगा, उसके बाद फिर आप
1: टाइम
0: बिल्कुल
1: टाइम।
0: कुछ टाइम रखते हैं, 4 से 6 हफ्ते रखते हैं अगर ज़्यादा हो गया तो, उसके बाद फिर फिजियोथेरेपी करते हैं, फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो उसी तरह जो है ये भी उसी तरह बीमारी है, लोग टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं और ये मुख्तलिफ किस्म के एंगजाइटी डिसऑर्डर आते हैं। तो ये जब इलाज करेंगे उसके बाद साइकोलॉजिकल सेशंस लेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल बैक नॉर्मल हो जाते हैं, दवाई बंद हो जाती है इनकी।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एंजाइटी जो कि सबको ही होती है, मगर उसमें किस एक्सटेंट पर पहुंचे तो हमें डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, और ये कि क्या क्या अलामतें हो सकती हैं डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल में बताया। डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं जैसे कि हम डायग्नोस करते हैं कोई भी जो डिजीज़ है, तो इसको भी जो डायग्नोसिस जो है वो की जाती है, कोई टेस्ट कराए जाते हैं या हिस्ट्री जो है वही होती है जो?
0: बड़ा बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अक्सर लोगों में ये होता है कि जो मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं या डिजीज होते हैं वो ब्लड टेस्ट में है या सीटी स्कैन में है, MRI में है, या जो भी मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं उसमें पता चल जाता है। साइकेट्री का मेन होता है कि हम हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है और इसमें 99% हमारे डायग्नोसिस जो होते हैं मुलाकात से होते हैं, बातचीत से होते हैं, उनके जब हम जब बात करते हैं उनके समझते हैं उनको जब उनकी तकलीफें जानने की कोशिश करते हैं तो जब बताते हैं क्या क्या अलामतें हैं, क्या क्या चीज़ें उनके अंदर हैं, उसके हिसाब से हम तशखीस करते हैं उनके फिर।
1: अच्छा जी, ठीक ठीक। अब ये भी स्किल है?
0: ये स्किल है
1: जी,
0: ये टेस्ट नहीं है, स्किल है।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ज़ाहिर है फिर आपकी ट्रेनिंग और उसमें
0: जी होता है, इसमें ट्रेन किया जाता है जी, ज़ाहिर सी बात है।
1: ठीक ठीक।

0: ये अगर किसी को फिजिकल जैसे मेडिकली कोई प्रॉब्लम है लाइक एनीमिक है या इस तरह से कोई डेफिशिएंसीज हैं तो उस वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं।
1: हम साइकेटिक डिसऑर्डर डायग्नोस करने से पहले सारे मेडिकल कॉसेस रोल आउट करते हैं कि कहीं कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो ना हो, उसको कुछ मेडिकल इश्यूज हैं अगर जिसकी वजह से ये हो रहा है तो पहले उसको ट्रीट करते हैं। ऑर्गेनिक कॉज कहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं एनीमिया है, जाहिर सी बात है एनीमिया में थकावट होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है उसमें भी तो, लेकिन वो एंग्जाइटी नहीं है, एनीमिया की वजह से हो रही है
0: जी।
1: तो जब सबब पता है आपको, एक ऑर्गेनिक कॉज है उसका और अंडरलाइन इसका रीज़न है तो पहले उसको ट्रीट किया जाएगा, बाद में फिर साइकेट्रिस्ट आएंगे इंशाल्लाह।
0: अच्छा अच्छा अच्छा बिल्कुल जी, क्योंकि इस तरह के कुछ केसेस जो हैं वो सामने आते हैं कि फिर वो अगर वो मेडिकली ठीक हैं, जैसे खासतौर पर एनीमिया की बात करें, वाइटमिन डी की डेफिशेंसी की बात करें, जैसे आपके पास तो इस तरह के केसेज आते हैं, तो उनमें देखने में ये आया कि ऐसा है कि वो फिर बहुत ज़्यादा एनजाइटी और उसमें फिर चले जाते हैं
1: जी। बताएं ना आपको, इसलिए हम मेरे पास जब कोई पेशेंट आता है तो पहले सारे मेडिकल कॉसेस रोल आउट करता हूँ और नॉर्मल जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, जो चीज़ें रोल आउट करने के, विटामिन के हो, शुगर की हो, आयरन की हो, लीवर के टेस्ट हैं और लिपिड वगैरह टेस्ट हैं, सारे टेस्ट मैं करवाता हूँ। तब सारे टेस्ट जब नॉर्मल हो जाते हैं तो कहता हूँ कि भाई हाँ आप बताइए क्या है आपके। और अक्सर मेरे पास जो पेशेंट आते हैं खासतौर पर साइकेट्रिस्ट के पास, ये सारे डॉक्टर के पास जाके हमारे पास लास्ट में डॉक्टर साहब कहते हैं भाई आपका मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, आप साइकेट्रिस्ट जाके मिल लें। तो उस दरमियान में सारे उनके जितने टेस्ट पॉसिबल हैं, ECGs हैं, MRIs हैं, जो पॉसिबल टेस्ट हो सकते हैं वो पहले से डॉक्टर साहब कर चुके होते हैं, तो हमें रिपोर्ट देकर पता चला कि भाई सब नॉर्मल है, तो फिर हम साइकेट्रिक इशू की डिस्कस करते हैं उनसे।
0: ठीक है, इसमें डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमें बताइए कि कौन से ऐसे विटामिन हैं जैसे आपके पास पेशेंट भी आते हैं कि वो डेफिशिएंट हों तो कुछ रोजान हो जाते हैं उनका, कि जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं लाइक एंजाइटी कि वो उनमें हो।
1: सबसे बड़ा जो मसला, कॉमन मसला है वो है थायराइड का।
0: अच्छा,
1: थायराइड हाइपोथायराइड जब हो जाता है तो उसमें जो है थकान हो जाती है, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी ज़्यादा होती है।
0: ठीक है,
1: दूसरा सबब है एनीमिया, आयरन डिफिशेंसी में जब खून में जो है आयरन की कमी हो जाती है तो उसके वजह से ये होता है। और जनरलाइज वीकनेस जो होती है, जनरलाइज विटामिन डिफिशेंसी जो होती है। तीसरा जो है कॉमन, दूसरा जो और जो कॉमन चीज़ें होती हैं जो पास लोगों को, जो इरिटेबल बाउल डिसऑर्डर होते हैं कि भाई कुछ भी खाओ हजम नहीं हो रहा मुझे, कुछ भी खाओ मुझे पेट में तकलीफ हो रही है।
0: अच्छा,
1: और मुझे बार बार डकारें आ रही हैं। तो ये जो है अंडरलाइंग एंग्जाइटी हो सकती है, अंडरलाइंग आपका जो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज भी हो सकते हैं इसके। तो इसको रूल आउट करके हम आगे बढ़ते हैं फिर।
0: ठीक, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, हमारे लिसनर हैं और व्हाट्सएप पर उन्होंने ज्वाइन किया है रिजवान खान, सलाम कह रहे हैं आपको।
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु।
0: और कह रहे हैं कि मैं, मुझे किसी छोटे से भी जो काम करना होता है तो घबराहट हो जाती है, जैसे आवाज़ से हाथ पांव का कांपना और इसी तरह से जो ब्रीदिंग सांस है उस पर काबू ना होना, जैसे किसी के साथ बहस करने में या लोगों के सामने कुछ परफॉर्म करने में, जैसे आप हमें बता भी रहे हैं कि बहुत सालों से है लेकिन पहले ऐसा नहीं था, मैंने यहाँ इलाज भी किया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। एक वो मेडिसिन उन्होंने लिखा है ज़ोलोफ्ट
1: जी,
0: और जो है वो इस्तेमाल किया है, इसके अलावा क्या करूं, मुझे ख़ास कर कामों में बहुत परेशानी होती है।
1: बिल्कुल, इस वक्त जो है दवा की ज़रूरत पड़ती है, अब इलाज की ज़रूरत पड़ती है। बताया ना आपको कि आपके जो है अगर कोई
0: ब्रिंटलेक्स वो भी और ये दो मेडिसिन लिखी हैं।
1: अच्छा, ब्रिंटलेक्स वो ट्रैक्सिटिन है और ज़ोलोफ्ट जो है सेरेट्रोलिन है।
0: अच्छा,
1: 25 लेने 50 दे रहे हैं शायद,
0: नाम लिखे।
1: तो इसमें देखिए, आपको खुद कह रहे हैं जनाब रिजवान साहब कि आप जब कोई काम करते हैं तो आप घबराहट बेचनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप अपना रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करें, आप सोचें कि भाई घबराहट क्यों हो रही है, कि वाकई ये माकूल है या गैर माकूल है, कुछ सबब है इसका या ऐसे ही आपको घबराहट हो रही है, कुछ सबब है तो फिर इलाज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता है आपको भाई उसका जो है आउटकम ये होने वाला है मुझे। लेकिन आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो चीज़ हो सकती है, जो चीज़ नहीं हो सकती है, और आमतौर पर जो चीज़ नहीं हो सकती है उसको लेकर आप घबराहट परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो ये एंटिसिपेशन आपका फियर में है और फियर आपको जाके एंगजाइटी में लीड कर रहा है। तो ये इसका तरीका ये है कि ये जो आप इलाज ले रहे हैं, इलाज ठीक है लेकिन मुझे पता नहीं कि इलाज कितने दिन खाए आप और कितना डोज था इसका, इसके बाद इलाज के कितने दिन के बाद आपने क्या साइकोलॉजिस्ट के पास कोई डॉक्टर रेफर किया नहीं किया है, तो ये होता
0: है
1: जी।
0: ठीक है
1: जी। और सारे जो चीज़ें बताए हैं कि मुझे जो है गला सूखने लगता है, पसीने आने लगते हैं, ये सारे अलामतें पैनिक अटैक्स की हैं, एंग्जाइटी की हैं।
0: ठीक ठीक, तो अभी जैसे मेडिसिन भी ले रहे हैं तो अभी दोबारा जो है वो कंसल्ट करें
1: जी। मैं चाहूँगा दोबारा डॉक्टर के पास जाएं जिसने आपको मेडिकल लिखा है, तो हो सकता है आपको दोबारा फिर से हिस्ट्री ले आपकी, फिर से आपके जो है तशखीस करें और उसके हिसाब से फिर आपको दवाई दें।
0: ठीक ठीक, और बिल्कुल ये

0: जी बिल्कुल, इसी में आपने हमें डिटेल में बताया कि क्या क्या पेशेंट के साथ होता है, सेम
1: जी सिचुएशन, बिल्कुल बिल्कुल वही सिचुएशन है रिजवान साहब की
0: जी। इस तरह पे ये कि वो ठीक हो जाते हैं मसलन अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब
1: बिल्कुल बताया ना आपको, मैं 99% पेशेंट ठीक हो जाते हैं
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठीक, ये भी बात लिसनर्स में बार बार डॉक्टर साहब से भी रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि एक दफ़ा अगर किसी को कोई भी मेंटल इशू हो गया है तो वो थोड़े थोड़े दिनों के बाद अगर ठीक भी हो जाता है तो फिर दोबारा हो सकता है।
1: उस पे होता ही है ना कि अगर आप दवाई एकदम अब्रप्टली बंद कर दिए तो रिलैप्स के चांस ज़्यादा होते हैं।
0: अच्छा,
1: दूसरी चीज़ ये होती है कि आदमी उस चूँकि एक ट्रॉमा से गुजर चुका है, एंगजाइटी है, डिसीज से गुजर चुका है, तो उसको हमेशा डर होता है कि दोबारा कहाँ ना आ जाए वो चीज़, तो हसास हो जाता है, तो ज़्यादा विजिलेंट हो जाता है कि भाई पता नहीं फिर होगा क्या। तो उस वक्त उसको अगर थेरेपी सेशन दिए जाएँ और उसको बताया जाए कि भाई किस तरह अगर अलामतें आती हैं आपके पास, ये सिम्टम्स आते हैं, तो किस तरह उसको आप ओवरकम कर सकते हैं बगैर दवा के।
0: ठीक ठीक, थोड़ा सा डॉक्टर पूछना चाहूँगी, जैसे आप किस तरह से पेशेंट को, ज़ाहिर है एज ए साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है, तो आप क्या मतलब स्टार्ट करते हैं पेशेंट को, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट हम कहेंगे इसको, तो मैनेजमेंट
1: जी। अब मेडिकेशन स्टार्ट करता हूँ मैं मेनली हम SSRIs होते हैं, ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। और
0: हर एक को करते हैं या वो डिपेंड्स ऑन द पेशेंट?
1: जी जब पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरू करना होता है तो पेशेंट सारे ट्रीटमेंट के नज़र नहीं होते हैं, जैसे आप बताया आपको ना कि माइल्ड एंगजाइटी है उनको
0: जी,
1: कि तो उनको अभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, उनको हम सिर्फ कहते हैं भाई आप थोड़ा सा चेंज करें अपने आप को और थेरेपी सेशन को भेज देते हैं हम, लेकिन जब लगता है कि ये नहीं, ये थेरेपी सेशन के अभी उस तरफ रेडी नहीं है तो उनको हम इलाज स्टार्ट करते हैं। तो उसमें मेनली हम TCS सेकेंड यूज़ करते हैं, फर्स्ट SSRI जी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं।
0: ठीक है
1: जी, उसमें मेडिसिन और पास लोगों को जी, चूँकि इस वक्त होता ही है कि एंगजाइटी की वजह से नींद नहीं आती है
0: जी,
1: तो कुछ नींद के लिए भी हम लोग नींद की दवा नहीं, एक थोड़ा सा जो है जहनी सुकून की दवा देते हैं, तो उससे आदमी रिलैक्स भी हो जाता है।
0: मगर हम यही है कि वो नींद की मेडिसिन जो है वो दी जाती है कि नींद आ जाए, या सिर्फ उसको रिलैक्सेशन के लिए देते हैं?
1: रिलैक्सेशन देते हैं, नींद की जो मेडिसिन होती है वो कंट्रोल मेडिकेशन होती है, वो हर एक नहीं लिख सकता, उसके लिए स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन चाहिए।
0: ठीक है,
1: तो वो बहुत कम हो लिखते हैं लोग, लेकिन चूँकि आपका जो दवाई स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मेरे को ज़्यादा सोमैटिक कंप्लेंट्स हैं, बॉडीली पेन है मुझे, नेक पेन है, शोल्डर पेन है, और मुझे पता है कि इसका सबब एंगजाइटी से हो रहा है, तो मैं जब एंगजाइटी की दवा इसका इफेक्ट दिखाने के लिए मुझे 8 से 10 दिन लगेंगे या 2 हफ्ते लगेंगे उसका इफेक्ट असल आने के लिए।
0: अच्छा,
1: तो उस वक्त तक आदमी परेशान हो जाएगा ना।
0: ठीक है,
1: तो उस वक्त उसको हम पेन किलर भी देते हैं कि भाई पेन किलर भी लें आप, ताकि आप जो है रिलैक्स हो जाएं।
0: अच्छा अच्छा, क्योंकि जो है पेशेंट वो ये भी सीने में दर्द है तो उससे की कंप्लेन होती है,
1: बिल्कुल सीने में
0: तो
1: दर्द है,
0: सर दर्द है, शॉर्टनेस
1: जी,
0: तो चेस्ट भी
1: आमतौर पे शोल्डर पे बैक पे ज्यादा लोग आते हैं, हेडेक से आते हैं लोग, तो
0: हेडेक
1: जी जी,
0: तो इनको बिल्कुल हेडेक जो है वो बहुत ज्यादा
1: जी, थोड़ा सा माइल्ड पेन किलर देखें हमारे मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे मेडिकेशन का ये है कोई भी साइकोट्रॉपिक मेडिकेशन 8 से 10 दिन में इफेक्ट शुरू होता है उसका, और 2 वीक्स में उसका पता चलता है कि हाँ इसको मेडिसिन काम कर रही है।
0: ठीक, तो फिर कितने देर तक आप जो है वो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं?
1: आमतौर पर 2 to 4 months।
0: टू जी फोर मंथ्स।
1: उसके बाद ग्रेजुअली जब भी कहता है कि मैं बिल्कुल 100% ठीक हो चुका हूँ, तो उसके बाद मैं अपना पर्सनली जो है एटलीस्ट फॉर ए मंथ कंटिन्यू करता हूँ मेडिकेशन, उसके बाद फिर स्लोली टेपर करते हैं उसको, डोज कम करके फिर ख़त्म करते हैं।
0: ठीक, तो उस दौरान जो है पेशेंट का वेट वगैरह ज़्यादा होता है, मगर आपने जैसे बताया कि अब कुछ ऐसी मेडिसिन हैं कि उससे
1: बहुत सारी मेडिकेशन आ गए हैं जिससे वेट नहीं बढ़ता है आदमी का अभी, पहले ज़माने जैसे TCS बताया आपका हमें, इससे काफ़ी वेट बढ़ता और उससे नींद आती ज़्यादा
0: जी,
1: तो वो एक थी। अब थोड़ा सा है साइंस तरक्की कर गई है, फार्माकोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो पिछले कुछ मतलब 2 decades पहले सिर्फ 5 या 6 है दवाई हुआ करती थी, अब माशाल्लाह से जो है तकरीबन 15-20-25 ही हो गई दवाई।
0: ठीक, इसमें डॉक्टर साहब आपके पास जो पेशेंट आते हैं किस एज ग्रुप के ज़्यादा आते हैं आपके पास?
1: अच्छा, मैं चूँकि अडल्ट साइकियाट्रिस्ट हूँ तो मेरे पास 18 के बाद ही आते हैं, और एंगजाइटी के ज़्यादा तो जो पेशेंट होते हैं under 40 होते हैं मेरे पास।
0: अच्छा
1: जी, मोस्टली मेरे पास 30 to 40 years के जो है देखा हूँ मैं, 90% पेशेंट वही होते हैं जो 30-40 एज में होते हैं जिनको एंगजाइटी होती है।
0: तो आप क्या समझते हैं कि क्या है, मतलब क्यों एंगजाइटी इस एज ग्रुप में ज़्यादा है?
1: जी, उसका असबाब जैसे बताया ना आपको कई हैं, इस एज में ये होता है जहाँ आदमी जॉब चेंज करता है अपना, शादी होती है, माहौल चेंज होता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता है आदमी कमाने के लिए, या रिलोकेशन होता है, या फिर जो है जॉब का माहौल ऐसा होता है कि भाई उसको थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, जैसे प्रॉब्लम होती है तो उसको एंगजाइटी शुरू हो जाती है फिर वहाँ से।
0: ठीक ठीक, कि ये सारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा
1: फैक्टर्स ज़्यादा बिल्कुल।
0: और इसमें ये भी है कि डॉक्टर साहब क्या

0: जैसे इस एज ग्रुप में पूरे एक स्पेसिफिक किसी एक स्टेज पे पहुंच के इंसान को ये सारी सिम्टम्स सारी अलामत शुरू हो सकती हैं या पहले ही कुछ ना कुछ उसमें एंजाइटी का जो है वो होता है आंसर?
1: बड़ा बड़ी अच्छी बात कही आपने। आमतौर पे होता ये है कि कुछ कुछ अलामतें होती हैं और उसको इग्नोर करता है आदमी, कहता है कि ये ठीक है यार, लेकिन इस एज में जो है पीक पे हो जाती है चीज़ें ये, तो तब लगता है कि नहीं यार मुझे तब मुश्किल हो रही है, कुछ करना चाहिए इसका, वरना एंग्जाइटी हो जाती है हर एक को।
0: ठीक ठीक कि एंजाइटी जो है वो हो सकती है, मगर ये कि ये कितनी देर लिसनर्स आपसे बता रहे हैं कि अगर दो हफ्ते से ज़्यादा अगर आप अपने आप को कुछ समझते हैं कि कुछ ऐसे हम काम कर रहे हैं या कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो कुछ अब नॉर्मल हैं, तो फिर डॉक्टर से मिलना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है कंसल्टेशन।
1: तीन चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट हो रही हैं तो आप फ़ौरन डॉक्टर ज़रूर करें, दो हफ्ते का वेट ना करें। एक तो जो है आपका प्रोफेशनल लाइफ है
0: जी,
1: दूसरी आपकी पर्सनल लाइफ है और तीसरी सोशल लाइफ है। ये तीनों चीज़ें आपके इफेक्ट हो रहे हैं तो आप दो हफ्ते का वेट ना करें, फौरन ही डॉक्टर से रजू कर लें आप।
0: जैसे डॉक्टर सोशल लाइफ की हम बात करें, उसमें क्या पेशेंट क्या महसूस करता है कि वो उसे फोबिया होता है जाने क्या?
1: सोशली विड्रॉन हो जाता है कभी कभी,
0: अच्छा,
1: डर खौफ हो जाता है कि भाई जैसे मैं किसी शादी में गया तो कोशिश करता है कि अवॉइड करें उसको, पहले सोशल अवॉइडेंस शुरू होता है यहाँ से। अगर नहीं भाई इसके दोस्त अगर ज़बरदस्ती लेके भी चले गए, अगर आपके भाई जाना है आपको, चलो यार कुछ नहीं है अटेंड करनी है शादी, तो जब वहाँ जाता है तो कोशिश ये करता है कि वो ऐसी जगह बैठे जहाँ से उसको इजीली स्केप हो जाए, कि मुझे कुछ अलामतें महसूस हो, मुझे कुछ सीने में टाइटनेस महसूस हो, सांस में तकलीफ हो, घबराहट हो रही हो, तो मैं वहाँ से निकल के भाग जाऊँ। तो ये सोशल फियर जो होता है होता आदमी में।
0: बिल्कुल, इस तरह से बहुत सारे जो केसेस ऐसे होते हैं, जैसे आपने ये भी बताया कि लेडीज़ जो हैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, और जो उसमें कुछ ये कि वो थोड़ी वीक होती हैं या अपने आप को किस तरह लेडीज़ को मैंने कही
1: अगर मैं कहूँ लेडीज़ वीक है तो सारी लेडीज़ मेरे खिलाफ़ बोल देंगी फिर
0: नहीं, मगर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ क्या चीज़ है कि ये ज़्यादा इफेक्ट होते हैं,
1: ये
0: सोचती ज़्यादा हैं या ये समझें कि इंटेलिजेंट ज़्यादा है कि वो किस चीज़ को फोकस
1: रहे? नहीं, मैं ये कहूँगा थोड़ा हसास होती हैं लेडीज़,
0: ज़्यादा सेंसिटिव। ठीक है, हसास है
1: जी, बिल्कुल
0: ठीक कि इस तरह से जो है वो लिसन। मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल ऐसे सवाल पूछ रही हूँ जैसे हमारे जहनों में आते हैं और सबके जहनों में सवाल आते हैं।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर। दिल से देसी
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488808 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: लिसनर्स, आज हम बात कर रहे हैं साइकेट्रिक जो इश्यूज हैं, एनजाइटी के जो इश्यूज हैं खासतौर पर उन पर, तो कौन कौन से हैं डॉक्टर ने डिटेल में बताया। हमारे साथ हैं डॉक्टर जनफर बेग और जो कि कंसल्टेंट हैं साइकेट्रिक डिपार्टमेंट अलखौर हॉस्पिटल में। जी डॉक्टर, कुछ थोड़ा सा और ऐड करना चाहें कि अगर आप हमें बताना चाहें कि एनजाइटी के बारे में कि क्या और हम जानना हमारे लिए ज़रूरी है। जी
1: मैं दो तीन सिचुएशन आपके सामने रखता
0: हूं, जी बिल्कुल,
1: तो आपको आसानी हो जाएगी समझ में कि जैसे मिसाल के तौर कोई एक आदमी है, ठीक है
0: जी,
1: और वो उसको पता है लग रहा है कि भाई मीटिंग में लेट हो गया है वो, और उसको पता है कि सब उसको देख रहे हैं
0: जी,
1: और वो जो है मीटिंग के थोड़ा सा लेट हो गया है, आ गया है, लेकिन उसका भी अभी बारी नहीं है उसकी मीटिंग की अभी, लेकिन उसका जब हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, पसीने आने लगते हैं, गला खुश हो जाता है, लगता है कि मुझे कुछ यहाँ अटक गया है, सांस लेने मुश्किल होती है, उस वक्त उसको एक फीलिंग होती है कि इम्पेंडिंग डूम कि भाई मैं या तो मर जाऊँगा या मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा
0: जी,
1: और उसको पता है कि क्योंकि इसको पता है कि वो लेट आया है और सारे लोग उसकी नज़र तरह मरकूज़ किए हुए हैं कि मुझे देख रहे हैं एक लोग यार तू तो लेट आ गया, तो उसके वजह से होता है कि जब मीटिंग में अंदर जाता है तो घबरा जाता है, मीटिंग परफॉर्म नहीं कर पाता है बराबर, और ये जो है कभी कभी मीटिंग अवॉइड करके फ्रस्ट्रेट होकर वापस चले जाता है
0: जी, जी।
1: ये एक फियर है
0: जी। डॉक्टर साहब यही पूछने वाले थे कि क्या ये उसकी फीलिंग होती है, क्योंकि सब अगर मीटिंग के लिए वहाँ बैठे हैं तो हर कोई अपने आप पर फोकस कर रहा है, तो वो जो एंजाइटी पर्सन है यही हम कहेंगे कि उसको ये फीलिंग होती है कि लोग मेरी तरफ देख रहे हैं या
1: जी,
0: अच्छा
1: जी, और वो हकीकत भी होता ही है ना कि वैसे आपका इंटरेस्ट आप सारे लोग बैठे हैं, सडनली एक आदमी लेट आ गया तो जाहिर सी बात सारी नज़रें उसकी तरफ जाएंगी, लेकिन वक्ती तौर पर जाती हैं, लेकिन वो समझ

0: पाएगा ना और चीजें जो हैं जैसे ड्राइविंग है या और कई इंपॉर्टेंट चीजें वो नहीं कर पाएगा। बाकी मैं आपकी बात को नेगेटिव
1: उसका तरीका ये है अब्दुल खान साहब कि आप जो है बासवाद टेलीफोन ना आंसर करें। आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग में सिर्फ ड्राइविंग जो काम कर रहे हैं जिस वक्त आप सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ दोबारा मैं तो आप जी जी आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग पे कॉन्सेंट्रेट करें। आप जहाँ मंजिल मकसूद पहुँचते हैं पहुँच जाएं उसके बाद फिर फोन देखें क्या है
2: सेल्फ
1: या फिर जो है आप जो जॉब कर रहे हैं फिर आपका जो है जो टारगेट है या जो आपका जो फिलहाल जो काम में मशगूल हैं आप वो काम ख़त्म कर लें फिर उस पर ध्यान दें क्योंकि आप एक साथ तीन चार काम करने जाएंगे तो आप किसी काम पर जो है कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाएंगे ना।
0: सही सही हमें याद आ रहा है कि आज से 15-20 साल पहले वीकली हम लोग कॉल करते थे तो उसमें भी लोग ना उस वक्त अच्छा एक चीज़ आपकी सडनली हो रही है और कुछ एक दो दिन बाद सेटल डाउन हो रही है इसमें भी बड़ा फर्क आ जाता है। बात लंबी हो गई चले मैं आपका आंसर सुनता हूँ।
2: चलिए ठीक है अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब।
1: तो ज़ुल्क़रनैन साहब जो बताया ना कि फैमिली जो है कॉल करती है इसमें एक्चुअली देखा जाए
2: एक और कॉल है
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम
3: जी। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब
2: जी हेल्थ गाइड जी आप कौन बात कर रहे हैं
3: जी? जी मैं महमूद बोल रहा हूँ आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा चल रहा है मैं इसको सुन रहा हूँ
2: जी बहुत शुक्रिया।
3: मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था ये जो एंग्जाइटी जो है मेरी एज जो है 70+ है
2: जी
3: और ये एंग्जाइटी की वजह से बॉडी पे भी कुछ असर होता है क्योंकि बार दफा मुझे जब एंग्जाइटी होती है तो मेरा पूरा जिस्म जो है वो मैं निडाल हो जाता हूँ ऐसे लगता है जैसे ड्राउन हो रहा हूँ तो ये इसका कोई इलाज है
1: जी? जरा महमूद साहब खैरियत हैं आप
3: जी? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह
2: जी।
1: जी आप जो बता रहे हैं ना ये जिस्मानी सिम्टम्स जो है ना सोमैटिक कंप्लेंट जो कहते हैं बिल्कुल
3: जी
1: ये होती हैं इसमें जो है जी जी इसमें आदमी थकान ज़्यादा महसूस करता है मसल टेंशन हो जाती है उसको कंसंट्रेशन कम होने लगता है अनवांटेड अननेसेसरी पेन्स शुरू हो जाती हैं दर्द होने लगता है यहाँ वहाँ तो ये भी एंग्जाइटी से होता है जी।
3: अच्छा नहीं मुझे ये पता करना था या कि ये कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है कोई विटामिंस की या कुछ ऐसी लेकिन मैंने महसूस किया कि जब भी एंग्जाइटी या डिप्रेशन होती है तो मेरी बॉडी जो है
1: बिल्कुल
3: मैं फील करता हूँ कि आई एम जस्ट ड्राउनिंग यू नो
1: एग्जैक्टली एंग्जाइटी डिप्रेशन में सोमैटिक कंप्लेंट्स आपके बताया ना आपको पहले ही मैं अपने टॉक में बताया था कि चूंकि हमारे दिमाग को अल्लाह ताला ने जबान नहीं दी है बोलने के लिए मैं स्ट्रेस में हूँ तो ये बॉडी सिम्टम्स सोमैटिक कंप्लेंट शुरू हो जाते हैं एकदम बॉडी स्टिफ हो जाना
3: इलाज है कि फिर कंट्रोल करें आदमी अपने आप पे
1: तो अगर ये आपको बार बार हो रही है तो इसका इलाज करें अगर कम हो रही है तो आप अपने आप को जो है साइकोलॉजी के पास जाएं और उसका कुछ बताएगा सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है थेरेपी देगा आपको ठीक हो जाती है इंशाल्लाह।
3: अच्छी बात है चलिए बड़ी अच्छी बात है थैंक यू सो वेरी मच इंशाल्लाह।
2: जी बिल्कुल सही बात है आपकी खुद जब तक उसमें से नहीं निकलेगा डॉक्टर साहब ये भी
1: देखिए हमेशा आदमी का जो इरादा होता है ना कि मैं अगर मैं हमेशा पेशेंट कहता हूँ कि तीन चीज़ें याद रखना हमेशा कि आई मी एंड माई सेल्फ अगर मैं ठीक नहीं हो सका तो मुझे कोई और ठीक नहीं कर पाएगा
2: जी।
1: अगर मैं ये ठान लूँ कि मैं ठीक नहीं होऊंगा तो आप कितनी दवाई खाएंगे आप ठीक नहीं होंगे और अपना ख्याल जी जी बिल्कुल अपना ख्याल आपको रखना है कोई आपका ख्याल नहीं रखने वाला है तो अगर आप जहन में ये ला लेते हैं आप तो आप बिल्कुल बेहतर रहते हैं।
3: बस आदमी अपने आप को मशगूल रखे इसका यही इलाज है कि आदमी घर से बाहर निकल जाए और किसी काम में जो है बिजी हो जाए।
1: अच्छी चीज़ याद दिलाई आपने उसमें एक तरीका ये होता है कि आप जहाँ बैठे हैं वो माहौल चेंज करें फौरन जैसे आप किसी रूम में ऑफिस में बैठे हैं तो बाहर निकल जाएं थोड़ा एक वॉकिंग करने दो मिनट के तीन मिनट के लिए या किसी और जो है बैठे हैं तो कोई और टीवी देख लें या कुछ और प्रोग्राम देख लें या मोबाइल में कुछ स्क्रीन कुछ और देख लें तो इसमें आदमी के जो उस वक्त जो इम्पल्स होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं।
2: ठीक
3: बिल्कुल सही कहा आपने
1: जी
3: थैंक यू सो वेरी मच बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका
1: जज़ाकअल्लाह खैर
2: बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखिएगा जी बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज जी। डॉक्टर साहब अब थोड़ी सी प्रिवेंटिव मेजर्स पे आगे टाइम बहुत कम है कुछ हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी इस तरह की सिचुएशन को
1: एंग्जाइटी को प्रिवेंट तो करने का कोई तरीका होता नहीं है लेकिन आपको बस ये कर सकते हैं कि जब आपको पता चला कि एंग्जाइटी हो रही है तो उस वक्त आप किस चीज़ को कर सकते हैं जिसके एंग्जाइटी कम हो जाती है
2: जी।
1: तो सबसे पहले ये है कि आप एनालाइज करें कि वाकई ये क्या चीज़ जो मेरा रिएक्शन हो रहा है कि इसके काबिल है रिएक्शन इतना रिएक्शन करना चाहिए मुझे इतना रिएक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए
2: जी।
1: दूसरी बात यह है कि आप वहाँ से उठ के हट जाएं
2: जी
1: जो माहौल में आपको लग रहा है कि टेंशन हो रही है आपको जगह बदल लें पानी पी लें थोड़ी वॉकिंग कर लें किसी से बात कर लें
2: जी
1: और कुछ अपना जो है जहन चेंज करने के लिए कुछ और डाइवर्ट कर दें थॉट्स को आप तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं
2: जी। सब कॉल है मगर टाइम हमारा बहुत शॉर्ट है
1: चलो बिल्कुल शॉर्ट आंसर दे देंगे फिर
2: जी जी। अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम।

0: है, फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, बैंकिंग सिस्टम मॉडर्न और एफिशिएंट बनता है। ये तो कतर की बात हो गई। अब हम सोसाइटी के बारे में अगर बोलें तो सोसाइटी को इससे फायदा ये मिल रहा है कि लोगों को इजी और फास्ट फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती हैं, स्मॉल बिजनेसेस को ग्रोथ के लिए नए मौके मिलते हैं, लोग अपनी सेविंग्स और ट्रांजैक्शंस को बेहतर मैनेज कर सकते हैं, हर शख्स को फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बनने का मौका मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी उन लोगों को भी सिस्टम का हिस्सा बनाना जो पहले बैंकिंग सर्विसेज से बहुत दूर थे, उनको समझ ही नहीं थी। मतलब ये इनोवेशन सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है बल्कि हर इंसान के लिए है। तो साथियों चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सोचिए आप एक बच्चे हैं अब जो कि अपनी पॉकेट मनी को मैनेज कर रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था, आपके पास कैश होता था जो आप किसी पर्स में रखते थे, अगर खर्च हो जाए तो बस हो गया, क्या कर सकते हैं। लेकिन अब आपके पास एक मोबाइल ऐप है जहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पैसे कितने हैं, कहाँ खर्च हुए हैं, आपने कितने खर्च किए और कितने बच गए, और जब आप किसी दोस्त को पैसे भेजना चाहते हैं बस आप एक बटन दबाते हैं और पैसे ट्रांसफर। ये है फिनटेक, पैसे को मैनेज करने का एक स्मार्ट तरीका। ब्लॉकचेन को भी सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए एक डायरी है जिसमें हर ट्रांजैक्शन लिखी जा रही है और ये डायरी सबके पास कॉपी हो रही है। कोई भी इस डायरी में चीटिंग नहीं कर सकता क्योंकि सब लोग उसे चेक कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट ही ब्लॉकचेन का बेसिक आइडिया है। तो साथियों फिनटेक इनोवेशन कोई दूर की या कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। हर बार जब आप मोबाइल से पेमेंट करते हैं या आपसे पैसे आप अपने ऐप से सॉरी पैसे चेक करते हैं ना, आप इस इनोवेशन का यूज कर रहे होते हैं जो फिनटेक ने आपको दी है। और कतर में ये इनोवेशन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं दे रहा बल्कि एक नई सोच, एक नया सिस्टम और एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बना रहा है। तो याद रखें इनोवेशन का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होता बल्कि जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाना होता है।
1: कतर इनोवेट्स आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
0: साथियों जब हम कोई नई टेक्नोलॉजी देखते हैं ना, चाहे वो मोबाइल से पेमेंट हो, एक क्लिक पर ट्रांसफर हो या फिर ब्लॉकचेन के जरिए सिक्योर सिस्टम हो, तो हम अक्सर सिर्फ उसके रिजल्ट्स देखते हैं। हमें वो स्मूथ एक्सपीरियंस नजर आता है, वो कन्वीनियंस नजर आता है, वो स्पीड नजर आती है, लेकिन उसके पीछे जो सफर होता है ना वो काफी लंबा, चैलेंजिंग और इंस्पायरिंग होता है। आज हम इसी सफर के पीछे झांकने की कोशिश करेंगे कि कैसे फिनटेक इनोवेशन कतर में सिर्फ एक आइडिया से शुरू होकर एक पावरफुल रियलिटी बन रहा है। देखिए हर इनोवेशन एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक इंसान, एक टीम, एक विजन। ये लोग अक्सर एक सिंपल सवाल से अपना काम शुरू करते हैं कि क्या हम इसे बेहतर बना सकते हैं। कतर में फिनटेक इनोवेशन भी इसी सवाल से ग्रो हुआ था। यहाँ के फाउंडर्स, रिसर्चर्स और इनोवेटर्स ने ये देखा कि फाइनेंशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लोग फास्ट, सिक्योर और एक्सेसिबल फाइनेंशियल सर्विसेज चाहते हैं, और यहाँ से आइडिया पैदा हुआ। कुछ फाउंडर्स अपने घर के कॉर्नर में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहे, कुछ रिसर्चर्स डाटा एनालिसिस करते रहे, और कुछ इनोवेटर्स ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम को समझने के लिए बिजनेसेस और यूजर्स से डायरेक्टली बातचीत करते रहे। ये इनिशियल स्टेज अक्सर इनविजिबल होता है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से इनोवेशन का सीड प्लांट होता है। देखिए हर सक्सेसफुल इनोवेशन के पीछे फाउंडर्स का विजन होता है। ये वो लोग होते हैं जो रिस्क लेने से नहीं डरते। जब दूसरे लोग कहते हैं कि भाई ये पॉसिबल नहीं होगा तो भाई ये लोग कहते हैं कि ट्राई करने में क्या ही जाता है। कतर में फिनटेक स्टार्टअप्स के फाउंडर्स ने एक क्लियर विजन लिया, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज को सिंपल, सिक्योर और इंक्लूसिव बनाना। उनका सफर इजी नहीं होता, मैं आपको ये बता दूं। उन्हें फंडिंग्स के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उन्हें मार्केट में ट्रस्ट बिल्डअप करना होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट उन्हें अपनी टीम को इंस्पायर रखना होता है। एक फाउंडर के लिए सिर्फ बिजनेस नहीं होता, ये मिशन होता है। और ये फाउंडर्स सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते भाई, बल्कि इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए करते हैं। उनका गोल होता है लोगों की जिंदगी आसान बनाना। अगर फाउंडर्स विजन देते हैं ना, तो रिसर्चर्स उन विजन्स को टेक्निकली पॉसिबल बनाते हैं। तो भाई रिसर्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं।

0: देखें, रिसर्च एक ऐसा स्टेज है जहां इनोवेशन का लॉजिक डेवलप होता है. यहां पर एक्सपर्ट्स डाटा एनालिसिस करते हैं, एल्गोरिथम्स डिजाइन करते हैं और नए सिस्टम्स टेस्ट करते हैं. कतर में रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और टेक लैब्स फिनटेक के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. ये लोग इंश्योर करते हैं कि जो भी सिस्टम बन रहा है ना, वो सिक्योर हो, स्केलेबल हो और फ्यूचर रेडी हो. ब्लॉकचेन जैसे कॉन्सेप्ट को समझने और इम्प्लीमेंट करने में रिसर्चर्स का रोल बहुत क्रिटिकल होता है. ये लोग नए नए केसेस डेवलप करते हैं, जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन, सिक्योर ट्रांजेक्शंस और ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड कीपिंग. ये लोग आम लोगों को नजर नहीं आते, लेकिन इन्हीं की वजह से इनोवेशन का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है. साथियों, इनोवेटर्स वो लोग होते हैं जो आइडियाज को रियलिटी में बदलते हैं. ये डेवलपर्स, इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं जो मिलकर एक सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं जो लोग यूज कर सकें. सोचिए, एक मोबाइल ऐप का डिजाइन, बड़ी सिंपल सी बात है ना, उसका इंटरफेस, उसकी स्पीड, उसकी सिक्योरिटी, ये सब इनोवेटर्स की मेहनत का रिजल्ट होता है. ये देखने में हमें तो बड़ी सिंपल सी चीज लग रही होती है कि मोबाइल ऐप है, क्या ही है ना, लेकिन इसके अंदर बहुत मेहनत होती है. कतर में फिनटेक इनोवेटर यूजर एक्सपीरियंस बहुत फोकस किया जाता है, क्योंकि अगर सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो तो लोग यूज नहीं करेंगे. इसीलिए हर इनोवेशन का गोल होता है सिंप्लिसिटी प्लस सिक्योरिटी प्लस स्पीड. तो भाई, इनोवेटर्स को हर दिन नए चैलेंजेस का सामना होता है. बग फिक्सिंग करनी पड़ती है, सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना, सिक्योरिटी लूप होल्स को बंद करना और यूजर फीडबैक के मुताबिक इम्प्रूवमेंट्स करना. ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो इनोवेशन को इवॉल्व करता रहता है. इनोवेशन सिर्फ इंडिविजुअल से नहीं होती साथियों, बल्कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप से होती है. प्रोग्राम लीडर्स यानी वो लोग जो इनोवेशन प्रोग्राम्स, इंक्यूबेटर्स और नेशनल इनिशिएटिव को लीड कर रहे होते हैं ना, वो एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं जहां आइडियाज ग्रो कर सकें. देखिए, कतर में कई ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, यानी कि फंडिंग, मेंटोरशिप और टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. देखिए, प्रोग्राम लीडर्स इंश्योर करते हैं कि टैलेंटेड लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिले, स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिले और इनोवेशन को एक स्ट्रक्चर्ड वे में ग्रो किया जाए. ये लीडर्स एक ब्रिज का काम करते हैं, यानी कि आइडियाज और एग्जीक्यूशन के दरमियान. साथियों, इनोवेशन का सफर आसान नहीं होता. हर सक्सेस स्टोरी के पीछे चैलेंजेस की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त होती है. अगर आप ले लें तो टेक्निकल चैलेंजेस पहले नंबर पर आते हैं. सिस्टम को सिक्योर और एफिशिएंट बनाना इजी नहीं होता. हर नए फ्यूचर के साथ नए रिस्क भी आते हैं. दूसरे नंबर पर आते हैं भाई ट्रस्ट इश्यूज. लोग अपना पैसा और डाटा किसी भी सिस्टम पर फौरन ट्रस्ट करके नहीं दे देते. ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे मुश्किल काम होता है. फिर तीसरे नंबर पर आती है रेगुलेटरी चैलेंजेस. देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर हाईली रेगुलेटेड होता है. हर इनोवेशन को लॉ और गाइडलाइंस के मुताबिक चलना होता है. और फिर चौथे नंबर पर आ जाता है कंपटीशन. दुनिया भर में फिनटेक कंपनीज काफी अग्रेसिव हैं. कतर के इनोवेटर्स को ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करना होता है. और पांचवें नंबर पर आता है यूजर एडेप्टेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ ना तो सब का सब गया. कुछ लोग टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने से हेजिटेट करते हैं, उन्हें एजुकेट करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है. साथियों, हर चैलेंज के बाद एक लेसन होता है. इनोवेशन हमें ये सिखाती है कि फेलियर एक एंड नहीं है, बल्कि एक लर्निंग है. पेशेंस एक की फैक्टर है. टीम वर्क से बिग गोल्स अचीव होते हैं और कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की चाबी होती है. देखिए, कतर के इनोवेटर्स ने ये समझा है कि लॉन्ग टर्म विजन शॉर्ट टर्म चैलेंजेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. तो सवाल ये है कि ये लोग इतनी मेहनत करते क्यों हैं? मोटिवेशन का सोर्स इनका होता क्या है? कुछ लोग इनोवेशन को अपना पैशन बनाते हैं, कुछ लोग अपने मुल्क को आगे लेकर जाते हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं और कुछ लोग सिंपली एक बेटर फ्यूचर बनाना चाहते हैं. कतर में इनोवेशन का मोटिवेशन एक स्ट्रॉन्ग नेशनल विजन से आता है, जो कि है एक ऐसी इकोनॉमी जो नॉलेज, क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो. और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर, जो कि है इम्पैक्ट. देखिए, इनोवेशन तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक वो लोगों की जिंदगियों को चेंज ना करे. डिजिटल पेमेंट्स ने शॉपिंग को इजी बना दिया, ब्लॉकचेन ने ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन ने उन लोगों को सिस्टम का हिस्सा बनाया जो पहले इससे बाहर थे. एक छोटा बिजनेस अब ग्लोबली ग्रो कर सकता है. एक स्टूडेंट अपने मोबाइल से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है. एक फैमिली अपने एक्सपेंसेस को बेटर मैनेज कर सकती है. और ये है रियल इम्पैक्ट. तो साथियों, अब वक्त आ गया है कि हम आज के सफर को यहीं पर खत्म करें, लेकिन एक गहरी सोच के साथ. आज के इस एपिसोड में हमने फिनटेक इनोवेशन को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के तौर पर नहीं देखा, बल्कि उसे एक जिंदा सफर के रूप में समझने की कोशिश की है. हमने ये जाना कि कैसे सिंपल से आइडिया एक पावरफुल इम्पैक्ट में तब्दील हो सकता है. तो भाई, अगर आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया हो, या अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं, अपने आइडियाज शेयर करना चाहते हैं, अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं, तो जरूर हमारे साथ करें हमें मैसेज भेजकर 666-222-107 पर. मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे FM 107 पर कतर इनोवेट्स. अपना ख्याल रखें, सेफ रहें और अपने आइडियाज पर यकीन रखें, क्योंकि हो सकता है आपका आइडिया ही कल की दुनिया को बदल दे. अल्लाह हाफिज, और मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए कीप इनोवेटिंग.
1: कतर इनोवेट्स RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी. देसी FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें. हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
2: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर. दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए अल्लाह अशरफुल जमान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ FM 107 पर।
3: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामने के प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान में आज हमारे जो मुंतखब करदा आयात हैं इनका ताल्लुक हमारे इन हज के मौसम से ही है, यानी जब बात होती है बैतुल्लाह के तामीर की तो ज़रूर इसका ताल्लुक एक न एक तरीके से ज़ायर हरम को रिलेट करता है। वैसे इस्लाम की सदाकत की बहुत बड़ी दलील और प्रूफ उसकी हमागीर जाज़िबियत भी है। इस जज्बो कशिश का सबसे बड़ा मरकज बैतुल्लाह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलकर कई सौ साल पहले इस वादी गैर ज़रा बे आबो गियाह ज़मीन में अल्लाह का घर बनाया और रब करीम के हुजूर फरियाद की कि फ़जाल अफ़इदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम इलाहल आलमीन, ऐसे असबाब मुहैया फरमा दे कि ये ज़मीन तेरी इबादत के लिए मरजे खलायक बन जाए और उसकी बज़ाहिर वीरानी बातिनी अनवार से मालामाल हो जाए और लोग अक्साए आलम से उसकी तरफ खींचे चले आए। रब करीम ने अपने इस मुखलिस और वफादार बंदे की दुआ कबूल फरमाई। लोग दूर दराज का सफ़र तय करके अकीदत व मोहब्बत के फूल निछावर करते हुए वहाँ पहुँचते हैं। दुनिया के हर खित्ते और मुल्क के और हर मुल्क के मुसलमान, हर नस्ल और हर ज़ात के अहले ईमान इस मुकद्दस मरकज में जमा होते हैं और सब के सब एक ही किस्म के लिबास में मलबूस से और एक ही जैसी सदाए तौहीद से फ़िज़ा को मामूर कर देते हैं। इनमें ऊँच नीच, काले गोरे, मशरक़ी व मगरबी की तफरीक मिट जाती है, गोया कि सब मुसलमान ख़ुव्वत व मोहब्बत की तस्वीर बन जाते हैं और कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, गोया कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार हैं इसका नक्शा आँखों के सामने आ जाता है। दरअसल इस्लाम अपने मानने वालों के दरमियान भाईचारे की ऐसी ही फ़िज़ा कायम करना चाहता है। बस हुक्म होता है वह इस

आप लोगों से कह दीजिए, ए मेरे बंदा, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह तो यकीनन सारे ही गुनाह माफ कर देता है, क्योंकि वो गफूर और रहीम है। इसी शायर ने खूब कहा है, काश के बंदे उसकी तरफ रुजू करें। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रहरो मंजिल ही नहीं। इसी तरह एक और जगह इरशाद है, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, और ए हमारे रब मबऊस फरमा उनमें एक रसूल उन्हीं में से। यतलु अलैहिम आयातिक, इसका मतलब यह है कि कुरान की आयात, उससे मुराद अनफुस और आफाक की आयात भी है। कुरान हकीम में एक गोल दायरा से दूसरे गोल दायरा तक की इबारत एक आयत कहलाती है। सूरतुल फातिहा से सूरतुल नास तक कुल आयात की तादाद 6666 है, और हर आयत उसकी कदर हिकमत की निशानी है। मौलाना अब्दुल हई फारूकी रहमतुल्लाह कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहला काम अपनी उम्मत के साथ तिलावत आयात है, यानी अल्लाह का कलाम पहुंचाना और पढ़ाना, वो आपकी पहली हैसियत मुबल्लिग आज़म की है। इतलु अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। युअल्लिमुहुमुल किताब यानी उन्हें किताब की तालीम दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ तबलीग और पैगाम रसानी पर ख़त्म नहीं हो जाता, आपका काम किताब इलाही की तबलीग के बाद उसकी तालीम का भी है। कोई आपकी दूसरी हैसियत मुअल्लिम आज़म की है। युअल्लिमुहुमुल किताब, यहाँ किताब से मुराद अवामुल कुरान है। आपका काम किताब इलाही की तबलीग के बाद उसकी तालीम का भी है। गोया आपकी दूसरी हैसियत मुअल्लिम आज़म की है। और फिर है दानाई की बातें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा काम हिकमत व दानाई सिखाना, कुरानी अहकाम व मसाइल समझाना, दीन के कायदे और आदाब सिखाना, और ज़िंदगी के गुनागों और पेचीदा मसाइल का उसी की रोशनी में बेहतरीन हल बताना है। वो आपकी तीसरी हैसियत मुर्शिद आज़म की है। और एक आखिरी मरहला है, वयुज़क्कीहिम, और उन्हें पाक कर दे। तज़किया से मुराद दिल की सफाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथा काम अपनी सोहबत और तरबियत से अखलाक की पाकिजगी और नीयतों का इखलास पैदा करना है। इन्हें आपकी चौथी हैसियत मुस्लिह आज़म की है। इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर के साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे कि हमारे रब हमारी नस्ल से अपनी एक फरमाबरदार उम्मत पैदा कर, उन्हीं में से एक नबी मबऊस फरमा, उसकी चार खसूसियात हों, वो किताबुल्लाह सुनाए, पढ़ाए, समझाए, और उसके ज़रिए से दिलों को पाक करे, यानी वो मुबल्लिग भी हो, हकीम और मुर्शिद भी और मुस्लिह भी। ये तमाम बातें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पूरी हुईं। सामने कलाम इन आयात में सबसे अहम बात इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की बैतुल्लाह की तामीर के वक्त पुरखलूस दुआ है, जो कि हर मुस्लिम और मोमिन के दिल की आवाज़ है। दुआ का नगमा, दुआ का तरन्नुम, दुआ की फिजा सब के सब सामने मौजूद और हाजिर हैं। गोया इस वक्त जिंदा

0: हर हाल में अल्लाह ही से मदद चाहो, सबर और नमाज से, बिलाशुबा सबर और नमाज भारी है मगर उन लोगों पर नहीं जो अल्लाह के आगे आजिज़ी इख्तियार करने वाले हैं। यही वो लोग हैं जो यकीन रखते हैं कि उन्हें अपने रब के रूबरू हाजिर होना है और बिलाशुबा उसी की तरफ पलट कर जाना है। अस्तईनु बिस्सबरी वस्सला। सामने किराम, अकल और शरीयत दोनों या इनमें से किसी एक के तकाजे के मुताबिक अपने आप को रोकना तो ये सबर कहला सकता है। सबर एक आम लफ्ज़ है जो मुख्तलिफ मौके पर इस्तेमाल के तौर से मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। चुनांचे किसी मुसीबत पर नफ्स को रोक रखने को सबर कहा जाता है। ये जज़ा फज़ा चीखो पुकार की जिद है और जंग में नफ्स को रोक रखने को शजाअत कहा जाता है। उसकी जिद चुभन बुजदिली है, यानी सबर अगर किसी परेशान खुन हादसे को बर्दाश्त करने की सूरत में तो उसे रहबुस्सदर कुशादा दिली कहते हैं, जिसकी जिद वज्र यानी तंग दिली है। कुरान हकीम में चंद आयात पर अगर गौर कीजिए तो देखेंगे कि यहाँ सबर भी मुख्तलिफ यानी चीज़ों के साथ इस्तेमाल किया गया। अर्शाद खुदावंदी है, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ। اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں کے نقصان نیز میووں یعنی فصلوں کے خسارے سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صابرین کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بشارت سنا دیجیے۔ तो यहाँ जानो माल के नुकसान पर सबर की बात आई है, फिर दुश्मन के मुकाबले में भी सबर की बात आई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सबिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। अहले ईमान कुफार के मुकाबले में साबित कदम रहो और इस्तिकामत रखो और मोर्चों पर जमे रहो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो ताकि मुराद हासिल करो। सबने किराम, इसी तरह दावत तबलीग में सबर की बात आई है। या बुनैया अक़िम अस्सलाह वामुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। लुक़मान ने कहा है, मेरे बेटे नमाज की पाबंदी रखना और लोगों के अच्छे काम करने का हुक्म देना और बुरी बातों से मना करते रहना और इस सिलसिले में जो मुसीबत तुझ पर वाक़ उस पर सब्र करना, बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम है। इसी तरह दूसरों को माफ़ कर देना भी सब्र है। وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ। और अगर तुम उनको तकलीफ देना चाहो तो उतनी ही दो जितनी तकलीफ तुमको उनसे पहुंची है, और अगर सब्र करो तो वो सब्र करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, अल्लाह उन्हें अजर अजीम से नवाजेगा। सबने कराम, तो सब्र कुरान मोती है, इट्स गोल्डन की सुनहरी कलीद है। सब्र के साथ सलात का जिक्र आया है। हाँ जी, सब्र सलात। सलात का लुगवी माना दुआ मांगना, रहमत तलब करना है। सलाह शरीयत में जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि वो खास कैफियत को कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर दिखाई है हमें। तो अगर नेकी के रास्ते पर चलने में दुश्वारी महसूस होती है तो उस दुश्वारी का इलाज सब्र और नमाज है। ये दो कुरानी मोती हैं, इन दो चीज़ों से हमें वो ताकत मिलेगी जिससे ये राह आसान हो जाएगी। सामने कराम, सब्र से इस्तानत की ज़रूरत बार बार पड़ती है। यही वो ज़ात राह है जो हर मशक्क़त का मुकाबला करने के लिए नागुज़ीर है। और सबसे ज़्यादा मशक्क़त का काम यह है कि इंसान हक के एहतराम, उसके इसार और हकीकत के एतराफ़ और उसके आगे सर तस्लीम खम करने के लिए सरदारी व पेशवाई के मनसब और उससे वाबस्ता मतलब मफादात व मुनाफ़े से दस्तबरदार हो जाए। अब नमाज से इस्तानत क्या है? नमाज बंदे और रब के माबैन रब तो मुलाकात का नाम है। ये एक ऐसा रब है जिससे दिल को कुव्वत हासिल होती है और रूह अल्लाह ताला से ताल्लुक का एहसास करती है। नमाज से इंसान को राह हक के लिए वो ज़्यादा राह मिलता है जो दुनिया के तमाम साजो सामान से ज़्यादा कीमती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई परेशानी लाहिक होती तो आप नमाज की तरफ लपकते, हालांकि अल्लाह ताला से आपका ताल्लुक बहुत पुख्ता था और आपकी रूह वही और इल्हाम के जरिए अल्लाह से मरबूत थी। ये सर चश्माए हयात आज भी हर उस मोमिन के दस्तरस में है जिसे राह हक के लिए तोशा दरकार हो, दोपहर की शदीद गर्मी में तैराबी का तालिब हो, हर तरफ से मदद के मजदूर होने पर मदद का तालिब हो और सामान सफ़र के ख़त्म हो जाने के बाद उसे ज़्यादा राह की ज़रूरत हो तो बस नमाज का रुख कर ले। وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ। मसला ये है कि सबर और नमाज ये भारी है मगर उन लोगों पर नहीं जो आजिज़ इख्तियार करने वाले हैं। आजिज़ इख्तियार करने वाले कौन हैं? ये वो लोग हैं जो यकीन रखते हैं कि उन्हें अपने रब के रूबरू हाजिर होना है और बिलाशुबा उसी की तरफ पलट कर जाना है। سامنے کرام آیت مبارکہ میں ہمیں یہ پیغام ملا, ہمیں بتایا گیا کہ بھائی صبر اور صلات مسلمانوں کے دکھوں اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین انعام ہے. صبر کا موتی اختیار کرو, نماز کا موتی, جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ اقامت ایسا نماز کو قائم کرنا, یعنی صرف نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنا. اسی طرح اس صبر کے وصف کو جب ہم اپنائیں گے تو یہ خصوصاً آج عالم اسلام کی جو صورت حال ہے یہ آیات ہمارے سامنے موتی کی طرح روشن ہیں کہ بھائی آپ کا حل یہاں ہے, آپ کو یہ اعمال کرنے ہیں. سامنے کرام نماز کے فیوز و برکات سے حقیقی طور پر وہی لوگ فیضیاب ہو سکتے ہیں جنہیں آخرت میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے اور زندگی کے ہر معاملے میں جواب دہی کا یقین کامل ہو جو ہر وقت مستحضر رہے. اللہم حاسبنا حساب یسیرا, یا اللہ ہمارا سخت محاسبہ نہ کرنا, ہمارے محاسبے میں آسانی پیدا فرمانا. آمین یا رب العالمین. پروگرام پلس آف دی قرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائن ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. میں سلامہ.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.

साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए, और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता

0: है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर, बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल लाइफ। योर गाइड फॉर स्मार्टर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन। सिर्फ सुनना ही नहीं, समझना भी शुरू कीजिए।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं शो जिसका नाम है मनी नेविगेटर। ये वो शो है जहां हम पैसों को सिर्फ कमाने की बात नहीं करते, बल्कि समझने की भी कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसे ग्रो करने के बारे में बात करते हैं। और आज का ये एपिसोड सिर्फ इंफॉर्मेशन का नहीं, बल्कि डीपली प्रैक्टिकल भी है, और हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल सोच को एक नया डायरेक्शन में ये ले जाए। आज मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहती हूँ साथियों, बिल्कुल सीधा सीधा। क्या आप वाकई में वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं या सिर्फ इनकम अर्न कर रहे हैं? जरा सोचिए, फिर से सोचिए। कतर जैसे मुल्क में जहां अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, जहां लोग अच्छी सैलरीज ले रहे हैं, जहां करियर ग्रोथ भी रिलेटिवली फास्ट होती है, जहां अक्सर लोगों की लाइफ एक पैटर्न फॉलो करती है, सैलरी आती है, फिर इंक्रीमेंट मिलता है, फिर लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है, नई गाड़ी, बेटर अपार्टमेंट, ब्रांडेड चीजें भाई, वीकेंड ब्रंचेस, वेकेशंस, और आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी लाइफ क्रिएट हो जाती है जो दिखने में तो बहुत सक्सेसफुल लगती है, लेकिन फिर वक्त गुजरता है, 5 साल, 8 साल, 10 साल या उससे ज्यादा, और एक दिन आप खुद से पूछते हैं कि भाई मैंने इतना सारा पैसा कमाया था, लेकिन मैंने बनाया क्या, कहां गया सारा पैसा? यहां पर आती है वो रियलिटी जो बहुत कम लोग ओपनली डिस्कस करते हैं, यानी कि इनकम और वेल्थ एक जैसी चीज नहीं होती। इनकम का मतलब है पैसा आपके पास आ रहा है भाई, आ रहा है, आ रहा है, लेकिन वेल्थ का मतलब है पैसा आपके लिए काम कर रहा है। बहुत से लोग हाई सैलरी अर्न करते हैं, लेकिन उनका पैसा सिर्फ एक्सपेंसेस में चला जाता है।

फिर किसी वजह से अगर इनकम रुक जाए तो भाई पूरा का पूरा सिस्टम या हिल जाता है या कोलैप्स कर जाता है। लाइफस्टाइल जो इतनी कंफर्टेबल होती है ना, वो सडनली प्रेशर बन जाती है भाई। इसीलिए तो आज का एपिसोड इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस फाउंडेशन की जो असल में वेल्थ क्रिएट करती है, और वो है एसेट्स भाई। लेकिन सिर्फ कोई भी एसेट नहीं, बल्कि रियल एसेट्स भाई। ऐसे एसेट्स जो वक्त के साथ ग्रो करते हैं, जो आपके लिए इनकम जनरेट करते हैं, जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, जो आपको फ्रीडम देते हैं। अच्छा, फ्रीडम सिर्फ पैसों का नहीं होता, मैं आपको बता दूं, फ्रीडम डिसीजंस की भी होते हैं, फ्रीडम टाइम का भी होता है, फ्रीडम स्ट्रेस फ्री जिंदगी जीने का भी होता है। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट एंगल समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक और एंगल समझना जरूरी है, और वो है कतर का कॉन्टेक्स्ट। यहाँ बहुत से लोग एक्सपर्ट्स हैं, परमानेंट सेटलमेंट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होती, और फ्यूचर प्लानिंग अक्सर किसी और कंट्री के लिए होती है। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ अर्न नहीं करना होता, बल्कि स्मार्ट अर्न करना होता है। आपको ऐसे एसेट्स बिल्ड करने होते हैं जो आपके साथ मूव कर सके, जो आपकी लोकेशन पर डिपेंड ना करें, जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करें, चाहे आप दोहा में हो या अपने होम कंट्री में या किसी एक्सवाइजेड कंट्री में। तो साथियों, आज के एपिसोड में हम 15 पावरफुल एसेट्स के बारे में बात करेंगे, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब एसेट्स वो नहीं होते जो आप देख सकते हैं या टेंजिबल नहीं होते। कुछ फाइनेंशियल होते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट्स, कुछ पर्सनल होते हैं जैसे आपकी स्किल्स और आपके एक्सपीरियंसेस, और कुछ इनविजिबल होते हैं जैसे आपका नेटवर्क, आपका डिसिप्लिन और आपकी रेपुटेशन। ये वो चीजें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती हैं और लॉन्ग टर्म में आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती हैं। देखिए, और मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि अगर आपने आज का ये शो एंड तक सुन लिया ना, तो आप सिर्फ नए आइडियाज लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि आपकी डेफिनेशन ऑफ वेल्थ ही चेंज हो जाएगी, आपकी थिंकिंग ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप शायद पहली बार समझ पाएंगे कि असली प्रोग्रेस क्या होती है, और कौन सी चीजें सिर्फ इल्यूजन होती हैं और कौन सी चीजें हकीकत। अब चलिए आपके लिए एक पावरफुल थॉट एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? अगर आपको आज 100,000 कतरी रियाल मिल जाए, ओ भाई मुझे तो सोचकर इतना अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे? क्या आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे? क्या आप स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे? क्या आप अपनी स्किल्स अपग्रेड करेंगे, या आप एक नई इनकम सोर्स क्रिएट करने पर फोकस करेंगे? अच्छा, इस सवाल का कोई एक सही जवाब नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ ना क्या क्या करेंगे, हर किसी के पास अपने आइडिया होंगे। इन सवालों का कोई सही जवाब नहीं होता, लेकिन आपका जवाब आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है। और अब मैं चाहती हूँ कि आप इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बने। कैसे? 666-221-07 पे हमें मैसेज करके बताइए कि आपके लिए वेल्थ का मतलब क्या है। क्या वेल्थ सिर्फ पैसा है, या फ्रीडम है, या सिक्योरिटी है, या फिर ज्यादा वक्त अपनों के साथ है? आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं और बता सकते हैं। आप चाहें तो हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें, जो कि हमारा हैंडल है @FM107Qatar, जहां हम आपके थॉट्स और आइडियाज को शेयर करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड साथियों, क्योंकि मनी नेविगेटर में हम सिर्फ पैसों के बारे में बात नहीं करते बाबू, हम बेटर, स्मार्टर और सिक्योर फ्यूचर बिल्ड करने के बारे में बात करते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं, और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो सिंपल सा लगता है, लेकिन अगर समझ आ जाए ना, सिंपल बातें अक्सर औकात लोगों को समझ में नहीं आती, बहुत ही हल्का ले लेते हैं लोग इन्हें, लेकिन अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर रख सकती है। सवाल सिंपल है, मैं कमा तो रहा हूँ लेकिन क्या मैं वेल्थ बिल्ड कर रहा हूँ कि नहीं? ये सवाल इतना पावरफुल पता है क्यों है? इसलिए है क्योंकि अक्सर लोग इसका जवाब ऑनेस्टली देने से बचने की कोशिश करते हैं, भागते हैं। कतर में रहकर लोग बहुत मेहनत करते हैं साथ, मैं मानती हूँ आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, हम सब हैं यहाँ पे मेहनत करने के लिए। लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, बिजी रूटीन्स हैं, कमिटमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम सबकी हैं, कोई भी एक भी नहीं बचा हुआ, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और फिर जब सैलरी अकाउंट में आती है ना, वो जो टिंग करके महीने के एंड में एक मैसेज आता है, तो एक सेंस ऑफ रिलीफ होता है। ओए होए होए भाई, हम सब उस मैसेज का इंतजार

करते हैं कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त स्टार्ट होती है जब हम अपनी इनकम को प्लानिंग के बगैर स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही सैलरी बढ़ती है वैसे ही एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगते हैं। लाइफस्टाइल आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होता जाता है और इंसान को लगता है कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ अपग्रेड कर रहा होता है, बिल्ड नहीं कर रहा होता। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरी बात है। रिच दिखना और रिच होना दोनों चीजें बहुत अलग होती हैं। दिखने में और होने में बहुत फर्क होता है। आपके पास महंगी गाड़ी हो सकती है, ब्रांडेड चीजें हो सकती हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा एसेट नहीं है जो आपके लिए पैसा जनरेट कर रहा है तो आप फाइनेंशियली सिक्योर बिल्कुल भी नहीं है। आपको हाई लेटर से मार्क करके देती हूँ कि आप अगर जनरेट नहीं कर रहे ऐसा पैसा तो आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है। ये बात थोड़ी सी अनकंफर्टेबल जरूर है लेकिन रियलिटी है। देखिए एसेट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। एसेट वो चीज़ होती है जो आपकी पॉकेट में पैसा डाले, और लाइबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकाल ले। बहुत सी चीज़ें जो हम एसेट समझकर खरीदते हैं ना, असल में वो लाइबिलिटीज होती हैं। जैसे गाड़ी जो टाइम के साथ साथ अपनी वैल्यू लूज कर देती है और मेंटेनेंस कॉस्ट आपको साथ साथ देती रहती है। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला स्टेप होता है ये समझना कि आप किस चीज को एसेट समझ रहे हैं और वो असल में क्या है। देखिए कतर के कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। यहाँ टैक्स फ्री इनकम एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है, लेकिन लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी का अनसर्टेनिटी का जो फैक्टर है ना वो भी ध्यान में रखें। इसीलिए यहाँ रहकर जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं वो शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक होने चाहिए। आपको ऐसे एसेट्स बिल्ड करने हैं जो पोर्टेबल हों, जो आपके साथ मूव कर सकें, जैसे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, डिजिटल बिजनेसेस या हाई इनकम स्किल्स। ये वो चीज़ें हैं जो आपको किसी एक लोकेशन तक लिमिटेड नहीं रखती। साथियों वेल्थ बिल्ड करने के लिए ना कैसे बताऊं मैं आपको, वेल्थ बिल्ड करने के लिए ना सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स ही इंपॉर्टेंट नहीं होते। आप यूं कह लें कि आपके पर्सनल एसेट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये पर्सनल एसेट में आप कहेंगे सफा क्या चीज़ आ जाती है? भाई देखें सीधी सी बात है, पर्सनल एसेट में ना आ जाती हैं आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस। ये सब आपकी अर्निंग पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं। अच्छा इसके बाद क्या आता है? फिर आते हैं इनविजिबल एसेट्स जो सबसे अंडररेटेड होते हैं, क्योंकि दिखते नहीं है तो कोई ध्यान नहीं देता। आपके नेटवर्क, आपका डिसिप्लिन, आपकी रेपुटेशन, अरे भाई ये वो चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए डोर ओपन करती हैं और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं। एक और रियलिटी चेक जो एक्सेप्ट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है वो है कि अगर आप सिर्फ एक सैलरी पे डिपेंड करते हैं ना तो भाई आप रिस्क में, मान लें ना ना ना मान लें आप रिस्क में, चाहे सैलरी कितनी भी हाई हो, क्योंकि भाई एक इनकम सोर्स हमेशा अनसर्टन होता है। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब होता है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करना। देखिए भाई कॉन्सेप्ट सिंपल है, जब आपके पास एक से ज्यादा सोर्सेज होती है ना तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अच्छा सबसे बड़ा शिफ्ट जो है ना वो आपको लाना है किस चीज में, भाई माइंडसेट में लेकर आ जाओ शिफ्ट, जिंदगी बदल जाएगी बता रही हूँ। देखिए पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, मैं मानती हूँ, मैं हर दफा ये बात कहती हूँ पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, पैसा जरूरत है जिंदगी की, लेकिन पैसा समझना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप पैसा समझ जाते हैं ना कि पैसा क्या है, ये कैसे चलता है, तो आप बेटर डिसीजंस लेते हैं, आप इंपल्सिव स्पेंडिंग से बच जाते हैं, आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग डेवलप करते हैं और आप ग्रेजुअली अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करने लगते हैं। देखें आज का एक सिंपल एक्शन स्टेप ये है कि आप अपने एक्सपेंसेस को देखें, जानें और खुद से पूछें ना कि क्या ये एक्सपेंसेस मुझे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे रहे हैं या सिर्फ टेम्पररी हैप्पीनेस है। अगर आप ये हैबिट डेवलप कर लेते हैं ना तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। अच्छा और एंड में ना एंड में फिर से आपसे वही सवाल मैं पूछना

चाहती हूँ, अभी जो मैंने इतनी बड़ी थीसिस की है उसके एंड में मैं एक सवाल आपसे फिर से पूछना चाहती हूँ, दोहरा रही हूँ फिर से, सोचें, देयर इज अ रीजन फॉर इट. अगर आपको भाई लॉटरी निकल गई, कुछ हो गया, एक्सपायर्ड एनीथिंग, अगर आपको 100,000 कतरी रियाल मिल जाए तो आप कौन से तीन एसेट्स बिल्ड करेंगे? इस सवाल का जवाब हमें आप मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर और बताइए कि आपके लिए वेल्थ का असल मतलब है क्या. भाई क्या वेल्थ पैसा है, क्या वेल्थ फ्रीडम है, सिक्योरिटी है या टाइम है, ये है क्या चीज़. तो भाई हमें फॉलो करना मत भूलें, हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @FM107Qatar और स्टे ट्यून्ड क्योंकि मनी नेविगेटर में हम सिर्फ पैसा नहीं समझते, हम अपना फ्यूचर डिजाइन कर रहे होते हैं. तो भाई साथियों आगे चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ बेसिक लेकिन बहुत पावरफुल फाइनेंशियल आइडियाज को क्विकली रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये समझ आ जाए ये सारी बातें जो मैं रिफ्रेश करने वाली हूँ तो भाई पूरा एपिसोड आपके लिए ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा. देखिए एक एसेट वो चीज़ होता है जो या तो अपनी वैल्यू वक्त के साथ बढ़ाता है या आपके लिए इनकम जनरेट करता है या आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है या फिर आपकी फ्यूचर अर्निंग पावर को इंक्रीज करता है. सिंपल अल्फाज में एसेट वो है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को ग्रो करता है, ना कि सिर्फ एग्जिस्ट करता है, पड़ा रहता है, ऐसा नहीं है. इसके बरक्स ना लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपसे रेगुलरली पैसा लेती रहती है, अक्सर अपनी वैल्यू भी लूज कर जाती है, जैसे एक लग्जरियस कार जो फाइनेंस पर ली गई हो वो अक्सर लायबिलिटी बन जाती है क्योंकि वो इनकम नहीं बनाती बल्कि एक्सपेंस क्रिएट कर रही होती है. लेकिन अगर कोई रेंटल प्रॉपर्टी आपको मंथली इनकम दे रही हो तो वो एसेट बन जाती है. ठीक है, क्लियर हो गई. सेट, जो जेब में पैसा लेकर आए वो चीज वेल्थ है, जो जेब से पैसा निकाल ले वो लायबिलिटी है. क्लियर भाई. अब सवाल ये है कि कतर में ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. देखिए कतर एक ऐसा मुल्क है जहां लोगों को स्ट्रॉन्ग इनकम्स मिलती हैं, टैक्स एडवांटेजेस भी हैं और करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी होती हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इनकम बढ़ती है तो लाइफस्टाइल भी उसी स्पीड से बढ़ता चला जाता है. इस फिनोमेना को हम कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और ये वो जगह है जहां लोग एक डेंजरस ट्रैप में फंस जाते हैं, ज्यादा अर्निंग के बावजूद भी वेल्थ नहीं बना रहे होते. तो भाई आगे बढ़ते हैं और इसी के बारे में बात करते हैं. अक्सर लोग इस एसेट को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं. तो साथियों इसलिए कतर में सिर्फ कमाना गोल नहीं होना चाहिए, गोल ये होना चाहिए कतर में रहने वाले साल आपके लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएं. यानी आप यहाँ सिर्फ सैलरी एक्यूमुलेट नहीं कर रहे बल्कि अपनी फाइनेंशियल लाइफ को स्ट्रक्चर में बिल्ड कर रहे हैं. तो साथियों आज हम एक पावरफुल लिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं 15 एसेट्स की जो रियल वेल्थ क्रिएट करते हैं और हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, ये याद रखिए, ताकि आप ग्रेजुअली माइंडसेट बिल्ड कर सकें. 1, 2, 3 से नहीं चलूंगी, 15, 14, 13 से चलूंगी. ठीक है. अच्छा भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एसेट नंबर 15 से. पता है क्या है? चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड फैमिली लेगेसी. अक्सर लोग इस एसेट को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं लेकिन असल में ये सबसे पावरफुल लॉन्ग टर्म एसेट है. आपके बच्चों की फाइनेंशियल एजुकेशन, उनका माइंडसेट और उनकी मनी अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी एसेट है जो जनरेशन तक इम्पैक्ट करता है. कतर में बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल, बेस्ट लाइफस्टाइल और कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल है. लेकिन एक सवाल यहाँ ज़रूर पूछना चाहिए मुझे, क्या हम उनको सिर्फ पैसा दे रहे हैं या पैसा समझना भी सिखा रहे हैं? क्योंकि सिर्फ इनहेरिटेंस देना काफ़ी नहीं होता ना, अगर माइंडसेट ही स्ट्रांग ना हो तो वेल्थ अक्सर ख़त्म हो जाती है. लेकिन अगर एक बच्चे को सेविंग, इन्वेस्टिंग, डिसिप्लिन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाई जाए तो वो सिर्फ बेनिफिशरी नहीं होता बल्कि एक ग्रोइंग फाइनेंशियल एसेट बन जाता है. सोचिए दो फैमिलीज हैं, एक फैमिली सिर्फ पैसा देती है और दूसरी फैमिली पैसा प्लस फाइनेंशियल विजडम भी देती है. कुछ सालों बाद जो डिफरेंस आता है ना भाई, वही रियल जनरेशनल वेल्थ होता है. इसी के साथ हम आ जाते हैं एसेट नंबर 14 पर जो कि है AI टूल्स एंड ऑटोमेशन. आज के जमाने में टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि एक पावरफुल फाइनेंशियल एसेट बन चुकी है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि AI किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा, लेकिन AI यूज करने वाले लोग जो है ना, उन लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं जो एडॉप्ट नहीं कर रहे.
कतर में हर

मार्केटिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स, मीडिया या बिजनेस, सब जगह AI ऑलरेडी प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर रहा है। एक मार्केटर अगर AI यूज करता है, वो कैंपेन्स सेकेंड्स में डिजाइन करता है, एक अकाउंटेंट AI से एनालिसिस तेज कर सकता है, एक स्टूडेंट रिसर्च को फास्टर और स्मार्टर बना सकता है, एक बिजनेस ओनर अपने कस्टमर रिस्पॉन्सेज ऑटोमेट कर सकता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है कि AI खुद एसिस्ट है, कि AI खुद एसेट नहीं, एसेट आपकी लाइबिलिटी है, एसेट आपकी एबिलिटी है AI को यूज करने की। अगर AI आपके 2 घंटे डेली सेव करता है तो वो महीने के 60 घंटे बन जाते हैं, और ये 60 यानी 60 आवर्स आप किसी और स्किल, बिजनेस आइडिया या इनकम स्ट्रीम पर लगा सकते हैं। यही रियल लेवरेज है। अच्छा भाई, एसेट नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं स्मॉल बिजनेस एक्विजिशंस की।

0: कंपनीज या ई कॉमर्स स्टोर्स हों। इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये होता है कि आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। आपको अगर आप इस बिजनेस को बेटर मैनेज करें, ऑप्टिमाइज करें, तो ग्रोथ फास्टर हो सकती है। लेकिन यहाँ ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी होता है। लीगल चेक्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और प्रॉपर इवैल्यूएशन के बगैर डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। फिर ना कहना कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ये सब कुछ चेक करना होता है। कभी कभी स्मार्ट मूव ये होती है कि आप कुछ बिल्ड ना करें बल्कि कुछ बाय करके उसे ग्रो करें। अच्छा, इसी के साथ आगे बढ़ें तो कहां पर आ गए हुए? एसेट नंबर 12 पर आ गए, जो कि अल्टरनेटिव स्टोर्स ऑफ वैल्यू। देखें, अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग कैटेगरी पर, यानी कि अल्टरनेटिव स्टोर्स ऑफ वैल्यू। इसमें गोल्ड, सिल्वर, सर्टेन कमोडिटीज, केयरफुली प्लान्ड क्रिप्टो एक्सपोजर्स और कलेक्टिबल्स शामिल हो सकते हैं, जिनकी रियल मार्केट डिमांड होती है। अच्छा, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये कि कैश वक्त के साथ इन्फ्लेशन की वजह से अपनी वैल्यू लूज कर देता है। आज का 1000 कतरी रियाल फ्यूचर में उतना पावर नहीं रखेगा जितनी आज रखता है। देखिए, कतर में ट्रेडिशनली भी गोल्ड को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, और ये सिर्फ कल्चरल चीज नहीं है बल्कि फाइनेंशियल विजडम भी है। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो किसी एक कंपनी या सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता। इसने सेंचुरीज तक अपनी वैल्यू प्रिजर्व की है। लेकिन यहाँ भी डिसिप्लिन जरूरी है। ये गैम्बलिंग नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। आइडिया ये है कि आप अपने सारे पैसे कैश या सैलरी में ना रखें बल्कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन अप्लाई करें ताकि रिस्क बैलेंस हो। अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं तो एसेट नंबर 11 पे बात कर लेते हैं लैंड एंड प्रोडक्टिव रियल एस्टेट की। देखिए, लैंड जो है ना, जमीन एक ऐसा एसेट है जो दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में एक टाइमलेस रियलिटी रखता है। इसकी सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल ट्रुथ ये है कि जमीन कभी इंक्रीज होना बंद नहीं होती। और ऐसा क्यों है? क्योंकि दुनिया में जमीन मजीद बनाई नहीं जा रही, और ये स्कैसिटी इसे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनाती है। देखिए, बहुत से लोग इस बात को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं ना, वो जानते हैं कि लैंड सिर्फ एक फिजिकल चीज नहीं होता बल्कि एक अपॉर्चुनिटी होता है जो वक्त के साथ मल्टीपल फॉर्म्स में वैल्यू क्रिएट कर सकता है। देखिए, कतर में रहने वाले बहुत से लोगों के पास अपने होम कंट्रीज में लैंड ओनरशिप का चांस होता है। आप कह लें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, सूडान, जॉर्डन, नेपाल, श्रीलंका और बहुत सारी कंट्रीज हैं, मैं नाम लेती चली जाऊं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से बहुत से लैंड्स या तो अनयूज होते हैं या तो उनका कोई प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान ही नहीं होता। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है डेड लैंड और प्रोडक्टिव लैंड में। देखिए, डेड लैंड वो होता है जो सिर्फ एग्जिस्ट करता है लेकिन कोई इनकम जनरेट नहीं करके दे रहा होता, कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं होता और सिर्फ फ्यूचर होप पर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन प्रोडक्टिव लैंड वो होता है जो एक्टिवली वैल्यू क्रिएट करता है, जैसे रेंटल पर्पसेस, एग्रीकल्चर, कमर्शियल लीजिंग या फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। देखें, अगर किसी लैंड को स्ट्रेटेजिकली यूज किया जाए तो वो सिर्फ एसेट नहीं रहता बल्कि एक इनकम जनरेटिंग मशीन बन जाता है। लेकिन अगर प्लानिंग ना हो तो वो सिर्फ एक स्टेग्नेंट वेल्थ बन जाता है जो टाइम के साथ अपॉर्चुनिटी लॉस क्रिएट करता है। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ लैंड नहीं खरीदते, जमीन दे दो, नो, बल्कि जमीन का यूज केस प्लान करते हैं।
1: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए, और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर।
0: अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं तो एसेट नंबर 10 के बारे में बात की जाए तो वो हो जाएगा प्राइवेट बिजनेस इन्वेस्टिंग। अब हम एक और एडवांस एसेट कैटेगरी की तरफ आते हैं जो कि है प्राइवेट बिजनेस इन्वेस्टिंग। ठीक है, ये वो एरिया है जहां रियल वेल्थ बहुत तेज स्पीड से क्रिएट होती है, और सिर्फ क्रिएट नहीं होती, लूज भी हो सकती है। देखिए, सिंपल अल्फाज में समझने की अगर कोशिश की जाए तो जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना तो आप पब्लिक सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जब आप प्राइवेट बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ना तो आप डायरेक्टली किसी रियल ऑपरेशन

इनका हिस्सा बन जाते हैं। अब एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल किसकी दी जाए, हाँ अगर कोई ट्रस्टेड फ्रेंड या प्रोफेशनल अपनी लॉजिस्टिक कंपनी एक्सपेंड करना चाहता है और आप उसे कैपिटल की जरूरत होती है, उसे आप दे देते हैं, आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट करके इक्विटी स्टेक ले सकते हैं, या कुछ प्रोफेशनल्स मिलकर एक मैनेज वेंचर में कैपिटल पूल करते हैं जहां रिटर्न शेयर्ड होता है। देखिए कतर जैसे एनवायरनमेंट में प्राइवेट पार्टनरशिप कॉमन है, लेकिन ये एरिया हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी और हाई रिस्क दोनों रखता है। यहाँ इमोशनल डिसीजन सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं भाई, इसलिए एक फाइनेंशियल कोच के तौर पर मैं ये हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि प्राइवेट इन्वेस्टिंग सिर्फ ट्रस्ट पर नहीं होनी चाहिए, ना ना ना ना, हर इन्वेस्टमेंट के पीछे प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, रेवेन्यू मॉडल क्लियर होना चाहिए, एक एग्जिट स्ट्रेटजी डिफाइन होनी चाहिए और गवर्नेंस स्ट्रक्चर्ड समझना जरूरी है साथियों। प्राइवेट बिजनेस इन्वेस्टिंग उन लोगों के लिए पावरफुल होता है जो सिर्फ सैलरी माइंडसेट से आगे निकल चुके होते हैं और रिस्क को कैलकुलेटेड फॉर्म में समझते हैं। ये वो एसेट क्लास है जो अगर सही जगह लग जाए तो भाई एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स दे सकती है। और इसी के साथ आते हैं अपने एसेट नंबर 9 पर। अरे भाई एसेट नंबर 9 क्या है, ये है रेपुटेशन एंड नेटवर्क। देखिए अगर हम कतर के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को समझें तो एक चीज बहुत क्लियर समझ में आ जाती है, यहाँ ट्रस्ट करेंसी की तरह काम करता है और यही वजह है कि रेपुटेशन और नेटवर्क एक इनविजिबल लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल एसेट बन जाता है। जरा सोचिए अगर किसी रूम में आपका नाम लिया जाए तो आपको क्या समझा जाता है, क्या आपको रिलायबल समझा जाता है, क्या आपको प्रोफेशनल माना जाता है, या फिर आपकी इमेज अनक्लियर है भाई। देखिए यहाँ पर एक सिंपल ट्रुथ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या है वो है रेपुटेशन स्लो बिल्ड होती है लेकिन फास्टली बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो सकती है, और जो लोग अपनी रेपुटेशन को सीरियसली नहीं लेते ना उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं हो पाती, और जो लोग अपनी रेपुटेशन को सीरियसली लेते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली क्रिएट होती चली जाती हैं। देखिए कतर में बहुत सी जॉब्स पार्टनरशिप्स और डील्स सीवी से नहीं बल्कि रेकमेंडेशन से मूव करती हैं। यहाँ अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग है तो आपको हर अपॉर्चुनिटी के लिए डायरेक्ट अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। देखिए नेटवर्क जो होता है ना वो सिर्फ लिस्ट ऑफ नेम्स नहीं होती, नेटवर्क ट्रस्ट का सिस्टम होता है। अगर आप जेन्युइनली लोगों की हेल्प करते हैं, अपनी प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करते हैं, अपने कमिटमेंट्स को टाइम पर कंप्लीट करते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपका नेटवर्क ऑर्गेनिकली ग्रो होता है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपको सिर्फ जॉब नहीं देता बल्कि इंफॉर्मेशन, टाइमिंग और बेटर डिसीजंस का एक्सेस भी देता है। बहुत से फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज सिर्फ इसलिए मिस हो जाते हैं क्योंकि लोग राइट सर्कल में नहीं बैठते। इसीलिए एक सक्सेसफुल इंसान को सिर्फ पैसा नहीं बनाना बल्कि अपनी आइडेंटिटी और रिलेशनशिप्स को भी केयरफुली बिल्ड करना होता है। तो भाई लैंड आपको स्टेबिलिटी देता है, प्राइवेट इन्वेस्टिंग आपको ग्रोथ देती है और रेपुटेशन आपको अपॉर्चुनिटी देती है। तो भाई घूमते घुमाते अब हम आ गए हैं एसेट नंबर 8 पर जो कि है डिजिटल एसेट एंड ऑडियंस। देखिए आज के जमाने में ना जब हम वेल्थ की बात करते हैं ना तो एक नया और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने आता है और वो है डिजिटल एसेट और ऑडियंस ओनरशिप। अगर सिंपल अल्फाज में समझाया जाए तो कैसे समझाया जाए, हाँ आज का सबसे वैल्यूएबल एसेट सिर्फ पैसा या प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि अटेंशन है। जिसके पास लोगों की अटेंशन है ना उसके पास फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, क्योंकि बिजनेस मार्केट और इन्फ्लुएंस सब अटेंशन पर डिपेंड करता है भाई। और यही जगह है कि सोशल मीडिया चैनल्स, पॉडकास्ट, एजुकेशनल पेजेस, नीचे न्यूज़लेटर्स, ई-कॉमर्स ऑडियंसेस और ऑनलाइन कम्युनिटीज आज के टाइम में रियल फाइनेंशियल एसेट बन चुकी हैं। अच्छा जरा सोचिए एक इंसान कतर में रहता है और वो अपनी एक डिजिटल आइडेंटिटी बिल्ड करता है, वो कंटेंट बनाता है एक्सपेक्ट फाइनेंस टिप्स पर, या फिर अरेबिक कुकिंग शेयर करता है, खाना याद आ गया, या ऑफिस वर्कर्स के लिए फिटनेस हैक्स देता है, या कतर की लाइफस्टाइल को सिंपलीफाई करता है, या करियर कोचिंग प्रोवाइड करता है। शुरू में शायद ये सिर्फ पैशन लगता है लेकिन वक्त के साथ ये एक पावरफुल ऑडियंस एसेट बन जाता है।

यहाँ से गेम चेंज होता है. क्या होता है? गेम चेंज. जब ट्रस्ट बिल हो जाता है ना, तो ऑडियंस सिर्फ फॉलो नहीं करती बल्कि एक कम्युनिटी बन जाती है. और जब कम्युनिटी बन जाती है तो मोनेटाइजेशन नेचुरली स्टार्ट हो जाती है. एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कोर्सेज सेल होते हैं, प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं और पार्टनरशिप्स ऑर्गेनिकली डिवेलप होती हैं. देखिए, डिजिटल एसेट्स का सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट ये है कि इनमें ज्यादा पैसा नहीं लगता, लेकिन सबसे ज्यादा चीज जो लगती है ना, वो है कंसिस्टेंसी और टाइम. और अगर कंसिस्टेंसी सही डायरेक्शन में हो तो ये एसेट ग्लोबली स्केल कर सकता है. यानी आप सिर्फ कतर तक लिमिटेड नहीं रहते बल्कि दुनिया तक आपकी रीच हो सकती है. तो भाई, इसी के साथ आ गए हम नंबर 7 पर, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. और अब हम और एडवांस और आप कह लें कि ऑफन इग्नोर्ड एसेट की तरफ आते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये वो कॉन्सेप्ट है जहां आप एक बार काम करते हैं और उसका रिवॉर्ड आपको बार बार मिलता रहता है. मतलब क्या, बता देती हूँ, कोई बात नहीं. सिंपल अल्फाज में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है ऐसा कॉन्टेंट, सिस्टम या प्रोडक्ट क्रिएट करना जो रिपीट सेल्स जनरेट करे, जैसे कि बुक, ऑनलाइन कोर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऐप, सॉफ्टवेयर टूल, म्यूजिक राइट्स या डिजाइन सिस्टम. जरा सोचिए, एक टीचर दोहा में रहता है और वो कौन सा कोर्स ले लूँ, IELTS, IELTS भी कहते हैं लोग उसे. हाँ, IELTS प्रिपरेशन का एक कंप्लीट कोर्स डिजाइन करता है. वो कोर्स एक दफा क्रिएट होता है, लेकिन उसके बाद हजारों स्टूडेंट्स उसे परचेज कर सकते हैं. टीचर को हर दफा सेम मेहनत रिपीट नहीं करनी पड़ती. इसी तरह अगर एक फिटनेस कोच रमजान वेलनेस प्रोग्राम डिजाइन करता है, तो वो एक बार बनाने के बाद उस कोर्स को हर रमजान सीजन में सेल वो कर सकता है. यानी आप एक दफा वैल्यू क्रिएट करते हैं, लेकिन अर्निंग मल्टीपल टाइम्स होती है. यही असल लेवरेज होता है, टाइम को डिटैच करना इनकम से. जब आपका इनकम आपके एक्टिव टाइम पर डिपेंड नहीं करता, तब आप फाइनेंशियली फ्री होने की तरफ मूव करते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट ये है कि ये आपकी नॉलेज को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है. और नॉलेज जब प्रोडक्ट में बन जाती है ना, तो वो स्केलेबल बन जाती है. तो भाई, इसी के साथ जल्दी से भागते दौड़ते हम पहुंच गए हैं एसेट नंबर 6 पर, जो कि है डिविडेंड स्टॉक्स. देखिए, अब हम एक ट्रेडिशनल लेकिन बहुत ही पावरफुल एसेट की बात करने जा रहे हैं, जो कि है डिविडेंड स्टॉक्स. ये वो कंपनीज होती हैं जो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती हैं. इस पेमेंट को हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है. देखिए, दुनिया भर में ऐसी कंपनीज अक्सर स्टेबल और स्टैब्लिश सेक्टर में होती हैं, जैसे यूटिलिटीज, टेलीकॉम, और कौन है दिमाग मेरे कौन आ रहा है, कंज्यूमर गुड्स, बैंक्स और मेच्योर ब्लू चिप कंपनीज. ये वो बिजनेसेस होते हैं जो ऑलरेडी ग्रोथ फेज से निकलकर स्टेबिलिटी फेज में आ चुके होते हैं ऑलरेडी. डिविडेंड इन्वेस्टिंग का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि ये सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपको रेगुलर पैसिव इनकम देता है. और जब ये डिविडेंड्स रीइन्वेस्ट किए जाते हैं ना, तो यहाँ से एक पावरफुल कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट होता है. ज़रा सोचिए, आपको डिविडेंड मिलता है और आप उससे और शेयर्स खरीद लेते हैं. अब आपके पास ज़्यादा शेयर्स हैं जो और ज़्यादा डिविडेंड जनरेट कर सकते हैं. और ये साइकिल टाइम के साथ अपने आप को स्नोबॉल इफेक्ट की तरह ग्रो करता चला जाता है. ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए बहुत पावरफुल होती है जो एग्रेसिव स्पेकुलेशन नहीं करते, बल्कि स्टडी और डिसिप्लिन वेल्थ क्रिएशन प्रेफर करते हैं. यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्साइटमेंट नहीं होती, बल्कि पेशेंस होता है. डिविडेंड इन्वेस्टिंग का रियल पावर टाइम के साथ अनलॉक होता है. ये एक स्लो सिस्टम है, लेकिन एक्सट्रीमली रिलायबल है अगर इसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाए तो. अच्छा साथियों, इसी के साथ आगे बढ़ें तो एसेट नंबर 5 है इंडेक्स फंड्स एंड ETFs. आज के मॉडर्न इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है इंडेक्स फंड्स और ETFs. ये वो अप्रोच है जहां आप मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि मार्केट को ही ओन कर लेते हैं. सिंपल अल्फाज में, इंस्टेड ऑफ एक या दो कंपनीज को पिक करने के, आप एक पूरे बास्केट में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें मल्टीपल कंपनीज होती हैं. इस तरह आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है और आप किसी एक कंपनी के डाउन

से ज़्यादा exposed नहीं होते. एग्जाम्पल अगर इसकी दी जाए तो एग्जाम्पल्स में आप US मार्केट एक्सपोजर ले सकते हैं, ग्लोबल इक्विटी एक्सपोजर, शरिया कॉम्प्लाइंट इंडिसीज, सेक्टर बेस्ड ETFs या रीजनल फंड्स. हर ऑप्शन का अपना स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कोर आइडिया ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ पार्टिसिपेट कर रहे हो विदाउट डेली स्ट्रेस. कतर जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में ना जो रहने वाले प्रोफेशनल्स के लिए ये स्ट्रेटजी बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसमें ना तो डेली मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, ना इमोशनल डिसीजंस लेने पड़ते हैं. ये एक लो मेंटेनेंस और डिसिप्लिन्ड अप्रोच है. तो भाई इसी के साथ आ जाते हैं एसेट नंबर 4 पर, जो कि है इनकम प्रोड्यूसिंग रियल स्टेट. रियल स्टेट का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि प्रॉपर्टी लेना ही एसेट है, लेकिन असल में हर प्रॉपर्टी एसेट नहीं होती. एसेट सिर्फ वो होता है जो आपके लिए कैश फ्लो क्रिएट करे. इनकम प्रोड्यूसिंग रियल स्टेट का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको रेगुलरली इनकम दे, जैसे रेंटल अपार्टमेंट्स, स्टाफ अकोमोडेशन यूनिट्स, कमर्शियल शॉप्स या अप्रूव्ड मार्केट्स में हॉलीडे रेंटल्स. यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज इमोशनल डिसीजंस नहीं होते, बल्कि न्यूमेरिकल एनालिसिस होता है. स्मार्ट इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ की फैक्टर्स देखते हैं, यानी कि रेंटल यील्ड, वेकेंसी रिस्क, मेंटेनेंस कॉस्ट, फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर और लीगल फ्रेमवर्क. बहुत से लोग प्रॉपर्टी इमोशनल डिसीजन से ले लेते हैं, यानी कि लोकेशन पसंद आई तो ले ली, डिजाइन अच्छा लगा तो ले लिया, या फ्यूचर ड्रीम अपना बनाना होता है तो ले लिया. लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ एक चीज देखते हैं, कैश फ्लो. बाबू कैश फ्लो. अगर प्रॉपर्टी आपकी पॉकेट में पैसा डाल रही है तो वो एसेट है. अगर वो सिर्फ एक्सपेंसेस क्रिएट कर रही है तो वो क्या है? एग्जैक्टली, वो है लाइबिलिटी. चाहे वो कितनी भी एक्सपेंसिव या ब्यूटीफुल क्यों ना हो, तो सोच समझ के खरीदिएगा. अच्छा आगे बढ़े तो हम बात करते हैं एसेट नंबर 3 की, योर ओन बिजनेस. देखिए सैलरी एक नेचुरल लिमिटेशन होती ही होती है, वो टाइम और आवर्स से बाउंड होती है, लेकिन ओनरशिप का पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है. इसीलिए अपना बिजनेस एक बहुत पावरफुल वेल्थ एसेट बन जाता है इंसानों के लिए. कतर में मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि कंसल्टिंग फर्म्स, डिलीवरी सर्विसेज, क्लीनिंग ब्रांड्स, डिजाइनिंग एजेंसीज, स्पेशलिटी फूड बिजनेसेस, ई कॉमर्स इम्पोर्ट्स और ट्रेनिंग अकेडमीज. ये सब एग्जाम्पल्स हैं जहाँ से लोग स्केलेबल इनकम क्रिएट करते हैं. लेकिन यहाँ पर ना सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी होता है. जॉब और बिजनेस में फर्क सिस्टम का होता है. अगर आपका बिजनेस सिर्फ आपके प्रेजेंस पर चल रहा है ना, तो वो असल में आपकी एक जॉब है. लेकिन अगर उसमें सिस्टम्स, प्रोसेसेस और डेलीगेशंस हैं, तो वो एक रियल एसेट बन जाता है. देखिए बिजनेस का रियल पावर तब अनलॉक होता है जब वो आपके बगैर भी चल सकता हो, जब सेल्स, ऑपरेशंस और डिलीवरी सिस्टम इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तभी स्केलेबिलिटी स्टार्ट होती है. और अब भाई आ जाते हैं एसेट नंबर 2 पर. ये वो एसेट है जो अक्सर लोग सबसे ज्यादा इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसी का होता है, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो वेल्थ कोई मीनिंग नहीं रखती. योर हेल्थ इज एन एसेट. पुअर हेल्थ डायरेक्टली आपकी फाइनेंशियल लाइफ को अफेक्ट करती है. मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है, स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं और बर्न आउट का रिस्क बढ़ जाता है. कतर में लाइफस्टाइल का पैटर्न भी इस एसेट को और इम्पॉर्टेंट बनाता है. लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ज्यादा सिटिंग जॉब्स, ड्राइविंग डिपेंडेंसी, इरेगुलर स्लीप साइकिल्स और सोशल ईटिंग हैबिट्स, ये सब मिलकर हेल्थ को साइलेंटली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं. इसीलिए हेल्थ एक डिसिप्लिन एसेट की तरह ट्रीट करना जरूरी है. रेगुलर वॉकिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेडिकल चेकअप्स, ये सब सिंपल चीजें लगती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रोटेक्शन का फाउंडेशन बन जाती हैं. भाई देखिए ना, हेल्दी इंसान सिर्फ ज्यादा नहीं जीता बल्कि बेटर डिसीजंस लेता है ना, ज्यादा अर्न करता है और अपनी वेल्थ को ज्यादा एंजॉय करता है. और फिर वह बारी आ जाती है अपने चमकते हुए सितारे की, नंबर 1 की एसेट नंबर 1, हाई इनकम स्किल्स. और अब आते हैं सबसे पावरफुल एसेट पर, हाई इनकम स्किल्स. ये वो फाउंडेशन है जहां से सब कुछ स्टार्ट होता है. स्किल्स ही इनकम क्रिएट करती हैं और इनकम ही बाद में इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स बन जाती हैं. इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो पहला सवाल ये

होना चाहिए, मैं अपनी अर्निंग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ। पैसा होगा तो इन्वेस्ट करोगे ना भाई। देखिए, हाई वैल्यू स्किल्स में सेल्स, निगोसिएशन, कोडिंग, फाइनेंस, लीडरशिप, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, AI इम्प्लीमेंटेशन, डिजिटल मार्केटिंग, लैंग्वेज फ्लुएंसी और पब्लिक स्पीकिंग शामिल होती हैं। कतर जैसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वही प्रोफेशनल्स फास्ट ग्रो करते हैं जिनके पास रेयर और वैल्यूबल स्किल्स होती हैं, क्योंकि मार्केट सिर्फ प्रेजेंस को रिवॉर्ड नहीं करती बल्कि वैल्यू क्रिएशन को रिवॉर्ड करती है। अच्छा भाई, अब अगर आगे बढ़ें तो अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट स्टेप पर, जो कि एक इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट बिल्ड करना। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, सिर्फ एक चूज करें, ओवरथिंक या मल्टीपल चीज़ों में जंप नहीं करें, ये ना कीजिएगा, ये अक्सर फेलियर का रीज़न होता है। आप एक सिस्टमेटिक मंथली ETF इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जहां आप डिसिप्लिन वे में वेल्थ बिल्ड करें, या फिर आप एक साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जहां आप अपनी स्किल्स मोनेटाइज कर सकते हैं, या रेंटल स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं आप जहां आप लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, या कंटेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जहां आप अपनी नॉलेज को ऑडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स डिजाइन कर सकते हैं जो रिपीट इनकम जनरेट करे। इंपॉर्टेंट ये है कि आप सिर्फ सोचे नहीं बल्कि स्टार्ट करें, क्योंकि एक छोटा सा स्ट्रक्चर्ड स्टेप भी 12 महीने के बाद एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन बन जाता है। अच्छा भाई, आगे बढ़े तो तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट मूव ये है कि आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें जो सिर्फ देखने में एसेट लगती हैं लेकिन असल में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को स्लो करती हैं। लग्जरी फाइनेंस कार्स जो सिर्फ स्टेटस शो ऑफ करती हैं लेकिन लाइबिलिटी बन जाती हैं, ये याद रखें। अननेसेसरी गैजेट्स जो रियल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करते, ये याद रखें। स्टेटस बेस्ड स्पेंडिंग जो सिर्फ सोशल वैलिडेशन के लिए होती है, नॉट अलाउड। और एक्सपेंसिव हैबिट्स जो साइलेंटली आपकी सेविंग्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, इनके ऊपर ध्यान दें। अगर कोई चीज़ आपको रिच दिखाती है लेकिन फाइनेंशियली वीक बनाती है तो उस पर सवाल उठाना ज़रूरी है। वेल्थ बिल्डिंग का पहला रूल ये है कि आप अपने इमोशन से ज़्यादा अपने नंबर्स को ट्रस्ट करें। अच्छा, इसी के साथ आपको कुछ क्विक लेकिन पावरफुल रिमाइंडर्स भी दे देती हूँ, फाइनेंशियल माइंडसेट को डेली गाइड आपके कर सके जो, ठीक है। सैलरी हमेशा टेम्प्रेरी होती है साथियों, लेकिन स्किल्स पोर्टेबल होती हैं, याद रखो। वो आपके साथ हर कंट्री हर अपॉर्चुनिटी में चलती हैं। अगर कोई एक्सपेंस आपसे हर महीने पैसा ले रहा है और रिटर्न नहीं दे रहा तो उसको रिव्यू करना जरूरी है। इन्वेस्टिंग इमोशनल नहीं होनी चाहिए बल्कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। आपका सोशल सर्कल भी आपके फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स को इन्फ्लुएंस करता है। जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं ना, वो इनडायरेक्टली आपकी थिंकिंग को शेप कर रहे होते हैं, इसीलिए अपने एनवायरमेंट को केयरफुली चूज करें। और याद रखें, एसेट्स क्वाइटली बिल्ड करें, शो ऑफ नहीं करें मेहरबानी करके, स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि रियल रिजल्ट्स हमेशा लाउड नहीं होते लेकिन पावरफुल जरूर होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग डेकेड किसी भी फैमिली की फाइनेंशियल स्टोरी को कम्प्लीटली चेंज कर रख सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, विजिबिलिटी और वेल्थ को कभी कंफ्यूज मत करें। तो डियर लिसनर्स, वेल्थ कभी एक ड्रामेटिक मोमेंट में नहीं आती, ना ही ये एक ड्रामेटिक मोमेंट में बनती है। ये एक प्रोसेस है जो हर रोज छोटे छोटे वाइज डिसीजन से बनता है। एक स्किल जो आपने सीखी, एक मंथली इन्वेस्टमेंट जो आपने स्टार्ट किया, एक बैड हैबिट जो आपने स्टॉप की, एक साइड बिजनेस जो आपने बिल्ड किया, एक रेपुटेशन जो आपने प्रोटेक्ट की, और एक हेल्दी बॉडी जो आपने मेंटेन की, ये सब मिलकर वेल्थ क्रिएट करते हैं। बहुत से लोग 10 साल सिर्फ बिजी रहते हैं लेकिन बहुत से लोग 10 साल इंटेंशनली बिल्ड करते हैं। आप कौन से ग्रुप में आते हैं, कभी सोचा है? तो भाई साथियों, ये था आज का मनी नेविगेटर का एपिसोड। मैं हूँ सफा। तो भाई, आज के इस एपिसोड से मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं 666-22107 पर, या हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं जो कि @FM107Qatar। और याद रखें, कतर में सिर्फ अर्न मत कीजिए, ऐसा कुछ बिल्ड कीजिए जो आपकी सैलरी से ज्यादा लंबी लाइफ रखता हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मेरी तरफ से आई एम साइनिंग आउट, और नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं। याद रखिए कि जो अपना ख्याल नहीं रख सकता ना, वो दूसरों का भी क्या ही ख्याल रखेगा। इसी नोट के साथ सुनते रहें FM 107।

0: 7, दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, डिसेबिलिटी वाली पार्किंग स्पेसेस का इस्तेमाल ट्रैफिक का वायोलेशन और बेअदबी है। ट्रैफिक के कानून और गाइडलाइंस को फॉलो करना अमन और दूसरों के हुकूक की हिफाजत करता है। याद रखिए, डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए रिजर्व्ड पार्किंग स्पेसेस का गलत इस्तेमाल ट्रैफिक का ऑफेंस है और उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इन स्पेसेस का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि जो लोग फिजिकल डिसेबिलिटी से मुतासिर हैं, उन्हें आसानी से अपने जरूरी कामों को अंजाम देने का मौका मिले। ये पार्किंग स्पेसेस उन्हें कन्वीनियंस और सहूलत देने के लिए रिजर्व्ड होती हैं और उनका गलत इस्तेमाल उनके लिए अननेसेसरी मुश्किलात का सबब बन सकता है। ये जरूरी है कि हम अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतरीन और अमन पसंद ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें ताकि सबको बराबर के हुकूक मिल सकें और किसी को भी अपने हक से महरूम ना होना पड़े। FM 107 इस बात की ताकीद करता है कि मुआशरे में हर एक का बराबरी से ख्याल रखना बेहद जरूरी है।
0: मैक्सिमम

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 presents Your Health Matter. Your Health Matter with RJ Shruti.
2: कभी किसी ने आपसे कहा है पसीना आ रहा है ना मतलब फैट बर्न हो रहा है, या फिर ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी कि अगर पेन नहीं है तो सब ठीक है, और हम क्या करते हैं बस मान लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उन बातों की जो सालों से हम सुनते आ रहे हैं पर जो सच नहीं होती, दैट इज हेल्थ मिथ्स वी स्टिल बिलीव इन। हेल्थ मिथ्स बड़े ही डेंजरस से होते हैं क्योंकि वो कम्फर्ट दिलाते हैं और काफी सिंपल लगते हैं, और सबसे बड़ी बात इसके पीछे लॉजिक नहीं होता है। जो किसी ने कहा, बड़ों ने कहा या आजू बाजू कहीं से सुना, हम उसपे बस यकीन कर लेते हैं और उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं बिना उसका रियल रीजन जाने। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं सबसे बड़े कॉमन मिथ से, एंड दैट इज बहुत लोग मानते हैं कि अगर ज्यादा पसीना आए मतलब ज्यादा फैट बर्न हो रहा है, पर सच ये है कि स्वेट सिर्फ बॉडी का कूलिंग सिस्टम है। साथ ही में गर्मी, ह्यूमिडिटी या टाइट क्लोथ्स, ये सब भी पसीना बढ़ा सकते हैं। फैट बर्न करने का पसीने से कोई डायरेक्ट कनेक्शन होता ही नहीं है। दूसरा मिथ, जो भी सोचते हैं कि अरे ये तो बड़ा ही पतला लग रहा है या थिन है या फिट है मतलब ये हेल्दी है। रियलिटी चेक, हेल्थ का साइज से कोई गारंटी नहीं होता। अ पर्सन कैन बी थिन एंड स्टिल हैव अ पुअर स्टैमिना, वीक इम्यूनिटी या स्ट्रेस ओवरलोड, और वहीं कोई थोड़ा हैवी होके भी फिट या एनर्जेटिक हो सकता है। हेल्थ दिखती नहीं है, हेल्थ इंटरनली महसूस होती है। एक और एक मिथ जो बहुत पॉपुलर है, डिटॉक्स ड्रिंक्स बॉडी को क्लीन कर देते हैं। सच ये है कि आपका लिवर और किडनीज 24/7 डिटॉक्स का काम करता है। फैंसी जूसेस और क्लेंजर्स कभी कभी ज्यादा नुकसान भी दे सकते हैं, जैसे कि वीकनेस, न्यूट्रिशन लॉस या डिहाइड्रेशन को बढ़ा सकते हैं। फिर एक और मिथ आता है, लेट नाइट खाना मतलब वेट गेन। लेट नाइट जंक खाना प्रॉब्लम है, लेट नाइट खाना खाना प्रॉब्लम नहीं है। एप्पल और चिप्स में बड़ा ही फर्क होता है, ये हम सब जानते हैं। और सबसे साइलेंट मिथ, मेंटल स्ट्रेस सिर्फ माइंड का इशू है। नहीं, स्ट्रेस बॉडी पर भी असर करता है। डाइजेशन, स्लीप, इम्यूनिटी, स्किन, वेट, हेयर, ये सारी चीजें स्ट्रेस से इम्पैक्ट होती है। स्ट्रेस को इग्नोर करने का मतलब हेल्थ को खामोशी से डैमेज होने देना। हेल्थ मिथ्स इसलिए सर्वाइव करते हैं क्योंकि हम क्वेश्चंस नहीं पूछते, हम बस मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं, रील भेजते जाते हैं और रैंडम एडवाइसेस पर भरोसा कर लेते हैं। पर हेल्थ ट्रेंड से ज्यादा हेल्थ साइंस पे ट्रस्ट करना जरूरी है। तो आज का एक छोटा सा मशवरा, नेक्स्ट टाइम जब भी आप कहीं से कोई हेल्थ एडवाइस सुने तो एक सेकेंड के लिए रुकिए और सोचिए इसका सोर्स क्या है। क्या ये हर बॉडी के लिए सेम है? हर बॉडी अलग होती है, हर लाइफस्टाइल अलग होती है, इसीलिए वन साइज फिट्स ऑल हेल्थ एडवाइस रेयरली काम करती है। याद रखिए, मिथ्स फॉलो करना इजी है लेकिन सच समझना पावरफुल है, और जब आप सच के साथ

0: हेल्थ चूज करते हैं ना, तो बॉडी भी आपका साथ देती है, एनर्जी के साथ, क्लैरिटी के साथ और एक गहरे से इत्मीनान के साथ। तो आज एक मिथ छोड़िए और अपनी हेल्थ के साथ एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप बनाइए, क्योंकि ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं पर सेहत हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड यस, योर हेल्थ मैटर्स।
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.
2: जमाने के साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया भी बदल रही है और बदल रहा है स्पोर्ट्स को जानने और सुनने का तरीका भी, और हम तो चलते हैं हमेशा जमाने के साथ साथ। इसीलिए FM 107 लाया है स्पोर्ट्स के लिए एक खास प्रोग्राम स्पोर्टकास्ट, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर वेंसडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
3: Maximum music, maximum fun
4: on FM 107. Dil se desi.

इंडियन फुटबॉल के वन ऑफ द लेजेंडरी फिगर पीके बनर्जी यानी प्रदीप कुमार बनर्जी और लोग उन्हें बहुत प्यार से पीके बुलाते थे। या दोस्तों, पीके बनर्जी सिर्फ एक बेहतरीन फुटबॉलर नहीं बल्कि इंडियन फुटबॉल की पहचान थे। 1950 और 1960 के दौर में इंडियन फुटबॉल का चमकता हुआ सितारा थे। अलोंग विद चुनी गोस्वामी, बलोराम, पीके बनर्जी डिफाइन इंडियन फुटबॉल ड्यूरिंग द टेरा। उनकी स्पीड, बॉल कंट्रोल और गोल स्कोरिंग एबिलिटी ने उन्हें एशिया के बेहतरीन फॉरवर्ड्स में शामिल कर दिया। उन्होंने इंडिया के लिए कई यादगार मैचेस खेले और इंटरनेशनल स्टेज पर मुल्क का नाम रोशन किया। स्पेशली 1956 ओलंपिक गेम्स जहां ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंडिया फोर्थ पोजीशन हासिल की थी, उस टीम में भी पीके बनर्जी वाज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर अलोंग विद चुनी गोस्वामी, बलराम, जैसे मैंने बताया। 1962 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन टीम का हिस्सा होना उनके करियर का एक अहम संग मील था। बाद में पीके बनर्जी ने इंडियन फुटबॉल टीम की कप्तानी भी की और अपनी लीडरशिप से टीम को नया हौसला और डायरेक्शन दी। रिटायरमेंट के बाद यानी एज अ प्लेयर व्हेन ही रिटायर्ड, उसके बाद भी उनका फुटबॉल के साथ रिश्ता जो था टूटा नहीं। वो कोच और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी इंडियन फुटबॉल से जुड़े रहे और नौजवान खिलाड़ियों की ट्रेनिंग में बुनियादी किरदार अदा किया। दोस्तों, पीके बनर्जी का जुनून, मेहनत और कमिटमेंट इंडियन फुटबॉल के लिए हमेशा मिसाल रहेगा। वो एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक दौर की पहचान थे जिनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाइलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
2: Fraud Awareness.
3: Hi dear, I miss you. मुझे बहुत याद आती है आपकी. I hope you're okay, you're fine. बस थोड़ा सा पैसा चाहिए. एमरजेंसी है.
4: ऐसी ही मीठी मीठी बातों में हम में से कई फंस जाते हैं. सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वेद और यह है फ्रॉड अवेयरनेस. फेक प्रोफाइल्स, फेक लव स्टोरीज, पहले इमोशन.

0: फिर एक्सक्यूजेस और फिर पैसे, यही है इनका कॉमन तरीका। कई दफा तो कई फ्रॉडस्टर लड़की बन के आपसे चैट करते हैं एंड वॉइस वर्सा, काफी लंबे दिनों तक आपको अपने प्यार के झांसे में फंसाते हैं, फिर कोई कॉमन बहाना देते हैं जैसे मेडिकल इमरजेंसी, बिजनेस प्रॉब्लम, गिफ्ट कस्टम इशू, और आपसे बोलते हैं कि थोड़े पैसे मिल जाते तो मैं काम कर लेती। आउट ऑफ लव आप पैसे दे देते हैं, और जैसे ही आप पैसे देते हैं वैसे ही इस लव स्टोरी का एंड हो जाता है। तो अपने आप को ऐसे ऑनलाइन लव से बचा के रखिए, क्योंकि ऑनलाइन लव प्लस मनी रिक्वेस्ट इज इक्वल टू स्कैम। ऐसे लोगों को कभी पैसे ट्रांसफर मत करो। कई लोग धोखा खा के समझ जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप धोखा खाने से पहले संभल जाएं। ट्रू लव दिल मांगता है, UPI या पैसे ट्रांसफर नहीं।
1: सतर्क रहे, सावधान रहे। फ्रॉड अवेयरनेस
2: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
4: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक में ही सही लेकिन लाइफ के लेसन्स भी दे पाए।
5: कसके जूता, कसके बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी।
4: well, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड, द स्टूडेंट्स गाइड। तो सुनिए हर मंडे दोहा वाले कबीर के साथ, कबीर के साथ द स्टूडेंट्स गाइड, एंड बी द गाइडिंग लाइट फॉर स्टूडेंट्स हमारे साथ दोपहर 3:30 से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
0: स्टूडेंट्स के लिए आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन सा रास्ता चुने। नए करियर ऑप्शंस की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या AI एक्सपर्ट, करना क्या है? इस उलझन को सुलझाने के लिए करियर कैंपस सीजन टू जहां मिलेगी वो गाइडेंस जो आपको कंफ्यूजन से निकाल कर बनाएगी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट एक्सपर्ट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, ऑन स्पॉट क्वेरीज के जवाब, और वो टिप्स जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो जरूर सुने शो करियर कंपास सीजन 2 आरजे नाजिया के साथ हर सैटरडे शाम 4 से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
6: One hits music station. Anytime, anywhere.
7: Yes, anytime, anywhere.
6: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
8: Values are values. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नाजिया आपके साथ, एंड वेलकम टू द सेगमेंट कॉल्ड आवर वैल्यूज। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और ये टॉपिक है रिटायरमेंट प्लानिंग। देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है, लेकिन कब से इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम क्या सोचते हैं, जब रिटायर हो जाएंगे, थोड़ा फ्री हो जाएंगे, फिर कुछ प्लान करेंगे, लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो करना ये है कि चीज़ों को इतना ज़्यादा डिले नहीं करना है, बल्कि पहले से प्रायर प्लानिंग कर लेना हमेशा फ़ायदेमंद साबित होता है। देखिए, आजकल की लाइफ में लोग रोज़ की ज़रूरत है, एक्सपेंसेस हैं, इन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अक्सर इग्नोर हो जाती है वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट का मतलब होता है कि वो टाइम, यू नो, जब हम काम छोड़ देंगे, रेगुलर इनकम बंद हो जाएगी। इसलिए अगर हम पहले से प्लानिंग ना करें तो आगे चलकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना होता है, कभी इमोशनल सिचुएशंस जो हैं वो सामने आ जाती हैं, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है दूसरों पर, एंड सो फॉर दैट हम जो हैं वो कम्फर्टेबल फील नहीं करते। देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग है क्या, इसको भी समझना जरूरी है। अगर बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं, तो रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है अपनी जिंदगी के उस हिस्से के लिए खुद को तैयार करना जब आप काम नहीं कर रहे हैं। इसमें पैसे सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, फ्यूचर के खर्चों को एस्टिमेट करना है, यह सारी चीजें जो है शामिल हो जाती हैं। इसमें गोल भी आपके होने चाहिए। अब आप सोचेंगे, पूरी जिंदगी तो ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स इन सब में फंसे रहे, अब कौन सा गोल, गोल वाला गोल? नहीं, मेरा मतलब है इसमें गोल ये होना चाहिए कि आप अपने

अपनी जिंदगी आराम से गुजारें बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस या टेंशन के। अब इसके लिए हमें करना क्या है? रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। जब आप रिटायर हो जाते हैं तो सैलरी बंद हो जाती है, ऐसे में आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए। वो लोग अलग हैं जो बिजनेस अपना कर रहे हैं, उनकी तो चलिए चलती रहती है, एक अर्निंग उनको होती रहती है, बट उनकी वो भी अपने हिसाब से जो है वो प्लानिंग करते हैं अपने रिटायरमेंट की, कि किस तरह से अपने बच्चे को तैयार करना है कि वो इनका बिजनेस जो है टेक ओवर कर ले एंड ऑल दैट। लेकिन हाँ, यहाँ पर उन लोगों की खास मैं बात कर रही हूँ जो पूरी तरह से सर्विस क्लास को बिलोंग करते हैं, यानी सैलरी आ रही है बंधी हुई महीने में, उस हिसाब से खर्चे आपके सारे सेट है। बट हो जाता है कि जब सैलरी बंद हो फिर क्या हो, फिर प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। लेकिन अगर हमने ठीक तरह से प्लानिंग कर ली है तो दूसरों पर डिपेंड होने का मौका ही नहीं मिलेगा। देखिए, आपके बच्चे आपके दूसरे नहीं हैं, लेकिन बच्चों की भी उस वक्त तक अपनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं कि शायद उस तरह से वो आपको सपोर्ट फाइनेंशियली ना कर सके। तो सबसे अच्छा है ना कि आप अपनी इज्जत से सर उठा के खुद के लिए जिस तरह से कमाते आए हैं और किसी आगे हाथ नहीं फैलाया आपने, वैसे अपने रिटायरमेंट को भी प्लान कीजिए। देखिए, आप जानते हैं कि वक्त के साथ इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो है वो बढ़ी रही है। आज जो चीज 100 की है वो कल 200 की है और शायद आने वाले वक्त में 500 की भी होगी। इसीलिए रिटायरमेंट के लिए ऐसा प्लान जरूरी है जो इन्फ्लेशन को आसानी से हैंडल कर सके, यानी महंगाई को भी हैंडल कर सके। वहीं पर जब हम रिटायरमेंट के करीब आ जाते हैं, जब रिटायर हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा एक्सपेंस जो हमारे साथ डे टू डे लाइफ में जुड़ जाता है वो हमारा मेडिकल एक्सपेंस है। जैसे जैसे एज बढ़ती है हेल्थ इश्यूज भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, मेडिकल कॉस्ट भी बहुत हाई हो चुकी होती है। अगर आपने पहले से सेविंग्स की होंगी तो आप इजिली अपने रिटायरमेंट का खर्चा उठा सकेंगे। वहीं पर प्लानिंग जो है वो रिटायरमेंट की क्यों ज्यादा जरूरी है? हर कोई चाहता है कि बुढ़ापे में किसी पर डिपेंड ना हो, इज्जत से वक्त काटे। रिटायरमेंट प्लानिंग आपको इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट बनाती है, इसलिए भी बहुत जरूरी है। वहीं पर बेटर लाइफस्टाइल के लिए भी मैं कहूंगी कि रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाती है। अगर आपने अच्छी प्लानिंग की है तो आप रिटायरमेंट के बाद ट्रैवल कर सकते हैं, अपनी हॉबीज इन सारी एक्टिविटीज को भी इंजॉय कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि प्लानिंग जो है वो कब से शुरू करनी चाहिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि प्लानिंग कब से स्टार्ट हो। इसका जवाब है जितनी जल्दी हो सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब आप अर्निंग स्टार्ट करते हैं उसी वक्त थोड़ी सी सेविंग रिटायरमेंट के लिए शुरू कर दीजिए। मतलब आप जब से आपने शुरू किया और अगर आपकी भाई बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज नहीं है तो थोड़ा सा ही सही एक अमाउंट अपने रिटायरमेंट के लिए साइड में रखना शुरू कीजिए। अर्ली स्टार्ट का फायदा क्या होता है? देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलता है। अगर आप अर्ली सेविंग करते हैं तो आपके पैसे पर इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट कमाता है, समझे ना। इस प्रोसेस को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ये टाइम के साथ आपके पैसे को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, तो इससे आपका फायदा होता है। नहीं, कम सेविंग से ज्यादा रिजल्ट्स नजर भी आते हैं। अगर आप 25 साल की एज में सेविंग शुरू कर देते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देते हैं, तो आपको हर महीने कम अमाउंट सेव करना पड़ेगा। अगर आप लेट स्टार्ट करते हैं तो आपको ज्यादा पैसे बचाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, फिर उस वक्त एक तरह का फोर्स या प्रेशर भी बिल्ड हो जाता है। वहीं जब आप अर्ली प्लानिंग करते हैं तो आप पर फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो कम होता है और आप फ्यूचर के लिए ज्यादा रिलैक्स रहते हैं। वहीं मैं कहूंगी अर्ली प्लानिंग से आप अपनी लाइफ का डिसीजन बेहतर ले पाते हैं। जैसे अर्ली रिटायरमेंट अगर आप लेना चाह रहे हैं, VRS, या फिर करियर चेंज, या फिर कोई और हॉबी या कोई और शौक जो आप परस्यू करना चाहते हैं टुवर्ड्स द एंड, तो ये सारी चीजें आपको करने में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। वहीं का अगर कोई बंदा प्लानिंग जो है वो लेट करे तो क्या होता है? अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग डिले कर देते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं, जैसे सेविंग कम रह जाएगी, ज्यादा पैसे जमा करना पड़ेगा लेटर स्टेजेस में, जो कि टफ भी हो जाता है बिकॉज ऑफ आर हेल्थ इश्यूज एंड सो मेनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रेस और टेंशन, ये इंसान की लाइफ में ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और फिर आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, जाहिर है दवाई खानी शुरू कर देंगे आप, फिर कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफस्टाइल के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ, ये भी याद रखिए। देखिए, मैं यहाँ पे एक रिसर्च का हवाला भी आपको देना चाहूंगी। रिसर्च ये कहती है कि अगर आप 5 से 10 साल पहले प्लानिंग कर लेते हैं, डिले नहीं करते हैं, तो आप टोटल रिटायरमेंट फंड
आपकी लाइफ के लिए, मतलब बची हुई लाइफ के लिए काफी हो।

लेकिन अगर आप सोचिए इससे पहले से आप ठीक ठाक तरीके से प्लानिंग करते चले आए तो ये काफी से ज्यादा होता है ना। तो कितना सुकून भी होता है कि हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। सिंपल टिप्स जो मैं अब आपको देने वाली हूँ रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, कोशिश करें कि हर मंथ थोड़ा सा पैसा सेव करना है, एक रिटायरमेंट प्लान या फंड या इस नाम से कुछ भी, और एक अकाउंट में, अपने एकदम सेपरेट अकाउंट में उसे डालते रहे। अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज रिटायरमेंट के लिए रखिए ही रखिए। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइफ में अपने गोल्स जो है उन्हें क्लियर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्लानिंग की रिव्यू करना। हर प्लानिंग का रिव्यू करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए रिटायरमेंट प्लानिंग कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। ये आपको फ्यूचर में सिक्योर करेगी, इंडिपेंडेंट बनाएगी और खुश रहने में हेल्प करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए आज ही सोचना शुरू करें। छोटी सी सेविंग भी कल एक बहुत बड़ी राहत बन सकती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मुझे यानी नाजिया को

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। स्ट्रे डॉग्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स ने कुछ खास प्रोटोकॉल्स रखे हैं जिन्हें फॉलो करना बेहद जरूरी है। जैसे अगर अग्रेसिव स्ट्रे डॉग से आपका सामना होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एक्ट आई कॉन्टेक्ट से बचें और पुलिस K9 सेक्शन को 2346555 पर कॉल करें। इसके अलावा डेंजरस एनिमल्स के लिए है लॉ नंबर 10 ऑफ 2019, जिसके मुताबिक डेंजरस डॉग्स जैसे रॉटवीलर्स, डोबरमैन वगैरह या वाइल्ड कैट्स और दूसरे डेंजरस पेट्स की रजिस्ट्री करवाना बेहद जरूरी है। नॉन कंप्लायंस पर ₹1,00,000 तक का फाइन हो सकता है। इसके अलावा इंपोर्टिंग पेट्स के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एनिमल रिसोर्सेज से वैलिड इंपोर्ट परमिट लेना जरूरी है। साथ ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और माइक्रोचिप भी चाहिए।

देखो हमने कभी किसी बस्ती को इसके बगैर हलाक नहीं किया कि उसके लिए खबरदार करने वाले हक नसीहत अदा करने को मौजूद थे और हम जालिम न थे। इस किताब मुबीन को शयातीन लेकर नहीं उतरे हैं, न ये काम उनको सजता है और न वो ऐसा कर ही सकते हैं। वो तो इसकी समाअत तक से दूर रखे गए हैं। बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को न पुकारो वरना तुम भी सजा पाने वालों में शामिल हो जाओगे। अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को डराओ और ईमान लाने वालों में से जो लोग तुम्हारी पैरवी इख्तियार करें उनके साथ तवाज़ों से पेश आओ, लेकिन अगर वो तुम्हारी नाफरमानी करें तो उनसे कह दो कि जो कुछ तुम करते हो उससे मैं बरी उतिम्मा हूं, और उस जबरदस्त और रहीम पर तवक्कुल करो जो तुम्हें उस वक्त देख रहा होता है जब तुम उठते हो, और सजदा गुजार लोगों में तुम्हारी नकलो हरकत पर निगाह रखता है, वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। लोगों, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शयातीन किस पर उतरा करते हैं? वो हर जालसाज बदकार पर उतरा करते हैं। सुनी सुनाई बातें कानों में फूंकते हैं और उनमें से अक्सर झूठे होते हैं। रहे शुआरा तो उनके पीछे बहके हुए लोग चला करते हैं। क्या तुम देखते नहीं हो कि वो हर वादी में भटकते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो करते नहीं हैं, बजुज उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और अल्लाह को कसरत से याद किया, और जब उन पर जुल्म किया गया तो सिर्फ बदला ले लिया।